ने ही में तो ये लोग पड़े हुए हैं और जहन्नम ने इन काफिरों को घेर रखा है। तुम्हारा भला होता है तो इन्हें रंज होता है और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं और कहते जाते हैं कि अच्छा हुआ हमने तो पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया। इनसे कहो हमें हरगिज कोई बुराई या भलाई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। अल्लाह ही हमारा मौला है और अहले ईमान को उसी पर भरोसा करना चाहिए।

इनसे कहो तुम हमारे मामले में जिस चीज के मुंतजर हो वो इसके सिवा और क्या है कि दो भलाइयों में से एक भलाई है, और हम तुम्हारे मामले में जिस चीज के मुंतजर हैं वो ये है कि अल्लाह खुद तुमको सजा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। अच्छा तो अब तुम भी इंतजार करो और हम भी तुम्हारे साथ मुंतजर हैं। इनसे कहो तुम अपने माल खा राजी खुशी खर्च करो या बकराहत, बहरहाल वो कबूल न किए जाएंगे क्योंकि तुम फासिक लोग हो। इनके दिए हुए माल कबूल न होने की कोई वजह इसके सिवा नहीं है कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। नमाज के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए आते हैं, और राह खुदा में खर्च करते हैं तो बादले नाखास्ता खर्च करते हैं। इनके मालो दौलत और इनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा ना खाओ। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों के जरिए से इनको दुनिया की जिंदगी में भी मुब्तलाए अजाब करे और ये जान भी दें तो इनकार हक की हालत में दें। वो खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्ही में से हैं, हालांकि वो हरगिज तुम में से नहीं हैं। असल में तो वो ऐसे लोग हैं जो तुमसे खौफ ज़दा हैं। अगर वो कोई जाए पनाह पा ले या कोई खोह या घुस बैठने की जगह तो भाग कर उसमें जा छुपे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से बाज लोग सदकात की तकसीम में तुम पर एतराजात करते हैं। अगर इस माल में से उन्हें कुछ दे दिया जाए तो खुश हो जाएं और न दिया जाए तो बिगड़ने लगते हैं। क्या अच्छा होता कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ भी उन्हें दिया था उस पर वो राजी रहते और कहते कि अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो अपने फजल से हमें और बहुत कुछ देगा और उसका रसूल भी हम पर इनायत फरमाएगा, हम अल्लाह ही की तरफ नजर जमाए हुए हैं।

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل و

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। बच्चे हमारा फ्यूचर हैं और उनकी देखभाल हमारा फर्ज भी है। अब यह कि क्या

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक तीतर अपने घर के करीब खाना ढूंढ रहा था, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। वक्त गुजारते गुजारते तीतर बहुत थक गया था और उसे बार बार यही लग रहा था कि अगर वो थोड़ा सा और दूर जाएगा तो शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए। इसीलिए तीतर ने फैसला किया कि वो अपने घर से काफी दूर जाकर किसी और जगह खाना ढूंढेगा। तो भाई, तीतर अपने घर को छोड़कर एक मकई के खेत की तरफ चला गया। वहाँ कुछ दिन गुजार कर उसने अपनी भूख मिटा ली और फिर वापस अपने पुराने घर लौट गया। लेकिन जब तीतर वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि कोई और जानवर वहाँ रह रहा था। तीतर बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसने अपने घर को एकदम बदला हुआ देखा, क्योंकि किसी और ने अपना घर उसके घर में बसा लिया था। ये चीज देखकर तीतर बहुत परेशान हुआ। जब तीतर अपने घर के अंदर गया तो उसने पाया कि एक खरगोश ने उसके घर में अपना घर बना लिया था। तीतर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्सा करते हुए खरगोश से कहा, ये तुम्हारा घर है? तुम किस हक से यहाँ इस घर में रह रहे हो भला? ये घर मैंने बनाया था, ये मेरा घर है, समझे? खरगोश ने जवाब दिया, जब तुम अपनी जगह नहीं थे तो मैंने ये जगह अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चुन ली थी। पहले होगा ये तुम्हारा घर शायद, लेकिन अब ये मेरा घर है। दोनों में इस बात पर बहस शुरू हो गई। तीतर ने कहा, ये मेरा हक है, समझे? मैं इस घर को अपना घर बनाकर रहता था। खरगोश ने जवाब दिया, मैं जब यहाँ आया तो ये जगह बिल्कुल खाली थी। अच्छा जी, इसलिए ही मैंने अपना घर यहाँ पे बनाया है। जंगल के दूसरे जानवर जो इस झगड़े को देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि अगर इन दोनों के बीच कोई फैसला ना हुआ तो ये लड़ाई बढ़ती ही चली जाएगी। इसीलिए जानवरों ने इन्हें ये सजेशन दिया कि इन्हें किसी ऐसे के पास जाना चाहिए जो इनकी लड़ाई का फैसला करवा सके। तीतर और खरगोश सबकी बातें सुन रहे थे और सबकी बातें सुनते सुनते उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना कोई ऐसा जानवर ढूंढा जाए जो बहुत समझदार दिखता हो और वो हमारा फैसला कर दे। जंगल के जानवरों की बात सुनकर दोनों जानवर एक दरिया के पास गए। उन्होंने कहीं ये बात सुन रखी थी कि जंगल में दरिया के करीब एक बूढ़ी सी बिल्ली रहती है जो कि काफी समझदार है और जंगल के जानवरों का फैसला करती है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो भी इसी बिल्ली के पास जाएं। तो भाई, पहुंच गए ये उस बिल्ली के पास। तीतर और खरगोश ने दोनों ने ये फैसला किया कि वो अपना केस लेकर बिल्ली के पास जाएंगे। जब वो बिल्ली के पास पहुंचे तो बिल्ली मैडम आंखें बंद करके आराम फरमा रही थी। उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, इस बूढ़ी बिल्ली को अब हम क्यों परेशान करें, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। थोड़े इंतजार के बाद बिल्ली मैडम ने अपनी आंखें खोली और इनकी तरफ देखा। कहने लगी, अच्छा, मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरे पास अपनी किसी बात का फैसला करवाने आए हो। मैं तुम दोनों की बात सुनकर फैसला तो करा दूंगी, लेकिन मुझे तुम दोनों की बात सुनने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। एक काम करो, थोड़ा पास आकर बात करो ना। तीतर और खरगोश ने उसकी बात सुनी और दोनों बिल्ली के बिल्कुल पास चले गए। जैसे ही दोनों बिल्ली के पास पहुंचे, बिल्ली ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और अचानक से दोनों पर झपटा मारा और दोनों को मारकर खा गई। जंगल के दूसरे जानवर जो ये सब देख रहे थे, वो समझ गए थे कि किस तरह तीतर और खरगोश ने अपने बीच का फैसला कराने के लिए एक अजनबी पर भरोसा किया था। ये सब देखकर उन्हें समझ आया कि अगर किसी अजनबी पर अपना भरोसा रखा जाए तो किस तरह हम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये समझाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में सही फैसले करना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों की इंटेंशंस को समझना जरूरी होता है। अजनबी चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हों, हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। हमें हमेशा अपने इंस्टिंक्ट और लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए ही फैसला करना चाहिए ताकि हम अपने आप को किसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है, इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है? किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है? इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं नाजिया फ़ेमानो 7।

Once again, welcome to this segment called Economic Concept. दोस्तों एक टर्म और इसका इस्तेमाल तो शायद मैं आज आपको बता ही दूंगी. आई एम श्योर इस टर्म के बारे में आपने डेफिनेटली सुन रखा होगा. इस टर्म को कहते हैं फिनटेक. कितने लोग हैं जरा हाथ रेज करके मुझे बताएं कि आप लोगों ने इस टर्म को पहले सुन रखा है. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज यू कैन जस्ट नॉड योर हेड. देखो नाम तो हम में से बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है, शायद काफी हद तक थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन कुछ हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो इसकी डिटेल को उतना अच्छे से या इस टर्म को उतने अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए. तो आज के इस सेगमेंट में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बताऊं फिनटेक है क्या. पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक शॉर्ट फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की. यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जो शॉर्ट वर्जन है वो है फिनटेक. तो मतलब फिनटेक का मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, इन सबको बेहतर और तेज और आसान बनाना. ये ट्रेडिशनल बैंकों और माली इदारों के तरीकों को डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर से रिप्लेस या फिर इनहेंस करता है. तो अब आप ये तो समझ ही गए कि फिनटेक है क्या. बेसिकली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज को मजीद बेहतर, तेज और आसान बनाता है. अब इसके इस्तेमाल पर भी आते हैं. फिनटेक का इस्तेमाल यानी इसको किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है. तो बेसिकली जो डिजिटल पेमेंट्स हैं यानी जो मोबाइल वॉलेट्स हैं, क्यूआर कोड पेमेंट्स हैं या फिर पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स, ये सारा कुछ फिनटेक के जरिए ही होता है. जी हाँ, वहीं पर अकाउंट खोलना, बैलेंस चेक करना, बिल पेमेंट और ये ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर एप्स, जितनी भी ऑनलाइन बैंकिंग है ये भी फिनटेक का हिस्सा है. वहीं पर मनी क्रेडिट एंड लेंडिंग ये भी फिनटेक का हिस्सा है. ऑनलाइन लोन्स प्लेटफॉर्म्स जो तेज तरीके से लोन देते हैं या फिर अल्टरनेटिव क्रेडिट स्कोरिंग का इस्तेमाल करते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फिनटेक. वहीं पर अगर आप देखते हैं कि रोबो एडवाइजर्स हैं या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारे फिनटेक ही कहलाते हैं बेसिकली. वहीं पर इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो एक और टर्म यूज होती है इंश्योरटेक. जी हाँ, ऑनलाइन पॉलिसी परचेज, क्लेम प्रोसेसिंग और रिस्क असेसमेंट ऑटोमेशन, ये सारी चीजें जो है वो इंश्योरटेक का हिस्सा है. वहीं पर ओवरसीज वर्कर्स, इनके लिए सस्ता और तेज तरीका पैसे भेजने का रेमिटेंस. जी हाँ, रेमिटेंसेस भी आप समझ सकते हैं कि फिनटेक की ही अप्रोच है या उसका ही एक हिस्सा है. वहीं पर क्राउड फंडिंग और पीयर टू पीयर फाइनेंस यानी प्रोजेक्ट्स हो या बिजनेसेस को सीड फंडिंग मिलना बिना ट्रेडिशनल बैंक के, ये फिनटेक ही काम करवाता है. तो फिनटेक बहुत तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका इस्तेमाल तो खैर अब बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अप्रोच भी निकल कर आ रही है कि क्या फिनटेक के इस्तेमाल से या फिनटेक के आने से मतलब ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम पे क्या उस तरह से असर पड़ रहा है. तो इसका जवाब है हाँ, ये बात बिल्कुल सच है. वहीं पर फिनटेक में कुछ इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट्स भी काम करते हैं जैसे मोबाइल ऐप और वेब प्लेटफॉर्म्स. जी हाँ, उसके अलावा APIs जो है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस. APIs जो है वो डिफरेंट सर्विसेज को कनेक्ट करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक पेमेंट ऐप बैंक के सिस्टम से सिक्योरली डेटा शेयर करते हैं वाया APIs. वहीं पर क्लाउड कंप्यूटिंग, जी हाँ, डेटा और एप्लीकेशंस क्लाउड पर होस्ट होती हैं, जिससे स्केल करना और मेंटेनेंस आसान हो जाता है. वहीं पर आप देखिए सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है जिसमें 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक लॉगिन्स हैं, फिंगरप्रिंट फेस है और सिक्योर टोकनाइजेशन पैसे और डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं. वहीं पर जो फिनटेक्स हैं वो पार्टनरशिप्स में एक्चुअली वर्क करते हैं. फिनटेक अक्सर बैंक्स, पेमेंट नेटवर्क्स और रेगुलेटर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं ताकि सर्विसेज लीगल और स्केलेबल हों. तो ये तो इनका तरीका है काम करने का. बात करूंगी मैं फिनटेक के कुछ डिसएडवांटेजेस की. देखो वैसे तो इसके काफी एडवांटेजेस हैं जिन पर मैं आऊंगी लिटिल लेटर, बट उससे पहले मैं डिसएडवांटेजेस पर आती हूँ. देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये नजर आता है कि सिक्योरिटी रिस्क, जी हाँ, साइबर अटैक्स, डेटा ब्रीचिंग्स और फिशिंग स्कैम्स का खतरा रहता है. अगर सिक्योरिटी वीक हो तो यूजर का पैसा और पर्सनल डेटा
खतरे में पड़ सकता है।

0: ये एक बड़ा नुकसान हुआ इसका। वहीं पर प्राइवेसी कंसर्न्स यानी डेटा कलेक्शन और यूजर प्रोफाइलिंग से प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कंपनीज कब और किस तरह डेटा यूज कर रही हैं वो कभी वाजे नहीं होता, तो ये भी एक डर है। वहीं पर फिनटेक तेज ग्रो करते हैं मगर रेगुलेशंस हर मुल्क में डिफरेंट है, कंप्लायंस मुश्किल हो सकती है और लीगल अनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं परेशान करती है, तो ये भी एक बड़ा इशू है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड जो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली लगता है। डिजिटल डिवाइड का मतलब है जो लोग डिजिटल स्किल्स या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं जानते, उनके लिए इन सर्विसेज को अडॉप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इससे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी भी बढ़ जाती है सोसाइटी में। वहीं एक और रिस्क है जो है ऑपरेशनल रिस्क। जी हाँ, टेक्नोलॉजी फेलियर। हम इंसान तो थक के बैठ गए और वापस से आ गए काम करने, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर फेल होती है तो बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा हम डिपेंडेंट जो है टेक्नोलॉजी पर दीज डेज। टेक्नोलॉजी फेलियर्स या फिर डाउन टाइम या फिर बग से सर्विसेज रुक सकती हैं, जो कि यूजर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनती है। वहीं इसके अलावा एक और बड़ा डिसएडवांटेज जो है फिनटेक का, वो है फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट। जी हाँ, फेक एप्स, स्कैम्स और आइडेंटिटी मिसयूज के केसेस पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब करें क्या, सबको हर काम जल्दी चाहिए, इधर चुटकी बजाई और काम हो गया, बस कुछ ना कुछ नुकसान भी आपको उठाने पड़ेंगे, तो लो उठाओ फिर। इसके अलावा कहीं ना कहीं फिनटेक के आने से मैं कह सकती हूँ जॉब डिस्प्लेसमेंट का खतरा भी बढ़ गया है। कुछ ट्रेडिशनल रोल्स जैसे कैशियर का रोल होता था, ब्रांच स्टाफ का, ये इनकी डिमांड जो है ना कहीं कम हो रही है, क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस जो है वो फिनटेक के साफ नुमाया होते हैं। बट फिनटेक के बहुत सारे फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा इज सहूलियत और स्पीड। जी हाँ, ट्रांजेक्शंस इंस्टेंट या बहुत तेज हो जाते हैं। बैंकिंग सर्विसेज घर बैठे अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे आपने मेकअप पेमेंट किया एंड यू आर डन विद दैट। हर चीज आसानी से आप कर रहे हो। फिर उन लोगों तक सर्विसेज पहुंचती हैं जिनके पास ट्रेडिशनल बैंक ब्रांच नहीं होती। मोबाइल फोन से बेसिक फाइनेंस एक्सेस मिल जाता है लोगों को। वहीं पर डिजिटल प्रोसेसेस बैंक्स और बिजनेसेस के लिए ऑपरेशनल खर्च कम हो जाते हैं, जिससे सर्विसेज सस्ती हो सकती हैं। पर होती तो नहीं है, चलो फिर भी कहीं ना कहीं हल्का कॉस्ट रिडक्शन तो देखने को मिलता ही मिलता है। वहीं बात करूं मैं इसके एक और बड़े एडवांटेज की, तो ये है एडवांटेज इनोवेशन और पर्सनलाइजेशन का। जी हाँ, एआई और डेटा एनालिसिस से यूजर्स को उनकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो हुआ ना बड़ा एडवांटेज। वहीं कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और रिकॉर्ड कीपिंग का भी बड़ा एडवांटेज है। जी हाँ, डिजिटल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है जो ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग को आसान बनाता है। वहीं नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, नए मार्केट और बिजनेस मॉडल्स डेवलप करने का मौका भी मिलता है। तो मैं कह सकती हूँ कि फिनटेक के बेशुमार फायदे भी हैं, मतलब बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन हाँ कुछ नुकसान भी हैं। तो दोस्तों, जब भी हम जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़े से सतर्क रहने की डेफिनेटली जरूरत है। कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं जो मैं आपके साथ बेसिकली टिप्स जो हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगी, और इन्हें डेफिनेटली आप शामिल कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में अगर आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हो टेक्नोलॉजी पर ही। सबसे पहले तो सिर्फ रेप्यूटेबल एप्स और प्लेटफॉर्म यूज करें। ऐप रिव्यू और कंपनी के क्रेडेंशियल्स चेक करें, ये इम्पोर्टेंट है। वहीं पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें। 2FA और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी यूज करें, इससे आपकी जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वह काफी हद तक कम हो जाता है। वहीं कोशिश कीजिए कि पब्लिक वाईफाई पर आप अपने सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस ना करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसे आपको जहन में रखना है। वहीं इसके अलावा आप जो है वो ऐप परमिशंस और प्राइवेसी पॉलिसीज पर नजर रखिए। अगर आप इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े से मोहतात भी रहिए, थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ थोड़े से समझदारी से आँख खोल कर चीजों को देखते पढ़ते समझते रहिए। अगर किसी तरीके का कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपको दिखाई देती है तो फौरन बैंक या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स को इन्फॉर्म कीजिए, यह आपकी ड्यूटी है। वेल दोस्तों, मुझे लगता है कि आज मैंने काफी हद तक आपको समझाने की कोशिश की और मैं शायद कामयाब भी हुई हूँ कि फिनटेक है क्या। अब बस जाते जाते आपसे कहना चाहूंगी कि फिनटेक जो है वो दुनिया में फाइनेंस को डेमोक्रेटाइज कर रहा है, सर्विसेज को आसान, सस्ता और तेज बना रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी, प्राइवेसी और रेगुलेटरी चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। अगर यूजर्स और कंपनीज दोनों एहतियात और समझ के साथ फिनटेक टूल्स का इस्तेमाल करें तो इसके फायदे ज्यादा नजर आते हैं और रिस्क ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाता है। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का जो डोज है वो ठीक ठाक तरीके से आप तक मैंने पहुँचा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में एक और नए टर्म के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

का होस्ट और दोस्त मोहम्मद अमीन। मौजूदा टेनिस वर्ल्ड में अगर किसी यंग टेनिस प्लेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो और कोई नहीं है बल्कि स्पेन के कार्लोस अल्काराज है। और कार्लोस अल्काराज वन ऑफ द वेरी फ्यू यंगस्टर्स दैट हैव डन रियल रियल वंडर्स इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस इन द लास्ट फ्यू इयर्स। कार्लोस अल्काराज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कार्लोस अल्काराज स्पेन के एल पलमार गांव में 5 मई 2003 को पैदा हुए। स्पेन के इस नौजवान खिलाड़ी ने अपने वालिद कार्लोस अल्काराज गोंजालेस से टेनिस की तालीम हासिल की और 4 साल की उम्र में कार्लोस रियल सोसियादाद क्लब दी कैंपो दी मुर्सिया में टेनिस खेलना शुरू किया। सो राइट फ्रॉम अ वेरी यंग एज ही शोड दैट स्पार्क ऑफ अ वेरी ब्रिलियंट टेनिस प्लेयर। और इसी क्लब में उनके वालिद साहब टेनिस कोच के अलावा क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। सो इट वॉज a kind of a very great assistance that has come from his father. And वहीं अगर देखें कि कार्लोस की वालदा एक फैक्ट्री आउटलेट में सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। कार्लोस की स्टोरी अगर देखें तो स्ट्रगलिंग स्टोरी है एंड एवरी फेज ऑफ लाइफ ही हैड स्ट्रगल्ड। इनके फादर कोई बड़ा टेनिस प्लेयर तो था नहीं, ना उनके मदर जो है वो बेसिकली एक सेल्स असिस्टेंट थी एक फैक्ट्री आउटलेट में। सो अगर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि कार्लोस हैज गॉन थ्रू दोज डिफिकल्ट फेजेस। अल्काराज के वालिद साहब एमेचर लेवल तक टेनिस खेलने के बाद टेनिस को अलविदा कह दिया था क्योंकि एक्सपेंसिव स्पोर्ट है और इसको कंटिन्यू रखना उनके बस की बात नहीं थी। सो ही फाइनली सेड टाटा बाय बाय टू टेनिस। लेकिन अल्काराज का टैलेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी कोच को दिख गया था और वो कोच थे अल्बर्ट मोलिना। अल्बर्ट मोलिना अल्काराज की टैलेंट को पहचाना, सलाहियतों को समझा, देखा और उनको लगा कि ये बच्चा आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा टेनिस प्लेयर बन सकता है। उस वक्त अल्काराज की उम्र सिर्फ 11 साल थी। मोलिना ने आईएमजी को इस पर दस्तखत करने पर राजी किया और आखिरकार अल्काराज को मुस्तकबिल के कोच खुआन कार्लोस फेरेरो से मिलवाया। And that began a great journey of Carlos Alcaraz. September 2018 में Alcaraz Ferrero Tennis Academy में तरबियत शुरू करने के लिए विलेना के लिए रवाना हुआ। And that was the beginning of a great career of a young tennis player. वो कई Spanish और European Championship जीत चुके थे। और Alcaraz ने अपना पहला ATP match Ramos Vinolas के खिलाफ जीता था। वो तकरीबन 16 साल का था। साबिक अलवी नंबर 1 खिलाड़ी खुआन कार्लोस फेरेरो उनके मौजूदा

ट्रेनर हैं और आज भी फेडरर के अंडर ट्रेनिंग करते हुए अल्कराज की जो टेनिस क्वालिटी है, जो टेनिस की जो सलाहियतें हैं, जो उसको निखारा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आज भी वो दे रहे हैं। फेडरर 15 साल की उम्र से अल्कराज के साथ काम कर रहा है और अल्कराज एटीपी में नंबर वन होने वाले चौथे स्पेनिश खिलाड़ी हैं। इससे कबल राफेल नदाल, कार्लोस मोया और उनके मेंटोर खुआन ये रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। ये पहला मौका नहीं था कि अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को एटीपी गेम में शिकस्त दी थी। ये बात है 2022 की। नोवाक जोकोविच ये वो खिलाड़ी हैं, सर्बिया के वो मारूफ स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने 24 मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया है एंड ही इज वेटिंग फॉर द

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस नए किस्त में आप सबको खुश आमदीद। तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। सामने आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे मशहूर आलिम और अदीब शेख अली तंतावी रहमतुल्लाह के किस्से से। एक मरतबा वो किसी इल्मी व अदबी मजलिस में गुफ्तगू कर रहे थे। वो एक मौजू से दूसरे मौजू की तरफ निहायत रवानी, वसत और गहराई के साथ मुंतकिल होते जा रहे थे। एक तालिब इल्म ने हैरत से पूछा, शेख आप तकरीबन हर मौजू पर इतनी आसानी से कैसे गुफ्तगू कर लेते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि जब से शऊर संभाला कई दिहाइयों तक रोजाना सैकड़ों सफहात पढ़ने का मामूल रहा है। फिर अपने मखसूस मिजाही अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर कोई मामूली जहन रखने वाला शख्स भी 70 बरस तक रोजाना 300 सफहात पढ़े तो वो भी मुख्तलिफ मौजूआत पर कुछ न कुछ जरूर कहने के काबिल हो जाएगा। सबने

0: सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर एक बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी।

0: setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

FM 107. Time check. Right guys, time for the time check. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01।

राइट गाइस, सलाम आदाब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और मैं आ चुकी हूँ इस शो में और पूरे तीन घंटे आपके साथ रहने वाली हूँ. आज है मंडे का दिन, 3rd of August. और पता है ना, आज एक बहुत ही प्यारी सी बात हुई. आज सुबह जब मैं घर से निकल रही थी तो एक छोटी सी बात ने मुझे एटलीस्ट बहुत कुछ सिखाया. मैं रोड क्रॉस करने के लिए, मेरा मतलब जाने के लिए सिग्नल पर खड़ी थी. ठीक है, मेरे पास में मैंने देखा एक बुजुर्ग शख्स भी है, वो भी उसी सिग्नल पर बगल में खड़े थे. जब सिग्नल ग्रीन हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट की और बहुत धीरे चलना शुरू किया. अब हुआ ये कि लोग जो पीछे थे उन्हें रेस्टलेसनेस, बेचैनी हुई. लोग जो है वो जल्दी में थे, कुछ लोग उनसे आगे भी निकले, कुछ लोगों ने उन्हें हॉर्न भी दिया, कुछ लोगों ने उन्हें बाकायदा घूरा भी, और कुछ लोग जो थे उन्हें कुछ हो सकता है बुरा बुरा भला भी कह रहे हूँ. मगर मैंने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स जो है वो बिल्कुल उस

0: में थे, परेशान नहीं थे, आराम से इत्मीनान से इन्होंने अपनी रफ्तार को मेंटेन रखा। जितनी कम स्पीड से इन्होंने निकाला चला बस उसी में मेंटेन किया। इन्होंने इधर उधर के लोगों की हॉन्किंग या किसी भी तरह के कोई भी एटीट्यूड पर कोई भी जरा सा भी रिएक्ट नहीं किया। पता है ये कहने को एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में एक बड़ी बात आई। हम अपनी जिंदगी में ना अक्सर दूसरों की रफ्तार देखकर घबरा जाते हैं। किसी को जल्दी कामयाबी मिल जाती है, किसी का करियर तेजी से बढ़ रहा होता है, किसी की जिंदगी हमें परफेक्ट लग रही होती है, और हम सोचने लगते हैं कि शायद हम पीछे रह गए हैं। लेकिन आज इस इंसिडेंट से मुझे ये बात समझ में आई कि हर शख्स का सफर अलग होता है, हर किसी का वक्त अलग होता है। जरूरी नहीं कि सब एक सी एक ही रफ्तार पे चले, और जरूरी ये भी नहीं कि जो सबसे तेज चल रहा है वो मंजिल पर सबसे सही सलामत पहुंचे। कभी कभी आपका आराम से सुकून से अपनी रफ्तार पर चलना ही आपकी असल कामयाबी होती है। तो आज का दिन इसी सोच के साथ शुरू कीजिए कि अपनी जिंदगी को ना दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अपने सफर पर यकीन रखिए, छोटे कदम भी आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाते हैं। तो ये छोटा सा इंसिडेंट जो आज हुआ, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं 3 घंटे यहाँ पर बैठ के करती रहूँगी, और हाँ मैं चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ जुड़ें। कुछ आपके साथ हुआ, कुछ कल हुआ, कुछ आज है, या कुछ आज की प्लानिंग है, या कुछ और है, या सिंपली आपका हालचाल है, या फिर सिंपली आप अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर जाके बैठ चुके हैं, इंटरेस्टिंग सा या ये कहें हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार है, या फिर आज बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि आज मुझे क्या खाना है, क्या खाना चाहिए, या फिर आप हैं उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो अभी भी बेड पे लेटे हैं और सोच रहे हैं 5 से 10 मिनट तो और मैं सो ही सकता हूँ, अगला अलार्म लगाता हूँ फिर उठूंगा। जिस कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं अपना हालचाल मुझे जरूर भेजिए 666-22-107 पर। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4434377 पर। फिलहाल के एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपकी और हमारी बातचीत जारी रहेगी। और हाँ, आज का जो टॉपिक है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आज मैंने सवाल भी ना सबसे अलग अलग करने, बिलीव मी, मतलब सवाल नहीं है, आज की जो कन्वर्सेशन होगी वो अलग अलग टॉपिक पर होगी। मतलब कुछ हिस्सा आपसे पूछने की कोशिश, कुछ हिस्सा किसी और से। इससे मुझे ना पूरा इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानने का मौका मिलेगा, और हमारी जितनी भी ऑडियंस है, आई मीन जितने भी लिसनर्स हैं, उनके पास भी भरपूर मौका होगा कि पूरी तरह से इस टॉपिक को अच्छे से समझें। वैसे ये टॉपिक आपकी और हमारी लाइफ में ना बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, चलिए उस पर बाद में बात होगी। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं मॉर्निंग सुबह के अस्कार की तरफ, वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक आप मैसेज टाइप कीजिए 666-22-107 पर।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तरतीब व पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है।

0: अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
0: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें। ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: एब्सोल्यूट सिनेमा,
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
5: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
6: Right guys, welcome, a very good morning, क्या हाल है आप सब?

ये कहां कहां तक पहुंची आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी तो यहां तक पहुंच चुकी है और इस वक्त है हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:23 और देखिए कहां तक हम पहुंच चुके हैं। फिलहाल अब हम जो है अपने लिसनर्स के मैसेजेस की तरफ पहुंचते हैं। यहां पर कुछ मैसेजेस हमें जो है वो भेजे हैं जिसमें हुसैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। इसके साथ हमें यहां गुड मॉर्निंग वाला मैसेज भेजा है यूसुफ शमीम जी ने और पूरी टीम को भी गुड मॉर्निंग कहते हैं और उन्होंने कुछ याद भी आज हमें दिलाया। जी हाँ बिल्कुल, आज का दिन ये दिन है, अभी मैं थोड़ी देर में इस पर बात करने वाली हूँ। आज हमारे साथ बिलाल जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। एंड थैंक्स अ लॉट मैम जो आज आपने सुबह बात आकर कही। हाँ वो जो मैंने बुज़ुर्ग शख्स वाली बात आपको बताई, तो वाकई देखिए हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसपास उसके होती रहती हैं, बस ये है कि हम उससे क्या मैसेज जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या हमने उससे सीखा, क्या हमने उससे समझा और किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए उन चीज़ों को अडॉप्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हमें मैसेज है, इनका नाम है रहमत जी, वेरी गुड मॉर्निंग। इसके साथ हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं सैयद जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। अली हमें सुनते हुए गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। सऊदी से हमें हमेशा ये भाई मैसेज भेजते बट इन्होंने कभी भी अपना नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया, मुझे आज तक नहीं पता चलता कि आपका नाम क्या है, बट थैंक यू सो मच। सलाम भेजा है एम डी इब्राहिम जी ने, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सलाम कहते हैं। और इनका नाम है उमेर शहजाद जी, ओ थैंक यू सो मच दोहा से हमें सुनते हुए। इसके साथ कुछ और प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं और इनका नाम भी मुझे नहीं पता, लास्ट में है 383, पता नहीं क्या नाम है, ए के लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। इसके साथ यहाँ पर गुड मॉर्निंग मुझे भेजा है, इनका नाम है नफीस जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए बड़े प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस आ गए, आपका हाल चाल मुझे मिल गया, मेरा तो मैं बता ही रही हूँ, बोल ही रही हूँ कंटिन्यूसली, तो वो तो आपको मिल ही रहा है। और अब आ जाते हैं आज के मौसम के हाल चाल की तरफ, तो आज मौसम कैसा रहने वाला है उस पर बात कर लेते हैं। आज दोहा में जो मौसम है वो ठीक ठाक तरीके से गर्म रहेगा, धूप रहेगी और अगर इस वक्त मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो इट्स लाइक 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपको महसूस होगा 38 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के टाइम में टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा बढ़ के 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, इसीलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना मैंने अब तक बोला है वो सब कुछ आपको तो अब याद ही हो गया, बार बार मैं क्या ही रिपीट करूँ। और अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो आंच रहेगी 69%, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है और शायद इसी वजह से हमें ठीक ठाक तरीके से जो है ना वो गर्मी महसूस होती है। इसके अलावा हवा जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यूवी इंडेक्स इज़ वेरी हाई और इसीलिए दोपहर के टाइम में डायरेक्टली सनलाइट से आपको बचना है, अपना खास ख्याल रखना है। वहीं पर सनराइज़ की बात की जाए तो आज सनराइज़ हुआ है 5:01 पे और सनसेट होगा 6:18 पे, बारिश के कोई दूर दूर तक आसार नहीं है, धूप ही रहेगी, अपना ख्याल आपको रखना है क्योंकि भरपूर गर्मी रहेगी आफ्टरनून्स में और ज़्यादा रहेगी, हाइड्रेटेड रहिए और समर मॉर्निंग्स में मुस्कुराते रहिए, अभी तो सुबह है अभी तो मुस्कुराइए। चलिए ये तो था आज का मौसम का हालचाल, अब बात कर लेते हैं आज के दिन के। आज है 3rd of August, जो मैंने आते ही आपको बताया मंडे का दिन है, 3rd of August है और आज बहुत ख़ास तो कुछ चीज़ें हैं नहीं, लेकिन एक दो चीज़ है जैसे इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव, स्लेव ट्रेड के लिए ये दिन बेसिकली कहीं ना कहीं ग़ुलामी की जो तारीखी निज़ाम था उसको याद करना, इंसानी आज़ादी को जो अहमियत दी गई उसको, उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए आज सेलिब्रेट किया जाता है। फिर एक दो दिन और है जो मुझे नहीं लगते बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं बताऊं, लेकिन हाँ एक दिन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में बात हो सकती है और ये है इंटरनेशनल वाटरमेलन डे। जी हाँ, गर्मियों का ये जो सबसे प्यारा, वैसे तो आम सबको सबसे प्यारा लगता है लेकिन हाँ दूसरा कह सकते हैं जो सबसे प्यारा फ्रूट है समर्स का वो है वाटरमेलन, तो आज वाटरमेलन डे भी है। वैसे तो हम लोग हर रोज़ ही वाटरमेलन खा ही रहे हैं और यहाँ पर आसानी से अवेलेबल भी है और खाना भी चाहिए,
खाइए, अगर आप नहीं खा रहे तो ज़रूर खाइए क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप जानते हैं कि वाटरमेलन में ना पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो आपकी बॉडी

0: को हाइड्रेशन मेंटेन करने में काफ़ी मदद देती है, तो ये आपको कहीं ना कहीं हाइड्रेटेड रखता है, इसलिए वाटरमेलन का इंटेक आपको बढ़ा देना चाहिए। वहीं पर इस फ्रूट में ना, वाटरमेलन में ना, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, जो आपकी स्किन और आपकी आपको हेल्दी रखना, आपको फ्रेश रखने में काफ़ी यूज़फुल होता है, तो इसलिए भी आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली समर्स में तो करना ही चाहिए। वहीं पर गर्मियों के दिनों में जो वाटरमेलन है वो आपको एनर्जेटिक भी फील कराता है, तो इनकेस अगर आप लो फील कर रहे हो, लिथार्जिक फील कर रहे हो, तो वाटरमेलन बहुत ही अच्छा फ्रूट है। इसके अलावा इसमें फाइबर होता है, वाटर होता है, तो आपका जो डाइजेशन है उसे भी काफ़ी बेहतर बना देता है, दैट्स हाउ इट्स ऑल्सो वेरी नाइस। वहीं पर वाटरमेलन में ना एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो दैट्स हाउ ये हार्ट फ्रेंडली फ्रूट भी कहलाता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल और बढ़ा दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आपका हार्ट हेल्दी रहे। वहीं पर अगर आप जो हैं थोड़े से कॉन्शियस हैं, यू नो, एंड कैलोरीज को लेकर थोड़ा सा रहते हैं पर्टिकुलर, तो ये आपके लिए एक हेल्दी स्नैक का काम भी करेगा, एक ग्रेट चॉइस है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। वहीं अगर आप वर्कआउट करके आ रहे हैं या वॉक के बाद, तो थोड़ा सा अगर चाहते हैं कि इवनिंग्स में यू नो फ्रेश हो, थोड़ा सा अच्छा लगे, तो उस केस में ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है, आफ्टर एक्सरसाइज भी आप इसको ले सकते हैं, इसीलिए शायद इसे समर का सुपर फ्रूट भी कहा जाता है। ये गर्मियों का एक बहुत ही परफेक्ट वाला फ्रूट है, जो ठंडक का एहसास लाता है, आपकी हीट को हैंडल करने में भी मदद करता है। तो अगर आप गर्मियों में हेल्दी, टेस्टी और यू नो रिफ्रेशिंग फ्रूट खाना चाहते हैं, तो वाटरमेलन इज एब्सोल्युटली अ वेरी गुड चॉइस। ये आपका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा फ्रेंड हो सकता है, और ये मीठा भी नहीं, मीठा भी है, दोनों तरीके से कह सकते हैं, लेकिन हाइड्रेशन, एनर्जी और हेल्थ का एकदम पावर पैक डोज है। तो बस आज इंटरनेशनल वाटरमेलन डे है, सेलिब्रेट कीजिएगा, कुछ अच्छी सी प्यारी सी पिक्चर्स जो है खाते हुए तो मत भेजिएगा, लेकिन हाँ आप डाल सकते हैं अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको खाते हैं कि पीते हैं, व्हाट डू यू डू, तो वो कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये तो थी आज के दिन के हवाले से सारी बात, और भी बहुत सारी बातें हैं। छोटा सा ब्रेक लूँगी, वापस आऊँगी, तो डेफिनेटली मैं आज का जो टॉपिक है उसे भी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे मैंने कहा, आज हम जो बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है, उस पर बात करेंगे और उसमें बहुत सारी सिचुएशंस जो है डिफरेंट डिफरेंट ऐड करते जाएंगे, तो हमें भरपूर तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। आपको हमारे साथ जुड़ना है, पक्का जुड़ना है। नंबर है 4434377। आमिर है कश्मीर से, सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच आमिर। इसके साथ हमारे साथ मुजाहिद हैं, गुड मॉर्निंग कहते हुए, अलखोर से हमें सुन रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज। इसके साथ हमें एक और मैसेज है, और ये मैसेज भी हम चेक कर लेते हैं, इनकी तो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको एंड हु इज ही, ये है कासिम जी, गुड मॉर्निंग कहते हुए हमारे साथ, अ वेरी गुड मॉर्निंग कासिम। इसके साथ हमें एक और मैसेज है इकबाल जी का, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी गुड मॉर्निंग चलता रहेगा पूरे 9, मतलब अभी हमारे पास जो है 2.5 आवर्स हैं, आधा घंटा निकल गया है, 9 बजे तक आप और हम यहाँ हैं मौजूद। बातें बहुत सारी हैं, टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, कॉल करना है 4434377 पर।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।
4: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
5: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ

0: शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: Absolute Cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं पर डोंट वरी मैं हूं ना भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा
2: दोस्तों अब कतर में गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और डिजिटल हो गया है मैत्राश 2 ऐप के जरिए आप अपनी रजिस्टर्ड व्हीकल की ओनरशिप घर बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं और वो भी बिना किसी फिजिकल विजिट के इस डिजिटल सर्विस का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वैलिड हो यानी उसका इस्तेमारा एक्सपायर ना हुआ हो दूसरा गाड़ी के ऊपर कोई ट्रैफिक वायोलेशन या अनपेड फाइन्स मौजूद ना हो तीसरा दोनों पार्टीज सेलर और बायर का मैत्राश ऐप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और चौथा बायर के पास वैलिड कतर आईडी हो और वो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करती हो प्रोसेस में सेलर यानी जो पार्टी गाड़ी बेच रही है मैत्राश 2 ऐप के जरिए व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और बायर की डिटेल्स डालकर रिक्वेस्ट भेजते हैं बायर को ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है जब दोनों तरफ से तस्दीक हो जाती है तो ओनरशिप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती है और नए मालिक के नाम से रिकॉर्ड अपडेट हो जाती है ये सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जरिए प्रोवाइड की जा रही है जिसका मकसद ट्रैफिक सर्विसेज को डिजिटलाइज करना लोगों का वक्त बचाना और पेपर वर्क को कम से कम करना है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के

स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के

0: आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक पूरा

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नासिया, आपके साथ 6:40 ऑन द क्लॉक. और अब जो है आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ आ जाते हैं, विच वी से टीटीटी यानी टी टेबल टॉक. और आज की जो टॉक है वो किसके अराउंड होने वाली है. देखिए, जिंदगी में ना हम सब इस तरह की सिचुएशन का सामना करते ही करते हैं जहाँ हमें फैसला करना होता है कि क्या मुझे बोलना चाहिए या मुझे खामोश रहना चाहिए. देखो, सच्चाई ये है कि हर सिचुएशन में एक सा जवाब हम दे भी नहीं सकते. कुछ सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जहाँ डेफिनेटली हमें बोलना ही पड़ता है, और बोलना आपके लिए समझदारी या हिम्मत का काम होता है. वहीं पर कुछ ऐसी भी सिचुएशन में लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जहां हमें 100% चुप रहना ही चाहिए. मतलब चुप रहने में ही समझदारी अकलमंदी होती है. अब कुछ लोग इस फर्क को अच्छे से समझ लेते हैं और लाइफ में जो है वो कामयाब होते हैं. वहीं कुछ लोग एक ही चीज़ के साथ चलते हैं या एक ही फिलॉसफी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, जिसके बाद उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इमोशनल भी, स्पिरिचुअल भी, और शायद मेंटली भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं. तो आज मैंने सोचा कि आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आपको लगता है कि चुप रहना ज़रूरी है, और कब ऐसा होता है कि आप चुप रह ही नहीं पाते और आपको लगता है कि बोलना इन सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज का जो हमारा सवाल है, आज का जो हमारा मुद्दा है जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो है कि ज़िंदगी में बोलना या फिर चुप रह जाना, ज़्यादा अकलमंदी आज के दौर में किस में है. आपको क्या लगता है आज के दौर में ज़्यादा अकलमंदी किस चीज़ में है, बोलना या फिर चुप रह जाना? क्या कभी कभी वाकई बोलना इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, हक की आवाज़, एंड यू नो बिना बोले कोई रास्ता निकलेगा ही नहीं? या फिर हमेशा आपको लगता है कि मैं क्यों बोलूं, कोई और बोल देगा? इस टॉपिक का या इस सिचुएशन का डायरेक्टली मुझसे तो वास्ता है नहीं, लिहाजा मैं बोलूं या ना बोलूं क्या ही फ़र्क पड़ेगा, या मेरे अकेले एक के बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये सारी चीज़ें भी हमारे जहन में आती हैं. या हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसका डायरेक्टली आपके साथ ताल्लुक हो, और वहाँ आप जो है वो एक अजीब से डिलेमा में है कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, क्या करूँ. तो चलिए आज उसी सिचुएशन जो जितनी भी हो सकती हैं जो आपसे रिलेटेड हैं वो आज हम और आप मिलकर शेयर भी करेंगे, बताएंगे भी अपने एक्सपीरियंसेस. तो फिलहाल मेरे साथ जो है मेरे फर्स्ट कॉलर यहाँ जुड़ चुके हैं. हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं रईस जी आप? आज मैंने क्या टॉपिक छेड़ा है? आज मैं पूछ ही रही हूँ.
1: वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आदमी का वहाँ पे हालात क्या है वो हाँ. उस पे डिपेंड करता है. हर जगह खामोश रहना भी आदमी के लिए मुजिर साबित हो सकता है
0: हाँ.
1: और हर जगह बोलना भी वो हाँ. बंदे के अब वहाँ का सिचुएशन का हालात समझ के फिर वहाँ पे कदम उठाना है
0: हाँ.
1: क्योंकि हमें कहा गया है कि अगर आप किसी को समझ लो कि रोक सकते हो, अगर आप बुरा कर रहा है तो उसको हाथ से रोको, तो अगर हाथ से नहीं रोक सकते हो तो जबान से नहीं तो कम से कम दिल में इसको, जिस सिचुएशन के हिसाब से सारी चीजों को डिपेंड किया गया है. तो इसी हिसाब से कि अब हर जगह के अपना मतलब लेक्चर भी झाड़ना फिर वो हमारे लिए मुसीबत का जरिया बन जाएगा. वो बंदा हमारे बात को कितना सीरियस ले रहा है, और यहाँ पे हमें बोलना अगर कुछ लोग हैं तो हमारे बात को मतलब कि उसको लेंगे गहराई से या नहीं लेंगे, कि उल्टा हमारे ऊपर रिएक्ट हो जाएगा. तो ये सब चीजें बहुत है आजकल का माहौल दुनिया में बहुत ज्यादा मतलब ये हो चुका है कि लोग ज्यादा शर के साथ में है, खैर के साथ में कम लोग पाए जाते हैं
0: है.
1: ये तो जाहिर की बात है, और दिन ब दिन इसका ये बढ़ता ही जाएगा
0: right.
1: जा रहा नहीं जाएगा, ये तो मतलब ये बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि मतलब ये क्यामत के करीब की ये सारी चीजें मतलब हमारे सामने आ रही हैं. तो ये सब चीजें कोई मतलब ये नहीं है, बस वो आदमी को वहाँ वहीं पे रिएक्ट करना चाहिए, वहीं पे ये करना चाहिए जहाँ की मतलब आपके बात को कुछ फायदा निकले, नहीं तो थोड़ा सा अगर कोई और जरिया अगर बन रहा है कि मतलब हाँ उसको कोई आसानी करने के लिए, उसके लिए जिसके ऊपर कुछ परेशानी है या कोई मामला आगे बढ़ सकता है तो कोई और तरीका अपनाएं। कोई जरूरी नहीं कि जबान से ही मतलब अपने ही रिएक्ट करने से ही सारी वहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन का हालात से औरों के साथ या कोई ये बना के मतलब उसको थोड़ा सा ठंडा किया जाए उस माहौल को।
0: अच्छा एक एक सिचुएशन में आपको ये देना चाहूंगी, जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके वालदैन जो हैं, वो कोई फैसला कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये फैसला सही नहीं है, ठीक है, आप इस सिचुएशन में आप उन्हें रोकेंगे, खामोश रहेंगे या बोलेंगे?
1: उसका भी एक अंदाज है कि मतलब ये नहीं कि मतलब हमें तल्ख कलामी के साथ में उनको उनको भाई उनका इज्जत एहतराम अपने जगह है, लेकिन अगर कोई चीज हमें दुनिया में या शरीयत के खिलाफ दुनिया में हमारे लिए आगे मुसीबत हो सकता है वो चीजें उनके उस फैसले से, तो उनको हम नरम दिली से और अच्छे से बैठा के उनको समझाएंगे ये मतलब ये फैसला है, खास पेरेंट्स मतलब हो या कोई अपना भाई हो तो उसको उस अंदाज में उसको समझा के अपने आप मतलब उसको सामने
0: मतलब वाले आप ये कह रहे हैं कि उस सिचुएशन में आप चुप नहीं रहेंगे, डेफिनेटली समझाएंगे, कोशिश करेंगे, बोलेंगे।
1: अगर सर है तो कहीं कैसे खामोश रह सकते हो आप? नहीं, बिल्कुल आंख बंद करके नहीं रहो, ये नहीं कि मतलब माँ बाप के बातों को अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई उनकी बातों को तो ये करो, लेकिन हमें ये भी बताया गया है साथ साथ कि अगर वो तुम्हारे लिए मतलब बुराई की तरफ ये कर रहा है तो उनको सही से अपनी बातों को समझा के उनके साथ नरमी से, और कोई जरूरी नहीं कि बस हम सख्ती से उनके साथ में झगड़ पड़े और वो ये किए तो फिर वहीं पे हमारा हल निकलता है, या फौरन उसको व्यक्त करके कि नहीं मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, ये तो बिल्कुल ये तरीका नहीं है। नरमी से उनके उनको उस पे कायल करें अपने कि मतलब हाँ सामने वाले को मुतमईन हो जाए कि हाँ ये मेरा फैसला गलत था और उनका फैसला सही था। और ये बड़े बड़े असलाफ जो थे उन वो लोग भी कोई कोई फैसले में एक दूसरे के मतलब ये हो जाते थे फौरन, लेकिन जब वो आखिरी बात पे आते थे तो वो एक दूसरे से रुजू कर किया कर लिया करते थे कि हाँ ये यहाँ पे मैं गलत था, यहाँ पे आप सही थे। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, ये नहीं कि सामने वाला बिल्कुल खामोश होके आंख बंद करके जा रहा है, जान दो अपने को क्या पड़ी है, हम कौन इस मेले में पढ़ने जाए, तो यहाँ पे भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बात ये नहीं है कि आप खामोशी से निकल गए अपनी जान छुड़ा के, तो ये चीजें मतलब आपको अल्लाह ताला आपको मतलब ये कर रहा है सारी चीजें आपके ऊपर कि मतलब आप वहाँ पे कुछ कर सकते थे, अगर कुछ कर सकते थे या रोक सकते थे, चाहे अपनी फैमिली पेरेंट्स में हो कोई या अपने अड़ोस पड़ोस में हो या बाहर हो, जितने हद तक आप इस्तेमाल

0: रखते हो उतने हद तक मतलब आप ये करो, उससे ज्यादा जरूरत से ज्यादा मतलब आपको ओवर नहीं होना है और ना मतलब अपने घर में हो और या बाहर हो, आपको उसी हिसाब से सिचुएशन को मतलब ये करके देख के जाते हैं आप माइंड के ऊपर हैंडल करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड, जबरदस्त।
0: जज्बात से काम नहीं होता, खराब होता है। कहीं पे है जरूरत तो वहाँ पे थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करके सोचे, समझे उस सिचुएशन को, हालात को देखें। मतलब यहाँ पे और ये तौर पे अगर हम रिएक्ट करेंगे तो उसका क्या बनेगा, और थोड़ा सा रुक के सूझबूझ से अगर करेंगे तो उसका क्या बनेगा। तो ये सब चीजें हमको ये करना चाहिए, और जज्बात में काम खराब होता है अक्सर, जज्बात में काम खराब होता है।
1: हम बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच रईस जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत मजा आया।
0: भाइयों को भी एक खास नाम नहीं लूंगा, जो हमारे भाई है कुछ जानने वाले, सबको सलाम वादा,
1: सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। तो यहाँ हमारे साथ जो थे वो रईस भाई जुड़े, और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बोलना या चुप रहना, ज्यादा मुश्किल आपके हिसाब से क्या है। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो गए,
1: कनेक्ट हो गए। नहीं, आप ऐसे क्यों आए, आप तो वो आते ना पहचानिए हम कौन है आपके साथ। हाँ, ये लाइन आप नहीं बोलने का, ये बोलिए, चुप मत रहिए इस लाइन में।
2: जी जी जी जी, वाकई में टॉपिक तो बड़ी जबरदस्त है यार, रईस भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके गए।
1: आपके लिए मुश्किल क्या होता है, बोलना या फिर चुप रहना आपके लिए ज्यादा मुश्किल पड़ता है?
2: मसला ये है ना, अगर हम गलत से आवाज उठा रहे हैं, गलत से बोल रहे हैं, लेकिन अगला सामने वाले पार्टी वो अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो यानी अगर वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, उसकी भी वजह, वो उसको लगेगा मैं शर्मिंदा हो गया या मैं जलील हो रहा हूँ या मैं हार जाऊंगा, फिर भी वो अपने आप को है ना राइट ठहराने की कोशिश कर रहा है।
1: सही।
2: तो वैसे बंदे को है ना उसके हाल पे ही छोड़ना बेहतर है, ना बोलो एक बार बोलिए चुप रहो, लेकिन जब वो परेशानी को जब वो फेस करेगा ना, वो घूम के आपके पास आएगा, वो घूम के आपके पास आएगा, यार मैं मान लेता था यार, तुम सही बता रहे थे। क्योंकि रिसेंटली है ना, रिसेंटली अभी हम लोग एक जगह लास्ट फ्राइडे जा रहे थे, इस्तेमा में जा रहे थे
1: जी जी।
2: तो एक ऐसा ट्रैक है कि हमको नीचे से जाना था टनल से, तो जो गाड़ी चला रहे ना तो राइट का बोतल भी चलता है ना, तो बोले यार अपन ये राइट से निकल जाते सीधा सीधा, ये नीचे डालने का मतलब क्या मसला है, तो मतलब आगे से कटी नहीं, चलो ऊपर चल के देख लो, लेकिन ऊपर सीधा नहीं जा सकते, बंद है, क्योंकि मैं आता जाता मुझको मालूम है, पर चल के देख लो मुझे क्या। तो वो आगे से फिर राइट एग्जिट में लिया लोकल में, और आगे जाके फिर वो लेफ्ट आ गया, सीधा बंद है। मैंने बोला मैं तो पहले ही बोला था आपको, अब जाओ लॉन्ग ट्रिप, फिर वहां से भी घूमना पड़ेगा। हाँ यार सही बोल रहे थे, तो मैं बोला हाँ मैं हिंदी नहीं बोल रहा था फिर। तो हाँ, उनको यानी अगर आप कहीं गलत पे आप ऑब्जेक्शन लेते हो या समझाते हो या एक्शन लेते हो या बोलते हो ना, तो उसका मतलब है ना सोल्यूशन और रिजल्ट और एहसास दिलाना। इसका मतलब ये है कि भाई हाँ वाकई में ये सही है, ये नहीं कि आप अपना मतलब वहां पे कहीं जताना कि मैंने बोला मेरे वजह से ये हुआ वो हुआ ये हुआ, वो तो फिर बेवकूफी है ना, वो मतलब एक दिमागत दिखाने वाली बात है। हाँ जहाँ राइट है, और जहाँ आप 100% कॉन्फिडेंसली आप अगर राइट हो उस ट्रैक पे जो आप कहने जा रहे हो, वो भी आप देखो ना आप क्या कहने जा रहे हो और किसके अगेंस्ट और किस वजह से कहने जा रहे हो, वहाँ आप बहुत 100% आप राइट हो, श्योर हो एकदम पक्का, ये नहीं कि हवा में या हवा से छुड़ा के मतलब है ना कि मैं आगे मैं बोलूंगा, तो वो भी है ना बेवकूफी है। और जो लोग ऐसे भी है ना जो सब कुछ देख रहे सामने ना गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन अगर वो बोलने जाएंगे तो अगले का कुछ करियर तबाह हो सकता है, या हो सकता है उनके घर में कुछ झगड़े बड़े हो जावे या कुछ बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सिला रहमी वहां पे कर जाता है बंदा और खामोश रहता है। तो खामोश रहने का ये तो मतलब नहीं ना अनाजा मैन कि वो कोई डरपोक है और वो चुप रह गया, खामोश रहने वाले चुप रहने वाले वो तो एक खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं,
1: वाकई
2: भले पीछे में गलते हैं। हाँ जी, मेरा कॉन्फिडेंस बस इतना ही रहेगा।

0: अब बाकी आगे जावेद भाई है और भी सब उनका देखते हैं, ठीक है।
1: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे हमारे साथ शहजादा जी जुड़े और उन्होंने वाकई बहुत अच्छे एग्जांपल देकर भी हमें और आपको समझाया। देखिए जिंदगी ये हमें और आपको सिखाती है कि हमें कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, लेकिन दिलचस्प बात पता है क्या है, वो ये है कि अक्सर लोग समझते हैं कि बोलना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कहती हूँ खामोश रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों होता है वो और कहाँ कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पे जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई कैसे हैं आप?
2: सुबह बखैर, बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप कैसी हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हैं तो बहुत जल्दी मैं कहीं तो
2: नहीं नहीं कहीं भी नहीं हूँ, बस मैं सिर्फ रूम से निकला बाहर आया, मैं बोला बात करूं क्या मौजू क्या है, मुझे मैंने तो सुना भी नहीं, बयान भी नहीं किया।
1: अच्छा, आज हम बात ये कर रहे हैं कि बोलना या चुप रहना ज्यादा मुश्किल आपके लिए क्या होता है।
2: यानी मतलब ये कि अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है या कुछ ऊंची आवाज में बात कर रहा है, ये मतलब
1: हाँ आप हर सिचुएशन के साथ जोड़ सकते हैं, आपके लिए चैलेंजिंग क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं सच है मुझे बोलना ही बोलना है, हक की बात करनी मुझे बोलना ही बोलना है, या फिर आप जो है उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ जो भी बोल रहा है मैं चुप हूँ मुझ पे कुछ नहीं फर्क पड़ता।
2: नाजिया बहन, बात दरअसल ये कि हक की जगह पे तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रह सकता, वो चाहे सामने कोई भी हो उसके लिए तो मैं बिल्कुल
1: किसी
2: का भी हो वो मैं बोल सकता हूँ, वो फिर छुप ही नहीं रह सकता। और अगर अपने साथ ऐसे सामने तो मैं वो बंदे को देखता हूँ तो सॉरी मैं ऐसे वो थोड़ा सा शायद कुछ सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, सामने बंदे की बातों को देख के सुन के मुझे पता चलता है कि इसकी तरबियत कैसी है, तो फिर मैं साइड लेता हूँ, मैं खामोश हो जाता हूँ। मैं ये, लेकिन अगर किसी के साथ अपने खुद की बात हो तो मैं ज्यादातर खामोश हो जाता हूँ। और अगर हक की बात हो, हक की बात मतलब ये कि अगर वो बंदा गलत है और किसी के साथ ज्यादती कुछ कर रहे या गलत कर रहे या किसी चीज को तोड़ रहे या किसी चीज पे को नुकसान पहुंचा रहे तो उसमें मैं खामोश नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता,
1: किसी तरह से खामोश है। अच्छा, एक और मैं आपको सिचुएशन दूं, मान लीजिए आपने अपने ऑफिस में या कंपनी में बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन आपकी मेहनत का जो क्रेडिट है वो किसी और को मिल रहा है, अब ऐसे में आप बोलेंगे या खामोश रहेंगे?
2: ऐसे में मैं जरूर बोलूंगा, इसलिए कि अगर मेरा हक है,
1: और आपके बोलने से वो बंदा हर्ट होगा और हो सकता है झगड़ा बढ़ जाए।
2: मैं ये समझता हूँ कि जो हक के लिए सामने कोई भी खड़ा हो मैं बोल सकता हूँ उसके लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मैं बात कर सकता हूँ, मैं चुप नहीं रह सकता। लेकिन एक बात, इसमें एक और बात है नाजिया बहन, के अगर कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं दूसरों के लिए बात की, दूसरों के हक के लिए बात की, तो वो उल्टा हो गया, फिर वो दूसरे साइड में हो गया, उनके साइड में हो गए, तो ये भी ऐसा, हाँ वो भी अच्छा नहीं लगता, फिर बंदे को देख के पर बात करनी पड़ती है कि ये बंदा कैसा है, यानी ये अपने हक की बात खुद कर सकता है नहीं कर सकता, या हम उनके लिए बात करें और वो आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता, तो ये इसमें ये होता है। लेकिन बहरहाल किसी के लिए भी अपने हक की बात जरूर करनी चाहिए। कतील शिपाही की एक शेर है कि दुनिया में कतील उससे मुनाफिक कोई नहीं जो जुल्म को सहता हो बगावत नहीं करता।
1: वाह, तो मतलब बोलना चाहिए
2: जरूर बोलना चाहिए, और हक के लिए अगर हक है तो बोलना चाहिए, अगर हक नहीं है तो बिल्कुल वो मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा अपने जात तक अगर कोई बात हो तो अगर दूसरा बंदा गलत भी है तो मैं उसको बोलता हूँ सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करे, उसका मतलब ये होता है कि वो बंदे को देख के मैं इसलिए माफी मांगता हूँ कि मुझे मालूम है कि इसकी तरबियत कैसी है और ये कहाँ तक जा रहा है, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप बात आगे बढ़े या कुछ। बहरहाल मेरा तो यही सोच और यही फिक्र
1: है। सोच है, बहुत जबरदस्त, वी अप्रिशिएट,
2: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
3: जी अस्सलाम वालेकुम माजी जी, कैसे हैं?
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस्मान बात कर रहा हूँ।
1: उस्मान ओके
3: जी। अच्छा मैं अभी इस बारे में ये कहूँगा कि अभी फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ जैसे 40 प्लस एज हो चुकी है और अब मुख्तलिफ जगहों पे हम काम कर चुके हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ जगहों पे उठना बैठना होता है, तो इंसान इन दोनों चीजों को कब बोलना है और कब नहीं बोलना एक मतलब मैच्योर आदमी अब तक सीख चुका होता है।
1: सही,
3: बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में दोनों चीजें अपने वक्त पे काम आती हैं, ठीक है, कहीं पे आपको नहीं बोलना होता है और कहीं पे आपको बोल के जो है उससे मदद लेनी पड़ती है। तो मेरे साथ तो अब ये हो चुका है कि मैं सीधी सी बात है, जहाँ बोलना पड़ता है वहाँ मैं जरूर बोलता हूँ, और जहाँ पे मैं समझता हूँ कि खामोश रह के चीज को बेहतर मैनेज किया जा सकता है तो फिर मैं खामोश रहना जो है वो बेहतर समझता हूँ। तो बार दफा होता ये कि हम लोग सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, कि अगेन फॉर एग्जांपल कि अभी हो सकता है कि अगर मैं बोल दूंगा या मैं नहीं बोलूंगा तो उसका बाद में इफेक्ट जरूर आएगा, ठीक है, और वो एक्सपीरियंस भी हुआ मतलब हमारे साथ। तो बेहतर ये है कि एट द टाइम आपको एट द स्पॉट जो है वो फैसला लेना पड़ता है कि अभी आपको बोलना है या नहीं बोलना, ठीक है।
1: अच्छा एक सिचुएशन मैं उस्मान जी आपको देना चाहूंगी कि आपने देखा इसका, इस सिचुएशन में आप कहीं नहीं है बट आपने ये देखा कि एक आपका ऑफिस का एम्प्लॉई है उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपका लेना देना कुछ भी नहीं है लेकिन उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, सब देख रहे हैं, चुप है, आप भी देखेंगे चुप रहेंगे कि आप बोलेंगे?
3: नहीं, मेरी तो ऐसी सिचुएशन हुई है और मैं बोला भी हूँ, ठीक है, हमारी मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी टीम की बात करूँ तो हमारी टीम पे एक हम लोग तीन जो हैं इंडियंस और एक पाकिस्तानी एक फिलिपिनो, तो उसमें फॉर एग्जांपल एक फिलिपिनो है और उनके साथ काफी टाइम से एक प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और मैं एट द सेम लेवल ऑफ टीम में उसको महसूस कर रहा हूँ, बाकी लोग भी महसूस कर रहे हैं, और मैं उस चीज को कई बार मीटिंग में हाईलाइट सबके सामने कर चुका हूँ, यानी किसी के पीछे नहीं, सबके सामने कि ये इशू है इनके साथ, और मजे की बात जो जो मैनेजमेंट या जो भी है वो जो कर रही होती है और उसको भी फिर एहसास होता है कि यार एक बंदा मतलब सबके सामने बात कर रहे हैं, किसी की फेवर अगर करनी हो ना तो आप छुपके करते हैं या बैक चैनल करते हैं, तो आप स्टेट टीम को सामने रख के सबके सामने बात कर रहे हैं तो जहाँ अगर किसी को कोई एतराज भी है तो वो बोल सकते हैं।
1: नाइस, माशाल्लाह, दैट्स रियली अमेजिंग कि कोई दूसरे के लिए बोले और वो भी ओपनली इतना बोल सके, आज के टाइम में बहुत रेयर है, इट्स रियली रेयर।
3: मैं कंसीक्वेंसेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं घबराता क्योंकि मैं वो ऊंच नीच मतलब अब तक मैं उस ऊंच नीच से गुजर चुका हूँ, मतलब मैंने हर किस्म के हालात देखे हैं और यहाँ भी पहले पाकिस्तान में था, सऊदी में था, तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार फलाने दूसरे बंदे की अगर फेवर हो रही है तो नहीं मैं चुप रहूं, क्या जरूरत है उसको फायदा, ठीक है, तो लेकिन मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं एक बंदे को फायदा मिल सकता है और वो नहीं मिल रहा तो उसको पहुंचाऊं किसी को, चाहे वो बोल के है या जिस तरह भी है, लेकिन आपको जाहिर है आपको ऐसा भी है कि आपको आपके अंदर ये स्किल भी होनी चाहिए कि आपने बात करनी कैसे, आपने बात करनी भी कैसे एक टीम में या सबके सामने कि दूसरे को हर्ट भी ना हो जिसके तक आप मैसेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है, और एक अच्छे तरीके से आप अपना जो नजरिया है वो सामने रख दें, ठीक है, और यकीन करेंगे कि उस बोलने से दूसरा बंदा हर्ट भी नहीं हुआ और जो मेन लड़का था या जो भी था उसको फायदा भी हो उस चीज का, तो तो मैं समझता हूँ जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो एट द एंड आपकी भी कहीं ना कहीं से हेल्प हो रही
1: है, हेल्प हो जाती है,
3: अल्लाह ताला आपकी हेल्प कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छी बात। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप जैसे लोग हैं जो दूसरों के लिए भी बोलने की हिम्मत रखते हैं, गट्स रखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में अपने लिए तो चलिए आप फिर भी हिम्मत जुटा लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए आजकल कोई भी नहीं बोलना चाहता, कोई नहीं चाहता। वो आपके बहुत अच्छे कलीग होंगे, बहुत अच्छा आपका और उनका बहुत ही एफेबल, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी, बट डिस्पाइट ऑफ दैट भी कोई चाहता नहीं कि कोई किसी के में पड़े कि हम क्यों हाईलाइट हों ज़बरदस्ती, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप बोल पाते हैं।
3: बार दफा ऐसा होता है कि उस वक्त जब आप बोल रहे होते हैं उस वक्त शायद आपको डर लग रहा हो कि कुछ इशू ना बने, लेकिन एट द एंड मेरे ख्याल में कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चीजें ही आपकी तरफ आती हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ देखें तो बार दफा चुप रहना, खामोश रहना जो है वो बहुत जरूरी होता है, उससे भी कई चीजें आप बैलेंस कर लेते हैं या किसी बुरी चीज से बच जाते हैं।
1: बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच उस्मान जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छे से आपने आज हमारे टॉपिक पे बात की, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट यू एज अ पर्सन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
3: वेलकम वेलकम, और मुझे भी मतलब मैं आपका शो आपका और एक और भाई मेरा नाम निकल रहा है, एक तो कबीर भाई है और दूसरा
1: फजील भाई,
3: एक और है
1: सरवर भाई,
3: उनका बहुत सरवर भाई उनका बोलने का अंदाज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, उनका जो जिस तरह वो लफ्जों का चुनाव करते हैं और पिच करते हैं और उनका स्टाइल है बोलने का माशाल्लाह जबरदस्त है, वो सेम टू यू, मतलब कहूंगा मैं आप दोनों को बहुत ज्यादा सुनता हूँ।
1: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ये बोलना जरूरी था। अगर आप सरवर के नाम नहीं लेते तो चल जाता, लेकिन चलिए खैर नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय, लवर्स। ऑलराइट, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक पर हमने जो है वो शुरुआत कर ली है। यहाँ पर एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस टॉपिक पे फर्दर बात जारी रहेगी। आज हम बात ये कर रहे हैं क्या चुप रहना, अब थोड़ा सा इसको और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम जो है वो एड्रेस करना चाहेंगे। क्या चुप रहना आपके हिसाब से कमज़ोरी है? क्या चुप रहना आपके हिसाब से समझदारी है? क्या चुप रहना आपके हिसाब से खुदगर्जी है? क्या लगता है? डू लेट मी नो 666-22107 पर। और फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक, हम मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: FM 107. Time check. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक गाइस. टाइम फॉर द टाइम चेक. और इस वक्त स्टूडियो क्लॉक पे बज रहे हैं 7:07.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
0: हाँ जी, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूँ नासिया आपके साथ. आज बात हो रही है बोलने और चुप होने पर, लेकिन मैंने चुप होने को पहले जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है. आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्या लगता है कि चुप रहना वाकई कमज़ोरी है, या आपको लगता है चुप रहना आज के दौर में समझदारी है, या फिर चुप रहना खुदगर्जी है? व्हाट यू थिंक, या कुछ और? तो वो भी आप मुझे बताइए. कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. हेलो. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेरी गुड मॉर्निंग. कौन है मेरे साथ?
2: उसामा बात कर रहा हूँ.
0: उसामा, कैसे हैं आप?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक. आप कैसे
0: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. और कैसी जा रही है आपकी सुबह?
2: सुबह
0: हमेशा ही अच्छी होती है. और रात आते आते भी सब अच्छा ही हो जाता है. ये भी है. तो आज हमारा जो टॉपिक है, शोर आपने सुन रखा है?
2: नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा आइडिया बस हुआ था, मैंने थोड़ी देर पहले ही वीडियो ऑन किया.
0: अच्छा, आज मैं बात ये कर रही हूँ कि बोलना या चुप रहना ज्यादा मुश्किल क्या है, और एक और चीज, क्या चुप रहना कमजोरी है, या आप उसे समझदारी समझते हैं, या फिर आप कहते हैं कि चुप रहना खुदगर्जी है?
2: सिचुएशन पे डिपेंड करता है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि हम गलत जगह पे हम समझते हैं कि बोलना एक वो है, मेरी बहादुरी है. लेकिन कई जगहों पे चुप रहना समझदारी होती है. हम लोग जिस बात से मेरे ख्याल से फैसला ज्यादा करते हैं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली एक जनरल की बात कर रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम घर में आके जहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए उधर हम बोलते हैं, जहाँ पे हमें बोलना चाहिए वहाँ हम चुप करते हैं, चीजें अब्सॉर्ब कर जाते हैं.
0: सही.
2: तो मेरे ख्याल से डिपेंड करता है और
0: क्या सिचुएशन है.
2: बिल्कुल एक्जेक्टली.
0: अच्छा, मान लीजिए कोई आप पे कोई इल्जाम लगा रहा है और आपके बोलने से झगड़ा जो है वो बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा. कोई बहुत करीबी है आपका, खास है, घर का बंदा है, करीबी है, कोई आप ऐसे इल्जाम लगा रहा है, आपके बोलने से झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे कि बोलेंगे? बोलेंगे
2: नहीं. बोलना ऐसे सिचुएशन में डिपेंड करता है. आप देखें, अगर मेरे ख्याल से तो ये तो बात अगर आपके किसी पर्सनल उस पे आ जाएगी तो फिर तो सारी बात है, आपका बोलना भी बनेगा. लेकिन फिर भी तब भी मेरे ख्याल से कि आपको पहले सिचुएशन के देखना चाहिए कि कैसी इनके क्या डिपेंड करता है. अगर माइनर सा कोई फर्ज करें, कोई छोटी सी बात है, बंदा कहता है यार छोड़ो क्या मुझे एक्सप्लेन करना है, और वैसे भी आपको क्या किसी को एक्सप्लेन करना, अपनी एक्सप्लेनेशन क्यों देनी है आपको. बोलने का ये भी मतलब नहीं है कि आप बोलेंगे तो लाजमी मामला खराब ही होगा.
0: तो बोलना भी बहुत बार जरूरी होता है. आप चुप रहे, वक्त ही चुप रहे, जब आपको गुस्सा आए उस वक्त चुप रहे, लेकिन जब वो सेटल हो जाए, सामने वाले का सेटल हो जाए, तब आपको इनिशिएट करके बोल देना चाहिए कि ये है. क्योंकि आज मुझे नहीं लगता वो दौर है जहाँ पहले कहते थे कि चुप रहना जो है वो जो है लिहाज करना है. आज के दौर में चुप रहने को लोग कहते हैं अरे ये कसूरवार है, देखो चुप है, बोल नहीं पा रहे. तो आज का दौर जो है वो नहीं रहा कि लिहाज में आप चुप हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. नहीं, उन्हें लगता ही लगता है कि अरे देखा इसकी गलती थी इसीलिए चुप था, बोल नहीं रहा.
2: ये बोला नहीं, मतलब है कि दाल में कुछ काला.
0: वही आप लिहाज में नहीं बोल रहे, अगला आपको गलत समझ रहा है. ये बात सही कहा आपने, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसे बोलना है. हाँ,
2: वो एक मिसाल है ना कि एक मजाक से कहते हैं, कहते हैं हम उंगली पकड़ाते हैं, आप हाथ खींचते हैं, ये वो चीज ज्यादा हो जाए, आप बस नॉर्मल सा एक वो करें ना, क्या कहते हैं, लिहाज में अगर चुप है तो उस चीज को वो हम लोग एग्जैजरेट बहुत असल में कर देते हैं सिचुएशन को ना.
0: बिल्कुल सही कहा.
2: तो ये चीजें हैं. हाँ, लेकिन गलत बात ऐसी जैसे ये जुल्म के खिलाफ, वो भी एक कॉलर से वो बात कर रहे थे.
0: उन्हें मैंने ये सिचुएशन दी थी कि किसी के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है, आपका कोई लेना देना नहीं है, पर आप देख रहे हैं. अब बोलो,
2: करें अब हाईलाइट जरूर करें, क्योंकि अब ऐसा नहीं है ना कि अगर आप वही चीज आपके साथ होगी तो तब आप बोलेंगे, अगर किसी और, यानी कि दूसरे के साथ जुल्म है तो आप जुल्म है, जुल्म बेशक दूसरे के साथ ही आपके साथ, वो गलत है. लेकिन अब ऐसा कि आपने इस चीज को, अब ये बाप की कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाते हैं कि आप कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं ना.
0: बहुत सही, बहुत सही, अमेजिंग. तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, फिर किस तरह से आप स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, क्या आपने किस तरह के वर्ड्स को पिक किया है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. दिस व्हाट यू आर सेइंग. और हक की बात हो, सच बात हो, चाहे अपने से रिलेटेड हो, किसी एक्स वाई जेड से बोल देना चाहिए एक बार.
2: बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आप हम इधर वर्क प्लेसेस की एग्जाम्पल ले लें, जो हम डेली लाइफ में, डेली लाइफ से अगर एग्जाम्पल लें तो सारी बातें वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है. कि अगर फर्ज करें किसी आपके कोलीग के साथ कोई गलत हो रहा है, तो आप एटलीस्ट उसके साथ सही बात पे उसका साथ तो देना, खड़े तो होना, क्योंकि अब ये नहीं है कि आग आपके घर तक पहुंचे तो सब आप बोले.
0: राइट, बिल्कुल सही कहा आपने.
2: आप एटलीस्ट हाईलाइट जरूर करें.
0: हाँ, एटलीस्ट आप कहिए.
2: और ऐसा भी नहीं है ना कि अगर यानी कि दूसरे के साथ हो रहा है तो ठीक है, मेरे साथ हो रहा है तो गलत है, ऐसा भी नहीं है. फिर आप इसमें भी क्या कहते हैं, हम लोग ना अपने साथ उस चीज को वो नहीं रखते, गर्ट नहीं है कि आपको कहते हैं हमारे अंदर वो करेज नहीं है या क्या नहीं है, कि हम कहते हैं कि जब अपने तक आता फिर हम क्या कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, चीजें अब्सॉर्ब करते जाते हैं जब अपने तक आते फिर बैलून की तरफ फट जाते हैं.
0: सही बात है. तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि एक रूल हो और यूनिवर्सल सा हो, एप्लीकेबल हो, हम पे भी दूसरे पे भी, और उस पे हमें एडर करना ही चाहिए. वेरी नाइस, बहुत ही ज़बरदस्त कॉल, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.
2: कॉलर अक्सर क्या उसका नाम है, वो जावेद साहब, उनका बहुत मैंने नाम सुना है ना.
0: हाँ, वो बहुत ही कमाल के शख्स और सिंगर भी है.
2: मैंने मुझे ज़हन में नहीं आता, मुझे अक्सर मैं भूल जाता हूँ कि जब कॉल करूंगा मैं लाजमी पूछूंगा जावेद साहब, यानी कि उनका सुनने में आया कि वो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं.
0: बहुत अच्छे सिंगर है.
2: बहुत अच्छे सिंगर है
0: जी.
2: तो वो एक दफा ना, मैं ये भी लास्ट फरवरी की बात है या मेरे ख्याल से यस फरवरी में ना, मैं ना फैमिली के साथ बाकू गया था.
0: अच्छा.
2: उधर एक रेस्टोरेंट में, पाकिस्तान रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे हम. तो उधर ना उनकी जो वो ऑनर थी ना, वो पाकिस्तानी एक खातून थी, बड़ी है माशाल्लाह, उनकी स्ट्रगल लाइफ उन्होंने सुनाई, मैं देख के बड़ा वो हुआ.
0: अच्छा.
2: उन्होंने एक नाम लिया था जावेद करके ना, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इज इट शहीद सेम या वो कोई और जावेद साहब है. वो कहते एक उधर एक सिंगर है, वो हमारे कैफे में आए, वो किंग्स कैफे करके एक नाम था उधर ना, मेन स्ट्रीट पे, उधर निजामी स्ट्रीट के पास ही. तो मैं ये जानना चाह रहा था अगर जावेद साहब दोबारा सुने ना, मुझे बताएं तो सही, क्या वाकई ये वही वाले हैं. वो उन्होंने कहा कि हमारे कैफे में आए थे, उन्होंने बड़ा इधर माहौल बनाया था.
0: अच्छा, चलिए अगर सुन रहे हैं और आएंगे तो मैं पूछूंगी उनसे कि वो बाकू गए थे, क्या कभी उन्होंने ट्रैवल किया है और इस तरह का कोई इंसिडेंट, तो पूछती हूँ और मैं आपको बताऊंगी.
2: मेरे ख्याल से जो ये टॉप के पार्टिसिपेंट्स हैं ना इधर एफएम के,
0: उनको
2: मेरे ख्याल से कभी गेट टुगेदर करना चाहिए.
0: हाँ, आप लोगों को मिलना चाहिए.
2: कॉल पे सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कभी यानी कि क्यूरियोसिटी होती है अक्सर, हम सुनते होते हैं ना. जरूरी नहीं है मैं हर दफा पार्टिसिपेट नहीं करता, कभी मेरे ख्याल से मैं 7-8 दफा बस किया है, लेकिन मैं सुन सबको रहा हूँ. तो कभी कभी दिल में ये यानी कि वो आता है कि यार कभी गेट टुगेदर तो
0: एक बार होना चाहिए. और देखना चाहते
2: हैं, मैं
0: खुद देखना चाहती हूँ, मेरे जहन में एक और पिक्चर होती है.
2: मैंने पूरी कहानी सुनी, मैंने कहा अभी सेफ्टी वाला कोई मैटर रहेगा, बड़ा मासूमियत थी वो ना.
0: जी जी जी,
2: उनकी वो थी वो माशाल्लाह. चलें, बहुत अच्छा लगा बात करके.
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. एंजॉय योर मॉर्निंग, एंजॉय रेस्ट ऑफ योर डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चल रहा है. एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो.
3: हाँ जी.
0: अरे जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग
3: शोनी। बहुत बढ़िया, तुसी दसो किद्दां जी?
0: बढ़िया, चंगा सब कुछ। और आज जो है वो आपने, अब तो जल्दी हो ही जाती है आपकी मॉर्निंग की शुरुआत, राइट?
3: जी मैडम।
0: हाँ, थोड़ा सा जल्दी आप ड्यूटी पे जाने लग गए, दैट्स नाइस।
3: बस मैडम, चाय के नशेड़ियां क्या करें चाय की वजह से थोड़ा जल्दी उठ।
0: सिर्फ चाय या चाय के साथ वाई भी?
3: चाय के साथ
0: चाय वाई भी होता है ना, वाई भी है या सिर्फ चाय?
3: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: चाय भाई, अरे वाह,
3: चाय के बिना तो जिंदगी अधूरी है हमारी।
0: चाय चाहिए ही चाहिए, सुबह सुबह चाहिए। एक टाइम मेरा भी ऐसा था, मुझे भी चाहिए थी, बट अब मैंने छोड़ रखी, पता है आपको। अब मुझे ऐसे कुछ लगती भी नहीं, तलब भी नहीं होती। मैंने कहा छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया।
3: खुश नसीब हो आपने छोड़ दी।
0: हाँ,
3: मैं ये नहीं पूछना चाहूंगा कैसे छोड़ी है।
0: बस काहिली, काहिली ने छुड़वाया मुझे, सुस्ती ने।
3: ठीक है, ठीक है।
0: कि कौन बनाए, कौन इसको साफ करे, कौन धोए, अरे छोड़ो, चाय नहीं पीऊंगी मैं सुबह, क्योंकि सुबह सुबह मुझे खुद ही अपने लिए बनाना है, छोड़ो।
3: हाँ। नहीं, ये एक्सक्यूज मैडम सही नहीं है। एक्चुअली क्या है, दोहा में एक रियलिटी हर जगह पे मिल जाती है चाय।
0: हाँ, वो वाली मैं जो हूँ ना, खुद अपनी वो डिप की और वैसे ही बनाती हूँ, थोड़ी चीज़ें डाल लूँ, तो मुझे वही अपनी चाय चाहिए। दूसरा टेस्ट मुझे ज़्यादा समझ में आता। और मैं कहीं जाती हूँ तो फिर मैं चाय पीती भी नहीं हूँ, मैं कॉफ़ी पीती, पता है, किसी के भी जाती हूँ। मेरा अपना जो टी है, जो मेरी फेवरेट है, उसका नाम मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, अगर आप पूछेंगे तो मैं उसको व्हाट्सएप कर सकती हूँ, वही टेस्ट है बस मुझे। तो वो मुझे बनाना अपने लिए सुबह सुबह और ये सब, तो मैंने कहा हटाओ, छोड़ो, चाय ही नहीं।
3: कहाँ, क्यूबा से आती है मैडम? क्यूबा वाली या ब्राजील वाली?
0: श्रीलंका वाली है।
3: ओके ओके ओके,
0: श्रीलंका की खास टी।
3: खास, अच्छा, खास मैडम।
0: हाँ बिल्कुल,
3: श्रीलंका का नाम भी पहले वाला जो नाम है ना, वो भी चाय के नाम से रिलेट करता है।
0: चाय के नाम से, बस आप सही समझ गए। अच्छा, आज जो हम पूछ रहे हैं ना सवाल, बड़ा दिलचस्प है। आप मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि चुप रहना समझदारी है आज के दौर में, या चुप रहना आज के दौर में उस इंसान की कमजोरी है, या चुप रह जाना आज के दौर में खुदगर्जी है?
3: मैं मैडम बात करता हूँ इसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं भूल गया, अमजद इकबाल साहब है ना पाकिस्तान से।
0: हाँ, कल उनका मैसेज आया था।
3: सलाम, जी सलाम भेजा था आपके लिए।
0: वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पाकिस्तान चले गए हैं। हाँ, किसी ने बताया था, बट आए नहीं वापस। हाँ,
3: वो मैडम बस कुछ मशरूफ है, कुछ आने का तो अभी पता नहीं उनका।
0: अच्छा,
3: जी थोड़े ज्यादा बिजी हो गए वहाँ पे जाके, तो उन्होंने बोला था। वो आपको नादिया जी बोलते हैं, नादिया जी।
0: जी जी, उनको मेरी तरफ से भी प्लीज सलाम कहिएगा, और कहिएगा कि आपको मिस कर रहे हैं, जैसे जब मौका मिले आइए प्लीज, और कनेक्ट हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो, जरूर वॉइस नोट भेजे मुझे।
3: जी मैडम, मैं टॉपिक पे तो थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि अभी ये जो मेरे से पहले कॉलर थे ना, उन्होंने गेट टुगेदर की बात की। अगर मैडम पॉसिबल हो सकता है, मिर्जा साहब ने भी 15 तारीख को आ जाना है,
0: आ जाएंगे,
3: उसके बाद में देख लीजिए अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बना सभी आपके।
0: अरे वो हमारे साथ नहीं, आपके साथ बोल रहे हैं भाई, आपको बोल रहे हैं सारे लिसनर्स।
3: मैडम आप लोग भी तो इन्वॉल्व हो गए ना।
0: अच्छा, हम भी।
3: मिर्जा साहब का भी तो बहुत बड़ा रोल है, आप दोनों तो हमारे टीचर।
0: उनका बड़ा नहीं, उनका बहुत चौड़ा रोल है। उनका रोल आपको काफी चौड़ा दिखेगा भी। अच्छा, अभी रिसेंटली हम लोगों की मुलाकात हुई तौफीक जी से, और एक हमारे और एक लिसनर है विमलेश जी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने तौफीक जी को देखा और विमलेश जी से मुलाकात हुई, हालांकि हम सबके जहन में एक पिक्चर तो बन ही जाती है लिसनर्स की, बट हाँ ऐसे वन टू वन मिलके बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ बस इन्हीं दो लिसनर्स से मेरी अभी वन टू वन हुई। अमजद जी से तो हाँ हो चुके पहले, बट आप में से किसी को भी मैंने नहीं देखा है, तो कभी ना कभी।
3: हाँ,
0: इस तरह का प्लान करेंगे।
3: आते हैं, उन्होंने 15 को तो आ जाना है, बात हुई थी इनसे।
0: अरे वो आपको गोलियां देंगे, बेफिक्र है, 15 को आएंगे, 16 को गोली देंगे, 17 को गोली देंगे।
3: मैडम आप वो टेंशन मत लो गोली वाली।
0: अच्छे से गोली देते रहते, देते रहेंगे, देखिए कब तक चलती है, फिर टोपी पहनाना शुरू करेंगे गोली के बाद।
3: 16 को ज्वाइन करना है प्रोग्राम।
0: हाँ नहीं, 16 तो वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एक हफ्ते तक गोली, फिर अगले हफ्ते से टोपी। अब आप देख लीजिए उसके आगे तीसरे हफ्ते क्या होगा। चलिए, कभी ना कभी कोशिश रहेगी, इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात हो और कुछ ना कुछ।
3: मैडम 15 को तो हो ही जाएगी फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में, अगर पॉसिबल।
0: अच्छा चलिए ठीक है, फिर तो जरूर आप मुझे आइएगा, बताइएगा कि आप एक आप अजय जरूर मिलिएगा, ठीक है?
3: जी जी मैडम, कोशिश करेंगे आने की।
0: सही,
3: बैलेंस हो गया सारा ड्यूटी वगैरह का सिस्टम।
0: चलिए ठीक है, ठीक है, जरूर। तो अब बताइए आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे?
3: मैडम टॉपिक के हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सही जगह और सही टाइम देख के ही बोलना चाहिए। अभी मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन देता हूँ मैडम। सपोज कीजिए आप जिम कॉर्बिट के किसी छोटे से गांव में, बिल्कुल जो उसके साथ में लगता है, टू व्हीलर पे जा रहे हो अकेले,
0: ठीक है,
3: आसपास में कोई नहीं है, ठीक है, और आपके 200 मीटर सामने कोई टाइगर आ गया। टाइगर ने आपको नहीं देखा मगर आपने टाइगर को देख लिया, तो आप क्या करोगे मैडम उस सिचुएशन में?
0: मैं वहां से भागने की कोशिश करूंगी।
3: हाँ, चुप करके खामोश होके पीछे को वापस, है ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, चुपचाप वापस।
3: बिल्कुल मैडम, तो यही है सही मौका और सही सिचुएशन देखनी चाहिए बोलने के लिए।
0: मौका और चुपचाप खिसक लो अगर सामने टाइगर जैसा कोई बंदा है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है शख्स, तो चुपचाप वहां से खिसक जाना ही बेस्ट सोल्यूशन है। हाँ ये बात
3: उस टाइम अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए तो,
0: हाँ डू एंड डाई वाली सिचुएशन है तो आप चुपचाप वहां से निकलिए और बाद में उसे अप्रोच कीजिए। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग
3: जी मैडम। और आप बात कर रहे थे भाई हक से अपनी बात कहने की, हाँ, सही है ना? वो किसी भी फील्ड में लागू तब होती है जब आपने अपने हक को अपने फर्ज के साथ निभाया हो, तो मैडम आपकी बात भी वजनदार हो जाती है।
0: बहुत जबरदस्त। अच्छा अपने हक पे तो चलिए हमारा फिर भी खून खौलता है, हम बोल पड़ते हैं। अब कोई दूसरा शख्स है ऑफिस का, मान लेते हैं आपकी कंपनी में, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है पर आपका कोई लेना देना नहीं है, अब भी आप बोलेंगे कि आप चुप रहेंगे या उसके हक के लिए नहीं बोलेंगे, उससे जाके बोलेंगे कि अरे मुझे तुम्हारे साथ बहुत सिंपैथी है ब्ला ब्ला ब्ला, बट उसके हक के लिए आप जो है आगे बॉस से नहीं बोलेंगे या क्या करेंगे
3: मैडम? एक्चुअली चक्कर पता क्या है, अगर आप किसी को भी सलाह दोगे ना, तो बंदा यही सोचता है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ये बंदा लाजमी मेरा कोई ना कोई फायदा उठाएगा, इसीलिए ये बंदा मेरे पास में आया है।
0: बताओ ये वाला दौर भी
3: आ गया, ये साइड की भी है लोगों की।
0: हाँ नहीं आपने ठीक बोला, ये दौर भी आ चुका है कि आप तो अच्छे की सोच के अप्रोच करते हो, अगला जो है उसे दूसरी तरह से ले लेता है।
3: मैडम बात कहने में अच्छी लगती है भी, हम दूसरे बंदे के लिए स्टैंड ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मगर थोड़ा सा मैडम सोसाइटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये बात तो सच है जी।
0: ये बात तो है, ये आपने जो बात कही ये बात भी है कि अगला आपको जो है वो आ रहा है थोड़ा सा कंसोल करने पैट करने, लेकिन सामने वाला सोच रहा है कि अरे ये जो है, और कई बार लोग डांट भी दे रहे, तुम अपने काम से काम रखो, तुमसे क्या मतलब, तो फिर वही है कि आपकी हिम्मत भी आगे नहीं बनती कि आप कुछ और बोले करें,
3: तो फिर आप आगे भी मैडम किसी के लिए इनिशिएट नहीं लेते,
0: नहीं ले पाते। अच्छा मान ले कोई कहता है कि देखो कोई भी मेरे लिए नहीं बोल रहा, मेरे हक के लिए नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं कर रहा, या आपसे कहे कि चलो आप, मैं और आप मिलके चलते हैं, बॉस से बात करके आते हैं, तो आप उसके साथ जाओगे? मसला उसका है, आपका कुछ नहीं है, आप गुड बुक में हो, अब भी आप जाएंगे क्या?
3: नहीं मैडम, अगर आपने बात अपनी सरल शब्दों में, साफ शब्दों में करनी है तो कोई भी आगे से मैडम इंसान हो। देखिए मैडम मेरा पता क्या सीन है, दुनिया के हर फील्ड में मैडम मैं औकात से बाहर नहीं जाता। मैं सबसे पहले मैडम अपनी औकात देखता हूँ, कहीं पे ट्रेवल करना हो, कुछ खरीदना हो, क्योंकि को मेरे को पता है ना मैडम मैं अपनी औकात से बाहर चले गया बाद में प्रॉब्लम किसको होगी? मेरे को होगी ना, अगर मेरी किसी के साथ मैडम दिक्कत है। देखिए मैडम मेरी ना किसी अपने इंडिया रिश्तेदार के साथ ऐसी बातचीत होगी ना, भी अभी बिल्कुल बोलना चालना नहीं है उनके साथ में, सही है ना?
0: सही।
3: तो अभी जब मैंने इंडिया जाना है ना, बात तो मेरी और उसकी ही हुई है ना, मैं खुद उसके घर पे जाऊंगा, स्वीट्स लेके जाऊंगा, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना, खुद जाके उससे बात करनी है बाय फेस, एंड 110% मैडम मसला सॉल्व हो जाएगा, इतना मुझे पता है।
0: बहुत अच्छी बात, सही, जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा आपने। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अपॉन द मूड और सर्कमस्टेंसेस, आपको कोई भी स्टैंड लेना है।
3: जी, एक बात और मैडम, देखिए मैडम आजकल अपने रिश्ते ज्यादा दूरियां हो रही हैं, आपस में ही हो रहे हैं ना ब्लड रिलेशन,
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत,
3: कोई एक दूसरे से हाथापाई तो हो नहीं रहा, हाँ। ना कोई किसी को मार रहा है, असल में चक्कर सारा क्या होता है मैडम बोलने का, कोई ना कोई फैमिली में से ऐसी चीज बंदा बोल देता है कि वो दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि लड़ाई झगड़े का तो टाइम है नहीं फैमिली में अभी, वो पहले वाला,
0: सही बात है,
3: सारा मसला बोलने की वजह से ही होता है, आप जहाँ पे मर्जी देख लीजिए उठा के,
0: 100% राइट।
3: जहाँ तक मैडम मेरा मानना यही है मैडम, जहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन है ना मैडम, वहाँ पे बिल्कुल आपको बोलने से गुरेज करना चाहिए,
0: सही,
3: वहाँ पे चुप रहना ही बेस्ट ऑप्शन है मैडम।
0: सही, ओके, सही कहा आपने कि जहाँ रिश्ते बिगड़ रहे हैं वहाँ आपकी जीत चुप रहने में है,
3: रिश्ते की जीत है। जी बिल्कुल, मोस्टली बंदों की लाइफ में खड़का दड़का कब होता है? फैमिलीज में जब बंदे की शादी होती है।
0: ये तो
3: खड़का दड़का होता है मैडम, नॉर्मल होता है, होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, इससे बंदा नहीं भाग सकता, थोड़ा बहुत तो होता ही होता है, चाहे उसका कारण कोई भी हो।
0: ये तो हम लोग कह देते हैं कि शादी के बाद हुआ, पहले भी हो रहे होते हैं, झगड़ों की जो बुनियाद है वो बात पहले वहाँ रख दी गई थी, नींव पहले
3: जी,
0: खुदाई पहले,
3: पहले
0: हो चुकी होती
3: है, पहले वो वाली भी नींव होती थी, आपकी जमीन बांटी गई, आपके घर दो हिस्सों में बांटा गया, पहले वो वाला मसला नहीं होता मैडम, जहाँ तक मेरा मानना है।
0: अब मैं क्या बोल सकती हूँ, चलिए हो सकता है कि ऐसा भी हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि घर बटे होते हैं, बिखरे होते हैं, लोगों से सवार देते हैं, तो हाँ। ये भी हो जाता है, लेकिन हाँ चलिए मेजॉरिटी तो आपके साथ ही जाएगी, क्योंकि लोगों का ये मानना भी है और हो भी रहा है, मानना क्या है, हो ही रहा है, तो फिर कैसे नहीं कहेंगे, कैसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे।
3: बस वही है मैडम, ब्लड रिलेशन में आपको बोलने से बचना ही चाहिए।
0: बचना चाहिए, और आपकी बहुत करीबी आपकी वाइफ है, उनको फिर बोलना चाहिए, वहां पे भी चुप रहेंगे, उनको समझाना चाहिए। हाँ मान लीजिए ये आपकी खाई बढ़ रही है, आपस में रिलेशनशिप जो है वो थोड़े से खराब हो रहे हैं और लग रहा है आपको, तो अब आपको मौका है कि आप वहाँ तो चुप हैं, ठीक है, क्या अपनी वाइफ के इंस्टेंस पे भी, या चलो वाइफ नहीं लेते भाई ले लेते हैं, उनके इंस्टेंस पे भी आप चुप रहोगे या उनको समझाओगे या कहोगे कुछ?
3: मैडम वो तो रिश्ता एक ऐसा हो गया ना, उसमें तो लाजमी बंदे को बोलना ही पड़ेगा, वो तो रिश्ता ही ऐसा है ना मैडम, ऐसा तो है नहीं बंदे ने हफ्ते बाद मिलना है, 10 दिन बाद मिलना है,
0: सही बात है, हर रोज ही है, सही
3: हर रोज ही है। और नाजिया जी मैं लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ, आप ये जो सिचुएशन बंदे के आगे रखते हो ना मैडम, यही सिचुएशन अमिताभ जी रखते हैं जब 7 करोड़ का सवाल आता है उनके शो में, तो बंदा सोचता है अभी इस पे क्या ऑन द स्पॉट क्या रिएक्शन दिया जाए,
0: क्या दे। लेकिन आप देखिए, आप सबके सब विनर्स हैं, वहाँ तो लोग गलत जवाब देते हैं, आप सब सही जवाब दे रहे हैं, तो आप सोचिए कितने ज्यादा आप में जो है एबिलिटी है खेलने की, इतना अच्छा।
3: ठीक है मैडम, कॉल थोड़ी लंबी होगी,
0: थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय,
3: टेक केयर मैम,
0: यू टू, बाय। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा कन्वर्सेशन और टॉपिक इतना लंबा चला कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे यहाँ पर मैंडेटरी ब्रेक भी लेना है, और हाँ हमने अभी तक अपना पहला गाना जो हमारे शो का प्ले हो जाना चाहिए वो अभी तक प्ले भी नहीं हुआ है, तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दिस इज गोना बी अ म्यूजिकल ब्रेक, वापस आएंगे तो ये टॉपिक जो है इस पर फर्दर बात करेंगे, स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉर्पोरेशन की मार्केटिंग टीम से, कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: वाह सनम पुरी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स। मैं हूँ नासिया आपकी साथ 7:37 ऑन द क्लॉक। एंड यस, आज बात हो रही है चुप रहना बोलना। ज़्यादा मुश्किल कहाँ आपको आती है, सबसे ज़्यादा परेशानी किस आदत की वजह से होती है? चुप रहने की आदत है या फिर हर बात में खटाक से बोल गए? तो आज मेरे साथ कोई आपका इंसिडेंट है, कोई पर्टिकुलरली ऐसा हुआ है जो आप चाहते हैं कि हाईलाइट करें और उससे लोग सीख सकते हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा मुझे। फिलहाल मेरे साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है मेरे साथ?
1: जी, मैं आसिफ बोल रहा हूँ।
0: आसिफ, कैसे हैं आसिफ
1: जी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: तो आज हमारा टॉपिक आम शोर आपने सुन रखा है?
1: जी अभी मैंने सुना है। ये है कि चुप रहने से मामला खराब होता है या बोलने से?
0: बोलना या चुप रहना, आप क्या करते हैं? चुप रहते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर बोल ही जाते हैं, चुप हो ही नहीं पाते?
1: देखिए, मेरे ख्याल में जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर सम टाइम, बल्कि मोस्टली जो है ना, चुप रहने से भी बहुत से मामला खराब हो जाते हैं।
0: बहुत अच्छा।
1: मतलब आप फैमिलीज में या के फ्रेंड्स में आपको बहुत सी चीजें हैं जो बुरी लगती हैं, या आपको मतलब आप उनके साथ रिलेशन रखना चाह रहे हैं, आप उनके साथ चलना चाह रहे हैं, बट आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही, या आपको पता चल रहा है कि वो आपके साथ सही नहीं है, या कुछ

0: गलत कर रहे हैं, बट आप उस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, तो अगर आप चुप रहेंगे तो वो तो और इस तरह करते रहेंगे. तो आप उनको कम्युनिकेट करें, आप उनको बताएं ये चीज इस तरह मुझे मतलब रॉन्ग है, आप इसको इस तरह लेके चलें. तो कम्युनिकेशन से, राइट कम्युनिकेशन से रिश्ते बचेंगे. और इसी तरह देखें, रिलेटिव में भी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा हम कहते हैं रिश्ते बचाएं, इसलिए हम चुप रहते हैं, अच्छा इग्नोर करते हैं. हाँ, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा. बट वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो तो ये जो कर रहे होते वो तो यही समझते हैं ना कि हम ठीक कर रहे हैं, मतलब सही है.
1: सही,
0: तो एट दी एंड क्या होता है, आप ये कहते हो यार मैंने तो सबको खुश रखने की कोशिश की, सब कुछ इग्नोर किया, बट मेरा तो रिश्ता कुछ नहीं बचा, मुझे तो छोड़ के चले गए या मेरे अगेंस्ट हो गए सब. तो उसमें मिस्टेक ये होती है कि आपने राइट टाइम पे राइट कम्युनिकेट नहीं किया होता. तो मेरे ख्याल में जी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना चाहिए और सेम टाइम करना चाहिए. और सम टाइम ऐसा होता है, जैसे अभी मैं एक कॉलर का सुन रहा था और आप कम्युनिकेट कर रहे थे कि फैमिलीज के बारे में, जैसे मिसेज हैं या आपकी कंबाइंड सिस्टम में रह रहे होते हैं, तो उसमें भी देखें ना, आप कंबाइंड सिस्टम में रह रहे होते हैं, आपकी मिसेज साथ कुछ हो रहा होता है तो आप कहते हैं आने या चुप रहते हैं, मदर हैं, फादर हैं वो कह सकते हैं, मेरा भाई है वो कुछ कह सकता है, तो रिश्ता बच जाएगा. ऐसे आप वो रिश्ता तो बचा रहे होते हैं, बट क्या होता है कि आपकी अपनी फैमिली डिस्टर्ब हो रही होती है.
1: सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात
0: है जी. तो राइट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि आपको जब लगता है कि ये चीज रॉन्ग हो रही है, चाहे वो आपका कोई भी करीबी रिलेटिव है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, तो आप उस वक्त उसको कम्युनिकेट करें, आप उसको बताएं कि ये चीज रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्टिस करना चाहिए. तो मेरे ख्याल में
1: चुप रहना नहीं चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, आप कह रहे हैं हल्के फुल्के अंदाज में इसे, बट कम्युनिकेट करना, बोल देना, कह देना इज ऑलवेज गुड. हाँ, राइट कम्युनिकेशन इज बेस्ट कम्युनिकेशन, बिल्कुल. और हाँ, वर्ड्स का चुनाव आप कर सकते हैं, कौन से वर्ड्स पिक कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बहुत हार्श हो रहे हैं, बहुत हार्ड हो रहे हैं, या बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की, आप बहुत पोलाइटली भी बात को जो है वो रख सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगी, मैं सभी लिसनर से पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछूंगी आसिफ, कि अपने लिए तो चलिए हम सब बोल देते हैं, हमारे दिल से आती है कि नहीं हमारी बात हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, या हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, हमारी जॉब पे आंच आ रही है, या कोई और हमारी बात है, तो बोलते हैं. लेकिन दूसरे के साथ कभी भी कुछ होता है तो हम जो है वो इतनी जल्दी जज्बाती भी नहीं होते, बोलना भी नहीं चाहते, और एक बहुत ही कॉमन सी लाइन है कि हम क्यों किसी के पचड़े में पड़े, है ना, वो एक चीज आती है. तो आपके साथ भी ऐसा होता है या वहां भी आपको लगता है कि नहीं बोलना चाहिए और आप बोल जाते हैं?
0: देखिए, अगर आप अपने सामने कुछ चीज रॉन्ग होते देख रहे होते हैं, तो अगर आपके कंट्रोल में है वो चीज, मतलब आप देखते हैं कि आप मामला संभाल सकते हैं, तो आपको बोल देना चाहिए. और बोलना इस तरह चाहिए कि आप उन वो मामला जो है ना वो सेटल डाउन करें, मतलब ऑफिस में है या फैमिली में है या कहीं भी आप देख रहे होते हैं कि कोई चीज रॉन्ग हो रही है, इवन कोई अजनबी शख्स किसी दूसरे के साथ कर रहा है, तो आप उस वक्त भी स्टैंड लेना चाहिए और अच्छे अल्फाज चुनाव करके उनसे बोल देना चाहिए और वो सलूशन कुछ ना कुछ निकालना चाहिए. मतलब चुप रहना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होता.
1: चुप रहना नहीं ठीक है, मतलब जिसके साथ भी, अपने साथ हो या दूसरे के साथ हो, बट बोल देना चाहिए.
0: बोल देना चाहिए. अब देखें ना, आप किसी जगह पे हैं, आज उसके साथ हो रहा है, कल आपके साथ हो जाएगा वो चीज, फिर क्या करेंगे?
1: बिल्कुल, तब कोई
0: तो
1: नहीं बोलेगा.
0: ये एक चेन खत्म करनी चाहिए. हाँ, तो आपको मतलब बोलना, और ये तो है ना इस्लाम में भी है कि अगर आप कोई चीज देखते हो बुरी, तो उसको जो है वो ताकत से रोको, ताकत से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोक दो, नहीं तो दिल में बुरा कह दो.
1: दिल में कह दो, बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो मेरे ख्याल में जी आपको एहसास होना चाहिए और कम्युनिकेशन से आपको वो मामला सेटल डाउन करना चाहिए.
1: सेटल डाउन करना चाहिए. वेरी वेल सेड, एक्सीलेंट, बहुत ही कमाल की आपकी कॉल रही इस वक्त, और बहुत ही अच्छा आपने एग्जांपल भी दिया, समझाया भी कि लाइफ में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्दर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई और इशूज जो है बात एस्केलेट ना हो, तो इट्स ऑलवेज गुड टू कम्युनिकेट और अच्छे तरीके से. That is important. Very nice. Thank you so much. Thank you for your call. Thank and thank you for taking out this time. Ki aap humare saath jude.
0: Thank you.
1: Apna khayal rakhiye. Have a nice day. Take care. Bye. Allah Hafiz. तो आज की जो मुझे लगता है कन्वर्सेशन बहुत अच्छी जा रही है, फॉर द सॉलिड रीजन, हर किसी को अलग अलग तरीके से मैंने सिचुएशंस दी, बहुत हल्का हल्का फ़र्क हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी का मानना है कि अगर गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा जो हम, जिसका ताल्लुक हमसे नहीं भी है, बट फिर भी हमें बोल देना चाहिए, हमें

0: थोड़ी बहुत तो आवाज मतलब आवाज इन द सेंस उसके लिए कह देना चाहिए कि हां ये गलत है या ऐसे नहीं करो या रोको या बात जो भी कर सकते हैं आप करिए। तो एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत देर कर दी, वो कहते हैं ना मेहरबान आते आते। आपको कितने लोग याद कर रहे हैं जावेद जी, कब से?
1: अल्लाह पाक सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सब दोस्तों का, अहबाब का, और रेडियो FM 107 के तवस्सुत से जो मोहब्बतें मुझे दे रहे हैं और इसे मैं सदके दिल से कबूल भी कर रहा हूँ और मैं हैट्स ऑफ कर रहा हूँ सबके लिए।
0: और ये भी कह रहे हैं लोग कि आप जो है पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए, सारे लिसनर्स को बुलाइए जितने आपके फ्रेंड्स हैं, और लोग बाकायदा आपको देखना और आपको सुनना चाहेंगे। आप चुप नहीं रह सकेंगे, सुनना ही चाहेंगे आपको।
1: अच्छा ये देखिए ना, एक नासिया पहली बात ये है कि लोगों के जहन में जो खाका बन जाए, पता नहीं वो क्या है, तुरम खाना भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक नॉर्मल मतलब गुनगुना लेता हूँ, मतलब एक होता है बाथरूम सिंगर, एक होता है दीवार के अंदर में वो।
0: जावेद जी आप बाकू सिंगर भी हैं, बाकू में भी जाके आप गुनगुना के आए। ये किस्सा सही है क्या? उस्मान जी ने पूछा है
1: ये उस्मान भाई का। मैं सुन के तो फिर मैं किसी काम से चला गया, मैं शुक्र गुजार हूँ उन्होंने बिल्कुल कहा। मैं लंदन भी गया था, मैं अच्छा। अमेरिका भी गया था, लेकिन मैं पोस्ट बहुत कम चीजें करता हूँ अपनी, क्योंकि ड्यू टू माय जॉब मैं नहीं कर पाता हूँ उनको सोशल मीडिया पे। तो बाकी मोहब्बत है उस्मान भाई की। और रही बात दावत या पार्टी की, तो जहाँ पर मेरे दोस्त जितने भी लोग हैं, जहाँ पर ये जिस चीज पे कहेंगे, जहाँ कहेंगे, इनकी चॉइस है। आई एम इन देयर सर्विस, मैं हाजिर हूँ।
0: गावा जी डिसाइड कर लीजिए, बताइएगा जल्दी। गावा जी आपसे जो है ना ये पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि बस मैं डिसाइड करके बताता हूँ और फिर एक जो है वो एक मुलाकात जरूरी है आपके साथ,
1: इंशाल्लाह
0: आपके लिसनर्स।
1: बिल्कुल नहीं, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी मुलाकातें हमारी बल्कि होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, राबते होने चाहिए। राबते ही इंसानों की एक दूसरे से, देखें क्या राबता, मतलब एक FM 107 के तवस्सुत से आप यकीन करें कि अगर हम अपने ओवरऑल इर्द गिर्द देखें या कुछ भी है, हमें जो मोहब्बतें, जो अखलाक, जो प्यार, जो अल्फाज मिलते हैं, उससे हट के जो हमें यहाँ मिल रहा है ना, इतना प्यारा रिश्ता बना है और हमने देखा नहीं एक दूसरे को, लेकिन इस रिश्ते का मेरे ख्याल से को मैं नाम भी नहीं सेट कर सकता, इतना यूनिक है।
0: और अच्छा भी लगता है हम लोग एक दूसरे को, हमने मैंने खैर आपको देखा है, मैं आपसे मिली हूँ, ये तो मैं तो कह सकती हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे को उन्होंने ना देखा कभी, ना एक दूसरे को पहचानते हैं ना देखते, बट एक हम लोग के जहन में एक इमेज बन जाती है जब हम बात कर रहे होते हैं ना किसी से, कुछ ना कुछ पिक्चर पोर्ट्रेट हम कर लेते हैं अपने जहन में कि हाँ ये बंदा इस तरह का होगा। और इत्तेफाक से जो भी पिक्चर मैंने जब जब पोर्ट्रेट की, वो बंदा बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। अब सोचिए मैं कितनी गलत पिक्चर पोर्ट्रेट करती हूँ।
1: वो ठीक है, मतलब आप
0: कभी वो वैसी आप शक्ल का नहीं हो जैसे मैं सोचती थी, ऐसे है वो, मैं तो कुछ और सोच रही थी।
1: अच्छा बहरहाल मतलब है कि जिस तरह आपने कहा आते ही मुझे, मतलब ये जो मुझ पे ये जो निस्तर चले हैं कि मेहरबान आते आते देर कर दी, तो आप ना एक प्रोग्राम शाम को भी शुरू करें। वो मेहरबान बेचारा डेढ़ घंटे से मोबाइल पकड़े घूम रहा है गाड़ी में।
0: हाँ डेढ़ घंटे से आप कॉल कर रहे हैं। I'm really sorry, मुझे नहीं पता था। तो ऐसे में आप, मैं अपने सारे लिसनर्स से यही कहती हूँ कि कभी भी ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर दिया कीजिए। लेकिन आपने कहा ना कि वो भी आपके पास टाइम नहीं होता है, तो बस
1: टाइम है लेकिन मेरी लोकेशन का पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखिए उस्मान साहब की बात मैं सुन रहा था तो वेरी नेक्स्ट सेकंड मैं चला गया किसी जगह पर, इसलिए फिर पता नहीं चलता मेरा। बहरहाल मैं आपके आज बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत जिंदगी के रियलिटी के ऊपर ये मुनस्सर है जो आज आपका टॉपिक है, और सारे लिसनर्स ने जो कहा है कुछ नहीं बाकी बचता मेरे पास रहने या बोलने के लिए, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जहाँ पर हक और सच की बात हो वहां पर डट के इंसान को बोलना भी चाहिए, और जो गलत है गलत कहना भी चाहिए। लेकिन जिंदगी में नाजिया बहुत सी चीजें ऐसी मिलती हैं, जब आप किसी के हक में बात करते हैं, किसी के बारे में किसी से लड़ पड़ते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो कल को वही दो लोग एक साथ आपको बाहर निकाल फेंकते हैं। दिस इज रियलिटी आल्सो।
0: बिल्कुल सही,
1: यानी कि जिसके हक में आपने बात की है वही आपके खिलाफ हो जाता है, और जिसने बात की है वो उसके साथ खड़ा होता है। ये भी जिंदगी की हकीकतें हम देख चुके हैं।
0: सच बात है, बिल्कुल सही काम। हाँ तो ऐसे में इसीलिए हम लोग शायद नहीं बोलते ना।

0: नहीं, ये फिर इंसान देखे बोल बोल के आदमी फिर सोचता है कि यार मेरे बोलने से बल्कि मेरा ही नुकसान हो रहा है, तो बेहतर है कि यार इनको अपना आपस में जो भी इन्होंने सर्वर फाड़ना है फाड़ने दो, बाद में हाल पूछ लेंगे हम इनका, नो प्रॉब्लम. तो ये एक रियलिटी है. बाकी अगर हक की बात है तो या किसी के जुल्म के बारे में नहीं खामोश रहना चाहिए, और हिकमत और एतमाद के साथ अपने मौकफ को पेश करना चाहिए, लेकिन उसके लिए तीन बातों को हमेशा ज़ेरे वो रखना चाहिए. और सबसे पहले अपनी जात से ये बंदा सवाल पूछे कि यार मैं जब किसी के हक में बात करने लगा हूं तो क्या मेरी बात से मसला हल होगा या बढ़ेगा, नंबर वन. नंबर टू, क्या ये सही वक्त है या आपका अंदाज बात करने का सही है, नंबर टू. और अगर मैं खामोश रहा तो क्या किसी अहम हक या इंसाफ का नुकसान होगा. ये तीन क्वेश्चन मेरे जहन में भी आए थे ये सारी बातों को सुनकर.
1: बहुत सही कहा, बहुत सही, जबरदस्त. और ये सारी चीजें हमारे जहन में हाँ होनी चाहिए. बहुत ही अच्छी बात की.
0: बस मैं लंबी कॉल नहीं करूंगा क्योंकि टाइम आपकी भी, मेरी कोशिश रहती है कि जितने ज्यादा हमें पॉइंट्स मिलते हैं उतनी हमारी डिक्शनरी में हमारी इल्म में इजाफा होता रहता है. और ये सारा क्रेडिट आप पूरी टीम और आपको जाता है, माशाल्लाह
1: हमारे लिसनर्स को जाता है कि इतने अच्छे अच्छे लिसनर्स हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी बात कर पाते हैं, रख पाते हैं, ऑन स्पॉट होते हैं. जबकि सारी चीज़ें ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ऐसा प्रिपरेशन के साथ आता हो, लेकिन आप देखिए आप लोग कितना अच्छा ऑन स्पॉट बोल लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है. सो रियली हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा लगता है.
0: बहुत शुक्रिया नाजिया. देखिए कल ना आपकी बात वो रह गई थी मेरी, जब आपने कहा कि लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे हैं फ्रेश जहन के साथ और उनका एक्टिव दिमाग, तो मैं अकेला गाड़ी चलाते हंस पड़ा. मैंने कहा एक्टिव दिमाग तो तब होता है जब नाजिया कोई टॉपिक लेके आती है, तब दौड़ लगती है हमारी. उससे पहले रिलैक्स होते हैं हम, बिल्कुल
1: हम रिलैक्स होते हैं. चलिए ये भी अच्छा है कि एक तरह की ब्रेन एक्सरसाइज है आपकी और हमारी. हम लोग सोचते तो रहते हैं ना कि और क्या पॉइंट, और क्या नया लाए, और क्या लाए. और मुझ पे तो सबसे ज्यादा चैलेंज होता है क्योंकि आप सब सब कुछ बता चुके होते हैं. अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या बोलूंगी एक्स्ट्रा और एडिशनल, तो मैं वही चीज़ें रिवाइज करा देती हूँ कि चलो हम सबको एक क्विक एक चीज़ें याद हो जाएं, वापस से इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. जस्ट दैट. बट थैंक यू वंस अगेन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वॉकिंग टू यू, एंड इंशाल्लाह आगे आपसे जल्द मुलाकात होगी. यहाँ पे शहजादा जी आपको बाकायदा कह रहे हैं कि हाँ जावेद भाई फ्राइडे फ्राइडे में रखिए मुलाकात, ऐसा कुछ बोल रहे हैं.
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर रखेंगे, जरूर. शहजादा तो शहजादा भाई हैं हमारे, जरूर रखेंगे
1: इंशाल्लाह. चलिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. Alright, तो यहाँ हमारे साथ फाइनली मैं कह सकती हूँ इस टॉपिक पे बहुत ही अमेजिंग सी कॉल, और एक बहुत ही अच्छी सी कॉल जिसने इस टॉपिक को काफ़ी हद तक कंक्लूड भी कर दिया. और जैसे मैंने कहा मैं रिपीट करूँगी, आप में से सारे लोग इतना कुछ बोलते हैं, इतना अच्छा बोल चुके हैं कि मेरे पास एक्चुअली मेरे पास कुछ नहीं रहता. आज मैं आपसे बोल ये रही थी कि क्या ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बोलना या चुप रहना, या कब बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कब चुप रह जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप सब ने यूनानिमसली कहा कि बहुत सारी सिचुएशंस हैं और ये दोनों चीज़ें उन पर एप्लीकेबल होती हैं कि कहाँ हमें चुप रहना है, कहाँ हमें बोलना है. बहुत सारी जगह बहुत सारी सिचुएशंस में हमारा बोलना इट्स क्वाइट मैंडेटरी, तो हमें बोलना ही बोलना चाहिए. जैसे किसी के अगर आपके बोलने से मदद हो सकती है तो डेफिनेटली आप बोलिए. जैसे कोई नाइंसाफ़ी रुक सकती है आपके बोलने से, किसी के साथ जो है वो जस्टिस हो सकता है, तो आप डेफिनेटली बोलिए. कोई गलत फहमी है और आपके बोल देने से वो दूर हो सकती है, तो ऐसे में आप डेफिनेटली बोलिए. अपने हक के लिए बात करना अच्छे तरीके से करना चाहिए, यहाँ भी आपको बोलना चाहिए, यहाँ पे आपको चुप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बात कीजिए. कहीं आपके बोलने से किसी को जो है वो हिम्मत मिल सकती है, यू नो उसको थोड़ा बेहतर फील हो सकता है, तो बोल देना चाहिए. ये वो सिचुएशन है जहाँ बोलना चाहिए, दिल की बात सामने रखना अच्छे तरीके से बहुत सारे मसलों को जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व भी कर देता है, बहुत सारे सिचुएशन जो है वो सॉल्व हो जाती हैं. लेकिन हाँ कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ आपको चुप रहना चाहिए, कुछ सिचुएशन में आपको चुप रहना ही चाहिए. जैसे आप लोगों ने भी कहा अगर गुस्से में है आप बहुत ज़्यादा, भले से आप हक पे हैं लेकिन गुस्से में हैं, तो ऐसे में वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए खामोश ही रहिए या कुछ घंटों के लिए खामोश रहिए, क्योंकि आपकी जो गुस्से में आपने बात बोली उससे आपका भी नुकसान हो सकता है, सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है. तो यहाँ चुप रहना बहुत ज़रूरी है. वहीं तब चुप रह जाइए जब आपको लग रहा है कि आपके बोल जाने से रिश्ता जो है वो कमज़ोर हो सकता है या टूट सकता है. तो ऐसे में लिहाज करना, चुप हो जाना, वक्ती चुप हो जाना, फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है रिश्तों में भी, लेकिन वक्ती चुप हो जाना बेहतर है. कभी लोग आपको, आपकी बात को गलत समझ रहे हैं और आप उन्हें बहुत समझा रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपके साथ मिसबिहेव करने पे उतारू हो जाता है. तो ऐसे में हट जाना, यहाँ पे मैं चुप रहना नहीं कहूँगी, हट जाना बहुत ज़रूरी है. इस सिचुएशन से बच जाना, हट जाना आपके लिए ज़रूरी है. हर शख्स के सामने अपनी बात कहना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी बात को गलत तरीके से सामने पेश कर देते हैं. तो ये भी आपको बहुत सोच समझ के ध्यान से देखना है, अपनी सराउंडिंग्स को देखना है कि कहाँ मैं कौन सी बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ. क्या यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो मेरी बात को गलत तरीके से जो है वो तोड़ मरोड़ के मैनिपुलेटिव वे में आगे रख सकता है. वहाँ अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा शख्स है यहाँ पर इस आसपास है, तो वहाँ चुप रह जाना बहुत ज़रूरी है. देखिए, हर इंसान जो है वो ना तो हमेशा चुप रह सकता है, ना ही हमेशा वो बोल सकता है, लेकिन बोलना और चुप रहना, इनमें गुड बैलेंस क्रिएट करना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और हाँ, आप लोग इतना कुछ बोल ही चुके हैं. हमारे साथ एक कॉलर जुड़े आसिफ, उन्होंने कहा कि राइट कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन. तो राइट कम्युनिकेशन मैं भी कहूँगी बहुत बहुत ज़रूरी है. और आखिर में जो मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगी वो इसी बात से करना चाहूँगी कि जब जज्बात कंट्रोल में ना हो, खामोश रहना बेहतर है. जब हक, इंसाफ या किसी की भलाई का सवाल हो, तो बोलना बेहतर है. इन चीज़ों में, इन दोनों सिचुएशंस में आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि हाँ, मुझे कब बोलना है और कब चुप रहना है. हर बात का जवाब वर्ड्स नहीं होते, हर बात का जवाब जो है वो अल्फाज नहीं होते, और हर खामोशी जो है वो कमज़ोरी नहीं होती. कई बार खामोशी ही आपकी जीत और आपकी ताकत होती है. असल हिकमत ये है कि हमें पता हो कब बोलना है और कब सिर्फ मुस्कुरा कर हट जाना है. चलिए, मैं भी मुस्कुरा के यहाँ इस टॉपिक से निकल लेती हूँ. अब जो है वापस आएंगे तो सीधा आपकी और मेरी मुलाकात होगी हमारे गेम सेगमेंट में. अभी के लिए शिल्पा राव, सचिन टंडन की आवाज़ और ये गाना, और हम और आप और सम मॉर्निंग्स.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर द टाइम चेक। और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:02 मिनट।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: जी दोस्तों, तुलसी कुमार की आवाज़ में बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक अरिजीत सिंह का साथ। और कभी कभी हम सोच ही नहीं पाते हैं कि ये बात हम बोल सकते हैं और हम एक्चुअली में चुप ही रह जाते हैं।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: वेलकम बैक गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ 8:12 ऑन द क्लॉक। और अब हम फाइनली अपने गेम सेगमेंट में आ चुके हैं। पहला गेम सेगमेंट हमारा होता है हमारे व्हाट्सएप लिसनर्स के लिए, मतलब जो लोग जो है कॉल नहीं कर पाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका हमारा रब्ता रहता है व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। तो आज का जो हमारा कॉन्टेस्ट है उसमें आपको एक बहुत ही कामयाब लिरिसिस्ट को पहचानना है। बिल्कुल, ये जो लिरिसिस्ट है ना, ये बड़े कामयाब हुए, लेकिन उससे पहले इनकी कहानी भी ना बोलना और ना बोलने के बीच फंसी रही। चुप रहूं कि बोलूं? पेरेंट्स जो थे, यानी जो इनके वालदैन थे, वो नहीं चाहते थे कि ये फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें। और ये किस्सा है, आप समझ लीजिए, 1930 के आसपास का, इट्स क्विट लॉन्ग बैक, या 1947 के आसपास समझ लीजिए, मतलब बहुत पुरानी बात है। तो उस टाइम जो था इतना क्रेज नहीं होता था, लोग मतलब फिल्म इंडस्ट्री में गाने वाने देखते थे, बट ये नहीं पसंद करते थे कि उनकी फैमिली का कोई बंदा या बंदी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करे। उस निगाह से नहीं देखा जाता, तो इतना रिस्पेक्टेबल जो था ये इंडस्ट्री उस तरह से नहीं मानी जाती थी। तो लिहाजा इन्हें अपने पेरेंट्स से बोलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इन्हें लगा कि वालिद साहब से बोलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चुप रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। अगर मैं नहीं बोला और चुप रहा तो शायद मैं घुट घुट के शायद मैं जी ही ना पाऊँ। तो आखिर में अपने वालिद से इन्होंने नहीं बोला, जैसे आप लोगों ने कहा राइट कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट कम्युनिकेशन, किससे बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सारी चीज़ें हमें पता हो। तो इन्होंने अपने बाकायदा दोस्त को भिजवाया और उन्होंने इतने अच्छे अंदाज में बात रखी, ये कहा कि ये जाएंगे मुंबई, उस टाइम के बॉम्बे, और घूमेंगे, देखेंगे, कुछ दिन मैं भी साथ जाऊंगा और फिर हम दोनों वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से कहा गया था कि कुछ ही दिन के लिए जाएंगे, देखेंगे, घूमेंगे, वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये सिचुएशन इसलिए भी वर्स्ट और हो रही थी क्योंकि इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, मतलब ये जो लिरिसिस्ट थे ये सरकारी जॉब कर रहे थे। अब अच्छी खासी ठीक ठाक सरकारी जॉब किसी को उस जमाने में मिल जाए और वो छोड़ के स्ट्रगल करने की तरफ जाए, तो कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे, कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो तैयार हो जाएंगे। तो बस यही सिचुएशन इनके सामने भी थी, माँ बाप बिल्कुल तैयार नहीं थे, ये ठीक ठाक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और वो ये नहीं चाहते थे कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़ कर इधर उधर जो है वो भटके। अब मैं आपको बताऊं कि इस लिरिसिस्ट की ये इनकी पैदाइश, अगेन इंडिया से इनका ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में ये पैदा हुए और यहाँ पर पैदा होने के बाद बचपन से ही इनका खास लगाव था उर्दू को लेकर। इन्होंने उर्दू पढ़ी, पर्शियन पढ़ी और फिर अरबिक भी सीखी और हाँ हिंदी की तालीम भी हासिल की। शायरी का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक था और ये स्कूल डेज से ही इनका शौक जो था वो स्टार्ट हो गया था। और एक वक्त वो भी आया कि जब इन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया तो ये बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाते थे मुशायरों में पार्टिसिपेट करने के लिए और इन्हें बुलाया जाता था। अब देखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जॉब भी इनको मिल गई थी, ठीक ठाक पढ़ाई भी कर ली, लेकिन ये जो ज़िद थी कि ना मुझे मुंबई जाना है, उस वक्त की बॉम्बे, वो अलग ही कहानी थी। अब ये अपने दोस्त के साथ आज की मुंबई, उस टाइम की बॉम्बे लैंड हुए। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री तो चाहते थे, लेकिन आपको पता है कि कभी भी ये एंट्री उतनी आसान तो रहती नहीं, नो एंट्री से एंट्री लेनी पड़ती है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन रही इनकी लाइफ में, लेकिन किस्मत जो थी वो इनका साथ दे रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी पहली फिल्म आई और वो पहली फिल्म ही जो इन्हें मिली वो एक इत्तेफाक था। एक इत्तेफाक से एक राइटर के साथ इनका कनेक्शन बना, उस राइटर के थ्रू डायरेक्टर के साथ इनका कनेक्शन बना और उस डायरेक्टर को भी तलाश थी एक फ्रेश लिरिसिस्ट की, एक ऐसे लिरिसिस्ट की जिनके कलम में एक दर्द हो। और फिर इन्होंने जो अपनी राइटिंग्स थी या अपनी जो पोइट्रीज थी वो दिखाई, जो कि बहुत इम्प्रेसिव थी।

बस इनकी उन पोएट्रीज को पढ़कर सुनकर इतने इंप्रेस हुए डायरेक्टर के एक बार में ही इनको हाँ कह दिया गया और वो फिल्म जिसने इन्हें इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया इनकी पहली फिल्म उसका नाम भी इत्तेफाक से दर्द था और इस दर्द के साथ ये जो थे वो कामयाब हुए इनकी जोड़ी मैं आपको बताऊं एक बहुत ही मशहूर म्यूजिक कंपोजर नौशाद जी के साथ सेट हुई और इन दोनों ने मिलकर बेशुमार हिट गाने दिए उस वक्त मुगले आजम रिलीज हुई उसमें इन्होंने गाने लिखे मदर इंडिया के लिए इन्होंने गाने लिखे बैजू बावरा मूवी के लिए इन्होंने गाने लिखे फिर मूवी आई थी मेरे महबूब उस मूवी के लिए भी इन्होंने यादगार गाने लिखे और मेरे महबूब की शूटिंग तो अलीगढ़ में हुई और कहा जाता है कि ये लिरिसिस्ट खुद पूरी क्रू पूरी टीम को लेकर अलीगढ़ पहुंचे वहां सारा सेटअप कराया और सारी चीजें बताते रहे तो इन्होंने बैक टू बैक काफी हिट मूवीज दी और इनकी जोड़ी नौशाद जी के साथ इतनी हिट हुई कि उस टाइम कॉन्सर्ट्स बहुत कम होते थे बहुत रेयर होते थे लेकिन ये अक्सर शेर पढ़ने के लिए कॉन्सर्ट्स में साथ में ट्रैवल करते थे हालांकि सिंगर्स जाते हैं और बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है लेकिन ये वाहिद इस तरह के लिरिसिस्ट थे जो बकायदा ट्रैवल करते थे और एक चीज मैं आपको बताऊं कि इन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले जो अपने आप में उस वक्त उसके उस टाइम में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी था और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो लास्ट में आपके लिए हिंट मैंने रखा है वो ये कि आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है तो बस अब आपको मुझे ये बताना है कि ये मैं किस लिरिसिस्ट के बारे में बात कर रही हूँ मूवी की मैंने आपको हिंट दे दी बहुत सारी मूवीज में इन्होंने काम किया है नौशाद जी के साथ मिलकर इन्होंने मुगले आजम के लिए गाने लिखे मदर इंडिया के लिए लिखे बैजू बावरा के लिए लिखे फिर मेरे महबूब ये सारे मूवीज के लिए इन्होंने गाने लिखे इसके अलावा अगर पर्टिकुलरली मैं इनके कुछ गानों को हाईलाइट करूं तो चौदहवीं का चांद जो 1960 में मूवी आई थी टाइटल ट्रैक वो काफी पसंद किया गया था और उस टाइम का एक सुपर डुपर ट्रैक भी था वहीं मुगले आजम का एक गाना प्यार किया तो डरना क्या बहुत ज्यादा हिट हुआ जिसे अगेन आपने ही लिखा था इसके अलावा कोहिनूर मूवी जो 1960 में आई थी मधुबन में राधिका नाची ये गाना भी इनका बहुत ज्यादा हिट हुआ था फिर मेरे महबूब जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे महबूब का टाइटल ट्रैक भी इन्होंने ही लिखा था वहीं एक मूवी थी घराना इस मूवी के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था और ये गाना था हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं तो बस अब आपको मुझे ये बताना है कि ये मैं किस लिरिसिस्ट के बारे में बात कर रही हूँ और आज यानी 3rd of August को इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है तो इन्हें हल्के फुल्के अंदाज में याद करते हुए आपसे जानना ये है कि ये भाई कौन से लिरिसिस्ट हैं कुछ लोगों ने यहाँ पे सही से जवाब देना स्टार्ट कर दिया है ओहो फोन नंबर थैंक्स और नफीस शहजादा जी सलाम कहते हैं तौफीक जी आज तो पराठों के साथ साथ ब्रेड भी आपने रख रखी है क्या बात है ये तो बहुत अच्छा चीज़ वीज सारी चीज़ें हैं इन्होंने सारा अपना इंतज़ाम जो है मुझे दिखाया यहाँ मुझे सलाम किसी ने भेजा था हिशाम है हिशाम सो सॉरी आपका सलाम मैं अब लेट ले रही हूँ थैंक यू सो मच जावेद साहब बाकू वाले हैं ये बताएं ये मैंने उनसे पूछा उन्होंने तो बहुत कुछ मुझे बताया कि वो लंदन भी गया अभी जब मिलेंगे ना तो आपको अच्छे से ये सारी डिटेल में बताएंगे सलाम कहते हैं खैरियत और सभी सुनने वालों को सलाम यहाँ पे कहा है इनका नाम मोबाइल इनका नाम तो इन्होंने लिखा ही नहीं है सलाम आसिफ है शायद ओके यहाँ पर सही जवाब हमें मिलना शुरू हो गया है मोहम्मद यूसुफ जी ने सलाम कहा है सम मॉर्निंग्स में वेलकम कहते हैं और सिचुएशन के हवाले से भी आपने बताया है और आज जो हमने सवाल पूछा उसका सबसे पहला सही जवाब जो है मोहम्मद यूसुफ जी का बिल्कुल सही आपने पहचाना अच्छा कोई कह रहा है गुलजार साहब इमरान जी नहीं गुलजार जी तो नहीं है ये मजरू सुल्तानपुरी भी नहीं है प्रिंस इन आपकी नॉलेज तो बहुत सॉलिड है यहाँ पे शहजादा जी ने भी मजरू सुल्तानपुरी कहा है तो ये भी नहीं है एंड IG फाइनेंस कंपनी का नाम है इनका नाम नहीं है 950 है लास्ट में बट आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इट्स एब्सोल्युटली द राइट आंसर एंड ये कोई बंदा है जो हमेशा सही जवाब दे रहा है शेख अली जी
ऊपर भी इनके सारे जवाब सही आ रहे हैं और आज भी इन्होंने सही दिया है. क्वेश्चन क्या है राज, आपने बहुत लेट एंट्री की है. चलिए फिर भी मैं आपको हिंट देती हूँ. आज का जो हमारा सवाल है वो मैं आपको बता देती हूँ. आज हमने जो कहानी रिसाइट की वो एक ऐसे लिरिसिस्ट की है जिनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में हुई और इनके नाम के साथ इनके शहर का नाम भी जुड़ा हुआ है. आज देखा जाए तो इनकी 3 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी भी होती है. जैसे मैंने बताया कि ये एक बहुत ही मकबूल शायर थे. इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिले उस ज़माने में जब बहुत रेयर होता था. इन्होंने बहुत सारी कमाल धमाल की मूवीज़ में जो है वो बहुत ही सुपर डुपर हिट गाने दिए जिनमें मुगले आज़म है, मदर इंडिया है, बैजू बावरा है, मेरे महबूब है, ये सारी मूवीज़. और अगर इनके सॉन्ग्स की मैं बात करूँ जो बहुत ज़्यादा हिट हुए उनमें सॉन्ग्स में है चौदहवीं का चांद हो, प्यार किया तो डरना क्या मुगले आज़म मूवी से, मधुबन में राधिका नाचे और हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कहीं दीप जले कहीं दिल. तो ये कुछ गाने इनके जो थे वो बहुत ज़्यादा हिट हुए थे. एंड ऑफ कोर्स टाइटल ट्रैक ऑफ मेरे महबूब. तो अब आपको मुझे ये बताना है कि आज ये हम किस लिरिसिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. वैसे मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि भाई इनकी आज ना बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो ये भी कहानी मैंने आपको बता ही दी है. अब थोड़ा सा आपको अपना जो है वो जहन घुमाना है और मुझे बताना है कि ये किस लिरिसिस्ट के बारे में बात हो रही है. वापस आएंगे तो आज का हमारा जो गेम है वो आपके साथ शुरू कर देंगे. आज थोड़ा हम जल्दी करेंगे, है ना, पक्का बिल्कुल.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

मैं आपसे नाराज हूँ, उनता से क्यों, क्यों ऐसा क्यों है? शायद आप इसलिए नाराज है मैंने वो गाना आपकी बेटी के लिए जो था वो नहीं चलाया, हाँ, या कोई और बात है? चलिए आप मुझे बताइए प्लीज, और मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि आपकी नाराजगी जो है मैं दूर करूं। ये राज ने आप सही जवाब दे दिया, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पर एक कोई और बंदा है, इन्होंने वॉइस नोट भेजा है। अच्छा ये मुझे बता, शहजादा जी कह रहे हैं खयाम, नहीं नहीं नहीं शहजादा जी, उनके नाम में जो है उनका शहर उसका नाम भी लगा है, और वो जो है वो बदायूं से उनका ताल्लुक है। तो आपके लिए थोड़ा सा मैंने और आसान किया, अब मुझे बताइए अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। खयाम जी नहीं है यहाँ पर, किसी ने लिख कर भेजा है, नहीं नहीं मशहूर सुल्तानपुरी तो नहीं है, गुलजार साहब भी नहीं है, आमिर कहते हैं दान नहीं, गुलजार जी नहीं है। अब तो बहुत बड़ा है तो मैंने आपको दे ही दिया, अब तो क्या ही बचा है, तो मेरा नाम लेना ही बचा है क्योंकि अब हम गेम की तरफ भी आने वाले हैं। तो ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता देती हूँ, जब तक आपके पास थोड़ा सा टाइम आओ सोचिए, इनके नाम के आगे इनके शहर बदायूं का भी नाम लगता है। तो अब आपको मुझे बताना है कि ये जो है वो कैसे लिरिसिस्ट है, मुगले आजम मूवी, मेरे महबूब मूवी, मतलब पुरानी पुरानी मूवी है, बहुत पुराने लिरिसिस्ट हैं। आज उनकी बेसिकली जो है वो बर्थ एनिवर्सरी भी है, तो बस इसीलिए मैंने कहा चलो याद कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अच्छा चलिए इसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन या और अपडेट्स आप तक पहुँचाएँ। तो सबसे पहले इट इज़ अबाउट मित्राश ऐप, जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी रिपोर्टिंग सर्विस स्टार्ट हुई है। आपको बताते हैं कि कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने याद दिलाया है कि मित्राश ऐप के जरिए लोग अब जो है वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से क्रिमिनल एगेशन डिपार्टमेंट को सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। जी हाँ, इस सर्विस का मकसद है कि पब्लिक सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाए और अथॉरिटीज को तेजी से रिस्पॉन्स देने में मदद मिले। अगर किसी को कोई सस्पिशियस व्हीकल दिखता है, कोई सस्पिशियस इंसान दिख रहा है, कोई सस्पिशियस रेजिडेंस है, या कोई और एस्टैब्लिशमेंट है, या किसी तरह की कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी है जो आप देख रहे हैं, तो अब आपको चुप नहीं रहना है, मतलब उसके बारे में जो है वो मालूमात देनी है, इन्फॉर्म करना है, और वो भी आप मित्राश ऐप के जरिए जो है रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, टू घर बैठे बैठे या जहाँ से भी आप करना चाहते हैं, तो घर बैठ के भी आप कर सकते हैं। सर्विस जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, आपका नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं होगा, और साथ ही पब्लिक और अथॉरिटीज के बीच एक कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। तो MOI का ये भी वाज़े तौर पे कहा है कि सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटीज की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, दिखती है, समझ में आती है, तो जरूर रिपोर्ट कीजिए। इसके अलावा दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी, कतर गुडविल फेस्टिवल जो है वो अब एंड गया। 5 दिनों तक ये फेस्टिवल जारी रहा, जहां पर वर्ल्ड क्लास हॉर्स रेसिंग फेस्टिवल में दुनिया भर के बेहतरीन हॉर्सेस और जॉकीज ने हिस्सा लिया। यहां पर इस फेस्टिवल के दौरान कतर ने, जो कि यूके में हुआ, कतर ने यूके के लोगों को कतर की हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताया, कल्चर के बारे में भी बताया गया, टूरिज्म अट्रैक्शन के भी लोगों को जो है मुतारिफ किया गया, और वर्ल्ड क्लास हॉर्स रेसिंग तो हुई, कतर के कल्चर को जानने का मौका मिला, हॉस्पिटैलिटी को जानने का मौका मिला, और कतर और यूके के दरमियान रिलेशनशिप को भी मजबूत करने का मौका मिला। कह सकती हूँ कि ये जो स्पॉट है वो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं कतर के ग्लोबल प्रेजेंस और यू नो कल्चरल डिप्लोमेसी को बढ़ाने का भी बहुत खूबसूरत मौका मिला इस फेस्टिवल के थ्रू। इसके अलावा कतर कैलेंडर ने पूरे अगस्त महीने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो अनाउंस की हैं, जिनमें फैमिलीज़ के लिए हैं समर कैंप्स, जिन्हें आप इंजॉय सकते हैं फैमिली के साथ, वह शॉपिंग और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ भी लाइनअप हैं, जिनमें है हाला समर मॉल एक्टिवेशन, कलर वर्ल्ड सीरीज जो 18 में चल रहा है जो मैंने बताया था आपको, वहीं दोहा शॉपिंग सीजन 2026। तो ये होने के साथ साथ मॉल्स में बैक टू स्कूल एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी, जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइनअप की गई हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करूँ तो बीट टेटनस सीरीज ये हो जाएगी, PSG अकेडमी समर कैंप रहेगा, लेडीज ट्रैक चैलेंज होगा, और वॉलीबॉल बॉयज अंडर 17 कप चैंपियनशिप भी स्टार्ट होगी। इसके अलावा जो है वो रन द डोम 2026 ये सीरीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं अगर आर्ट कल्चर की बात जाए तो ऑफ कोर्स एग्जीबिशन बाय कतर म्यूजियम हो जाएगी, और

0: और एक प्रोजेक्ट है म्यूजियम का जो कि है ऑटो म्यूजियम ऑटो, इस पर भी काम जारी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अगस्त ये भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कह ये सकते हैं कि अगस्त मंथ में बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज है, राइट फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू आर्ट टू स्पोर्ट्स टू बैक टू एक्टिवेशन टू फैमिलीज, सबके लिए कुछ है। तो समर्स जो है वो इतने ज्यादा बोरिंग नहीं है, क्योंकि कतर जो है वो इन समर सीजन को एक्साइटिंग बनाए हुए है। तो बस ये कुछ मेरे पास अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अब फाइनली आ जाते हैं अपने गेम की तरफ। तो आज मैंने सोचा कि भाई मूवीज को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, क्योंकि कुछ लोग मूवी बता पाते हैं कुछ लोग नहीं बता पाते। अब कल ऐसा होता है कि कुछ लोग अमिताभ की याद आ रही, किसी को दारू की याद आ रही, किसी को किसी की याद आ रही। तो ऐसे अब हमने सोचा है कि हम आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स का टाइम तो देंगे, लेकिन इसमें मूवी नहीं पूछेंगे। कभी हम आपसे कोई फ्रूट के लिए कह सकते हैं कि फलों के नाम बता दीजिए जितने आपको याद आते हैं, बस 10 सेकेंड्स ही रखें, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखें, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। 10 सेकेंड जितना क्रिस्प रहेगा, जितना अच्छा आप सोच पाएंगे, यू नो थिंकिंग ऑन योर टोज, ये है ये गेम। आपने ना कहीं मौका दे रहा है कि आप सोचिए एंड आगे। तो यहाँ मैं चाहूँगी कि प्रिंस हो, चाहे यूसुफ जी हो, चाहे राज हो, ये जितने भी हमारे सुपर डुपर कमाल के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। आप सिर्फ बॉलीवुड या फिर मूवी या फिर गानों से रिलेटेड ही अगर गेम होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना है और पार्टिसिपेशन के लिए आपको कॉल करने के लिए नंबर है 3443 77। बहुत ही सिंपल आज का गेम है। 10 सेकेंड्स आपको दिए जा रहे हैं, 10 सेकेंड्स में जितने ज्यादा, जैसे कभी मैं फलों के नाम, कभी मैं स्ट्रीट्स के नाम पूछ सकती हूँ कतर में, यहाँ के नाम पूछ सकती, कभी खाने के डिशेस का भी नाम आपके लिए हो, तो वो आपको बता रहे हैं। टाइम आप जानते ही है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स के, जैसे कि 4, 5, 5, 6, 3 चार जितना भी स्कोर करें उसी में हमें विनर मिल जाएगा। तो ये आसान हो गया, आई होप क्लियर भी मैंने कर दिया है। और अब बारी है आपकी कि आप हिम्मत करें और सामने आए, कॉल करें। कॉल करने के लिए आपको नंबर मैं बताती हूँ, 666 पे मुझे हाई हेलो लिखकर भेज सके, और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो 666-22-107 पे मुझे मैसेज की, सो दैट आई विल गेट टू नो कि आप खेलना चाहते हैं तो मैं आपको कॉल मिलाऊंगी। अगर आप डायरेक्टली मिला रहे हैं तो क्या ही बात है, नंबर आपको पता है 4434377। ठीक है, अब हम जो हैं आज के हमारे जो जिन लिरिसिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम भी बता देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सही सही जो पहचान लिया है वो है शकील बदायूनी। ऑनेस्टली इन्होंने बोला है कि हाँ शकील बदायूनी का नाम मैंने भी गूगल नहीं किया, मैंने भी इधर उधर से नहीं पूछा बच्चा। तो प्रिंस एंड हैट्स ऑफ, आप लाल धमाल के हैं, आप पहचान गए, क्या बात है। तो शकील बदायूनी इज़ द राइट आंसर। मुझे लगा कि इनकी स्टोरी भी हमारे टॉपिक के साथ रिलेट भी कर रही है और आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो चलिए इन्हें याद कर लिया जाए। इसके साथ यहाँ पे एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। अरे चले गए क्या, चलिए चलो दूसरे कॉलर आ गए, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाय गुड मॉर्निंग, कौन है मेरे साथ?
1: हाय गुड मॉर्निंग,
0: वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम?
1: जी मेरा नाम समीर है।
0: समीर, कैसे हैं आप समीर?
1: या आप?
0: ओके, तो मैं आपके साथ गेम खेलवाऊं, गेम खेलने के लिए तैयार है क्या?
1: बिल्कुल तैयार हूँ मैं।
0: ठीक है, 10 सेकेंड्स आपको दिए जाएंगे, आपके लिए है फ्रूट्स के नाम, फलों के नाम आपको 10 सेकेंड्स में बताने हैं।
1: अच्छा ठीक है,
0: ठीक है, जितने फलों के नाम आप बता सकते हैं 10 सेकेंड्स में वो आप बताइएगा। ठीक है, मैं जैसे बोलूंगी आपका टाइम स्टार्ट होते हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आपके साथ गेम का स्टार्ट आगाज करते हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बताइए, शुरू कीजिए। फ्रूट्स के नाम, फ्रूट्स के नाम, फलों के नाम बताइए।
1: आम, केला, संतरा, सेब, अमरूद, अनार, लीची, एंड पपीता।
0: लीची, पपीता, ओह माय गॉड, आपने 9 नाम ले दिए फ्रूट्स की, क्या बात है 10 सेकेंड्स में, क्या बात है भाई समीर, आ गए आप, पहली बार आप आए हैं और 8-9 फलों के नाम आप ले दिए इतनी तेज 10 सेकेंड्स के आगे। वाह, वेरी इम्प्रेसिव, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा खेला और बहुत अच्छा आपने आगाज किया। फ्रूट्स आपको पसंद है?
1: जी सारे फ्रूट्स पसंद है,
0: सारे पसंद। सबसे फेवरेट कौन सा है?
1: मेरे दोस्त हैं सरफराज,
0: हाँ
1: वो लगाते रहे थे और आपसे बात होती

0: थी उनकी।
1: अच्छा,
0: तो आज
1: अच्छा।
0: मैंने भी लगाया।
1: नाइस। सर कैसे हैं सरफराज जी, हैं गाँव वो?
0: जी बहुत बढ़िया है वो। गाड़ी चला रहा हूँ मैम।
1: वालेकुम सलाम। गाड़ी चला रहे इसलिए फोन आपने इनको थमा दिया। हाँ लेकिन देखिए कितना अच्छा खेला इन्होंने। मुझे तो लग रहा है फर्स्ट टाइम मेरी इनसे बात हो रही है समीर से, और कितना अच्छा खेला इन्होंने। 9 इज लाइक डिसेंट, मोर देन डिसेंट स्कोर। बहुत अच्छा खेला। और क्या, हारता जीतता कोई है, जीतता ही जीता आदमी, या तो सीखता है या जीता है। हाँ ये बात है। आप हारते नहीं, कभी नहीं आ रहे हो, नेक्स्ट टाइम भी ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा खेला, थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो हमारे साथ यहाँ बस समीर जुड़े और बहुत अच्छी शुरुआत की है समीर ने। अब देखना है कि नेक्स्ट कॉलर कितना स्कोर कर पाते। हेलो, हाय, गुड
2: मॉर्निंग
1: नादिया मैडम, क्या नाम है आपका?
2: आप हमेशा नाम जाते हैं, नाम तो याद होना चाहिए।
1: राज। नाइस राज, तो आप इतना कम जो आते हैं तो मुझे कैसे आपकी मैं कैसे पहचानूंगी, बहुत रेयर आप आते हैं। ये बात सही है ना मैंने। अच्छा, आज आपने बहुत अच्छा किया कि ये हमारा बोर्ड का ये मूवी का गेम नहीं है, बट उसके बाद भी आप आए। सो इसके लिए सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाइए। चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं दूंगी वेजिटेबल्स, सब्जियों के नाम।
2: इंग्लिश,
1: हिंदी, उर्दू, जिसमें भी आप चाहे आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनैक, ब्रोकोली, हेल, ब्रूसल, कैरेट, स्वीट पोटैटो, पीस, रेडिश, ग्रीन पीस, टोमेटो।
1: ओह माय गॉड, बस बस बस राज, लेट मी काउंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्या बात है, हर सेकंड में एक, और उससे भी ज्यादा। क्या बात है, अमेजिंग। अमेजिंग होता था कि आप सिर्फ और सिर्फ चैंपियन है व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड के गेम्स, बट आपने तो शो कर दिया कि चैंपियन इज ऑलवेज अ चैंपियन। बहुत अच्छा स्कोर किया। मुझे लग रहा था कि समीर जी के पास लंबी लिस्ट थी, वो भी फ्रूट्स उनको पसंद थे तो वो बोलते जा रहे थे। बट वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा खेला, और योर्स इज 13, बहुत ही अच्छा स्कोर है। लेट्स सी कि कोई आज आपके स्कोर को जो है वो टच कर पाता है कि नहीं। बट थैंक यू वंस अगेन, प्लेजर टॉकिंग टू यू, प्लीज फ्रीक्वेंटली जुड़ते रहिए सो दैट आई बी एबल टू गेट टू रिकॉग्नाइज योर वॉइस। ठीक है,
2: sure, madam, sure. Sure. Have a day.
1: You too. Take care. Bye. Bye.
2: Bye. God bless.
1: All right. दो चैंपियंस हमें यहाँ मिल चुके हैं, समीर एंड राज। एंड हु इज नेक्स्ट? कौन है नेक्स्ट? ट्राई कीजिए, मुझे बताइए। अगर आप कॉल नहीं कर सके, डू लेट मी नो, मुझे आप बता सकते हैं, हाय हेलो लिखकर भेज सकते हैं, मैं खुद आपको कॉल कर लूँ।

0: सकते। अच्छा शहजादा जी हैं वो कह कॉल कीजिए। यहाँ पर एक और कोई बंदा है जिन्होंने कहा कि हमें कॉल कर लीजिए। सी इनका नाम है रासल। सो मैं आपको कॉल कर रही हूँ, लेट्स सी आप मेरी कॉल उठाते हैं कि नहीं। और अपना फ़ोन आसपास रखिएगा प्लीज़। फिर हम शहजादा जी को भी ट्राई करते हैं, अगर वो उठा लेते हैं तो बात है, उनके साथ भी गेम खेलेंगे आज। अब क्या होता है, फल सब्जियां तो हो गई, अब मैं सोच रही हूँ क्या पूछूं। चलिए अभी मैं तय कर लेती हूँ, जैसे ही ये कॉल उठाएंगे कुछ ना कुछ तो जहन में आएगा, कुछ ना कुछ इनसे पूछ लेंगे। आसान रख रहे हैं, इसलिए आसान रख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट भी कर सके, सबको चांस भी मिले और मेरी भी उनसे बात हो जाए। तो एक और कॉलर मेरे साथ है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, चले गए ये, चले गए भाई, मैंने इनको बोला प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए। ये किसने भेजा है, अबू हमाद जी ने। ठीक है, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल चांस दे रही हूँ। और उससे पहले एक और कॉलर मेरे साथ आई थिंक यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कौन है मेरे साथ? अल्ताफ, आपकी आवाज मुझे इतनी दूर से क्यों सुनाई दे रही है, कहाँ है?
1: आई थिंक मेरा
0: थोड़ा सा, अरे वाह, इतनी दमदार आपकी माशाल्लाह प्यारी आवाज है, अब मुझे क्लियर आ गई। सो अल्ताफ, आपके साथ हम गेम खेलते हैं, मेरे पास टाइम कम है वरना मैं थोड़ी देर आपसे बात भी करती, तो झटपट से आपके साथ गेम खेलते हैं, ठीक है? आपके लिए आपके लिए मैं सोच रही हूँ कि आप चलो आप भी फ्रूट्स के नाम बताइए, ठीक है, जितने भी आप 10 सेकेंड्स में बता सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम फलों के नाम।
1: फलों के नाम,
0: चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
1: ओके,
0: हाँ स्टार्ट।
1: मतलब मेरे को फलों के नाम बताने हैं?
0: फलों के नाम बताने हैं आपको?
1: हाँ, ओके ओके। बनाना, बनाना, एप्पल एंड और दिस ऑरेंज एंड व्हाट वी कॉल दिस स्ट्रॉबेरी एंड पपाया एंड एवोकाडो एंड
0: एवोकाडो इज द लास्ट। और यहाँ पर टाइम अप हो चुका है आपका, आपने कितना बताया, 1 2 3 4 5 6। ओह नॉट एट ऑल बैड। फ्रूट्स आपको इतने पसंद नहीं है क्या?
1: नहीं, एक्चुअली जब हम कॉल करते हैं इस तरीके से, थोड़ा मेरा ये सेकंड टाइम कॉल है आपके प्रोग्राम में कॉल करने का।
0: ओह दैट्स फाइन, थोड़ा सा ये हुआ, बट कोई नहीं, आपने फिर भी बताया, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं बता रहे थे, आपने 6 बताए, लेकिन हाँ हो जाता है जब आप फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हल्की सी नर्वसनेस हावी हो ही जाती है, बट कोई बात नहीं, ये फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम नहीं रहना चाहिए, लेट्स कीप इट लाइक फॉर फ्रीक्वेंटली, आगे भी आप जुड़िए मेरे साथ, ठीक है?
1: इंशाल्लाह।
0: चलिए जी, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो यहाँ अब मैं कुछ लोग जो यहाँ हाय हेलो लिखकर भेज रहे हैं कि प्लीज़ हमें कॉल कर लीजिए, लेट्स सी इनसे हमारी बात हो सकती है। एंड प्लीज़ आप अपना फ़ोन आसपास रखिए, अगर आपको कॉल पहुँचती है तो आप जो है उसे अटेंड कर लें, नहीं तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, बहुत ही कम है ना? तो अबू हमाद जी, उसके बाद शहजादा जी को भी मैं कॉल करूँगी। राज ने बहुत ही शाइन मारा है, फिलहाल मुझे रहने दीजिए। क्यों प्रिंसन, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप हैं और यूसुफ जी हैं, आपको दोनों को तो आना ही आना चाहिए। शहजादा जी देखो कितना अच्छे, ऑनेस्टली कितना इनोसेंटली कह रहे हैं कि हाँ वो तैयार है खेलने के लिए। इस पर मेरे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अबू हमाद जी आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: और कैसी जा रही है आपकी सुबह?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है।
0: ओके, चलिए आपको फल ज्यादा पसंद है कि सब्जियाँ?
2: कुछ भी।
0: तो चलिए आपके लिए सब्जियाँ, ठीक है, आपको टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम में 20 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड्स दिए लेकिन लोगों को मैंने नहीं दिए हुए, तो 20 सेकेंड्स में जितने आप जो हैं वो वेजिटेबल्स के नाम बता सकते हैं, ठीक है?
2: ओके,
0: सब्जियों के। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: गाजर, मूली, पपीता, पालक, सेम की फली, ग्वाल की फली, लौकी, आलू, टमाटर, धनिया, और तुरई।
0: तुरई कितना चाहता है क्या सब्जियों में?
2: पपीता भी कच्चा पपीता भी आता है, कच्चा पपीता भी आता है।
0: अच्छा अच्छा, उस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: मेरा टाइम चल रहा है।
0: नहीं
2: आप बताओ, मैं बहुत याद कर रखे
0: थे। हाय कोई नहीं, कल हम फिर आपके साथ गेम खेलेंगे, ठीक है? पर आपने 10 का स्कोर किया है जो कि अच्छा स्कोर किया है, नॉट एट ऑल। आप सेकंड इज 10, फर्स्ट इज राज एंड सेकंड इज यू। फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छा खेला आपने। चलिए इंशाल्लाह कल वापस आपके साथ गेम खेलेंगे और आपका नंबर लिख लेते हैं, ठीक है?
2: ओके इंशाल्लाह।
0: हैव अ ग्रेट मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के हमारे इस गेम के सॉलिड वाले विनर सारे के सारे हैं, लेकिन हाँ, राज ने 13 का स्कोर किया है और अम्मा जी ने 10 का स्कोर किया। वैसे कल देखना है कि और कौन लोग कितने ज़्यादा स्कोर्स कर पाते हैं। फिलहाल के लिए अब वक्त हो गया कि आपसे इजाज़त ली जाए इस वादे के साथ कि कल वापस आपकी हमारी मुलाकात होगी इसी शो में 6:00 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

की कोशिशों का हिस्सा है। 2027 के कौमी कायदाना प्रोग्रामों में दो नुमाया प्रोग्राम शामिल हैं जिनमें फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम और फ्यूचर गवर्नमेंट लीडर्स प्रोग्राम शामिल हैं। ये प्रोग्राम 25-35 साल उम्र के अहल कतरी शहरियों के लिए मुख्तस हैं और तीसरे कौमी तरक्याती मंसूबे के अहदाफ के मुताबिक कौमी अफरादी कुवत की सलाहियत को फ़रोग देने और नई नस्ल के रहनुमाओं को तरक्की और जिद्दत की क्यादत के लिए तैयार करने पर मरकूज़ हैं। इन प्रोग्रामों में शिरकत के लिए दरख्वास्त दहिंदा का कतरी शहरी होना, कम अज़ कम बैचलर डिग्री या उससे आला तालीमी काबिलियत रखना और कम अज़ 5 साल पेशा वराना तजुर्बा होना ज़रूरी है। प्रोग्राम के दौरान नज़रियाती तालीम को अमली तरबियत के साथ जोड़ा जाएगा ताकि शुरका की कायदाना और इंतज़ामी सलाहियतों, फैसला साजी की महारत और इदारा जाती तब क़ियादत करने की इस्तादाद को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। कतर यूनिवर्सिटी क्यूयू ने अपनी जामे डिजिटल तब्दीली की हिकमत अमली के तहत तालीमी, तहकीकी और इंतज़ामी शोबों में मसनू जहानत यानी AI के इस्तेमाल को तेज़ फ़रोग देना शुरू कर दिया है। इस इकदाम का मकसद तदरीसी और तहकीकी मयार को बेहतर बनाना, इंतज़ामी कारकर्दगी में इजाफा करना और तलबा, उसातज़ा, मुहक्किकीन और मुलाज़मीन को जदीद और मौसर खिदमात फराहम करना है। यूनिवर्सिटी ने हालिया बरसों में अलग अलग डिजिटल मंसूबों के बजाय एक मरबूत निज़ाम तश्कील दिया है जिसकी बुनियाद स्मार्ट सर्विसेज, तहकीको इख्तरा और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर रखी गई है। इस सिलसिले में AI पर मबनी तालीमी मशीर प्लेटफॉर्म, AI रिसर्च एंड इनोवेशन हब, तरबियती प्रोग्राम और कौमी और बैन अल-अक़वामी शराकत दारियों को फ़रोग दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एसोसिएट नासर डॉक्टर नाइफ याफाई ने कतर न्यूज़ एजेंसी QNA को बताया कि यूनिवर्सिटी के पास मुल्क के जदीद तरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक मौजूद है जिसमें जदीद हाइब्रिड डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, तेज़ रफ्तार नेटवर्क, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम और मजबूत साइबर सिक्योरिटी निज़ाम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ने आइंदा 3 बरस के लिए जामे डिजिटल तब्दीली का मंसूबा तैयार किया है जिसके तहत मुलाज़मीन की डिजिटल महारतों में इजाफा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, मालूमाती तहफ़ुज़, डेटा एंड एनालिटिक्स और मसनू जहानत की सलाहियतों को फ़रोग देने पर काम जारी है। उनके मुताबिक यूनिवर्सिटी आइंदा 4 बरस के अंदर अपनी 99% खिदमात को डिजिटल बनाने का हदफ रखती है जो कतर नेशनल विजन 2030 के अहदाफ से हम आहंग है। वजारत खेल नौजवान से वाबस्ता फ्रेंड्स ऑफ द इन्वायरमेंट सेंटर ने एक माह पर मुहित समर ऑफ सस्टेनेबिलिटी 2026 प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है जिसके दौरान बच्चों और नौजवानों में माहौलियाती शऊर, पायदारी के तसव्वुरात और अमली तजुर्बात को फ़रोग दिया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले 93 तलबा व तालबात ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान माहौलियात और पायदार तरक्की से मुतालिक 8 खसूसी वर्कशॉप्स का इनाकाद किया गया जबकि शुरका को कौमी सतह पर माहौल के तहफ़ की अमली कोशिशों से रोशनास कराने के लिए 6 तालीमी फील्ड दौरे भी कराए गए। सामिन, ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नशर की जा रही हैं। लुबनान में 2 मार्च से जारी इसराइली जारहियत के नतीजे में जहांबाग होने वालों की तादाद बढ़कर 4,333 हो गई है जबकि 12,250 अफराद जख्मी हो चुके हैं। लुबनान की वजारत सेहत के हेल्थ एमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर ने एक बयान में बताया कि इसराइली हमलों के बायस मजमूई तौर पर अब तक 4,333 अफराद जहांबाग और 12,250 जख्मी हुए हैं। इससे कबल कल जनूबी लुबनान में एक मुश्तबा शय के धमाके के नतीजे में 5 लुबनानी फौजी जख्मी हो गए। वाज़ेह रहे कि लुबनान और इसराइल ने अमरीका की सरपरस्ती में एक फ्रेमवर्क माहदे पर दस्तखत किए हैं जिसमें सिक्योरिटी इंतजाम, जनूबी लुबनान में लुबनानी फ़ौज की दोबारा तैनाती, मुतासर इलाकों की तामीर नौ, मुआशी बहाली और दोनों फरीकों के दरमियान बराह रास्त रबते के ज़राए कायम करने के इकदाम शामिल हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस की गवर्नरेट ने जुलाई 2026 के दौरान इसराइली काबिज फ़ौज की जानिब से की जाने वाली मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों पर मुश्तमिल महाना रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक काबिज फ़ौज ने मावराई अदालत कत्ल की पॉलिसी जारी रखी जिसके नतीजे में जुलाई के दौरान 3 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 15 दीगर जख्मी हो गए।

0: 40 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ, जिनकी मालियत तकरीबन 30 करोड़ 20 लाख कतरी रियाल रही, जबकि तमाम शोबों में 23,620 सौदे मुकम्मल किए गए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताज़ा फिगर्स के मुताबिक 2026 के पहले 6 माह के दौरान आलमी सतह पर सोने की मजमूई तलब में 2% इजाफा हुआ, जो 2,522 टन तक पहुंच गई। इस तलब की माली मालियात तकरीबन 380 अरब डॉलर रही, जबकि रवां साल की दूसरी सहमाही में आलमी तलब 1,269 टन पर मुस्तहकम रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मशरिक वस्ता में जंग के खात्मे और अबनाए हरमूज को दोबारा खोलने के लिए ईरान के साथ नए मुज़ाकरात के ऐलान के बाद एशियन मार्केट में इब्तदाई कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में तकरीबन 5% कमी रिकॉर्ड की गई। बैरन खाम तेल की कीमत 4.69% कमी के बाद 83.81 डॉलर फी बैरल पर आ गई, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल 4.67% कमी के साथ 80.72 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड हुआ। सामिन खबरों के इस मरहले में समाप्त कीजिए स्पोर्ट्स न्यूज।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
2: कतर की कौमी हैंडबॉल टीम का ग्रुप आइंदा मुकाबलों की तैयारियों के सिलसिले में तरबियती कैंप के लिए स्लोवेनिया रवाना हो गया है। इस कैंप का मकसद खिलाड़ियों की फनी और जिस्मानी तैयारियों को मज़ीद बेहतर बनाना है। ये कैंप 20वीं एशियाई खेलों आईची नागोया 2026 की तैयारियों का हिस्सा है, जहाँ किरा अंदाजी में कतर को मजबूत ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें जापान, चीन और हांगकॉन्ग की टीमें भी शामिल हैं। एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप अंडर 18 साल 2026 की किरा अंदाजी में कतर की टीम को ग्रुप सी में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला चीन, ईरान और श्रीलंका से होगा। ये चैंपियनशिप 13 अगस्त से भारतीय शहर अहमदाबाद में शुरू होगी। कतर अपनी मुहिम का आगाज़ 14 अगस्त को ईरान के खिलाफ मैच से करेगा, जबकि दूसरे मैच में 16 अगस्त को चीन और आखिरी ग्रुप मैच में 18 अगस्त को श्रीलंका का सामना करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के फुटबॉल क्लब अलगराफा ने कैमरून के 26 साल स्ट्राइकर फ्रैंक मागरी से हतमी माहदे के लिए मुजाकरात में नुमाया पेशरफ्त की है। क्लब आइंदा सीजन 2026 से 2027 से कबल अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए खिलाड़ियों की खिदमत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने ब्राइटन के फॉरवर्ड डैनी वेलबेक से 2 साला माहदा कर लिया है, जिसके तहत वो 2028 तक क्लब का हिस्सा रहेंगे। 35 साला वेलबेक ने अपने फुटबॉल कैरियर का आगाज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड से किया, जिसके बाद वो आर्सेनल, वाटफोर्ड और फिर ब्राइटन की जानिब से खेलते रहे। इटली फुटबॉल फेडरेशन ने यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2032 के मैचों की मेज़बानी के लिए उम्मीदवार शहरों की फहरिस्त जारी कर दी है। यूरो 2032 की मेज़बानी इटली और तुर्की मुश्तरका तौर पर करेंगे। इटली फुटबॉल फेडरेशन उम्मीदवार शहरों की दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद हतमी फहरिस्त तैयार करेगी, जो 1 अक्टूबर तक यूरोपीय फुटबॉल यूनियन यूईफा को भी भेजी जाएगी। फिलिपाइन की टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंड्रा एला ने वाशिंगटन ओपन वीमेंस टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में जापान की नोमी ओसाका को 2 स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। टेनिस की आलमी नंबर वन खिलाड़ी आरीना साबालेंका कई हफ्तों के वक्फे के बाद आज टोरंटो मास्टर्स 1000 में वापसी करेंगी और दूसरे राउंड से मुहिम शुरू करेंगी। वो हालिया सीजन में गैर मुस्तकिल कारकर्दगी का शिकार रही हैं।

0: जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के फाइनल, फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल और विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में उन्हें शिकस्त हुई। अगर साबालिंका टोरंटो में कम से कम प्री क्वार्टर फाइनल तक ना पहुंच सकी तो एलिना रेबाकीना आलमी नंबर वन बन सकती हैं। स्पोर्ट्स न्यूज में आज के लिए इतना ही, और अब समाप्त कीजिए न्यूज हेडलाइंस।
1: न्यूज हेडलाइंस आरजे सफा के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो एफएम 107।
2: वजीर आजम व वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी से सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कुवैत के वजीर खारजा ने अलग अलग टेलीफोन रबते किए, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, इलाकाई सूरत हाल, कशीदगी में कमी और अमनो इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखला और लखोया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल थानी को इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर दाखला इस्कंदर मोमिनी का टेलीफोन कॉल मौसूल हुआ। गुफ्तगू के दौरान दोनों वजीर दाखला ने एक खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया और मौजूदा इलाकाई हालात पर तनाजुर भी पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ नए मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ये ऐलान उन्होंने फौजी हमलों को मुअत्तल करने के चंद घंटों बाद किया। अमरीकी हुकाम ने बताया है कि मशरकी वाशिंगटन रियासत में भड़कने वाली बेकाबू जंगलाती आग के बायस तकरीबन 5,000 घरों को खाली करवा लिया गया है, जबकि तकरीबन 600 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन सारा, सोशल मीडिया से यूसरा महमूद, न्यूज़ रूम से इस्माइल खान और मुझे सफा सफदर को दीजिए इजाज़त। फी अमान अल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतर के वन ऑफ द लीडिंग फुटबॉलर्स में से एक करीम बुदियाफ। यस दोस्तों, करीम बुदियाफ कतर के सबसे तजुर्बेकार और भरोसेमंद फुटबॉलर्स में शुमार किए जाते हैं। उनकी पैदाइश 16 सितंबर 1990 को फ्रांस में हुई, लेकिन बाद में उन्होंने कतर की कौमी टीम की नुमाइंदगी अख्तियार की और मुल्क के फुटबॉल निज़ाम का अहम हिस्सा बन गए। वो ज़्यादातर डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर खेलते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर डिफेंडर की पोजीशन भी बाखूबी संभाल लेते हैं। करीम ने अपने क्लब करियर का बड़ा हिस्सा अल दोहेल के साथ गुजारा, जहाँ उन्होंने कई कतर स्टार्स लीग टाइटल्स और डोमेस्टिक कप्स जीतने में किरदार अदा किया। उनकी मजबूत टैकलिंग, बेहतरीन पोजीशनिंग और गेम को पढ़ने की सलाहियत उन्हें टीम का लाजमी खिलाड़ी बना दिया। कतर की नेशनल टीम के लिए भी करीम ने बहुत अहम परफॉर्मेंसेस दी हैं। उन्होंने एएफसी एशियन कप 2019 जीतने वाली टीम में शानदार किरदार अदा किया और मिडफील्ड को मजबूती फराहम की। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप 2022 और वर्ल्ड कप 2026 में भी कतर की नुमाइंदगी की, जहां उनका तजुर्बा टीम के लिए कीमती साबित हुआ। करीम बुदियाफ को उनकी लीडरशिप, डिसिप्लिन और मेहनत की वजह से कतर फुटबॉल का एक मिसाली और मोहतरम नाम माना जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। विदारत दाखला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आज हम मौसम के बारे में जो एलर्जीज होती हैं, एक मालूमाती सिलसिले का आगाज कर रहे हैं। ये सीजनल एलर्जीज दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर करती हैं और बाज़ औक़ात रोज़मर्रा ज़िंदगी, हमारी तालीम, काम और नींद पर भी असरअंदाज होती हैं। सीजनल एलर्जीज उस वक्त पैदा होती हैं जब हमारे जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम यानी मदाफती निज़ाम बाज़ बेज़रर ज़र्रात को नुकसानदेह समझ कर उनके खिलाफ रद्दअमल ज़ाहिर करता है और इन ज़र्रात को एलर्जन कहा जाता है। सीजनल एलर्जी का सबसे आम सबब पोलन है। पोलन दरअसल पौधों, दरख्तों और घास के जो ज़र्रात होते हैं उनमें होते हैं, जो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। जब ये ज़र्रात हमारे नाक, हमारी आँखों या सांस की नाली में दाखिल होते हैं तो हसास अफराद में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। हर शख्स में ये एलर्जी पैदा नहीं कर सकते, बस वो ही अफराद ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बाहर के मौसम में दरख्तों के पोलन और गर्मियों में घास का जो पोलन है वो, और इसी तरह ख़ज़ा में जड़ी बूटियों का पोलन ज़्यादा मकदार में फ़िज़ा में मौजूद होते हैं। इसलिए बाज़ अफराद को मखसूस मौसमों में बार बार एलर्जी की शिकायत होती है। इसके अलावा बारिश के बाद नमी ज़्यादा होने से फंगस के ज़रात भी फ़िज़ा में बढ़ जाते हैं जो एलर्जी का सबब बनते हैं। अब ये कि कौन से जो लोग हैं, कौन से ऐसे अफराद हैं जो ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं या रिस्क पर होते हैं, ऐसे अफराद जिनके ख़ानदान में एलर्जी या अस्थमा की शिकायत हो, इस तरह अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो, बच्चे और नौजवान, एक्जिमा के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो अफराद जो फ़िज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में रहते हैं। इसी तरह से लिस्टनर्स, फ़िज़ाई आलूदगी में एलर्जी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। उसमें गाड़ियों का धुआं है, सनती आलूदगी है, गर्दोगुबार सांस की नाली को बहुत ज़्यादा हसास बना देते हैं। एलर्जी से बचने के लिए ज़रूरी है कि पोलन की मकदार ज़्यादा होने वाले दिनों में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज कीजिए। सुबह के अवकात में पोलन की सतह उमूमन ज़्यादा होती है। ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि सीजनल एलर्जी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर उसका मुनासिब इलाज ना किया जाए तो ये दमे और सांस के जो दूसरे मसाइल हैं उन्हें ज़्यादा कर सकती है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: Well, salam adab, a very very good morning and welcome to the show called Qatar Business 360. Main hoon aapki dost, aapki host Nazia. Dosto, ye show Qatar ki business community ki successful leaders, entrepreneurs, industry experts ki inspiring story aur unke businesses aap tak pahunchata hai. हम यहाँ उन लोगों से मिलते हैं जो अपने विजन, लीडरशिप और इनोवेशन के जरिए कतर की इकोनॉमी और बिजनेस लैंडस्केप को शेप कर रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो हर बिजनेस की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। इट्स ICT, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशंस इंडस्ट्री। वेल, आज के इस डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन नहीं रही, बल्कि हर बिजनेस की ग्रोथ का इंजन बन चुकी है। चाहे बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, रिटेल हो या गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह टेक्नोलॉजी का रोल दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। कंपनीज को एफिशिएंट बनाने, कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने और ऑपरेशंस को स्मार्ट बनाने के लिए एडवांस्ड ICT सॉल्यूशंस की जरूरत है, और इसीलिए ICT और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनीज आज बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये कंपनीज बिजनेसेस को IT इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड सॉल्यूशंस, साइबर सिक्योरिटी, कस्टमर कॉन्टैक्ट सर्विसेज और मैनेज सर्विसेज और साथ ही डिजिटल इनोवेशन के जरिए फ्यूचर रेडी बनाती हैं। अगर मैं बात करूं कतर की, तो कतर में जब टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है स्टारलिंक कतर का। ये नाम एक अहम नाम के तौर पर जाना जाता है। रिया स्टारलिंक कतर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ICT सॉल्यूशंस, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए कई ऑर्गेनाइजेशंस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरह बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर रही है, इनोवेशन का फ्यूचर क्या है और लीडरशिप क्या रोल है, किस तरह का रोल प्ले करती है आज की इस रैपिडली चेंजिंग डिजिटल वर्ल्ड में। आज इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक डायनेमिक लीडर, स्ट्रेटेजिक थिंकर और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। वेल दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सिरिल आनंद, जो कि CEO हैं स्टारलिंक कतर के। मैं कह सकती हूँ मिस्टर सिरिल आनंद के पास टेलीकॉम और ICT इंडस्ट्री में 24 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। आपने अपने करियर के दौरान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट और लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली लीड किया है। आपकी लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक विजन ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रोथ और इनोवेशन के नए मकाम तक पहुंचा।

0: will come and they will go. What I need to do, even if I fall, I need to rise. Right? I might fall 10 times, I need to rise 11 times. That should be the motto of them. Nothing should let you stay fallen, but should give you the energy that I will rise up and face the next challenge that comes. I think the youth need that, and it's fine. As I said earlier.
1: And as you mentioned, patience also.
0: Patience. Got to be patient, and that's something I find in...
1: No shortcuts for the success. That's important. Because nowadays I've seen they're quite impulsive. They need everything right now.
0: Yeah, that's not possible in all circumstances and all situations. Sometimes it might be possible, but not always.
1: Not always. Beautiful message. So if you could share one vision for the future of connectivity in Qatar, what role would Starlink play in achieving that?
0: I think the role that we want to play is help our consumers make the right choices. We are not here just to sell. We are here to help a consumer make the right decision, whether it's about buying the right device or whether it's about buying the right service. That's what we would like to kind of do. We have built our business on trust for the last 20 years, and we would like to continue doing that with our customers. So if we help our customers make a right decision, that's what I would like our customers to remember us for, that they are a trusted partner to help them make the right decision.
1: Thank you so much, Mr. Cyril, for taking out this time and sharing amazing experiences, your journey, your mission, your vision, and amazing insights with us. Thank you once again.
0: Thank you, Nazia. Thank you for this opportunity.
1: And just a last message to my audience of FM 107.
0: Firstly, enjoy the channel. I think what Nazia and team are doing is a great job of building a platform to bring some good messages to you as an audience. And as I said, be resilient and always rise above the challenges. Challenges are what make life interesting. Don't get cowed down to challenges. Thank you.
1: Thank you. It's a beautiful message. Thank you once again, sir. Well, दोस्तों आज कतर बिजनेस 360 में हमने स्टारलिंक कंपनी के सीईओ मिस्टर सिरिल आनंद से बात की. आपके साथ बात करते हुए मुझे समझ में आया कि आप सीईओ जो हैं वो अपनी सोच से बने हैं, अपने स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजंस लेने की सलाहियत से बने हैं. मिस्टर सिरिल ने इंटरव्यू में हमें बताया कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी हर बिजनेस की ग्रोथ का एक बुनियादी हिस्सा बन चुका है. आपके मुताबिक इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है. आपने लीडरशिप के हवाले से कहा कि स्ट्रॉन्ग टीम्स और क्लियर विजन और कंटीन्यूअस लर्निंग बिजनेसेस की जो स्ट्रेटजीज हैं वो कहीं ना कहीं कंटीन्यूअस ग्रोथ का हिस्सा बनती हैं. पर मिस्टर सिरिल ने यहाँ ये भी हाईलाइट किया कि जिंदगी में फेलियर्स तो आते हैं, चैलेंजेस तो आते हैं. फिर उन्होंने अपना खुद का एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरह से वो ग्रेड 9 में एक बार फेल हुए, लेकिन क्या उस फेलियर ने उनकी कामयाबी की जर्नी में किसी तरह की कोई रुकावट खड़ी की? नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, डेडिकेशन और एक फोकस्ड और पॉजिटिव स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो है वो इंसान को आगे बढ़ाती है. आपका सभी यूथ को यही पैगाम है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए. कामयाबी जो है वो किसी ये तरह से शॉर्टकट से आपको नहीं मिलती, और अगर शॉर्टकट से मिल भी जाए तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है. यहाँ पर एक लाइन जो मैं कह सकती हूँ इस इंटरव्यू की बेस्ट टेक अवे थी वो ये, जहाँ पे हमारे सीईओ ने हमसे कहा कि आई रियली डोंट लिसन टू रिस्पॉन्ड, आई लिसन टू अंडरस्टैंड. और ये किसी भी शख्स को लीडर बनाता है. ये अप्रोच जो है ना, अपने आप में एक लीडरशिप अप्रोच है. अपनी टीम को समझना, उनकी बात को समझना, क्लियर विजन होना, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस लर्निंग का एक मजबूत पिलर है. आपका फोकस स्टारलिंक कतर को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और एआई के जरिए और ज्यादा इफिशिएंट और फ्यूचर रेडी बनाना है. आपका पैगाम भी ये था कि बिजनेसेस को हमेशा कस्टमर की नीड समझ के उसे तैयार करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि ग्रोथ और इनोवेशन के इनेबलर के तौर पर देखा जाना चाहिए. अगर मैं बिल्कुल प्रिसाइज करके बताऊं तो ये इंटरव्यू लीडरशिप, मोटिवेशन, इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही किस तरह से पर्सनल अपने लाइफ के हर्डल्स और चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ने के लिए हमें और आपको बहुत कुछ सिखाता है. यहाँ मैं कह सकती हूँ कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फ्यूचर पर हमारे गेस्ट ने बहुत

अच्छी तरीके से बात की. आपने बताया कि ये दुनिया ऐसी है जहाँ टेक्नोलॉजी के चलते बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और बहुत सारे चेंजेस भी हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम इन चीज़ों को किस तरह से अपने

0: मिस्टर सिरिल से बात करके मैंने तो बहुत कुछ सीखा। उन्होंने दिल से बात की और हम भी उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी उन्होंने वक्त निकाला और अपने कीमती एक्सपीरियंसेस और अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और ऐसे लीडर्स हमें दिखाते हैं कि इनोवेशन और विजन के जरिए किस तरह नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। यहाँ मैं तमाम व्यूअर्स को भी शुक्रिया कहना चाहूंगी जो आप हमारे साथ जुड़े। वेल, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए बिजनेस, एक नए लीडर और एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया से कनेक्टेड रहिए एंड स्टे हुक्ड टू FM 107 दिल से देसी।
1: प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
5: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साथियों, अगर इस वक्त एफएम 107 की घड़ी की तरफ देखूं तो घड़ी बचा रही है, रुक जाओ 5 सेकंड रुक जाओ, फिर एग्जैक्ट घड़ी सेट कर लेना अपनी, 11:02 घड़ी बजा रही है और आपका टाइम हो चला है सफा के साथ जुड़ने का, यानी के
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: जी हाँ साथियों, सन एंड साउंड का टाइम हो चला है, गोभी दिया पुल्लो आ जाओ जरा खुशबू लगा के। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया 11:02 हो रहे हैं घड़ी में और टाइम हो चला है सफा के साथ एंजॉय करने का, शो का नाम है सन एंड साउंड ऑन एफएम 107। तो भाई एक और दिन, एक और सुबह, एक और मिशन और एक और मिशन इम्पॉसिबल, यानी कि दिन को सही सलामती से गुजारना। देखो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी का मकसद ये होता जा रहा है कि बस सरवाइव करना है। देखो आज के दिन जिंदा रहना है और ज़िंदा लोगों को रहने देना है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, खुद तो ज़िंदा रह रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दूसरों के लिए पता नहीं कुछ लोगों की एक एक खासियत होती है कि वो जहाँ जाते हैं ना किसी के लिए तो मुश्किल पैदा कर ही आते हैं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए आज शो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट कह ले, मेरी एक रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट ये कि मेहरबानी करके अपना थोड़ा आदतों को चेंज करो और दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाओ। जिंदा सबने रहना है, ऐसे नहीं तो वैसे जितना जिसकी एक्सपायरी डेट है वो उतना ही रहेगा, आप उससे पहले उसका टाइम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जब गुजारनी है तो हंसते हुए मुँह के साथ गुजार लो। तो भाई गोविंदा पुल्लो सर एंड साउंड एक इंटरैक्टिव शो है, अगर मेरी इस बात को लेकर किसी को ऐसा लगा हो, ऑफेंडेड फील हुआ हो तो डिफेंसिव मत होना, अगर इफ़ द क्राउन फिट्स यू टू वेयर इट तो फिर इट्स ओके। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में बात की जा रही है तो अपनी गिरबान में झांको ना, ऐसे तो नहीं हो ना, सीधा करो ना, अपने आप को सही करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग आपसे इरिटेट होते हैं इस बात की वजह से कि ये जहां जाता है वहां फड्डे फसाद हो जाते हैं, तो भाई सही करो, उम्र हो गई है, बस कर जाओ। ये लाल नीली पीली शर्ट पहन कर निकल आते हो, कपड़े अच्छे पहनने से इंसान का इखलाक अच्छा नहीं हो जाता। मुझे याद है मेरे अब्बा हमेशा कहते हैं बेटा जेब भारी हो जाने से ना कभी भी इंसान के अंदर क्लासीनेस नहीं आती। पैसा जो है ना, पैसा पैसा स्टेटस ज़रूर खरीद सकता है लेकिन पैसा तरबियत नहीं खरीद सकता, पैसा अच्छा इखलाक नहीं खरीद सकता, पैसा वो वाला स्टैंडर्ड नहीं खरीद सकता कि जब आप कहीं जाओ और बात करो ना तो चार लोग आपकी बात के कायल हो जाएं। क्या कहते हो, बात सही है कि नहीं है? तो भाई हम खाली जेबी खुश हैं, हम अपने 28 तारीख के साथ खुश हैं। तो भाई साथियों ये एक इंटरैक्टिव शो है, मेरा और आपका साथ रहेगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। और आज जो है ना हाथ जरा हौले रखना क्योंकि आज बाजी की तबीयत खराब है, तो भाई दुआएं करो ढेर सारी। मुझे एक बात बताओ, मुझे सच सच बताओ, कल जब मैंने कहा था कि मैं घर पे खिचड़ी बनाकर खाऊंगी तो मेरी खिचड़ी पर किसने नजर मारी है? मुझे आज सच सच शो शुरू होने से पहले मैसेज करके बता दो। मैसेज के लिए नंबर दे रही हूँ 666-22107। नंबर क्या है? 666-22107। और अगर कॉल करना चाहते हैं तो जरूर करें 4434377 इज द नंबर टू कॉल 4434377। देखो कल मैंने गरीबों वाला खाना खाया था, ऐसा भी नहीं कि कोई कुकड़ शुक्कड़ खाई हो ते कोई मैंने कोई लैम्प शैम्प खाया हो ते मटन, कुछ नहीं भाई, सिर्फ दो दालें मिलाकर चावल के साथ एक बड़ी नाजुक मिजाज सी खिचड़ी खाई थी, वो भी घी और क्या और अचार के बगैर सिर्फ खाली मैंने खिचड़ी खाई थी। और उसके बाद जो मेरी तबीयत खराब हुई है, मुझे सच सच बताओ किस किस ने नजर मारी, मैं बोल कर गई थी आज मैं खिचड़ी खाऊंगी,

ये जिसकी भी नजर लगी है ना मुझे अच्छा नहीं किया है. चलो कोई मैं कोई हाई फाई कोई रेस्टोरेंट कोई चलो मैं 7 स्टार या 5 स्टार होटल में जाके कोई मुफ्ता फोड़ दी तो समझ में भी आता कि मुझे कहते कि हाँ भाई देखो बड़े टेंशन से 5 स्टार होटल में जाके खाना खा रही है. मैंने तो कोई फ्लैक्स भी ना की अपनी खिचड़ी तो फिर इतना क्यों इतनी क्यों मेरे साथ दुश्मनी भाई. चलिए अपना दुख आगे बढ़ाते हुए मैं काम करती हूँ कि शो में आपको सबसे पहले जो है वो वेदर रिपोर्ट दे देती हूँ. अपना तो हाल बुरा चल रहा है लेकिन मौसम भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा साथियों. देखिए इस वक्त अगर वेदर रिपोर्ट देखी जाए तो मुझे वेदर रिपोर्ट बता रही है कि बाहर का मौसम 43 डिग्री सेल्सियस हो रहा है जो कि थर्मामीटर में रिकॉर्ड आ रहा है. और फील्स लाइक जो है डरना मत फील्स लाइक कल से कम ही है. कल 49 था आज 48 है फील्स लाइक. एज यूजुअल जाहिर बात है जब इतना हाई टेम्परेचर होगा तो सनी ही होगा. तो हाईएस्ट टेम्परेचर आज जाने की उम्मीद है 44 तक जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने बजे तक हो सकता है कि ये अपना दोपहर का जो ये जो 12 बजे तक का टाइम होता है ना इसी में होता है ना 12 एक बजे तक का टाइम होता है ये 44 डिग्री सेल्सियस तक जाने की मुनासबत से वेदर रिपोर्ट दे रही है. अच्छा आज हवाओं की रफ्तार थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी रिवाइव हुई हैं हवाएं तो तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर पर आर की स्पीड से. कल तो बहुत ही हवा का बुरा हाल था मतलब ये कि 5-3 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से मतलब बिल्कुल भी नहीं हवा बहुत मध्यम थी. आज थोड़ा सा हवा ने स्टेबिलिटी पकड़ी है. और भाई अगर बात की जाए ह्यूमिडिटी की तो देखें ह्यूमिडिटी और हमारी बिल्कुल भी दोस्ती नहीं चल रही ऐसे जैसे कोई दुश्मनी है उसकी हमसे. ह्यूमिडिटी कल की बनिस्बत हायर चली गई है एकदम से. मुझे कल देखकर लगा था कि भाई चलो अब नीचे आएगी लोगों को ये तसल्ली दे देती हूँ कि अगस्त का महीना शुरू हो गया है अगस्त के एंड तक आते आते नीचे आ ही जाएगी. ह्यूमिडिटी ने शायद कहीं ये बात सुन ली. उसने कहा अच्छा तुम ये समझ रही हो तुम्हें ये एक्सपेक्टेशन है मुझसे. तो उसने कहा आज मैं 35 पर जाऊंगी मतलब ये कि 35% पर ह्यूमिडिटी चल रही है. देखिए जब मौसम इतना बर्बादी वाला चल रहा होता है ना तो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और वो इसीलिए बनाया ताकि वो अपने मसलों के हल निकाल सके. जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ उसका हल भी है. तो गर्मियों के दिनों में खासतौर पर जो दिन का टाइम होता है उसके अंदर सबसे बेसिक चीज़ होती है हाइड्रेशन. डेली आती हूँ डेली कुछ ना कुछ बताती हूँ कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें. पानी की एक सिंपल बोतल अच्छी है रखें. अगर आप लस्सी वगैरह पी सकते हैं जो कि तासीर में ठंडी होती है पतली कर वो बहुत अच्छी है. और उससे भी ज़्यादा अच्छी है अगर कोई आप कह रहे हैं कि नहीं भाई और ज़्यादा हल्की चीज़ क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को ना दही या दूध से बनी हुई लस्सी भी थोड़ी गाढ़ी लगती है. तो अगर उससे भी ज़्यादा हल्की चीज़ को ऐसी चाहिए कि आप कह रहे हो कि भाई ठंडा ताज़ा रिफ्रेशिंग तो मैं एक और चीज़ जो कि नॉर्मल सी चीज़ है कोई हाई एंड चीज़ नहीं है लेकिन अच्छी है सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी और बहुत ठंडी. क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमारे साथ मसला ये होता है कि हमें हर चीज़ खाने पीने में बहुत भारी लगती है. तो कुछ ऐसे मशरूबात जो आपको जो है ना वो हल्के लगें ठीक है वो बता देती हूँ. वाटरमेलन कूलर के बारे में बात कर रही हूँ मैं मतलब ये कि एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है ये. देखिए आपने बस करना ये कि दो कप जो है ना मतलब वाटरमेलन काटा क्यूब्स में और दो कप के जितने आपने मतलब ये समझें दो मुट्ठी के जितने आपने वाटरमेलन लिए सीड्स ज़रूर निकाल लेना और उनको आपने क्यूब्स में काटा और तकरीबन दो मुट्ठी या दो कप के जितने आपने वाटरमेलन के क्यूब्स काट लिए और आपने उनको ब्लेंडर में डाल दिया. एक जो चीज़ इसको जो बहुत अच्छा करती है वो लेमन है. तो लेमन जूस ना वो जो येलो वाला हमारा लेमन होता है ना या अगर आप लाइम भी इस्तेमाल करते हैं लाइम का भी अपना एक मज़ा एक टेस्ट होता है. जो ग्रीन वाला नहीं था छोटा सा उसका भी अपना एक टेस्ट होता है. वो जो भी चीज़ आपको पसंद है वो अगर छोटा वाला लेमन ले रहे हैं साइज़ में या लाइम ले रहे हैं छोटा वाला साइज़ का तो उसका एक लेमन नहीं तो अगर बड़ा वाला ले रहे हैं तो उसका हाफ लेमन काटें उसका जूस निकालें और कुछ ये अपना पुदीना होता है ना उसके पत्ते ले लें फ्रेश जितनी जो चीज़ फ्रेश होती है ना. कुछ लोग क्या करते हैं वो लेमन का ना सिरप मिलता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं या कुछ लोग क्या करते हैं वो मिंट के ना कुछ फ्लेवर्स वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं. तो वो नहीं करें जितनी आपको कोई फ्रेश और ऑर्गेनिक चीज़ मिल रही है ना वो इस्तेमाल करें फ्रेश लेमन फ्रेश मिंट. और आपने क्या किया उसको इन तीन चीज़ों को

आपने डाला ब्लेंडर के अंदर और आपने घुमा दिया, डम डम डम डम, ब्लेंडर घूम गया भाई। जाहिर बात है वाटरमेलन इज 90% वाटर, तो वो जूस की सूरत में तब्दील हो जाएगा। आपने उसके अंदर अच्छी खासी आइस क्यूब डाली अपनी पसंद की, उसको आपने जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा होने दिया और फिर आपने उसे छान कर, कुछ लोग छान कर पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग बगैर छाने पीते हैं। मेरा मानना ये है कि छाने बगैर पी लें, क्योंकि आपने बीज निकाल दिए थे, फाइबर होता है ना उसके अंदर, वो फाइबर अलग नहीं करें, वो फाइबर भी बहुत काम की चीज़ होता है। अल्लाह ताला ने कुदरती निज़ाम ऐसा रखा है कि वो चीज़ जितनी आपको ऑर्गेनिक रहे वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों को छाना हुआ पसंद है, मुझे छाना हुआ समझ में नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता, तो वो उसको आपने ब्लेंड करके पी लेना है अच्छे से ठंडा करके। दिस इज़ अ वेरी वेरी लाइट वाला कूलर होता है ना, जो आपको आपके पेट पे भी भारी नहीं पड़ता और मौसम की बनस्बत आपको अच्छा हेल्दी एक आपको जो ना वो ड्रिंक मिल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो कि सुनने में बहुत, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को, जब मैंने ये नहीं पी थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यू क्या ही होगा ये, लेकिन दिस इज समथिंग विच इफ यू ट्राई इट इज वेरी गुड, इट इज एडिक्टिव, इट इज हेल्दी एंड इट इज एडिक्टिव। मैं बात कर रही हूँ क्यूकम्बर लेमन जूस की। जैसा हमने वाटरमेलन के साथ किया था ना, वैसे ही आप एक काम करें, एक लीटर पानी लें, उसके अंदर तकरीबन आप ये कह लें कि एक या दो क्यूकम्बर अपनी मर्जी से काट के आपने ब्लेंडर के अंदर डाले और आपने उसके अंदर मिंट लीव्स डाले अपनी पसंद के। वैसे तो मैं चीनी डाल देती हूँ क्योंकि मुझे चीनी के बगैर गुजारा होता नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी चल रहा है बेरोशियार तो वो हनी भी डाल सकता है, और अगर चाहें तो अ पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाल लें इसके अंदर। और जो है ना आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आपने इसके अंदर लेमन जूस भी, हाफ लेमन जितना लेमन जूस भी आपने डाल लिया और आपने इसको ब्लेंडर में घुमा लिया। चाहें तो छान कर पी लें, चाहे तो बगैर छाने पी लें, इट इज़ वेरी डिलिशियस, ट्रस्ट मी। सुनने में बहुत अजीब लगता है कि क्यूकम्बर का जूस कैसा ही होगा, लेकिन पीने में बड़ी बेहतरीन हाई एंड चीज़ लगती है भाई। मैं बता रही हूँ, ऐसा लगता है किसी 5-star 7-star रेस्टोरेंट से फैंसी किस्म का कोई ड्रिंक लेकर पी रहे हो, बहुत अच्छा है। देखें, ये वो चीज़ें हैं जो घर में आसानी से दस्तियाब भी होती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आप कह लें कि हमारी गर्मियों के दिनों में हमें बचा कर रखती हैं हीट स्ट्रोक से। या अगर आपको बहुत ज़्यादा होता है ना कि आप ड्राइविंग का काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम है जो आपका बाहर रहने का बहुत ज़्यादा काम है, तो एक और चीज़ हैंडी ये की जा सकती है कि जब आप घर जाते हैं ना ख़ास तौर पर, एक तो ये कि गाड़ी में भी लेकर घूम सकते हैं इसे, जो मैं चीज़ बताने लगी हूँ, जो कि बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, अगर चाहें तो गाड़ी में भी रख सकते हैं इसे और अगर चाहें तो अपने रेफ्रिजरेटर में भी इस थिंकिंग के तहत रख सकते हैं कि जब मैं वापस आऊँ तब भी मैं इसे कंज्यूम कर सकता हूँ। कोई भी आपने एक बॉटल लेनी है अच्छी खासी बड़ी वाली, मतलब 1-2 liter वाली, उसके अंदर आपने छिलका समेत धोकर वॉश करके छिलका समेत थोड़ा सा लेमन, एक लेमन काट के डाल दिया, मतलब यूँ समझ लें कि 1-2 liter वाली कोई बोतल ले लेना, तो आपने उसके अंदर छिलका समेत लेमन काट के डाल दिया, आपने वॉश करके उसके अंदर पतले पतले स्लाइसिस करके आपने उसके अंदर ये अपना क्यूकम्बर डाल दिया। अगर आप चाहें तो वाटरमेलन भी क्यूब्स में इसमें डाल सकते हैं और इसको ओवरनाइट रख दें। अगर आपने गाड़ी में यूज़ करना है अपनी, अपने साथ लेकर जाना है, तो इसको रात को बना के रख दें ताकि वो जो एरोमा और वो जो अज़ियात है ना, वो जो मिनरल्स विटामिन्स वगैरह हैं सारे फ्रूट्स के, वो ओवरनाइट उस पानी में मिक्सअप हो जाएं। इसे हम कहते हैं डिटॉक्स वाटर। ये भी बहुत अच्छा होता है गर्मियों में, बहुत अच्छा होता है, और इसको अगर आप ठंड, जितना अच्छा है अगर थोड़ा सा ठंडा पिए, ज़्यादा ठंडा नहीं लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा ठंडा, तो वो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेटेड रखता है और आपको भी डिजी होने से या हीट स्ट्रोक से बचाता रहता है। अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं जितनी देर चाहें, मतलब ये इतना तो होता है, मैं तो 2 liter वाला अगर बनाऊँ तो वो एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है भाई, वो इतना होता है। तो ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि जान है तो जान है भाई। तो भाई साथियों, एक लंबे चौड़े लेक्चर के बाद आपसे कहूँगा

के 666-22107 को भी दिया फुल ऑन 666-22107 इज द नंबर टू मैसेज. आप लोगों के मैसेजेस शुरू हो गए हैं. आप लोग जरा अटेंडेंस तो लगवाएं भाई. ये क्या हुआ? नहीं मुझे ये बताओ कि ये क्या हुआ. ये गुलाम नाजिक भाई एक बात तो बताएं, ये कौन सा वाला टैलेंट है कि मैसेज करके उसे डिलीट कर देना. मतलब इससे तो इंसान की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि ऐसा क्या लिखा था भाई जो डिलीट करना पड़ गया है. अच्छा भाई चलो 666-22107 पर एक काम करो, जरा आप मैसेजेस भेजो कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है. और मुझे आज जरा, आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपकी गाड़ी का टेम्परेचर क्या बता रहा है, मैं ये नहीं पूछूंगी. आज मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए, चाहे आप कोई भी काम करते हैं. अच्छा मैं हैट्स ऑफ करती हूँ हमारे जो डिलीवरी भाई करते हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं भाई लोग, ये जो बाइक्स पर होते हैं भाई, वो भाई मैं कभी कभी ना बिल्कुल, मैं आपको बताऊं अब ये इमोशनल बात हो जाएगी, मैं कभी कभी गाड़ी चलाते हुए चुपचाप बाइकों को दूर से देखती रहती हूँ, चाहे दिन का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो. बाइक मैंने भी चलाई है, मुझे शौक है बाइक चलाने का. मुझे पता है कि गर्मी के दिन में जब आप बाइक निकालते हो ना तो कैसी चमड़ी उधड़ती है, चाहे शाम का टाइम हो चाहे दिन का टाइम हो. मैं सिर्फ गौर से देखती रहती हूँ, मैं इनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला, हर कोई अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है तो अल्लाह ताला इनके रिस्क को हलाल फरमाए और इनकी बेहतर से बेहतरीन करे ज़िंदगी. हर किसी का अपना एक टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो मेहनत मुशक्कत करता है. तो अल्लाह ताला आप लोगों के मसले मसाइल आसान करे और आपको बेहतर से बेहतरीन जगह पर रखे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह दिल से, लिटरली दिल से बहुत सारी दुआएं निकलती हैं. मेरी अम्मा हमेशा कहती हैं, मैंने एक दफ़ा अम्मा को कहा था, अम्मा बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जिनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, हमें पता है ये दे आर इन ट्रबल या ये एक सख्त जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते. तो हम, मेरी अम्मा हमेशा कहती हैं कि बेटा ऐसे टाइम पर ना दुआ किया करो, दुआ किया करो. और आपकी मुखलिसी में की हुई दुआ इतनी कोई क्लीन चिट होती है सबके लिए, क्योंकि आप अल्लाह ताला से अपने लिए तो मांग नहीं रहे कि किसी, हम कहते हैं ना कोई अपना नफा नुकसान होता है तो वो थोड़ी सी मिलावट हो जाती है नीयत में. आप दूसरों के लिए जब मांगते हो ना तो आप साफ दिल से मांगते हो. तो यकीन जाने मेरे दिल से दुआ निकलती है भाई, हैट्स ऑफ, मेरे दिल से दुआ निकलती है ऐसे लोगों के लिए जो हक हलाल की कमाई के लिए सख्ती भी झेल रहे हैं. और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे हलाल की रोजी कमाने के लिए और आपको बेहतर से बेहतरीन जगह पर इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रमोट होते चले जाएं. फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल ये है कि आप अपने साथ क्या चीज़ कैरी करते हैं, अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए क्या चीज़ कैरी करते हैं. एक होता है ना पानी की बोतल रख ली खाली, या कोई और ऐसी चीज़ है जिसको आप कहें कि नहीं भाई सफ़ा ये वाली चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद है, लोगों को ये बताओ ये बड़ी अच्छी है, कन्वीनियंट और अच्छी चीज़. मैसेज करें 666-22107 पर, 666-22107. फिलहाल तो काला चश्मा लगाओ क्योंकि गर्मी में निकल रहे हो. सुनते रहो FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफ़ा, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन एफएम 107 और इस वक्त घड़ी की तरफ देखूं तो 11:26 हो रहे हैं। और भाई मैं आपको बताने वाली हूं फन ट्रिविया। देखो भाई आजकल गर्मियों के दिन है ना, तो सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किस चीज पे उतरता है? बताओ किस चीज पे उतरता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों का उतरता ही ट्रैफिक जैम में। अरे भाई किसी ने इंडिकेटर देकर लेफ्ट राइट लिया हो तब भी हमें गुस्सा आ जाता है, किसी ने बगैर इंडिकेटर के लेफ्ट राइट लिया हो तब भी हमें गुस्सा आ जाता है, कोई खुदा ना खासा सडन ब्रेक मार देता है रोड पर तब भी हमें गुस्सा आ जाता है, अगर हमें जो है वो कोई पास से, मतलब हाल ये है हमारे दिमाग का कि अगर कोई पास से गाड़ी, मतलब वो अपनी लेन में है, हमारी लेन में भी नहीं है, वो पास साथ वाली लेन से तेजी से गाड़ी गुजारता वाली जाता है तो आपको उस पर भी गुस्सा आ जाता है कि नहीं? एक बात है, एक बात है। वैसे मैं जब ड्राइविंग करती हूँ तो मैं सुकून से करती हूँ, मुझे मज़ा आता है, मुझे अपनी गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, वो इसलिए क्योंकि मेरी गाड़ी चलाना मेरे लिए जॉब नहीं है। खुदा ना खासा जिस दिन वो मेरी जॉब बन गई तो मुझे वो भी बुरा लगेगा, सीधी सी एक बात है। जो लोग खास तौर पर ड्राइविंग करते हुए, जिनका ड्राइविंग का ही काम है, उनको तो और ज़्यादा गुस्सा आता होगा। तो कुछ अच्छा मज़े की बात पता है क्या है, गुस्सा कभी कभी जायज़ भी होता है। कुछ लोगों की ड्राइविंग इतनी तो कोई खुदा का खौफ करो नाइटमेयर से निकल कर आ रही होती है ना कि समझ में नहीं आता कि इनको लाइसेंस दिया किसने। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ड्राइविंग ऐसी नहीं है, मैं ना कभी हॉर्न मारती हूँ और मुझे कभी हॉर्न पड़ता भी नहीं, कभी कभी मुश्किल से एक आधी दफ़ा कभी पड़ा होगा हॉर्न, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा मामला है कि मैं GPS पे चलती हूँ और कभी कभी ना वो GPS की नेविगेशन मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा वाला। अब वो इतने सारे हाईवेज बन गए, 3 जो है ना रोड नज़र आ रहे होते हैं सामने से, लेफ्ट जाओ राइट जाओ कौन से जाओ कहाँ जाओ, तो वो कभी कभी ऊंच नीच हो जाती है, तो उसके अंदर इक्का दुक्का दफ़ा कभी पड़ा है मुझे हॉर्न, वरना मैं मज़े से भाई 80 की स्पीड के अंदर रहकर गाड़ी चलाओ मज़ा आता है। और वो जो अगर कोई बहुत ज़्यादा शुमाल की साइड पर या अबू समरा की साइड पर जहाँ पे बोर्डों के ऊपर लिखा हुआ होता है कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप गाड़ी चला सकते हो, तो वहाँ पर वो बहुत वाइड रोड्स हैं तो वहाँ पे गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, वहाँ पे हॉर्न शॉर्न नहीं पड़ता, वहाँ पे आपको अगर नींद ना आ रही हो तो वहाँ पे आप गाड़ी चलाओ, लॉन्ग ड्राइव के लिए जाओ, मज़ा आता है वहाँ पर। अच्छा खैर ट्रैफिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आज का मेरा जो फन ट्रिविया है वो रिलेटेड है ट्रैफिक। क्या आपको पता है साथियों कि दुनिया में कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ लोग सिर्फ सफ़र नहीं करते, लिटरली सफ़र करते हैं उर्दू वाला सफ़र नहीं करते, वो इंग्लिश वाला सफ़र भी साथ साथ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक घंटों की होती है। अच्छा हम जो देसी लोग हैं ना, इंडिया पाकिस्तान है वो, तो ये हमारे लिए बड़ी मामूली सी बात है, हम लोग पता है हमें, मुझे याद है एक दफ़ा मैं पाकिस्तान में ट्रैफिक जैम में फंसी थी भाई, 4 से 6 घंटे ट्रैफिक के अंदर फंसे थे, 4 से 6 घंटा। देखिए दुनिया का ना सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम वाले जो शहर है ना, वो मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं भाई कराची में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, नहीं भाई गुजरांवाले में बड़ा ट्रैफिक होता है, ऐसा नहीं कह सकती मैं। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रैफिक जैम वाले शहर है ना, ये वक्तन फवक्तन बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ शहरों में लोग हर साल अपनी ज़िंदगी का आप कह लें कि आधा हिस्सा तो मुझे लगता है वो ट्रैफिक जैम में ही गुजारते होंगे। ज़रा सोचिए अगर आप ऑफिस से जा रहे हैं वापस, ठीक है, रोज़ आपका अगर 1 से 2 घंटा ट्रैफिक में लगता है तो आपको क्या लगता है अगर आप सालाना काउंट करें तो कितना, मतलब आधी ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है इंसान की फिर ट्रैफिक में, वो दिनों में कन्वर्ट हो जाता है ना। देखिए कुछ बड़े शहरों में जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, मैक्सिको हो गया, इस्तंबुल हो गया, बैंकॉक भी इसमें आता है, लंदन भी आता है इसमें, इसमें ना रश आवर्स होते हैं कुछ। जो लोग अपने मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं ना GPS वाली, उनको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि रश आवर की टाइमिंग दिखाता है वो, जो GPS है ना वो दिखाता है, अगर आप प्रॉपर सेटिंग्स में जाए ना, डिटेल में, एडवांस सेटिंग्स में, तो वो आपको ये बता रहा होता है कि कौन सा रोड या कौन सा रूट जो आप ले रहे हो वो किस टाइम में कितना ओवरफ्लो हो रहा होता है। तो जैसे कि मैं बता रही थी मैक्सिको सिटी, इस्तंबुल, बैंकॉक, लंदन में कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जब भाई लिटरली अगर आप हेलीकॉप्टर से ऊपर से व्यू लो ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये मेन रोड नहीं है, ये लिटरली पार्किंग लॉट है, वो इतना रश आवर में इतना हशर हुआ होता है। लोगों ने वहाँ पे अपना मामूल बनाया हुआ है, जहाँ पे रश आवर वाले जो टाइम होता है या जो जगहें होती हैं, लोगों ने अपना एक मामूल बनाया हुआ है, लोग या लाइव चले जाएंगे, मतलब जो हमारा सोशल मीडिया है उसके ऊपर लाइव चले जाएंगे, पॉडकास्ट टाइप कुछ बना लेंगे या यूं कह लें कि म्यूज़िक एंजॉय कर लेंगे, और कुछ लोग तो ट्रैफिक में लिटरली मैंने देखा है कि अपना ये जो लैपटॉप

लैपटॉप्स वगैरह हैं, ये यूज कर रहे होते हैं भाई बैठे हुए। इंटरनेट कनेक्शन उन्होंने अपना प्रॉपर लगाया होता है क्योंकि उनको पता है कि उनके इतने इतने आवर्स गाड़ी में जाएंगे, वो इतने कंफर्टेबल है। और वो भाई मजाल है कोई हॉर्न बजा रहा हो, क्योंकि उसको पता है कि आगे पता नहीं कितने किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम ही जैम है, तो लोग हॉर्न बजाते ही नहीं। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल सी बात यहाँ की हुई, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ट्रैफिक जैम सिर्फ गाड़ियों की वजह से नहीं होते? कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से या रोड कंस्ट्रक्शन, जैसे हमारे मुल्कों में चलती रहती 24 घंटे कंस्ट्रक्शन, हमारे पास सिर्फ दो मौसम आते हैं, गर्मियों का और कंस्ट्रक्शन का। तो भाई हमारे मुल्कों में पाकिस्तान इंडिया वगैरह में जैसे होता है, इंडिया में तो नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में ही होता है यूजली, कराची में पूरा खोद के रखा हुआ है, हमारे पास एक ही मौसम होता है कंस्ट्रक्शन का मौसम। तो बारिश का मौसम हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गई, या कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक सिग्नल सही नहीं चल रहे होते, उसकी वजह से भी रश हो जाता है, या बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ ना, तभी कहते हैं कि आप फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा जा रहा होता है, गाड़ियाँ भी रोडों पे ज़्यादा निकलती हैं, चाहे यहाँ हो चाहे हमारे मुल्कों में हो, तभी कहते हैं कि गाड़ियाँ आप अप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल करें ना। हाँ मुझे पता है कि आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, दो से तीन गाड़ियाँ आपके घर के बाहर खड़ी हुई हैं, लेकिन ज़रूरत के तहत अगर चाहें तो कारपूलिंग भी कर सकते हैं। भाई जैसे मेरा भाई है, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छा मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, अच्छा मुझे रस्ते में ड्रॉप कर देना, ये होता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कम हो सकता है। और कभी कभी एक छोटा सा एक्सीडेंट भी ऐसा होता है, जैसे अक्सर औकात यहाँ कतर में भी होता है, खुदा ना खासा अगर कोई अंडरपास में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए गाड़ी का, तो भाई उसमें भी ट्रैफिक जाम लग जाता है, लेकिन यहाँ की ट्रैफिक पुलिस को सल्यूट है कि वो फटाफट जो है ना क्लियर आउट करते हैं, क्योंकि उनको पता है पीछे से धमाल आ रहा है ट्रैफिक का, खासतौर पर सुबह के टाइम जो होता है। और ये जो ट्रैफिक जैम में एक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए होते हैं बेसब्री की वजह से, यहाँ से कट मारो वहाँ से कट मारो, अरे भाई कितनी ही गाड़ी आगे निकल जाओगे, दो से चार गाड़ी आगे निकलोगे, तो सब्र तहम्मुल रखो ना, कुछ नहीं हो रहा, आराम से स्पीड लिमिट के अंदर चलाओ, अपने टाइम पे निकलो, 10-15 मिनट जल्दी निकल जाओ, इट्स बेटर टू बी लेट देन टू बी नेवर ना। तो ये बात दिमाग में रखो, क्योंकि आप सिर्फ अपनी जिंदगी रिस्क में नहीं डालते जब आप रैश ड्राइविंग करते हैं, आप दूसरों को भी अपनी लपेट में ले जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, उसको तो एक कहते ना एक पिन के जितना भी कोई खराश तक नहीं आई, लेकिन बेचारे बाकी जो थे वो ना बच सके, जो उस क्रैश में जिनका नुकसान हुआ, बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ। तो भाई एक इंटरेस्टिंग बात एक और बता दूं आपको ट्रैफिक के बारे में, और वो ये है कि कुछ शहरों में ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग ये भी करते हैं, जैसे अब आजकल कतर में भी इसका रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग मेट्रो वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मैं आपको ट्रैफिक जैम की एक आसान और एक बहुत सिंपल और एक बहुत मज़े की मिसाल दूँ ना, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके दिमाग में ट्रैफिक जैम को लेकर क्या आता है, कि मैं अगर आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम कहाँ हो सकता है, बताओ ज़रा, बताओ बताओ बताओ बताओ, सबसे लंबा ट्रैफिक जैम, सबसे लंबा, एक ही कंट्री आता है ना दिमाग में, मेरे तो एक ही आता है और वो वाकई में सही निकला, वो ये है कि दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम जो रहा था ना, वो रहा था अपना चाइना में। ये दुनिया के सबसे लंबे तरीन ट्रैफिक जैम में रिकॉर्ड किया गया था 2010 में, चाइना में हुआ था ये, जहाँ चाइना नेशनल हाईवे, उसको कहा जाता है चाइना नेशनल हाईवे 110, और बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है इसे। इतनी, अगर आपको इसका एक आइडिया लेना हो ना, तो चाइना ट्रैफिक जैम जाकर सर्च मारिएगा, आपको पता चलेगा भाई ऐसा लग रहा है जैसे चींटियों की भरमार नहीं होती मीठे पर, ऐसे ऐसे गाड़ियों की भरमार है। और इनके हाईवेज जो होते हैं ना, वो छोटे नहीं होते, 6-6, 8-8 पट्टियों वाले इनके हाईवेज होते हैं, बहुत लंबे चौड़े। तो ये जो ट्रैफिक जैम था ना, ये तकरीबन 100 किलोमीटर तक फैल गया था और हजारों गाड़ियां इसमें फंस गई थी। सबसे हैरत वाली बात ये कि कुछ ड्राइवर्स दिन भर, आप कह लें कि सिर्फ 1 किलोमीटर ही, पूरा दिन, पूरे दिन के अंदर सिर्फ 1 किलोमीटर ही लगभग जो है वो अपनी गाड़ी आगे पीछे घुमा पाए थे, और लोग कई दिनों तक अपनी गाड़ियों में महसूर रह गए थे, फंस गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा ट्रैफिक जैम बना क्यों? इसकी वजह थी बहुत ज़्यादा हैवी ट्रक्स, खास तौर पर वो जो कोल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाने वाले ट्रक्स होते हैं ना, वो थे, रोड मेंटेनेंस का काम चल रहा था, और भाई सड़क की कैपेसिटी से ज़्यादा व्हीकल प्रेशर बन गया था, जिसकी वजह से

डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, सीखो कुछ सीखो, इतना भी शॉर्ट टेम्पर नहीं हूँ। अच्छा अगर मैं आपको बताऊँ ना एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर सिर्फ डिस्टेंस देखा जाए ना तो फ्रांस में 1980s का ट्रैफिक जैम तकरीबन कितना 176 किलोमीटर तक फैला था 1980s में। तो ये भी बात थी भाई, लोग बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम में फंसते हैं लेकिन आपकी तरह टेंपर लूज नहीं करते। तो भाई अगली दफा से क्या करोगे, टेंपर लूज करोगे या तीन चार और मिसालें दूं मैं, तीन चार और कंट्रीज की? भाई देखो जिसने जहां जिस वक्त पहुंचना है ना वो उसी वक्त पहुंचेगा, उड़न तश्तरी तो चला नहीं रहे हो, ठीक है, चाहे जितना भी नॉस लगा लो, ट्रैफिक है तो है। अब उस ट्रैफिक के साथ कोपा पैसे करो कि अपना मूड सेट करो ये सोचकर कि मेरी वजह से सामने वालों को या आसपास वालों को नुकसान ना पहुंचे। रैश ड्राइविंग से आप सिर्फ हॉस्पिटल पहुंच सकते हो, कहीं और नहीं, ये याद रखना, और पहुंचा भी सकते हो लोगों को, तो जिम्मेदारी का एहसास करो। और फिलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई, ट्रैफिक जैम में अगर अभी भी फंसे हुए हो, मुझे पता है गर्मी है लेकिन थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लो, फिलहाल के लिए सब्र करते हुए आपको आपको बूस्ट अप देने के लिए ना, क्योंकि मेरी बातें सुन सुनकर तो वैसे ही पक गए हो गए ट्रैफिक जैम ट्रैफिक जैम ट्रैफिक जैम, एक गाना लगा देती हूँ, क्या कहते हो? गाना सुनो, ठीक है, डू यू नो, अभी मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, अभी भी ये पूछा डू यू नो, तो फिर भाई एक काम करो इससे गुफ्तगू कर लो दिलजीत भाई से, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात करते हैं अपने मुद्दे पर। सुनते रहें पे 107 दिल से देसी।

0: देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से
1: रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।

0: इतने दूर जाने की बात कर रहे हो तो क्यों ना अज़रबैजाना बीच जाया जाए। कौन कौन गया है वहां पर? मैं गई हूँ भाई, बहुत हसीन तरीन बीच है। तो भाई वापस आ जाओ, वापस आ जाओ।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: हमारे कतर में क्या हसीन जगहें कम है क्या? जो पता नहीं कितने दूर दूर क्यों जाना है भाई, इतना खर्चा करके जेब के अंदर रहकर बात किया करो ना। तो भाई आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन एफएम 107। और भाई हमारे मुद्दे का टाइम आ गया साथियों। देखो मुद्दा, इससे पहले बात की जाए मुद्दे पर, आपको याद दिलाते चलूं कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, और चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर। अच्छा भाई हमें मैसेज आया है, किसका मैसेज आया है? रोहिल भाई का मैसेज आया। क्या कह रोहिल भाई, सफानूर कैसी हैं आप? गोभी के फूल हाजिर हैं आपकी खिदमत में अलसद से। अरे भाई ये तो पास ही घूम रहे हैं। अच्छा जरा शवरमा वर्मा उठा लेना,

नहीं उठाना, मुझे याद आ गया मेरी तबीयत खराब चल रही है, मुझे नहीं खाना. घर का खाना खा के तबीयत खराब हो गई तो बाहर का क्या ही होगा. यू बाहर का खाना ना खाऊंगी मैं. तो भाई आप क्या कह रहे हैं भाई, एक बात तो बताएं मुझे. फिर उसके बाद उन्होंने तस्वीर भेज दी है. अब ये तस्वीर देखकर मैं क्या ही बात बताऊं. अब भाई मुझे टेलीपैथी थोड़ी ना आती कि मैं दिमाग के अंदर जाकर सवाल का पूछूंगी कि भाई सवाल क्या आया था दिमाग में. मतलब कोई ADHD वाला मामला है क्या आपका मेरी तरह, कि एक टॉपिक होता है फिर दूसरे तक चले जाते हैं और तीसरा मिस आउट हो जाता है, पता नहीं चलता कि हम कहाँ थे. अच्छा पीछे तो देखो जरा. अब ये मुझसे ऐसे तबसरे कर रहे हैं, मतलब मुझसे ऐसे एडवाइस मांग रहे हैं तस्वीर के ऊपर. अरे भाई मुझे क्या पता. अब देखो आपकी मुच्छे हैं, आपको जैसी पसंद हो वैसी आप रखें कटवाएं कुछ भी. अब आपका मुंह, अब मुझे कोई बोले सफा लाल रंग की लिपस्टिक लगा लो, मुझे पसंद ना आए मैं तो काली ही लगाऊंगी, मैं तो ब्राउन ही लगाऊंगी. तो मैं थोड़ी ना किसी को जबरदस्ती कह सकती हूँ भाई. अपनी मर्जी अपना बूथा है, जो करो टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, जो करना है करो. जैसे मैं हेयर कट करवाती हूँ ना जब, तो मैं ये सोचती हूँ क्या ही कोई फर्क पड़ेगा, किसी को क्या ही कोई फर्क पड़ेगा, मेरे बाल वापस से रीग्रो हो जाएंगे, अच्छे लगे लगे नहीं लगे ना सही. अपनी खेती है भाई अपनी खेती. अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ. गुड मॉर्निंग मैम, हमको तो टाइम पे ड्रॉप करना रहता है ना, नहीं तो सैलरी कट. अरे भाई ये कौन है भाई सैलरी वाला. सलमान भाई टाइम पे ड्रॉप करना होता है और जो जगह होती है ना वहीं पे ड्रॉप करना होता है. अगर आप जल्दी और रैश ड्राइविंग करेंगे ना तो वो डेस्टिनेशन चेंज होके खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल भी हो सकती है, तो हमने उससे अवॉइड करना है. वो एक कहावत है हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटर टू बी लेट देन नेवर, तो उसको दिमाग में रख कर चलना है हमने. अच्छा कह रहे हैं ये कौन है हमारे साथ, मिस्टर जैदी है. मिस्टर जैदी नहीं कॉल्स बंद नहीं हुई है, वो असल में मैं ज़रा इन्फॉर्मेशन का पिटारा दे रही थी ना, तो अब आप कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, 4434377 पर कॉल की जा सकती है. अच्छा जी और कौन है, हमें मैसेज किया है कुछ तो है, टाइम निकाल कर सुन लीजिएगा. उन्होंने दो वॉइस मैसेज भेजे, मैं इंशाल्लाह सुनती हूँ मैसेजेस. और हमें जो है ना यूसुफ भाई का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग हैप्पी मंडे मॉर्निंग. देखें मंडेज आर नेवर हैप्पी, आज वाला तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं चल रहा मेरा तो. आई एम रियली सॉरी यूसुफ भाई, आज मामला जो है ना बहुत लूज चल रहे हैं जिंदगी के. और कौन है हमारे साथ, जैन खान है. दो आंखें दिखाकर चुप हो गए हैं, मतलब इन्होंने इमोजी भेजे दो आंखों के. हाय तेरे मस्त मस्त दो नैन. सलमान खान याद आ गए मुझे. अच्छा भाई देखिए आज के मुद्दे पर आते हैं. मुद्दे पर देखो नंबर बता रही हूँ कि किस नंबर पर कॉल करनी है, लेकिन मुद्दा तो बता दूँ. देखो भाई मामला पता क्या है, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों का मौसम बिल्कुल ऐसी वाली हमारी लाइफ में फायर ट्रिगर करता है जैसी आजकल वाशिंगटन में हुई हुई है. मतलब ये कि एक चिंगारी लगाने की देर होती है और पूरी पूरी सिटी तहस नहस हो जाती है हमारी. मतलब ये कि देखें हमारे साथ होता है कि गर्मियों के दिनों में ना अक्सर औकात हम छोटी छोटी बातों पर झुलस पड़ते हैं, उलझ पड़ते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं हमारी छोटी छोटी बातों में. असल में ऐसा है कि जैसे ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं ना, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई चिंगारी से किसी ने फायरवर्क जला दी हो ना, बिल्कुल वैसा वाला मामला हो जाता है. और ये सब कुछ मैं कह लूँ मौसम की वजह से हो रहा है, ये अपनी नेचर की वजह से होता है, XYZ किसी वजह से हो रहा है. क्या आपने कभी ऐसी लड़ाई की है, चाहे वो बहन भाइयों से हो, चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे वो बेगम से हो, चाहे वो हस्बैंड से हो, कि जिसके बाद सीन खत्म होने के बाद ना आपने जब आपका दिमाग थोड़ा सेट हुआ हो ना, तो आपने सोचा हो कि भाई असल में हम लड़ किस बात पे रहे थे, हम लड़े ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी. कभी कभी ना जिंदगी में कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो लिटरली वर्ड वॉर्ड बन जाते हैं सीरियस किस्म की हमारे घर में, लेकिन कुछ गलतियों या कुछ घंटों बाद या आप कह रहे हैं कुछ दिनों बाद ना, जब हमारा पारा थोड़ा सा नीचे आता है तो हमें उसके ऊपर हंसी आना शुरू हो जाती है. मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई उस वक्त ये फसाद हो किस चीज़ का रहा था. यकीन जाने मेरे साथ तो बहुत दफा होता है, मैं तो वैसे ही गजनी हूँ ना, तो लड़ाई करते करते मुझे याद ही नहीं रहता कि भाई लड़ाई हुई किस चीज़ पर थी. अक्सर अवकात तो मेरी लड़ाई इस बात पर चल रही होती है कि TV लगाया हुआ अगले ने, ठीक है मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बिठाया गया है साथ में कि मूवी देखो मेरे साथ आकर. मैंने कहा अच्छा, ज़िंदगी में से कुछ कीमती वक्त मेरे लिए, मुझ जैसे थोड़े से
इमोशनल इंसान के लिए वक्त सबसे महंगा तोहफा है किसी को भी देने के लिए. तो मैं ये कहती हूँ कि भाई एक तो वक्त निकाल के बैठो, और साथ वाला क्या कर रहा है, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, ये उंगलियां ये अंगूठे सिक्स पैक बनाए हुए. अरे भाई हमारे साथ फिर हमें जबरदस्ती मूवी पे बिठाया क्यों था, जब तुमने अपना मोबाइल ही मुंह देकर बैठना था उसके अंदर, तो हमें क्यों साथ में बिठाया था. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में भी होती हैं. अक्सर अवकात बचपन में क्या होता था याद है, वो बहन भाइयों के साथ हम लोग लड़ते थे टीवी के रिमोट के लिए, वो भाई मार कुटाई हो जाती थी, फसाद हो जाता था बहन भाइयों के साथ. या अक्सर अवकात घरों में ये हो जाता है कि भाई एसी के टेम्परेचर पर या पंखे के ऊपर लड़ाई हो जाती है कि भाई एसी का टेम्परेचर मैं कहूँगा 24 पे हो, सामने वाले ने कहना नहीं 18 पे चाहिए या 20 पे चाहिए. भाई मेरे हाथ ठंडे बर्फ हुए पड़े और उसके ऊपर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है कि नहीं तुमने पूरा घर जो है ना वो गर्म करके रखा हुआ, एसी नहीं चलाया हुआ, मैं बाहर से आ रहा हूं, तो इतनी गर्मी हो रही है बाहर निकल कर देखो. अरे भाई तुम बाहर से आ रहे हो ना, तो तुम हमें क्यों सर्दी वाले फ्रीजर वाले कमरे में बिठा रहे हो, हम तो घर के अंदर बैठे हुए. तो भाई मामला कुछ ऐसा है कि घर की छोटी छोटी बातें जो ओलंपिक्स के लिटरली फाइनल मैच जैसी बन जाती हैं, उनके आज आपने मुझे मामला बताने. कि कभी कभी तो ये भी होता है कि घर में अक्सर औकात ऐसा हो रहा था ना कि फ्रिज में जूस किसने सारे पी लिए. अक्सर औकात बच्चों में भी तमाशा हो रहा होता है, हम जब छोटे थे हमारे साथ ये बहन भाई के साथ बड़ा होता था, फ्रिज में खाली शॉपर किसने रख दिया, जब पता है कि चीज़ ख़त्म थी तो उठा के उसको बाहर फेंको ताकि दूसरी आ सके, आखिरी जूस का डब्बा किसने पिया, फ्रिज में पानी की बोतल किसने भर कर नहीं रखी. बड़े मसले मसाइल थे भाई इसके ऊपर, तो मैं कह लूं कि लिटरली वो फुटबॉल का महामुकाबला कुछ ना होगा जो हमारे घर में तहलका मचता था बहन भाइयों के बीच में. आपका कभी हुआ ऐसा, या अभी भी कुछ बातों में ऐसा हो जाता है ना, रूममेट्स के साथ भी अक्सर औकात ऐसा हो जाता है. अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूममेट भी हैं आपके, कुछ चीज़ें आपने जिन जगहों पे रखी होती हैं आपके ख्याल में वो चीज़ आपने उस जगह पे रखी है, लेकिन वो असल में कहीं ना कहीं आपने कहीं और मिसप्लेस कर दी होती है, आप ही ने रखी होती है, लेकिन आप रूममेट्स के ऊपर चढ़ जाते हैं कि भाई मेरी चीज़ को हाथ लगाया, मैं तो हमेशा तकिए के नीचे रखता हूँ अपनी ये चीज़, ये कहाँ चली गई, मेरी फलानी चीज़ को किसने हाथ लगाया, और आखिर में जाके पता चलता है वो चीज़ कहीं और से बरामद हो रही होती है. फिर आपको याद आता है अरे हाँ कल मैंने तो उसकी जगह चेंज की थी, फिर आपको भी शर्मिंदगी होने लगती, फिर आपको कभी ना कभी हंसी भी आने लगती कि ये क्या हरकतें की हैं मैंने. तो भाई आपने आज मुझे सिंपल सी बात ये बतानी है कि भाई आपने अपने पार्टनर, दोस्त या रूममेट के साथ या बहन भाइयों के साथ कभी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर अजीब व गरीब सी कोई बेवकूफ़ाना अहमकाना सी कोई लड़ाई की हो ना, वो किस टॉपिक पर की थी जिसको आज भी आप याद कर हंस रहे होते हो कि भाई ये क्या था, ये किस किस्म की फजूल सी अहमकाना सी हरकत थी. मैसेज कर सकते हैं 666-222-107 पर, द नंबर फॉर मैसेजिंग इज 666-222-107, और चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर. फिलहाल के लिए भाई क्लॉक सेट कर लो, सफा क्लॉक सेट कर लो, तुम बातें बहुत करती हो.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107. Time check.
1: साथियों सख्त एफ एम 107 की घड़ी बजा रही है 12:01 और आप सुन रहे हैं सफा के साथ एफ एम 107 पर.
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफ एम 107 पर दिल से देसी.
1: तो भाई साथियों को भी दें भूलो आ जाओ जरा खुशबू लगा के लाइन लगा के आ जाओ. कॉलिंग के लिए नंबर है 4434377 और हमें मैसेज करने के लिए नंबर है 6662107. बताना आपने आज मुझे ये है मुद्दा हमारा ये चल रहा है कि जरा मुझे बताओ कि आपकी कभी कोई बेतुकी सी लड़ाई हुई है, फिर वो चाहे रूममेट से हुई हो, चाहे वो आपके बहन भाइयों से हुई हो, चाहे वो आपके पार्टनर से हुई हो, किसी दोस्त से हुई हो, बेतुका सा कोई मौजू हो और आप बाद में सोचें जब उसके ऊपर तो आप कहें कि किस चीज़ के ऊपर हम लड़ रहे थे. तो बहुत ही कोई बचकानी सी बात थी और लिटरली उसको याद करके आपको हंसी भी आ जाए कि भाई ये किस किस्म की बातों में मैं लड़ता फिर रहा हूँ फजूल में बच्चों की तरह. तो भाई नंबर है क्या है 4434377 कॉल करने के लिए नंबर है 4434377 और मैसेज के नंबर है 6662107. मैसेज में जो लोग आ रहे हैं मैसेज में कौन है भाई हमारे साथ, ये कौन है? नहीं ये दूसरे वाले आसिफ भाई लग रहे हैं. एक तो वो दूसरे वाले आसिफ भाई हैं वो नहीं है, ये कोई और आसिफ भाई हैं. इनका नाम लिखा हुआ है आसिफ मुर्तजा. अच्छा जी मेरी और मेरी वाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई इस बात पर हुई थी कि टीवी का रिमोट किसके पास रहेगा. वो कहती हाँ ये होता है मैंने देखा है. वो कहती हैं कि मैं ड्रामा देखूंगी, मैं कहता हूँ मुझे स्पोर्ट्स देखना है. आखिर में एक दफ़ा हम दोनों ने रिमोट सोफे के नीचे गिरा दिया था और 20 मिनट तक रिमोट ढूंढते रहे थे. लड़ाई में ही रिमोट गिर गया था इनका. वाह. और 20 मिनट के अंदर तो ड्रामा ख़त्म हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से. मैच का भी एक पार्ट तो निकल ही गया होगा मेरे ख्याल से. तो क्या ही देखा होगा आप लोगों ने. ये आप लोगों के लिए सबक है कि देखें लड़ाई झगड़े जो है ना फजूल के. अच्छा ये भी एक मसला होता है कि ख़ासतौर पे जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो 24 घंटे वो राइम्स वगैरह देखते रहते हैं. आप उनको सुन सुन के इतना पक जाते हो कि जब बच्चे सोते हैं तो आप कहते हो मैं अपना थोड़ा सा मी टाइम ले लूँ, मैं टीवी देख लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ. तो उसके अंदर फिर दोनों मियाँ बीवी का ना ख़ासतौर पर आकर टीवी पर बड़ा क्रैश हो जाता है कि नहीं भाई मैं टीवी पर ड्रामा देखूँगा, नहीं मैं टीवी पर फलानी चीज़ देखूँगा. ये भी एक हकीकत बात है. और भाई हमें किसने मैसेज किया है ऑफलाइन नाम है इनका ऑफलाइन क्यों है भाई अच्छा नहीं अरे भाई ये तो मेरे भाई के नाम वाले हैं, अरफात भाई हैं ये. क्या कह रहे हैं मेरी लड़ाई होता मेरे दोस्त के साथ हुई थी क्लास 8th में. तो अभी भी तो आप बच्चे ही हैं, कौन से बड़े हो गए. बचपन में लड़ाई हुई थी, हम कौन से बचपन तक पहुँचे हैं अभी. अच्छा अभी बाकी का मैसेज लिख रहे हैं, कह रहे हैं हेलो हाउ आर, मैंने कहा हेलो हाउ आर, फिर कह रहे हैं मेरी 8th क्लास में हुई थी. किस मौजू पर किस टॉपिक पर हुई थी भाई मेरी. मुझे याद है एक आधी दफ़ा कभी मेरी वैसे लोगों से लड़ाई होती नहीं है लेकिन अगर कभी हो जाए तो एक आधी दफ़ा ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर हुई है कि इसके बारे में मैं कहती हूँ ये कोई बात है लड़ने वाली, किस कैसी बातें लेकर बैठते हो तुम लोग, कि क्या खाला अम्मा वाली बातों में लड़ रहे होते हो. मुझे इतनी हंसी आती है ना जब लोग फजूल सी बातों के ऊपर लड़ते हैं. अच्छा भाई इमरान खान साहब ने मैसेज किया है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये जो है ठीक है ये लड़ाई होती है डेली होती है मेरे रूम में रूममेट के साथ एसी को लेकर. ओ भाई हमारे ऑफिस में ना इस मसले का वैसे तो मैंने हल निकाल लिया लेकिन जब मैं शुरू में आई थी ना तो मेरा बहस मुबाहिसा इसी बात के ऊपर होता था एसी. अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि एसी का टेम्परेचर ड्यू टू सर्टन मशीनरी वगैरह हमारा टेम्परेचर एसी का रहना चाहिए 18-16 ऐसा. और भाई मेरे तो हाथ पांव जमते हैं एसी की वजह से. मैं कहती हूँ मुझे ऐसा लगता है एसी बीमारी है. मुझे ऐसा लगता है एवरीबडी हैज़ देयर ओन व्यू. हीटर और एसी मुझे दोनों बीमारी लगते हैं. तो मैं कहती हूँ नहीं जैसा आपका रूम टेम्परेचर ना वैसा रखो चीज़ों को. अब मैं ऑफिस आई, अब जाहिर बात है ऑफिस में मुख्तलिफ कुलीग्स होते हैं, किसी को टेम्परेचर 18 पे चाहिए. अपने सर्वर भाई को टेम्परेचर 18 पे चाहिए. वो कहते हैं मैं मुंह यूं करूं तो एसी में एसी की ठंडी ठंडी हवा है ना वो मेरे ऊपर आ रही हो और मेरी जुल्फें उससे हिल रही हो और मैं जो हूं ना वो बस एंजॉय कर रहा हूं एसी को. सर्वर भाई का बस चले, सर्वर भाई एसी को ना घर बना लें. तो उनकी और मेरी टसल होती, मैं

0: ऑफ करती हूँ ऐसे ही सरा भाई ऑन करते हैं, मैं ऑफ करती हूँ सरा भाई ऑन करते हैं, सर भाई मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, जल्दी से वापस आ जाए 15 तारीख हो तो। तो इमरान भाई ये आपका वाला मामला हमारे ऑफिस में भी चलता है, बहुत टसल होती है एसी की, जैसे ही सरो भाई न्यूज़ के लिए जाती ना मैं ठक करके पीछे से एसी बंद कर देती हूँ, फिर वापस आते कहते हैं एसी किसने बंद किया, एसी किसने बंद किया है, फिर मैं कहती हूँ मुझे तो नहीं पता, मुझे तो आई डोंट नो। लेकिन अब मैंने मसले का हल निकाल लिया है, मैं एक गर्म तरीन कनेडा जाकर मैं जैकेट लेकर आई हूँ, सोचो वो वाली जैकेट पहनती हूँ मैं ऑफिस में, मैंने मसले का हल निकाल लिया। खैर हमारे पास दूसरे मैसेज में कौन है भाई, मैसेज में हमारे पास है मेरी बहन से मेरी लड़ाई सिर्फ इस बात पर हुई कि फ्रिज में रखा हुआ लास्ट पीस ऑफ केक किसने खाया था, हम दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए, फिर बाद में जाकर पता चला तफ्तीश हुई बाद में जाके पता चला केक हमारे अब्बू खा चुके थे और हमें बताया भी नहीं था। भाई ये बड़ा बैड सीन हो जाता है, ये बहुत बैड सीन होता है, बच्चों ने हमारी बड़ी ऐसी लड़ाइयाँ रही हैं, बहुत बुरी बुरी लड़ाइयाँ रही कि मेरी आखिरी चॉकलेट किसने खाई, वो मेरी थी और पता चला कि अम्मा या अब्बा में से किसी ने खा ली थी। और ख़ास तौर पर वो जो केक आपके दिमाग में पूरी रात घूम रहा होता है ना, पूरी रात आपका दिल करता है बस सुबह हो और मैं उठ के उसे खा लूँ, या कोई बर्गर शर्गर पड़ा होता है और सुबह जब आप उठो और वो आपको फ्रिज में नहीं मिले, ओ भाई तबाही हो जाती है, तबाही, मतलब ऐसा लगता है दिन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। आज क्या सब मैसेजेस में बात करेंगे, कॉल नहीं करेगा क्या कोई, क्या हो गया है गोभी दया फुलन, नाराज हो गए हो का, पहले कॉल आ रही थी असल मैंने उठाई नहीं, मैंने कहा थोड़ा अजान के बाद मुद्दे पर आकर बात करेंगे, तो क्या नाराज हो गए हो क्या गोभी दया फुलन, कोई बात नहीं खुशबू लगा कर आ जाओ मामला सेट कर लेंगे, देखो नाराज नहीं होते, देखो ये फजूल सी लड़ाई फिर यहाँ पे भी शुरू हो गई, ये भी एक लड़ाई है, तो भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, कॉल करो मुद्दा सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मेरे भाई, कौन बात कर रहा है?
1: जी मेरा नाम है सैयद शोएब जैदी।
0: सैयद
1: शोएब, जस्ट नॉर्मली शोएब।
0: आपका नाम
1: मैडम, आपके पाकिस्तान में फेमस है शोएब अख्तर।
0: अच्छा शोएब, शोएब सैयद शोएब, अच्छा जी, मुझे सुनाई, मुझे क्या सुनाई दे रहा था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा प्रॉपर, शोए मुझे सुनाई देता, शोए मैंने कहा शोए ना
1: फेमस नाम है, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया जानती है शोए अख्तर।
0: हाँ भाई बस वो आपने एकदम से जब बोल दिया ना शोए अख्तर तो फिर जाके दिमाग की घंटी बजी। आज मैं ना कुछ वैसी लूज चल रही हूँ, आज मेरा दिमाग कुछ हवाओं में घूम रहा है, कान भी हवाओं में घूम रहे हैं।
1: बहुत टाइम से देखो मैं वैसे तो रेगुलरली कॉल करता हूँ लेकिन आपसे प्रथम बार हमारी बात हो रही है।
0: सही
1: मतलब जब से थरवर भाई गए उसके बाद से मैं शो तो रेगुलर सुनता हूँ लेकिन आज कॉल बस आज टाइम निकाल के मैंने किया।
0: जहे नसीब, जहे नसीब।
1: हाँ आज आपने जब स्टार्टिंग किया शो तो आपने बोला कि मैंने आज गरीबों वाला खाना खाया खिचड़ी, मुझे आप बस ये समझाइए गरीबों वाला खाना कैसे हुआ?
0: देखें सादा होता ना, हमारे घर में वो हमारी अम्मा कहती ना बचपन में हम लोग खाते नहीं थे ना, तो अम्मा कहती थी कि हाँ तुम लोग तो इसको ऐसे ट्रीट करते जैसे गरीबों वाला खाना, तो वो हमने एज अ जोक बना दिया। जबकि मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, मैं पिछले 2 हफ्ते से मेरे घर में लड़ाई चल रही थी कि मैं खिचड़ी खाऊंगी, मुझे खानी है, और कोई घर में खा नहीं रहा था, तो हम जो ना ऐसे ही तंग करने के लिए ना एक दूसरे को कहते हैं कि क्या ये गरीबों वाला खाना है जो तुम लोग ऐसे करते हो, तुम लोग इसको कि अगर चिकन नहीं बनेगी गोश्त नहीं बनेगा तुम लोग खाओगे नहीं।
1: रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे प्राइस हैं इसके
0: भाई, देखें रेस्टोरेंट मैंने कल किया, मैं बता रही हूँ अगर मेरा रेस्टोरेंट होता ना और मैं वो खिचड़ी किसी को खिलाती तो लोग कहते वाह भाई वाह शेफ कहाँ है, मेरी वाह वाह हो जाती, मैंने इतनी मजे की खिचड़ी बनाई थी, अब पता नहीं किसकी नजर लग गई मुझे, इतने मजे की थी वो।
1: नजर ऐसे नहीं लगती है, नजर जब लगती है कि मतलब कि जैसे कि किसी ने देखा हो, कोई आपके पास बैठा है और आप खाना खा रहे हैं और सामने वाला आप पे नजर रख रहा है।
0: देखें ये
1: देखो एक बार भी नहीं पूछा इसने मेरे को, तो जब नजर लगती है।
0: देखें मैं यहाँ पे बताकर गई थी, मैं ऑन एयर बताकर गई थी कि मैं आज खिचड़ी बनाऊंगी जाकर मैंने गलती ये कर दी। मुझे असल में ना
1: याद आया, पता है आज सुबह जब मैं उठा हाँ तो मैं सोच रहा था कि जैसे कि आज शाम को मैं वापस आऊंगा तो आज मैं भी जो है ना खिचड़ी ही बनाता हूँ।
0: हाँ सही,
1: मैं

0: मतलब मैं अच्छा खासा एक मतलब बढ़िया कुक कर लेता हूँ सारी चीजें. तो मेरी मैं मतलब मेरी वाइफ जो है वो इतना खाना नहीं बनाती जितना मैं ही बनाता हूँ घर पर जहाँ तक मोस्टली, क्योंकि वो मुंबई से मैं दिल्ली से हूँ, तो हम मुझे नॉर्थ इंडियन फूड बहुत ज्यादा पसंद है और वो बनाती है साउथ इंडियन स्टाइल में.
1: सही,
0: बहुत ज्यादा मसालों वाला.
1: अरे भाई मैं बता रही हूँ आपकी बेगम बड़ी खुशकिस्मत है.
0: हाँ खुशकिस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह.
1: सही, तो भाई आज आप सोच रहे थे खिचड़ी बनाने का.
0: जी बिल्कुल, आज मैं सोच रहा था सुबह सुबह जब उठा मैंने यार आज शाम को जो है ना कुछ मतलब रात हमने बहुत ज्यादा बाहर गए थे, दोनों का ऑफ था, वीकेंड था, तो हम लोग बाहर गए तो हमने ना कुछ ज्यादा स्पाइसी बारबेक्यू ले लिया था.
1: सही,
0: और वो पूरी रात उससे मतलब इतना मतलब
1: मुंबई
0: साइड, मुंबई साइड की उसको स्पाइसी बहुत पसंद है, उनके साथ साथ मुझे भी खाना पड़ता है जबरदस्ती,
1: तो पेट में तबाही, जंगल में आग लग गई
0: पूरी तरह. तो इसी लेवल में सोच रहा था सुबह सुबह उठ के यार आज शाम को थोड़ा हल्का सा खिचड़ी बनाऊंगा दही के साथ आराम से खाऊंगा.
1: हाँ मैं बता रही हूँ सैयद भाई,
0: मैंने जैसे एफएम ऑन किया आप बोले वे गरीबों वाला खाना, मैं डर गया, मैंने यार ये
1: वो वाला गरीब वाला नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब ये कि हम लोग एक दूसरे को कभी कभी कहते हैं ना. अच्छा मजे की बात ये है कि बचपन में हम लोग वाकई में चिढ़ते, मैं तो चिढ़ती थी खिचड़ी से, लेकिन अब वो हाल है कि अब लिटरली बंदा कहता है नहीं भाई मैं खिचड़ी खाऊंगा, मुझे दाल चावल दे दो, मुझे खिचड़ी दे दो, मुझे ये चीजें पसंद है, मुझसे और चीजों के बारे में बात नहीं करो. अच्छा मजे की बात ये है कि मैं आपको एक बात बता दूं, आई लर्न माई लेसन द हार्ड वे, रेडियो पे बिल्कुल ना बताना कि क्या खाने वाले हो. मैं बता रही हूँ खिचड़ी को भी नजर लग जाएगी.
0: खिचड़ी को भी नजर लग
1: गई, मेरी खिचड़ी को नजर लग गई भाई, अल्लाह रहम करे.
0: खिचड़ी को नजर नहीं लगनी चाहिए, अगर भाई कुक का शुक्र होता तो भाई चलो ठीक है समझ में आती है बात, नजर लग गई, लेकिन खिचड़ी को नजर नहीं लगनी चाहिए.
1: अरे भाई कल शाम से जो मेरी तबीयत खराब है तो मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आज मेरा भी ये शो खत्म हो तो मैं हॉस्पिटल भागूं, मेरी इतनी तो कोई बेहतरी, क्योंकि मैंने आगे पीछे कुछ खाया ही नहीं, मैंने सिर्फ वो खिचड़ी खाई थी, अब मुझे समझ में ना आ रहा और बाहर से मंगवा के ना खाई थी.
0: पता आपके साथ उल्टा हुआ, जब किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको बोला जाता है कि आप जैसे थोड़ा खाना कम मतलब खिचड़ी बना के खाओ.
1: हाँ
0: ठीक है, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा लाइट हो जाता है, तो
1: हम खिचड़ी
0: इसी चीज का मशवरा देते हैं कि आप खिचड़ी बना के खाइए.
1: उल्टे चलते हैं हम खिचड़ी खा के तबीयत खराब करते हैं. अब हम कुछ भी नहीं खाए क्योंकि अब तो हाल ये हुआ है कि पानी तक बाहर आ रहा है भाई, अब तो ये है कि पानी पी रही हूँ तो वो भी बड़ी मुश्किल से नीचे उतर रहा है, तो अभी तो कुछ भी नहीं खाना. अब हम डाइटिंग करेंगे, दो एक से दो केजी वजन कम होगा ना, हम औरतों की ना एक बड़ी मजे की बात है कि हमारा एक से दो केजी कम होता है ना तो हम खुश हो जाती है.
0: हाँ ये बात है,
1: तो वो एक से दो केजी कम होगा ना मैं उसके अंदर खुश हूँ. देखिए ऐसी बातें ना बोला करें, देखिए अभी मैं आपकी कॉल काट दूंगी, ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं बोला करेंगे, शुगर कट डाउन नहीं होती हमसे. देखें कुदरती तौर पे वजन कम होता है तो हो जाए, हम अपनी ये शुगर वुगर नहीं छोड़ सकते भाई, देखें मंड कर हमने शुगर खानी और पीनी और चॉकलेटें खानी है और घी वाले खाने खाने और फिर जो है ना रोना धोना रोना है वजन का, खुद होगा तो हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह.
0: तो वही सीन है बस, मेरे ख्याल से हर औरत का यही सीन है कि मतलब अपने आप को मेंटेन में रखना है और चॉकलेट और शुगर ये जितनी भी सारी चीजें आइसक्रीम वगैरह वो भी खानी है.
1: अच्छा हमारा तो मामला कुछ ऐसा है ना कि हमारे आसपास वाले बिगाड़ने वाले भी तो बहुत है ना, मैं दो दिन अगर कुछ कचरा ना खाऊं तो मेरे मियां साहब को परेशानी हो जाती, कहते हाँ तुमने अच्छा तुम्हें ये चीज पसंद थी तुमने ये नहीं खाई, तुमने फलानी वाली चॉकलेट नहीं खाई तो तुम खा लो कोई बात नहीं, नहीं होती तुम मोटी नहीं होती तुम खा लो. मैंने कहा ये अच्छा है.
0: आपको सच्ची बताता हूँ, जब हम लोग रोजरी के लिए जाते हैं तो मेरी वाइफ एक अलग जो है ना कार्टन क्या बोलते हैं उसको ट्रॉली, वो अलग ट्रॉली लेके जाती है उसको उसको अपना कचरा भरने के लिए, उसमें चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स और जूस और दुनिया भर के बिस्किट पता नहीं जाने क्या क्या.
1: और ये
0: मैं एक ऐसा वाहिद हस्बैंड हूँ जो मैं वहाँ जाके ढूंढता हूँ आप सब्जियाँ गोश्त अगर अगर जितनी भी ग्रोसरी है वो सब चीजें मेरा मुझे देखनी है.
1: ये सही चल रहा है,
0: बनाना भी मेरे को
1: ये जो ना रब ने बना दी जोड़ी वाला सीन है, बस सही है. एक दूसरे को समझ कर चलते हैं. देखें ये बैलेंस है, ये जिंदगी का बैलेंस है सैयद भाई, टेंशन ना लें. ये जिंदगी का बैलेंस है।
0: समझना पड़ता है मैम, अगर नहीं समझेंगे तो गाड़ी जो है ना वो रास्ते में कहीं भी खराब हो सकती है।
1: और बेचारे मैं मर्द हजरात को सल्यूट करती हूँ क्योंकि वो बेचारे जो है ना ये अच्छा मैं पिछले दिनों एक मेरे पास एक रील आई जो कि मुझे बड़ी हंसी भी आई, खूबसूरत भी लगी, अच्छी भी लगी बात कि अल्लाह ताला ने औरतों को कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर किया है कि वो बड़ी इमोशनल बीइंग होती हैं तो जज्बाती हो जाती हैं, गुस्सा, रोना धोना, ये वो, लड़ाई झगड़ा। लेकिन उस रील के अंदर ये बोला गया था कि अल्लाह ताला ने आदमी को हाकिम बनाया है और उसको बड़ा सॉलिड दिमाग दिया है, तो उसके अंदर आदमी होने का मतलब ये होता है कि वो ये सारी चीज़ें, ये टेंट्रम्स, ये हरकतें ना औरत की एक लिमिट तक बर्दाश्त कर जाए। तो वो डांट देना या गुस्सा बैक कर देना वो चीज़ नहीं होती आदमियों के अंदर। ये मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लकी, वन ऑफ दोज लकी पर्सन कि अगर मैं कुछ आगे से बोल रही हूँ तो मुझे खामोशी मिलती है आगे से कि हाँ भाई बर्दाश्त कर लिया सामने वाले ने। ये आपकी बात मैं मानती हूँ कि इंसान की लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई आगे ना बढ़े, एक बंदा चुप हो जाए।
0: हाँ बिल्कुल, अगर जैसे कि मान लो मैंने बहुत सारे रिश्ते ऐसे देखे खराब होते हुए कि
1: ईगो आ जाता है, ईगो
0: ईगो आ जाता है ना बीच में किसी के भी, तो वो रिश्ता ज्यादातर टिक नहीं पाता। तो मोस्टली अगर जो ऐसा लग रहा है कि भाई सामने वाला बंदा गुस्से में है, कोई टेंशन है, कुछ है, कोई भी है, कोई भी बात है, तो एकदम से चुप हो जाओ, चाहे वो मतलब हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को ये बात समझनी चाहिए कि बस अपना जैसे कि टाइम होता है कि चलो ठीक है आपकी गलती है, मान लो हस्बैंड की गलती है,
1: हाँ।
0: तो उसको जो है ना वहाँ पे आकर चुप हो जाना चाहिए। वहाँ पे ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं मर्द हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो चीज नहीं करनी चाहिए।
1: अच्छा ये तो बताएं कि आपकी अगर किसी पे बेमुद्दा कोई लड़ाई हुई है किसी के साथ तो वो किस बात पे हुई है ये तो बताएं जरा। कुछ चीजें ऐसी होती है ना बाद में हम याद करते हैं तो हम कहते हैं भाई ये क्या ही, कभी बहन भाइयों के साथ हो जाती है, कभी दोस्तों के साथ मुँहमारी हो जाती है, कभी किसी रूममेट के साथ हो जाती है, जिसका हम लोग सोच बाद में सोचते हम हंसते हैं, हम कहते हैं ये क्या बचकाना हरकत की है हमने।
0: परसों ही मैं मेरी वाइफ से ही झगड़ा हुआ था, मेरा एक दोस्त है
1: सही,
0: और मुझे मतलब एक खास इंस्ट्रक्शन मिले हुए कि उसके साथ नहीं जाना है
1: सही,
0: और मैं बिना उसके साथ जाए रुक नहीं सकता।
1: अच्छा तो, सही
0: हाँ, तो अब मैं परसों हम लोग मैं अपने उसके दोस्त के साथ थोड़ा बाहर था तो
1: बेगम
0: उसके बाद
1: पता
0: मैं
1: गया?
0: वापस आया तो बेगम को पता चल गया कि कहाँ था मैं।
1: ऐसे तो दोस्त रखते क्यों हो?
0: मैंने कहा कि जब मतलब मैंने मना किया है कि उसके बंदे के साथ नहीं जाना है तो तुम उसी के साथ के जाता हूँ। मैंने एक बात बता, मेरा कोई और यहाँ तो कोई रिश्तेदार तो है नहीं,
1: सही,
0: दो चार दोस्त है उनके साथ बैठ जाता हूँ, तो अब इसके पीछे भी तेरे को झगड़ा करना है। वो बोलती है कि दुनिया में किसी के साथ भी जाओ, उसी के साथ नहीं जाना। मैं बोले यार तो और मेरा कोई और दोस्त भी तो नहीं है, किसके साथ जाऊँ अब, नया कोई दोस्त लेके आऊँ।
1: ये बात है, और वो दोस्त ना आपका बेस्ट बेस्ट बेस्ट बड़ी होगा, ये भी एक रोला होता है।
0: हम लोग ना साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर लेते हैं, मतलब तो बस वो ये कि मतलब ये मतलब वो बचाना चाहती है।
1: हाँ, ये क्राइम पार्टनर वाला जो सीन होता है ना, सुन लें बेगम की, सुन लें बेगम, गलत नहीं होती, छटीज बड़ी तेज होती है बेगम की।
0: मैंने ये नहीं कहा कि बेगम गलत होती है, वो बात उनकी भी ठीक है कुछ हद तक, लेकिन उन्हें भी मेरी बात समझनी चाहिए।
1: दोस्तों को लेकर झगड़ा
0: देश में,
1: वाह,
0: अभी मतलब हम लोग कहीं अपने घर पर नहीं है, यहाँ तो कोई इतने मतलब मेरा इतना बड़ा ज्यादा क्रू नहीं है, मतलब इतना ज्यादा जान पहचान नहीं है कि मैं किसी के साथ भी जाकर बैठ रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं, तो उनको भी ये छोटी सी बात समझनी चाहिए।
1: चले भाई ये एक संगीन मुद्दा है, ये हल्की बात नहीं है भाई, देखें ये हम ना मानेंगे, हम लेडीज के साथ हैं, लेडीज के साथ।
0: मैं 3 घंटे तक घर तक भाग रहा हूँ घर के मारे।
1: वेरी गुड, देखें ऐसे दोस्तों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो डरना चाहिए,
0: होता है कभी कभी, जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं।
1: चले अल्लाह ताला सुलझा दे मामला, मैटर आपका सुलझाए रखे, बेगम का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, टेंशन नॉट, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बताएं हमारे साथ, हम लोग गेम खेलते हैं बॉलीवुड ट्रिविया की, गाने पहचानेंगे हमारे साथ
0: हम लोग, आई थिंक 12-15-13 मिनट हो गए बात करते हुए, अभी किसी और को भी थोड़ा मौका दीजिए।
1: चलें भाई चलें, ठीक है भाई ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज,
0: अल्लाह हाफिज।
1: तो भाई गेम ना खेली, देखो भाई गेम जिसने खेलना है वो हमें कॉल कर ले 4343-4377 पर, और 4343-4377 पर हमारे पास मैसेजेस की भरमार लगी पड़ी है, मैसेजेस मैसेजेस मैसेजेस। अच्छा जी, जब गाँव

0: थी कहां कहानियों के शहर में. बताएं बताएं कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था.
1: यहाँ पे है ये गाना, बहुत अच्छे से याद है. लेकिन
0: हाँ,
1: मैं छू रहे मिला हूँ ऐसा कुछ है ना, आगे का लेकिन वो याद नहीं है. अगर ना ना ना,
0: हाँ हाँ, अगर ये इसका सेंटेंस है, अगर तुम कहो,
1: अगर तुम कहो, मैं तो लग रहा
0: हूँ मुकेश जी
1: वाले
0: पे लेके
1: चला जा रहा
0: हूँ.
1: अगर तुम कहो,
0: वहाँ
1: लेके जा रहा हूँ.
0: शाहरुख खान नाराज हो जाएगा.
1: हम छोटे थे जब ये लाइक 10-15 इयर्स.
0: एसआर के ने आ जाना है अभी स्टूडियो में. चले भाई, टाइम तो खत्म हो गया. एसआर के ने टूटा हुआ दिल लेकर आ जाना है. ब्लॉक बस्टर मूवी थी. यस बॉस.
1: चले आप बता दें फिर मुखड़ा कौन सा था.
0: ये अब मैं बाकी प्लेयर क्या करूंगी. अच्छा चले आपको बता देती हूँ. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं. हाँ जी, चले चले. दुनिया है, होता है, चलता है. नेक्स्ट टाइम कल फिर कॉल कीजिएगा. ऑन अ डिफरेंट नोट बात करेंगे विद अ डिफरेंट सॉन्ग. क्या पता कल आप सॉल्व कर जाएं इसे. ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. ये जो इन्होंने बात बोली छोटे भाई वाली, ये तो मेरे दिल पे ठा करके लग गई. मुझे मेरा छोटा वाला भाई याद आ गया. उसामा सुन रहे हो, तुम भी ऐसी हरकतें करते हो. हम पता छोटे भाई को क्या बोलते हैं. मैं अपने छोटे भाई को बोलती हूँ, मगर ना माचिस का काम करते हो, माचिस का. तो भाई ऐसा होता है, हर घर में होता है. तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आपके घर में जिस बात के ऊपर ओलंपिक का फाइनल मैच होता है वो कौन सी बात है. ये आपके घर पर या आपकी लाइफ में कभी ऐसा होता है ना. अच्छा भाई, हमारे पास मैसेज में कौन है. निज़ाम, निज़ाम, निज़ाम ही है ना. हाँ निज़ाम. रूममेट के साथ मेरी सबसे अजीब फाइट ये थी कि उसने मेरी कॉफ़ी मग यूज़ कर ली. मैंने कहा तुमने मेरी पर्सनल चीज़ क्यों यूज़ की. वो बोला भाई मग ही तो है. बस मुझे उस बात पे गुस्सा आ गया. मग ही तो है, बात मग की नहीं फीलिंग्स की है. अब हम दोनों अपने अपने मग्स पर नाम लिखते हैं. मग्स की नहीं फीलिंग्स की. अच्छा कुछ लोगों को होता है. अच्छा मैं उनमें से नहीं हूँ. मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा कोई कप इस्तेमाल कर ले ये कर ले वो कर ले, मुझे नहीं होता. लेकिन मैंने कुछ लोगों को बड़ा प्रिसाइसली देखा है. वो अपने मग्स, अपनी प्लेट्स, अपने स्पून्स तक अलग रखते हैं भाई. तो मैं ये बात मान सकती हूँ आपकी भाई, मैं ये बात मान सकती हूँ. और अक्सर का ये होता है कि अच्छा मैं जब हॉस्टल में थी ना तब भी मैं ये काम नहीं करती थी कि मैं किसी को प्लेट या चमचे या मक्की ऐसे किसी को तंग करूं. मुझे नहीं होता था इस चीज़ से प्रॉब्लम. शायद शुरू से है, सबका अपना अपना एक क्या कहते हैं एक स्पेस होता है. आई वॉज अ वेरी रफ एंड टफ पर्सन, तो मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता था. आई हैड डिफरेंट प्रायोरिटीज़. तो भाई और हमारे साथ कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77. कॉल पे देखते हैं कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम. इस तरह कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल, अल्लाह का करम है, अल्लाह की रजा में राजी हैं. बस थोड़े से हालात जो हैं आज कुछ नासाजगार चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल तक बेहतर हो ही जाएंगे. कौन है हमारे साथ?
2: हालात ऐसे ही हैं. मैं आदिल बात कर रहा हूँ.
0: मोहम्मद आदिल कैसे हैं? ठीक ठाक है. देखिए कल किसी ने मेरी खिचड़ी पे नजर मारी है तो मैं उसको ढूंढ रही हूँ. अभी इंतजार में हूँ. मैं कॉल कोई करेगा और कहेगा मैंने नजर मारी थी, मैंने नजर मारी थी.
2: देखिए ये भी हो सकता है ना, नजर अपनी भी तो लग जाती है.
0: क्या पता भाई, मैं मास्टर शेफ चल रही हूँ. मैं बता रही हूँ मैंने इतने दिल से खिचड़ी कभी ना बनाई थी. मैं बता रही हूँ मैंने अपने हाथ चूम लिए थे कि आ क्या तो लजीज खिचड़ी बनाई है. और इतनी लजीज बनाई थी कि मैं जो थोड़ी बहुत बच गई थी ना उसको फ्रिज में डब्बे में छुपा कर पीछे रख कर आई थी. अभी जाकर गर्म करके खाऊंगी. आदिल भाई आप बताएं.
2: खिचड़ी से बात याद आई.
0: जी जी
2: अलहमदिल्ला. मुझे आपकी खिचड़ी से बात याद आई. मैं एक दफा ना पराठा बना रहा था.
0: सही,
2: फलों वाला पराठा. आपको पता है घर में अम्मी बना कर देते थे अंडा पराठा वगैरह. मैं वो बना था तो वो बनाते बनाते मेरे से जल गया.
0: सही,
2: उस टाइम तो मेरे पास कोई भी नहीं खड़ा था. बट आई थिंक सो कि मेरी ही नजर उसको लग गई.
0: अब वो खूबसूरत गोल गोल बना
2: लगी है वो मुझे मालूम नहीं.
0: वो कभी कभी
2: टॉपिक चल रहा था.
0: आज हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि जरा ये बताएं कि घर में किसी फजूल सी बात, घर में या आपकी लाइफ में कभी दोस्त होते हैं, बहन भाई होते हैं, अम्मा अब्बा होते हैं, आपके पार्टनर्स होते हैं, उनसे किसी से भी आपकी कोई नोक झोंक हो गई, लड़ाई हो गई हो, और बहुत ही बेतुके से टॉपिक पर भाई, जिसके ऊपर कोई लड़ाई बनती नहीं थी।
2: बिल्कुल हुई है।
0: तो वो मुद्दा क्या था?
2: मेरी दो लड़ाई हुई है। पहली तो मेरी मिसेस के साथ हुई है, पता नहीं वो मुझे सुन रही है कि नहीं। मैं बात बाद में करूंगा।
0: मेरा शो आज कन्फेशन बॉक्स बन गया है।
2: और फर्स्ट और जो तो फर्स्ट लड़ाई थी ना, वो मेरी मेरी छोटी सिस्टर के साथ हुई थी।
0: सही।
2: बिकॉज शी इज लिविंग इन दुबई।
0: सही।
2: तो वो इस तरह लड़ाई हुई थी, घर में कोई भी नहीं था और किसी टॉपिक में वैसे आई थिंक खाने पे कुछ लड़ाई हो रही थी हमारी, चिप्स पे पता नहीं क्या हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसने मेरे बाल पकड़ लिए, मैंने उसके बाल पकड़ लिए।
0: छोटे थे तब।
2: तो आप इमेजिन कर सकते हैं 30 मिनट तक हम एक दूसरे को यही कहते रहे, पहले तुम छोड़ो, वो कहती पहले तुम छोड़ो।
0: बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने सिर्फ बाल पकड़े थे। हमारे यहाँ तो दंगा फसाद होकर खत्म भी रहता, एक बंदा हॉस्पिटल में पड़ा भी होता था।
2: और बाल पकड़ करना एक दूसरे को झिझोड़ रहे हैं कि छोड़ने की नहीं छोड़ना। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं छोड़ना, तुम ही छोड़ो।
0: बाल पकड़े हुए एक दूसरे के, गुत्थम गुत्थम हुए।
2: यस एग्जैक्टली। और घर में कोई भी नहीं था।
0: वेरी गुड। तभी तो इतनी लंबी चढ़ी चढ़ी लाई। सही।
2: तो फिर मेरे दिल में आ गया, मैंने कहा यार नहीं, छोटी बहन है तो इतना गलत हो रहा है मेरे हाथ। तो फिर मैंने छोड़ दिया।
0: बड़े भाई।
2: और फिर उसने एंड पे मुझे बाल पता कैसे छोड़े, मुझे एक दफा हिला के मुझे, मैंने कहा तू ही छोड़ेगा।
0: आए हाय हाय। बहनों का जो वो कहते हैं ना, वो डॉन पना होता है ना, वो कहीं नहीं जाता।
2: एग्जैक्टली। और वो थी भी बहुत लड़ाकी और उसकी मेरी लड़ाई भी बहुत होती थी, और उसमें लड़ाई में ज्यादा हाथ होता था हमारा अब्बू का। अम्मी ने अगर किचन में चले जाना है या साइड पे चले जाना है तो अब्बू ने मुझे आंख मार ली, बैठे बैठे से नीचे गिरा दिया। बेड पे जाना, उसको नीचे गिराना, तो उसने चीख मारना जोर से, अम्मी आदिल फिर तंग कर रहा है मुझे, फिर मार रहा है। और फिर अम्मी ने आना वाइपर लेके मेरे पीछे, मैंने वहां से ड्राइंग रूम वाले रूम से बाहर भाग जाना।
0: बहुत बहन भाइयों के तो ऐसे ऐसे किस्से। मेरी आईब्रो के ऊपर एक कट है, मेरे आईब्रो के ऊपर वो कट इसलिए अच्छा। क्योंकि मैंने खेलते हुए, हम खेल रहे थे, हम गुस्से में नहीं थे, हम खेल रहे थे, और मैंने भाई को बार बार चिढ़ा रही थी, पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे, उसके हाथ नहीं आ रही थी। तकरीबन 15 मिनट तक तो वो भागा होगा, फिर उसके हाथ में छोटे भाई का फीडर आया, उसने दे घुमा के मेरे सर के ऊपर मार दिया। ये हाल था हमारा बचपन में बहन भाइयों के साथ, तो कि खेलते खेलते भी बावलों की कोई वजह नहीं थी लड़ाई, कोई वजह नहीं भाई, खेल रहे हो पकड़ना है। ये हरकतें हैं बहन भाइयों की। और बेगम के साथ क्या हुआ आपका मामला?
2: बेगम के साथ बड़ा सीरियस मामला हुआ था एक्चुअली। हमारी है लव मैरिज।
0: सही।
2: तो हमारी वलीमे से ना पहले, एक दिन पहले लड़ाई ये हो रही है कि आपने मेरे घर में रहना, मैंने कहा मैंने नहीं रहना।
0: ये अक्सर होता है, ये प्रॉब्लम होता है।
2: मैंने घर आना है तो मैंने नहीं रहना, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लगता, अब तो कल्लू में पड़ोगे ये वो, बट इस तरह मुझे कहा यार नहीं मुझे नहीं रहना, प्लीज इस पे तंग नहीं करो यार मुझे। तो बहरहाल वो ऐसी नाराजगी रही कि जब क्या नाम लेते हैं, शादी से भी 3-4 दिन पहले की बात है, तो जब निकाह नामे पे वो सिग्नेचर वगैरह ने उसने मुंह बनाया हुआ बड़ा उस तरह का, जब स्टेज पे ही मैंने उसने बिल्कुल नहीं मुझे ना मुंह नहीं लगाया, मैंने कहा यार ये तो क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने फिर जब उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके आया तो मैंने एकदम जोर से दबाया और मैंने स्माइल दी, मैंने कहा ऊपर तो आओ ना। फिर देखते हैं बाद में क्या करना। फिर मैंने से कहा यार ओके फाइन, मैं रेडी हूँ और तुम नाराज नहीं हो, मुझे मालूम है। अब आफ्टर ऑल की तो हमारी लव मैरिज है, तो फिर जारी बात है बीवियां थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, नाजुक होती हैं,
0: एक्सपेक्टेशंस होती हैं। भाई देखें एक सीधी सी बात है आदिल भाई, एक लड़की अपना पूरा पूरा बोरिया बिस्तर घर इमोशंस फैमिली सब कुछ छोड़कर आती है, अगर वो छोटी मोटी डिमांड कर लेती है ना कभी, तो पूरा कर दिया करें अना को साइड पे रखते हुए। आदमी को तो अल्लाह ताला ने बनाए ऐसा, आदमी का ज़र्फ ऐसा बनाया कि वो बर्दाश्त कर सकता है इतना कुछ, तभी तो अल्लाह ताला ने उसे हाकिम का लकब दिया है। तो भाई इतना तो हो सकता है, इतना तो हो सकता है।
2: देखें जिन्होंने अपनी बेटी दे दी है ना, वो बाकी मैं समझता हूँ ये जहेज लानत है, आई हेट दिस, मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। और जिन्होंने अपनी बेटी दे दी है उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया।
0: सही।
2: ठीक है। और डिमांड तो देखें ये तो एक अल्लाह ताला का रिश्ता है, उसमें उसकी डिमांड नहीं है, ये तो
0: छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं
2: शादी से पहले अपने घर की।
0: छोटी छोटी ख्वाहिशें।
2: एग्जैक्टली।

0: हमारी शादी को 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो कभी भी हमारे रूम से एक चीखी आवाज भी नहीं बैठ गई। जब भी कोई मैटर होता है हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और मैंने उसको डे वन से एक चीज समझाई थी कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तुमने अपने घर ही बताना, अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तुमने अपने घर में ना, क्योंकि जब थर्ड पर्सन
1: फिर जिंदगी मजा तो उसी में है, इन्हीं छोटी मोटी लड़ाइयों में है। एसी बंद करो, एसी ऑन करो, नहीं ये चलता रहता है। चलिए मैं आपसे बात करके अच्छा लगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।
0: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, रिमेम्बर इन द प्रेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: अच्छा, ये जो नोक जोक वाला सिस्टम होता है ना, ये बड़ा मज़े का होता है, बहुत मज़े की चीज़ होती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो हमारी छोटी मोटी जो अनबन होती रहती है ना आपस में घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, दिस इज़ अ काइंड ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि दो लोग बहुत अलग मेंटेलिटी रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रोबोट है आपके साथ, या ऐसा नहीं है कि कोई पुतला है जो आपकी हाथ मान लेगा और कहेगा कि नहीं मुझे जो ना मैं तुम जो बोलोगे आपका हुक्म सारा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ऐसा कोई नहीं कर सकता, रोबोट कर सकता है, ऑब्वियसली इट इज़ ट्रेन फॉर इट, इट इज़ मेंट टू, वो रोबोट है। लेकिन इंसान जो होता है ना, तो पे जब आपको किसी से आप कह लें लगाव होता है, मोहब्बत होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कशन में इसमें उसमें आपको इख्तलाफ कहीं ना कहीं हो जाता है। बट द थिंग इज यू जस्ट सॉर्ट इट आउट एंड बाउंस बैक, यू डोंट लीव। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करें ढेर सारी बातें। सुनते रहें FM 107 पर सन एंड साउंड विद सफा। फिलहाल तो मैं आपको याद दिला दूं कि टेंशन ना लो वीरे, मैं हूं ना। देखो गरीबों की शाहरुख खान चल रही हूं मैं, आज मेरा प्लेटफॉर्म बना है कन्फेशन बॉक्स। चलो होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और ब्रेक के बाद वापस आके आपसे मुलाकात होती है। सुनते रहें FM 107 पर सन एंड साउंड, देसी।

0: हाँ जी मैं यही हूँ कहीं नहीं गई टेंशन ना ले मैं यही हूँ। आप सुन रहे हैं सफा के साथ।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
0: तो साथियों आप सुन रहे हैं सफा के साथ सन एंड साउंड। मैं क्यों फंबल कर रही हूँ आज आने का ना, आज मैं बहुत हल्की फुल्की चल रही हूँ। तो भाई हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। काफी देर से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकात। कैफ हाल सफा?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेन तमाम। हाउ आर यू?
2: फाइन। माय नेम
0: यस मिस्टर अली वजदाद।
2: यस
0: यस अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो इट। सो हाउ आर यू?
2: प्रोग्राम
0: song. You tell me which song it is, okay?
2: Huh.
0: Okay. I will give you 1 minute, okay? In 1 minute, you tell me which song is this.
2: Okay.
0: And this one.

0: अच्छा के बोल क्या बोल क्या बोल यस यस व्हाट All is well. Clapping. Good. So, bonus. One more song for you. Time is over. Bonus, okay? Bonus, this okay. song. This song you tell me.
1: Tum chupa na sakoge, main ho na ho. Tum bhula na
0: ho. Shah Rukh Khan.
2: Veer Zara.
0: Yes, Veer Zara. Song name. Song name. Yes.
2: Janam.
0: Yes. I consider it. Good. Nice. This was good. I like it. Good. You did all three right. Clapping for you. Clapping. So tomorrow we'll again with you.
2: Inshallah tomorrow.
0: Challenge ji, okay. Allah Hafiz. Bye bye.
2: Allah Hafiz. Salaam alaikum.
0: अरे भाई अच्छा इनको मैंने इसलिए दिया because the point I gave it to him because it's not his mother tongue but he knows the two words in it so I would consider it very good. अच्छा भाई मेरे जाने का टाइम आ साथियों देखो मुझे हॉस्पिटल के निकलना है तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ लेकिन जाते जाते ना कुछ लेक्चर नुमा बातें जरूर आपको बोलती जाऊंगी देखो भाई मामला ये है सच तो ये है कि हर रिलेशन में थोड़ी सी नोकझोंक होती है चाहे बहन भाई हों चाहे अम्मा अब्बा हों रिस्पेक्ट का मामला एक बिल्कुल अलग होता है मुख्तलिफ होता है ऐसा नहीं कि जिन लोगों से आप नोकझोंक करते हैं उनसे आपको मोहब्बत नहीं होती या ऐसा नहीं कि अगर किसी को रूम टेम्परेचर 22 पे चाहिए तो वो आपको सर्दखाने में रखकर मार देना चाहता है ऐसा कुछ नहीं है ये छोटी छोटी जो फाइट्स होती है ना कभी कभी रिलेशनशिप का ना मसाला होती है मसाला आप सोच सकते हैं इनके बगैर बहन भाइयों का मामला कैसा होगा जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाए अगर ये छोटी छोटी नोकझोंक ना हो आप सोच सकते हैं कि बेगम के साथ अगर ये छोटी नोकझोंक ना हो तो ऐसा जैसे बिरयानी बगैर मसाले के जैसे वो लॉरी पुलाव खाते हैं ना बिरयानी के नाम पर वो बिल्कुल वैसा वाला सीन हो जाएगा आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा ही थोड़ा बहुत नोकझोंक का तमीज़ के दायरे में रहते हुए अम्मा अब्बा के साथ ना हो तो वो घर में फिर वो मज़ा नहीं आता घर नहीं लगता फिर वैसे चार दीवारी लगते हैं खामोशी बस ज़रूरी ये है कि लड़ाई के बाद ईगो को साइड पर रख दिया जाए और फिर भाई ये कहा जाए एक दूसरे से कि चलो भाई अच्छा चलो हमारे तो घर में यही होता है हमारी लड़ाई होती है हमारे अब्बा सॉरी वॉरी नहीं करते हमारे अब्बा कहते हैं भाई चाय बना दो चाय पीते हैं चाय बना दो खाने में क्या है चाय बना दो अब्बा का अलग ही स्टैंडर्ड है सॉरी बोलने का मेरे अपने घर में भी यही हिसाब है कि सॉरी नहीं बोला जाता सिर्फ एक आता है अच्छा ये फनी सी रील तो देख लो अच्छा आ जाओ बैठ के मूवी देख लेते हैं अच्छा खाने में क्या खाओगी ये मामला है आदमियों का मनाने का स्टाइल बड़ा अलग सा होता है हर आदमी सॉरी बोलकर तरले मिनते नहीं करता लेकिन उनका अलग सा स्टाइल होता है वो हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल होता है बस ये याद रखें कि लड़ाई को ईगो मोड में नहीं लेकर जाएं छोटी मोटी तो चलती रहती है मसाला मिर्ची यूं चाट मसाला डाल के मैंगो खाते हो ना वैसी वाली जिंदगी चलती है ऐसी वाली छोटी छोटी बातों से अक्सर वो कहते हैं जीतने से ज़्यादा ज़रूरी होता है साथ मुस्कुरा उठना कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको याद करके हम एकदम से हंस पड़ते हैं और वापस से अपने दोस्तों को या किसी जिसके साथ ही मामला हुआ था उसके साथ रिकॉल करते हैं बैठकर तो वो भी हमारे साथ हंस पड़ते हैं चलो भाई इस नोट पर कि छोटी छोटी चीज़ें तो ज़िंदगी में चलती रहेंगी इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें दूसरों की खिचड़ी पर नज़र नहीं रखा करें और अपनी खिचड़ी खुद बनाकर खाएं खुश रहो अपने अपने खर्चे पर आइंदा के बाद मैं ज़रा ना बताऊंगी कि मैंने अब घर जाके क्या खाना है अपना ढेर सारा ख्याल रखें क्योंकि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता तो भाई मेरी तरफ से आई एम साइनिंग आउट और आप कहें ना कहें मुझे सब पता है हाय हाय हाय हाय ये गाना वो इमरान हाशमी के टशन भाई कहाँ चली गई मैं चले भाई

0: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: क्रिकेट हो
2: एंड ही इज हुक दैट अवे, दैट्स फोर रन।
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM,
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Women in Sports, आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: साथियों, कभी कभी एक लम्हा सिर्फ एक कॉम्पिटिशन का हिस्सा नहीं होता बल्कि तारीख का रुख बदल कर रख देता है। स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेडल नहीं जीतती बल्कि पूरी नस्लों को इंस्पायर कर जाती हैं। आज जब हम विमेन स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें उन खवातीन को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के जरिए ये साबित किया कि भाई एक्सीलेंस का कोई जेंडर नहीं होता। भाई देखिए, आज के दौर में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सिर्फ कॉम्पिटिशन्स नहीं रहे, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जहां लड़कियां अपनी सलाहियतों का इजहार करती हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करती हैं और अपनी सोसाइटी को ये पैगाम देती हैं कि ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने का हक हर इंसान को है। साथियों, हर टूर्नामेंट के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है और हर कामयाब फीमेल एथलीट किसी न किसी बच्ची के लिए उम्मीद की नई रोशनी बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर का खास प्रोग्राम जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स। साथियों, ये वो शो है जहां हम सिर्फ मेडल्स और रिकॉर्ड्स के बारे में बात नहीं करते बल्कि उन कहानियों को भी समझते हैं जो हिम्मत, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की मिसाल होती हैं। भाई देखिए, आज का हमारा एपिसोड जिमनास्टिक्स की दुनिया के एक ऐसे नाम के गिर्द घूमता है जिसने सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं जीता बल्कि पूरी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम बात कर रहे हैं रोमानिया की लेजेंडरी जिमनिस्ट नादिया कोमनेच की, वो एथलीट जिन्होंने परफेक्शन को सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि हकीकत बनाकर रख दिया। साथियों, वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि परफेक्शन कैसी होती है तो शायद हर शख्स का जवाब मुख्तलिफ हो, लेकिन जिमनास्टिक्स की दुनिया में एक नाम है जो परफेक्शन का दूसरा नाम बन चुका है और भाई वो नाम है नादिया कोमनेच का। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। साथियों, 1976 मॉन्टेरियल ओलंपिक गेम्स में नादिया कोमनेच ने हिस्ट्री उस वक्त बना दी जब उन्होंने जिमनास्टिक्स रूटीन के लिए पहली मर्तबा परफेक्ट स्कोर दिया। जब उन्हें जिमनास्टिक्स रूटीन के लिए पहली मर्तबा परफेक्ट स्कोर यानी 10.0 दिया गया। अब आप कहेंगे इसके अंदर कौन सी बड़ी बात हो गई। साथियों, दिलचस्प बात ये थी कि उस वक्त ओलंपिक स्कोर बोर्ड को इस स्कोर के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स को लगता था कि परफेक्ट 10 हासिल करना नामुमकिन है, इसीलिए स्कोर बोर्ड पर 1.00 डिस्प्ले हुआ जिसने पहले तो लोगों को कंफ्यूज कर दिया। कुछ ही लम्हों बाद सबको एहसास हुआ कि वो असल में जिमनास्टिक्स की तारीख का पहला परफेक्ट 10 देख रहे थे। मॉन्टेरियल ओलंपिक्स के दौरान नादिया कोमनेच ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 परफेक्ट 10 स्कोर्स हासिल किए। भाई ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसने दुनिया भर के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को हैरान कर रख दिया। उन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता और सिर्फ रोमानिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फेवरेट एथलीट बन गई। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी लेकिन उनकी मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस किसी तजुर्बेकार चैंपियन से कम नहीं था। भाई साथियों, क्या आप ये बात जानते हैं कि जिमनास्टिक्स दुनिया के मुश्किल तरीन स्पोर्ट्स में शुमार होता है। इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ काफी नहीं होती, ना ना ना ना, इसमें बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, टाइमिंग, कॉन्सेंट्रेशन और भाई मेंटल टफनेस हर सेकंड में आजमाई जाती है। बीम पर सिर्फ चंद सेंटीमीटर की जगह होती है और उस पर की गई छोटी सी गलती भी मेडल छीन सकती है, इसीलिए जिमनास्टिक्स को डिसिप्लिन और परफेक्शन का स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। भाई नादिया ने तो इसी स्पोर्ट्स में ऐसी मास्टरी हासिल की कि आज भी उनका नाम एक्सीलेंस की मिसाल बन जाता है। साथियों, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की असल ताकत ये है कि वो सिर्फ विनर्स का फैसला नहीं करते बल्कि रोल मॉडल्स को भी पैदा करते हैं। भाई जब मॉन्टेरियल ओलंपिक्स के बाद नादिया की तस्वीरें अखबारों में और टेलीविजन स्क्रीन्स पर नजर आईं, तो दुनिया भर की हजारों लड़कियों ने पहली मर्तबा जिमनास्टिक्स को अपना ख्वाब बनाना शुरू किया। पेरेंट्स ने भी ये देखना शुरू कर दिया कि भाई बेटियां भी इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। इसी तरह एक टूर्नामेंट ने सोसाइटी की सोच आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करना शुरू कर दी। भाई देखें, आज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जब किसी फीमेल एथलीट को इंटरनेशनल स्टेज पर कामयाबी मिलती है ना, तो उसका असर सिर्फ स्पोर्ट्स तक महदूद नहीं रहता, इससे गर्ल्स पार्टिसिपेशन बढ़ती है, स्कूल्स और एकेडमीज में रजिस्ट्रेशंस में इजाफा होता है और कम्युनिटीज में बेटियों के लिए स्पोर्ट्स को ज्यादा पॉजिटिवली देखा जाता है। ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इसीलिए इतने अहम होते हैं क्योंकि ये सिर्फ मेडल्स नहीं देते भाई, बल्कि नए रोल मॉडल्स भी पैदा करते हैं। साथियों, नादिया की कहानी मेहनत और कंसिस्टेंसी की कहानी है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से रोजाना घंटों प्रैक्टिस की, हर मूवमेंट को बार बार रिपीट किया और हर रूटीन को बेहतर बनाया और हर कॉम्पिटिशन को एक नए चैलेंज के तौर पर लिया। उनकी कामयाबी किसी एक दिन का नतीजा नहीं थी, वो सालों की ट्रेनिंग, सेक्रिफाइस और डिसिप्लिन से हासिल हुई थी। इसीलिए जब हम उनके परफेक्ट 10 की बात करते हैं ना, तो हमें उसके पीछे छुपे हुए हजारों घंटों की मेहनत की याद आ जाती है। नादिया ने सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं बनाए बल्कि जिमनास्टिक्स के स्टैंडर्ड्स भी बदल कर रख दिए। उनके बाद जजेस, कोचेस और एथलीट सब ने परफॉर्मेंस को नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। आज भी दुनिया के बहुत से जिमनास्ट नादिया को अपना आइडियल मानते हैं। भाई उनका नाम ओलंपिक हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी एथलीट्स में से एक में से शुमार होता है और उनकी अचीवमेंट्स आज भी स्पोर्ट्स एकेडमीज में मिसाल के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। आज जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो भाई हमें ये समझना होगा कि इस तब्दीली में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स का बहुत बड़ा किरदार रहता है। जब एक लड़की इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीत कर अपने मुल्क का परचम बुलंद करती है ना, तो उसकी कामयाबी हजारों और लड़कियों के लिए दरवाजे खोल देती है। फैमिलीज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कोचेस को नए टैलेंट्स मिलते हैं और सोसाइटी को यकीन हो जाता है कि बेटियां भी हर फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर सकती हैं। भाई तो भाई साथियों, आज का सवाल आप सबके लिए ये है कि क्या परफेक्शन सिर्फ स्कोर हासिल करने का नाम होती है या फिर अपनी पूरी सलाहियत के साथ अपने ख्वाबों को जीतने का नाम होती है। नादिया ने हमें ये सिखाया कि कभी कभी एक परफेक्ट परफॉर्मेंस सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनती बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल कर रख देती है। अच्छा, अगर आप भी किसी फीमेल एथलीट से इंस्पायर हुए हैं ना, तो हमें जरूर बताइएगा। आप सुन रहे हैं FM 107 कतर, मैं हूँ सफा और अपने ख्यालात आप चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर, या चाहे तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जो कि है @FM107 कतर। क्योंकि हर कामयाब खातून एथलीट की कहानी सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं होती बल्कि उन तमाम लड़कियों की होती है जो यकीन रखती हैं, हिम्मत रखती हैं, हौसला रखती हैं और उसी के साथ वो अपने ख्वाबों को हकीकत बना जाती हैं। साथियों, कभी कभी स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी जीत स्कोरबोर्ड पर नजर नहीं आती, कभी कभी एक छोटी सी बच्ची का पहली मर्तबा जिमनास्टिक्स मैट पर कदम रखना एक नया ख्वाब शुरू करा देता है, कभी एक स्कूल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना फ्यूचर चैंपियन बनने की पहली सीढ़ी साबित होता है। स्पोर्ट्स का सफर सिर्फ मेडल्स और ट्रॉफीज तक तो महदूद नहीं होता बल्कि ये कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और अपनी पहचान बनाने का सफर होता है। और भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सफर के बारे में, कतर में विमेंस जिमनास्टिक के बढ़ते हुए कदम के बारे में, नई अपॉर्चुनिटीज और उन कोशिशों की जो लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स का मुस्तकबिल रोशन कर रही हैं। साथियों, मैं आपको याद दिलाती चलूं कि आप सुन रहे हैं सफा के साथ FM 107 पर एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम खातीन के स्पोर्ट्स के सफर, उनकी कामयाबियों और उनकी चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं जो उन्हें चैंपियन बनाती हैं। और हमारे आज का एपिसोड खास तौर पर जिमनास्टिक्स के नाम है, एक ऐसा स्पोर्ट जहां फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस और मेंटल फोकस एक साथ काम करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कतर के जिमनास्टिक्स के सफर पर निकलें, आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस ऑफ चेंज पर भाई, जहां हम ये जानेंगे कि दुनिया और कतर में विमेन स्पोर्ट्स किस तरह नए मराहिल तय कर रहा है। साथियों, आज दुनिया भर में गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। स्कूल्स और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस अब इस बात को समझ रहे हैं कि बचपन से स्पोर्ट्स एक्सपोजर देना सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता बल्कि लीडरशिप और कॉन्फिडेंस भी डेवलप करने का जरिया होता है। देखिए, कतर में भी स्कूल्स और स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स में लड़कियों की शिरकत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा देखा जा रहा है, खास तौर पर जिमनास्टिक जैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर तवज्जो बढ़ गई है, जहां यंग गर्ल्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन और फिटनेस स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं। साथियों, कतर में स्कूल्स और एकेडमीज अब इंक्लूसिव स्पोर्ट्स एजुकेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मकसद ये है कि हर बच्ची को अपनी पसंद का स्पोर्ट्स चुनने का मौका मिले। अच्छा, जिम्नास्टिक्स जैसे स्पोर्ट्स जो है ना, वो बच्चियों को सिर्फ कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करते, बल्कि उनमें डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पैदा करते हैं। एक जिम्नास्ट को एक रूटीन परफेक्ट करने के लिए दर्जनों और कभी कभी सैकड़ों मरतबा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखिए, ये प्रोसेस बच्चों को ये सिखाता है कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि लगातार मेहनत करने से हासिल होती है। कतर ने पिछले चंद सालों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और यूथ डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। भाई देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स एकेडमीज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ने यंग एथलीट्स के लिए नए रास्ते खोले हैं। कतर की स्पोर्ट्स स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को या बच्चियों को स्पोर्ट्स में शामिल किया जाए और उन्हें प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए सपोर्ट दिया जाए। जिम्नास्टिक्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो दुनिया भर में बहुत मकबूल है और ओलंपिक गेम्स का एक अहम हिस्सा भी है। देखिए भाई, कतर में भी जिम्नास्टिक्स की डेवलपमेंट ग्रेजुअली हो रही है। लोकल क्लब्स, स्कूल्स, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस यंग गर्ल्स को जिम्नास्टिक्स की बुनियादी ट्रेनिंग देने में किरदार अदा कर रही हैं। कतर जिम्नास्टिक्स फेडरेशन भी मुल्क में इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने और एथलीट्स के लिए कॉम्पिटेटिव अपॉर्चुनिटीज पैदा करने पर काम कर रही हैं। अच्छा, अगर हम कतर में विमेन्स जिम्नास्टिक्स के सफर को

देखें ना, तो ये एक डेवलपिंग जर्नी है. अच्छा, अभी कतर में जिमनास्टिक्स जो है वो फुटबॉल, बास्केटबॉल या मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की तरह मैसिव स्केल पर नहीं है, लेकिन इस फील्ड में इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. सबसे अहम बात तो ये भाई कि ये पेरेंट्स और कम्युनिटीज में भी अवेयरनेस बढ़ा रहा है कि जिमनास्टिक्स सिर्फ एक हॉबी नहीं है बल्कि एक सीरियस कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स भी बन सकता है. साथियों, कतर के स्कूल्स इस डेवलपमेंट में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं. स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन्स यंग एथलीट्स को पहली दफ़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. भाई, यहीं से तो बच्चियां सीखती हैं कि स्टेज के प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, जजेस के सामने कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कैसे करना है और टीम वर्क के जरिए अपनी स्किल को कैसे बेहतर बनाना है. स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी कंट्री में विमेंस स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का सबसे पहला मरहला ग्रास रूट लेवल पर होता है. अगर बचपन में अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फ्यूचर में इंटरनेशनल एथलीट्स तैयार किए जा सकते हैं. भाई इसीलिए तो कतर में यूथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और एकेडमीज का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. भाई देखिए, हर वो बच्ची जो जिमनास्टिक्स क्लास में अपनी पहली रूटीन सीखती है, कल नेशनल लेवल एथलीट बन सकती है. भाई देखिए, सीधी सी बात है, जिमनास्टिक्स की खास बात ये है कि ये सिर्फ बॉडी की स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं होता बल्कि माइंड की स्ट्रेंथ का भी इम्तिहान होता है. भाई एक जिमनिस्ट को बैलेंस बीम पर परफॉर्म करते वक्त एक पल की तवज्जो की कमी भी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है. इसीलिए जिमनास्टिक्स यंग गर्ल्स को फोकस, डिसीजन मेकिंग और प्रेशर मैनेजमेंट सिखाता है. वो स्किल्स जो सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं बल्कि जिंदगी की हर फील्ड में काम आती हैं. साथियों, कतर में विमेंस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं जहां गर्ल्स को सपोर्टिव और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं. कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, फिटनेस एक्टिविटीज और यूथ कॉम्पिटिशन्स के जरिए लड़कियों को एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ मोटिवेट किया जा रहा है. अच्छा, ये जो प्रोग्राम्स है ना, ये सिर्फ एथलीट्स क्रिएट नहीं करते बल्कि एक ऐसी जनरेशन तैयार करते हैं जो हेल्थ और स्पोर्ट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं. अच्छा, आज के दौर में सोशल मीडिया भी विमेन एथलीट के लिए एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है. पहले यंग एथलीट्स की आप कह लें कि अचीवमेंट सिर्फ लोकल लेवल पर महदूद रहती थी, अब भाई एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकती है. कतर की यंग एथलीट्स के लिए भी ये एक मौका है कि वो अपनी जर्नी शेयर करें और दूसरी लड़कियों को इंस्पायर करें. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू ये है इस बात का कि विमेन स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है. जब यंग गर्ल्स टेलीविजन, सोशल मीडिया या स्पोर्ट्स इवेंट्स में फीमेल एथलीट्स को देखती हैं ना, तो उनके जहन में ये यकीन पैदा होता है कि वो भी इस फील्ड का हिस्सा बन सकती हैं. रोल मॉडल्स नए ड्रीम्स क्रिएट करते हैं. भाई, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और शो का नाम है विमेन इन स्पोर्ट्स, जहां हम हर कहानी को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि फील करते हैं.

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: साथियों, जिम्नास्टिक्स के हवाले से अगर हम नादिया जैसी लेजेंड्स को देखें ना, तो उन्होंने ये साबित किया है कि एक एथलीट की परफॉर्मेंस पूरी दुनिया की सोच बदल कर रख सकती है। इसी तरह आज कतर में भी हर वो इनिशिएटिव जो गर्ल्स को जिम्नास्टिक्स और दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जा रहा है, फ्यूचर के चैंपियंस के लिए बुनियाद तैयार कर रहा है। कतर का स्पोर्ट्स विजन सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट करना नहीं है, बल्कि अपने मुल्क के लिए टैलेंट को डेवलप करना भी है। अच्छा, 2022 वर्ल्ड कप के बाद कतर में स्पोर्ट्स कल्चर और भी मजबूत हो गया है भाई। अब ज्यादा फैमिलीज, स्कूल्स और कम्युनिटीज स्पोर्ट्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट का जरिया भी समझ रही है। साथियों, आज का सफर हमें ये बताता है कि चैलेंज अक्सर एक छोटे से कदम से शुरू होता है। एक बच्ची का जिम्नास्टिक्स क्लास ज्वाइन करना, एक कोच का उसकी टैलेंट को पहचानना, एक फैमिली का उसका हौसला बढ़ाना, ये सब मिलकर एक बड़ी तब्दीली पैदा करते हैं। तो साथियों, जिम्नास्टिक्स सिर्फ फ्लिप्स और रूटीन्स का नाम नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का नाम है भाई, डिसिप्लिन का नाम है और अपने आप पर यकीन करने का नाम है। कतर में विमेन जिम्नास्टिक्स का सफर अभी अपने एवोल्यूशन के मरहले पर है, लेकिन हर नया प्रोग्राम, हर नई एकेडमी और हर नई एथलीट इस कहानी को आगे बढ़ा रही है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन एफएम 107 कतर। साथियों, हमें जरूर बताइए कि आपके नजदीक कौन सी फीमेल एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि स्पोर्ट्स का असल मकसद सिर्फ जीतना नहीं होता, असल कामयाबी ये होती है कि आप अपने बाद आने वालों के लिए एक नया रास्ता बना दें। तो चलिए साथियों, आज की अपनी स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की स्टोरी ऑफ द वीक में हम सफर करेंगे रोमानिया की उस लेजेंडरी एथलीट के साथ जिसने सिर्फ जिम्नास्टिक्स में रिकॉर्ड नहीं बनाया बल्कि परफेक्शन का मतलब ही बदल कर रख दिया, जिनका नाम है नादिया कोमनेच। तो चलिए सफर करते हैं 18th जुलाई 1976 का मॉन्टेरियल ओलंपिक गेम्स का। इमेजिन कीजिए, एक 14 साल की लड़की जिसका कद सिर्फ 4 फुट 11 इंच था, लेकिन हौसला आसमान जितना बुलंद था, वो ओलंपिक एरीना में खड़ी है। दुनिया भर की नजरें उस पर हैं और सामने है जिम्नास्टिक्स का एक मुश्किल इवेंट, यानी के अनइवन बार्स। देखिए भाई, उस वक्त तक दुनिया ने जिम्नास्टिक्स में बहुत से टैलेंटेड एथलीट देखे थे, लेकिन परफेक्ट परफॉर्मेंस का ख्वाब सिर्फ एक ख्याल था। जजेस मैक्सिमम स्कोर देते थे, लेकिन परफेक्ट यानी के 10.0 को ऑलमोस्ट नामुमकिन समझा जाता था। अच्छा भाई, इसकी मिसाल ये है कि ओलंपिक स्कोर बोर्ड तक को इस तरह प्रोग्राम नहीं किया गया था कि वो 10.0 शो कर सके, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स का ख्याल था कि इंसानी परफॉर्मेंस कभी इतनी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन उस दिन नादिया ने दुनिया को गलत साबित कर दिया। जब नादिया ने अनइवन बार्स पर अपना रूटीन शुरू किया, तो हर मूवमेंट में कंट्रोल भाई, बैलेंस और एलिगेंस नजर आ रही थी। उनकी स्पीड, टाइमिंग और प्रिसिजन देखकर स्टेडियम में एक खामोशी छा गई। हर जंप, हर टर्न, हर मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। और जब उन्होंने अपनी फाइनल लैंडिंग की, तो सबकी नजरें जजेस की तरफ उठ गईं। फिर वो फैसला आया जिसने स्पोर्ट्स की हिस्ट्री बदल कर रख दी। जजेस ने नादिया को परफेक्ट स्कोर दिया, यानी कि 10, लेकिन स्टेडियम के स्कोर बोर्ड पर 10.0 लिखने की जगह सिर्फ 1.00 नजर आया, क्योंकि सिस्टम को कभी इस स्कोर के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। कुछ लम्हों के लिए तो लोग हैरान रह गए, लेकिन फिर अनाउंस हुआ कि ये कोई गलती नहीं थी, ये ओलंपिक जिम्नास्टिक्स हिस्ट्री का पहला परफेक्ट 10 था। और ये सिर्फ एक मर्तबा नहीं हुआ, नादिया ने 1976 मॉन्टेरियल ओलंपिक्स में 7 परफेक्ट 10 स्कोर्स हासिल किए। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि परफेक्शन सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि मेहनत और डेडिकेशन के जरिए हकीकत बन सकती है। लेकिन नादिया की कहानी सिर्फ उस परफेक्ट 10 से शुरू नहीं होती, इसके पीछे सालों की मेहनत, सेक्रीफाइस और चैलेंजेस की एक लंबी दास्तान है। साथियों नादिया की पैदाइश 12 नवंबर 1961 को रोमानिया के एक छोटे से शहर अस्ती में हुई। भाई बचपन से ही उनमें काफी एनर्जी थी और उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा शौक था। कहा जाता है कि उन्हें पहली मर्तबा जिमनास्टिक्स करते हुए उनके स्कूल के प्लेग्राउंड में देखा गया था। उनकी नेचुरल एबिलिटी और एक्सेप्शनल बैलेंस ने कोचेस की तवज्जो हासिल कर ली। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही नादिया ने जिमनास्टिक्स ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उनके दो कोचेस ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार किया। साथियों जिमनास्टिक्स की ट्रेनिंग आसान नहीं होती। बचपन से ही नादिया को रोजाना कई घंटे प्रैक्टिसेस करनी पड़ती थी। भाई जब दूसरे बच्चे खेल कूद कर रहे होते थे और नॉर्मल चाइल्डहुड एक्टिविटीज में मसरूफ होते थे, नादिया अपनी रूटीन्स परफेक्ट करने में वक्त गुजार रही होती थी। हर जंप, हर मूवमेंट, हर रूटीन को बार बार रिपीट कर रही होती थी। देखिए भाई, एक एथलीट के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी होती है। जिमनास्टिक्स में एक छोटी सी गलती भी पूरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। बैलेंस बीम पर एक सेकंड का हेजिटेशन, अनइवन बार्स पर एक रॉन्ग मूवमेंट या लैंडिंग में एक हल्का सा इम्बैलेंस मेडल का फैसला कर सकता है। भाई नादिया ने इसी प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। उनका इंटरनेशनल सफर बहुत कम उम्र में शुरू हुआ। 1975 में सिर्फ 13 साल की उम्र में नादिया ने यूरोपियन चैंपियनशिप्स में कामयाबी हासिल की और दुनिया को ये बता दिया कि रोमानिया के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मौजूद है। उन्होंने ऑलराउंड टाइटल जीता और जिमनास्टिक्स एक्सपर्ट्स की नजरें उन पर मरकूज हो गई। फिर आया भाई 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स का वो हिस्टोरिक मोमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नादिया ने सिर्फ एक इवेंट में नहीं बल्कि पूरे कंपटीशन में अपनी एक्सीलेंस साबित की। उन्होंने 3 मेडल्स जीते, बैलेंस बीम, अनइवन बार्स और इंडिविजुअल ऑल राउंड में। इसके अलावा उन्होंने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। अच्छा, सिर्फ 14 साल की उम्र में नादिया दुनिया की सबसे मशहूर एथलीट्स में शुमार हो गई थी। उनकी तस्वीरें न्यूज़पेपर और टेलीविजन स्क्रीन्स पर छा गई थी। लेकिन इतनी शोहरत के बावजूद उनकी जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही। साथियों रोमानिया उस वक्त एक कम्युनिस्ट कंट्री थी और एथलीट्स पर बहुत प्रेशर होता था कि वो इंटरनेशनल स्टेज पर मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा, नादिया की कामयाबी के साथ साथ उन पर एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई थी। भाई हर कंपटीशन में लोग उनसे सिर्फ परफेक्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते थे। हर मेडल के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी किसी नई चैंपियन को जन्म दे सकती है। साथियों कभी कभी एक एथलीट की कहानी सिर्फ उसके मेडल तक महदूद नहीं होती। कभी एक परफॉर्मेंस सिर्फ एक कंपटीशन नहीं जीतती बल्कि लोगों की सोच बदल कर रख देती है। नादिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम उनके परफेक्ट 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते हैं ना, तो हम अक्सर स्कोरबोर्ड पर रुक जाते हैं। लेकिन असल में नादिया की सबसे बड़ी कामयाबी वो नहीं थी जो उन्होंने जिमनास्टिक्स अरीना में हासिल की। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने दुनिया भर की लड़कियों को ये यकीन दिलाया कि उनके ख्वाब भी उतने ही बड़े हो सकते हैं जितने किसी और के हों। क्योंकि असल में स्पोर्ट्स सिर्फ गेम नहीं होता भाई, स्पोर्ट्स जिंदगी का एक किस्म का स्कूल होता है भाई। और भाई हम बात कर रहे हैं नादिया कॉमलिश की, जिन्होंने 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में जो कर दिखाया वो सिर्फ एक जिमनास्ट की कामयाबी नहीं थी, वो एक मैसेज था। एक मैसेज कि परफेक्शन का मतलब सिर्फ परफेक्ट स्कोर हासिल करना नहीं बल्कि अपनी पूरी सलाहियत, डिसिप्लिन और हिम्मत के साथ अपना बेस्ट देना होता है। जब एक 14 साल की लड़की दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टेज पर खड़ी हुई और उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, तो उसके बाद भाई दुनिया भर में हजारों यंग गर्ल्स ने जिमनास्टिक्स और स्पोर्ट्स को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। लेकिन साथियों एक सवाल पैदा होता है इस बात से, क्या स्पोर्ट्स की वैल्यू सिर्फ मेडल जीतना होती है? क्या एक एथलीट की कामयाबी सिर्फ ट्रॉफी कैबिनेट्स में रखने और अवार्ड्स से मेजर की जा सकती है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्पोर्ट्स का असल असर अक्सर उस वक्त नजर आता है जब मैच खत्म हो चुका हो और स्टेडियम की लाइट्स बंद हो जाती हैं। जब एक छोटी सी बच्ची पहली मर्तबा स्पोर्ट्स ग्राउंड पर कदम रखती है तो वो सिर्फ रनिंग, जंपिंग या एक्सरसाइज नहीं सीख रही होती, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही होती है। भाई वो सीख रही होती है कि चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, हार के बाद दोबारा खड़े कैसे होना और अपनी मेहनत पर यकीन कैसे रखना है। स्पोर्ट्स का पहला और सबसे बड़ा तोहफा कॉन्फिडेंस होता है साथियों। एक यंग एथलीट जब ट्रेनिंग करती है ना, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करती है और कॉम्पिटिशन में परफॉर्म करती है, तो उसके अंदर एक नया भरोसा पैदा होता है। वो सिर्फ ये नहीं सोचती कि भाई मैं गेम जीत सकती हूँ, बल्कि वो ये महसूस करती है कि मैं मुश्किल सिचुएशंस हैंडल कर सकती हूँ। यानी कॉन्फिडेंस जिंदगी के दूसरे फील्ड में भी काम आ ही जाता है भाई। स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, करियर और पर्सनल डिसीजन भी। यानी हर जगह एक कॉन्फिडेंट इंसान ज्यादा बेहतर फैसले कर सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि भाई गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत अहम हिस्सा होती हैं। देखिए भाई, ग्राउंड पर ना ओपोनेंट दुश्मन नहीं होता, बल्कि एक कॉम्पिटिटर होता है जो आपको बेहतर बनने का मौका देता है। एक एथलीट सीखती है ग्राउंड पर जाकर के जीतने के बाद ह्यूमिलिटी कैसे मेंटेन करनी है और हार के बाद डिग्निटी के साथ वापस कैसे आना है। साथियों, नादिया की मिसाल भी इसी रिस्पेक्ट की है। उन्होंने अपनी कामयाबी को कभी एरोगेंस का जरिया नहीं बनाया, ना ना ना ना ना ना। उनका फोकस हमेशा इम्प्रूवमेंट और एक्सीलेंस पे रहा ना। इसी वजह से तो आज भी उनका नाम सिर्फ एक चैंपियन के तौर पर नहीं लिया जाता, बल्कि एक इंस्पायरेशन के तौर पर लिया जाता है भाई। देखिए, स्पोर्ट्स का दूसरा बड़ा लेसन डिसिप्लिन है। एक सक्सेसफुल एथलीट की जिंदगी देखने में बड़ी ग्लैमरस लग सकती है भाई, लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, स्ट्रिक्ट रूटीन्स होती हैं, रिपीटेड प्रैक्टिसेस और कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट होती है भाई। ये सब एक चैंपियन के सफर का हिस्सा होता है। देखिए, जिम्नास्टिक्स जैसे स्पोर्ट्स में तो डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि एक जिमनिस्ट को अपने जिस्म के हर मूवमेंट पर कंट्रोल हासिल करना होता है। एक रूटीन जो ऑडियंस को चंद सेकंड की लग रही होती है ना, उसके पीछे महीनों या आप कह लें कि सालों की प्रैक्टिस होती है। यही डिसिप्लिन यंग गर्ल्स को टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है। जब एक स्टूडेंट एथलीट अपनी स्टडीज, ट्रेनिंग्स और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करती है ना, तो वो एक ऐसी स्किल डेवलप कर रही होती है जो फ्यूचर में लीडरशिप का बुनियादी हिस्सा बन जाती है। नादिया की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि चैंपियंस एक दिन में तैयार नहीं होते, ना ना ना। हर चैंपियन के पीछे सालों की प्रैक्टिस, सेक्रीफाइस और डेडिकेशन होती है। जो परफॉर्मेंस कुछ सेकंड्स में दुनिया को नजर आती है ना, कुछ सेकंड्स की परफॉर्मेंस, उसके पीछे हजारों घंटों की मेहनत छुपी होती है। तो साथियों, आज के इस एपिसोड का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि स्पोर्ट्स को सिर्फ गेम्स की नजर से मत देखिए। स्पोर्ट्स एक इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस में, हेल्थ में, लीडरशिप में और फ्यूचर जनरेशन में। जब हम एक लड़की को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का मौका देते हैं ना, तो हम सिर्फ एक एथलीट नहीं बना रहे होते, हम एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तैयार कर रहे होते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM 107 कतर। मैं उम्मीद करती हूं कि आज का ये एपिसोड जो कि था नादिया कॉमलेज की कहानी का, आपको इंस्पायर किया होगा इस चीज के लिए कि चैलेंजेस से डरने के बजाय उनका सामना करें और अपने ख्वाबों के लिए मेहनत जारी रखें। याद रखिए, हर चैंपियन का सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है। शायद आज का एक छोटा सा ख्वाब कल की एक बड़ी कामयाबी बन जाए। तो साथियों, इसी नोट पर आज के एपिसोड से मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने ख्वाबों पर यकीन रखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक, टाइम
3: चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हो रहे हैं दोपहर के 1:30, यानी ये टाइम है।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107, दिल से दी।
3: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? हाँ तो भाई, आज का दिन कैसा गुजरा अभी तक आपका? वैसे ये टाइम फुल ऑन चैलेंजेस का होता है, इसलिए पहले बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा चिल मारें, रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा ठंडा पिएं, एकदम सुकून में आए। और किसी को गर्म मौसम में गर्म पीना है तो करक एंजॉय करें, है कि नहीं? वेल, मैं हूँ आपकी एफर अमीता और एस्केप रूम का आज का चैलेंज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आज ना तो आप किसी घर में कैद हैं, ना म्यूजियम में, ना रेगिस्तान में, ना समुंदर में, ना आसमान में। आज आप कैद होने वाले अपने खुद के फ़ोन में। कभी सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? अब देखिएगा कि क्या क्या हो सकता है। तो बस सोचिए कि अगर आप अपने फोन में कैद हो गए किसी ऐसी जगह जहां आपने सोचा नहीं था, तो फिर क्या होगा, कैसे करेंगे एस्केप? हाँ, ये सारा कुछ आज आपको सोच के समझ के एस्केप रूम की सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपको आज की सिचुएशन पता चलेगी। सो बी प्रिपेयर, थोड़ा सा लूजन अप हो जाइए, रिलैक्स कीजिए। और अभी के लिए बेहतरीन सा गाना है करण का और नेहा कक्कड़ का, एंजॉय द सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
3: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
5: तो यस, मेरी देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है। वेलकम वंस अगेन ऑन FM 107। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो आ जाइए जनाब, अब हम सीधा एस्केप रूम के चैलेंजिंग सिचुएशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की सिचुएशन ऐसा कि आपने अपने हाथ पे अपना फोन लिया, ठीक है, और अपने फोन पर आप किसी को बर्थडे विश कर रहे थे और उसके लिए आपने टेक्स्ट भेजने की कोशिश की। बट सडनली जैसे ही आपने टेक्स्ट भेजने की कोशिश की, एक टेक्निकल ग्लिच हुआ। और ये क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अभी आप बड़े आराम से अपने घर में थे, लेकिन अब अचानक से आपको एहसास हुआ कि आप अपने फोन के अंदर आ गए। अब यहाँ पर पिक्सल्स और चमकते हुए फ्लोटिंग येलो फेसेस की दुनिया है। उफ, आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल है, जो कीबोर्ड है वो सडनली टूट चुका है। यहाँ कोई लेटर्स नहीं है, ना ए, ना बी, ना हाई हेल्प लिखने का कोई जरिया। अब इस डिजिटल वर्ल्ड से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें इन पहेलियों, या यूं कहें पहेलियों को इमोजीज की मदद से सॉल्व करना होगा। तो अब हर एक क्लूज को ध्यान से सुने, स्माइलीज के बारे में सोचें और फिर जवाब दें। ठीक है, अभी आप एक बहुत बड़े ग्रैंड डिजिटल गेट के सामने खड़े हैं। इस गेट को खोलने के लिए हमें ये याद करना होगा कि इंसान स्मार्टफोन से बहुत पहले से पिक्चर टेक्स्टिंग कर रहा है। हमारी कॉन्वर्सेशंस का सिलसिला ये जो है ना, ये सदियों पुराना है। चलिए क्लू नंबर 1 आपके लिए आता है। हजारों साल पहले एंशियंट जमाने में, जब ना पेपर था ना कलम, तब लोग अपनी दास्तान, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर तस्वीरें बनाते थे। इन गुफा चित्रों को, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए अपने जवाब 6622107 6622107 पर। अपने नाम के साथ बताइए कि जो गुफाओं के ऊपर जो चित्र बनाए जाते थे वो अंग्रेजी में उन्हें क्या कहते हैं। बताएं, सोचे और जवाब दें। आई एम वेरी सर्टन कि आप बहुत जल्दी हमें सही जवाब दे पाएंगे। क्लू नंबर 1 एक बार फिर से दोहराऊंगी। हजारों साल पहले एंशियंट जमाने में, जब ना पेपर था ना कलम, तब लोग अपनी दास्तान, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए पत्थरों पर, गुफाओं की दीवारों पर तस्वीरें बनाते थे। इन गुफा चित्रों को इंग्लिश में क्या कहते हैं।

चले अब बताएं इसका जवाब क्या हो सकता है। सोचे सोचे सोचे और इस पहले पड़ाव को पार करें, क्योंकि आज तो आप कैद हो गए हैं अपने ही फोन की इस खतरनाक दुनिया में। सो आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। सर अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ रुख करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप में से कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। बड़ा ही हाई एनर्जी वाला गाना है, आई एम श्योर यू गोना लव इट। स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: हां जी वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. तो एस्केप रूम से बचने के लिए तैयार हो. देखो आज की जो सिचुएशन है बड़ी कमाल की है कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, बड़े प्यार से आप किसी को हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहे थे एंड द मोमेंट यू वाज डूइंग तभी एकदम से एक टेक्निकल ग्लिच एंड आप इस फ़ोन के अंदर उफ अब पिक्सल्स हैं, चमकते हुए फ्लोटिंग येलो फेसेस हैं, अब इस दुनिया में आप खड़े हैं. कीबोर्ड टूट चुका है, ना ए लिख सकते ना बी ना हेल्प, बड़ी मुश्किल में फंसे हैं. लेकिन फिर भी आपने अपने आप को संभाला. अब आप इस फ़ोन की दुनिया में चलते हुए आगे पहुंचे तो एक डिजिटल गेट आपके सामने आया. ठीक है, अब उसके सामने आप खड़े हुए और इस गेट को खोलने के लिए आपको क्लू नंबर 1 सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. तो देखो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि अभी स्मार्टफोन्स का ज़माना है, लेकिन कई सदियों पहले से जो इंसान है अपनी बातों को अपनी कहानियों को सुनाते आ रहा है. ठीक है, तो क्लू नंबर 1 आपके लिए ये रहा. हजारों साल पहले एंशियंट ज़माने में जब ना पेपर था ना कलम, तब लोग अपनी दास्तान अपनी स्टोरीज सुनाने के लिए पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर तस्वीरें बनाते थे. अब इन गुफा चित्रों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके, आइए देखें कि हमारे लिसनर्स ने क्या क्या लिखा है. कुछ ने लिखा है केव पेंटिंग्स, कुछ ने लिखा है केव आर्ट्स, कुछ ने लिखा है पेरिटल आर्ट. ओके, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ केव पेंटिंग्स. ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगी कि जिन्होंने भी केव पेंटिंग्स केव आर्ट्स या पेरिटल आर्ट लिखा है बिल्कुल सही लिखा है. जोरदार तालियां आप सबके लिए. क्या बात है, कमाल कर दिया आप सबने. पहला क्लू सॉल्व हो चुका है और जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं आफताब, जमील,

रिजवान, हिशाम और कौन कौन है भाई, आइए ज़रा इनके नाम भी देखते चलें। अहमद हमारे साथ है और अजमत हमारे साथ है, मोहम्मद यूसुफ खान हमारे साथ हैं। शानदार, वेल डन गाइस, आप सब ने क्लू नंबर वन सॉल्व कर लिया। तो जैसे ही आपने सही जवाब दिया, अब आपका ये जो गेट था, डिजिटल गेट, ये खुल गया। वेल, अब आप आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते आपने देखा कि क्या हो रहा है, तो आप अब मेन हॉल ऑफ फेसेस में पहुंच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको येलो रंग के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हर तरफ इमोजीज इमोजीज ही हैं, लेकिन सबसे फेमस इमोजी ने आपका रास्ता रोक लिया है। ओ हो, अब इसको आपको पहचानना है। ठीक है, सो क्लू नंबर टू आपके लिए है, मैं दुनिया का सबसे पॉपुलर इमोजी हूँ, मेरी आंखों से दो बड़े नीले आंसू निकल रहे हैं, लेकिन मैं सैड नहीं हूँ, मैं असल में इतना ज्यादा हंस रहा हूँ कि मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरा नाम क्या है, जल्दी बताओ। ये कौन सा स्माइली है या कौन सा एमोजी है? ठीक है, हमारे लिसनर्स अब मुझे मैसेजेस में वो एमोजी लिख के एमोजी की तस्वीर फॉरवर्ड कर रहे हैं। नहीं, मुझे बताएं कि उसका नाम क्या है। ठीक है, क्या उसका नाम लाफिंग एमोजी है, क्या उसका नाम क्राइंग एमोजी है, या उसका नाम लाफिंग क्राइंग एमोजी है? व्हाट इज द नेम? कम ऑन, गिव मी द राइट आंसर। 666-22-107, 666-22-107 पर मुझे जवाब दे अपने नाम के साथ। क्लू नंबर टू, आपको सबसे पॉपुलर एमोजी को पहचानना है, जिसकी आंखों में से दो बड़े नीले आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो सैड नहीं है, दरअसल वो इतनी जोर से हंस रहा है कि उसकी आंखों से पानी आ गया है। ठीक है, तो जवाब दीजिए 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, कि आखिर इस एमोजी को कहते क्या है। और अभी नेहा कक्कड़ आ गई है भाई आपको एक म्यूजिकल ब्रेक पे ले जाने के लिए, सो लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी, एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:02, यानी कि दो लाइन पर। इट्स टाइम टू मेक अ विश कि आज हम अपने फोन में जो कैद हो गए हैं वहां से एस्केप कर पाए।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107। दिल से दी
2: वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। एस्केप रूम में आज हम अपने फ़ोन के अंदर कैद हो गए। बड़े प्यार से किसी को हैप्पी बर्थडे मैसेज कर रहे थे और एक टेक्निकल ग्लिच। अब यहाँ पर हम स्माइलीज की दुनिया में हैं, डिजिटल दुनिया में कैद हैं, निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपना दिमाग लगाएंगे तो निकल जाएंगे। क्लू नंबर 1 हमने सॉल्व किया, केव पेन।

पेंटिंग्स सही जवाब था। हम आगे बढ़े, एक डिजिटल गेट खुला जो कि बंद था, और जब वहाँ गए तो हमने देखा हॉल ऑफ फेसेस है, बाप रे बाप, मतलब हर जगह सिर्फ इमोजीज ही इमोजीज नज़र आ रहे हैं। और यहीं पर आपका क्लू नंबर टू आया, क्योंकि एक बड़े ही पॉपुलर से फेमस से एमोजी ने आपका रास्ता रोक लिया है। सो मैं दुनिया का सबसे पॉपुलर एमोजी हूँ, और मेरी आंखों से दो बड़े नीले आंसू निकल रहे हैं, लेकिन मैं सैड नहीं हूँ, ठीक है। मैं असल में इतना ज़्यादा हंस रहा हूँ कि मेरी आंखों में पानी आ गया है। बताएं मेरा नाम क्या है? तो कुछ लोग बहुत ही आसान से शब्दों में लिख रहे हैं, लाफिंग क्राइंग फेस, ओके। कुछ लोगों ने क्या लिखा है, आइए ज़रा हम अपने व्हाट्सएप मैसेजेस की तरफ भी देखते हैं। किसी ने लिखा है स्टोन टैबलेट, ये तो कहीं से रिलेट नहीं कर रहा। कुछ ने लिखा है फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, अच्छा लॉट्स ऑफ लाफिंग, अच्छा लॉट्स ऑफ लाफ्टर यू मीन, ओके ओके। चलें आपको अब बता ही देते हैं कि क्या सही जवाब हो सकता है। जिन्होंने भी आसान से शब्दों में लिखा है ये लाफिंग क्राइंग फेस वाला इमोजी है, ओके, टिक मार्क, इन्हें भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, एक्चुअली दैट्स द राइट नेम, एंड रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, ये भी सही नाम है। तो जिन्होंने भी ये नाम लिखे हैं, जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। क्या बात है, क्लू नंबर टू आपने सॉल्व कर लिया है। अब कुछ लोगों ने लाफिंग सिंगल लिखा है, कुछ ने सिर्फ क्राइंग लिखा है, कुछ ने लिखा है लाफ्टर एमोजी। लेकिन नाम कुछ ऐसा बोले जो एकदम सटीक बैठे। हाँ, तो जिन्होंने सही जवाब दिए हैं, आइए उनके नाम आपकी तरफ लेकर आते हैं। सो हमारे लिसनर्स में से हैं आफ्ताब, जिन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की, जमील, रिजवान, यहाँ पर अजमत ने सही जवाब दिया है। इनका नाम क्या है, इनके नंबर के आगे कोई नाम नहीं लिखा है। देखिए नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, इनके नंबर के आखिर में 30 आता है। चले बिल्कुल सही जवाब हमारे कुछ लिसनर्स ने दे दिया, और सेकंड क्लू भी पास कर लिया, वेरी गुड। ये बहुत ज़रूरी था कि आप दो क्लू सॉल्व करें और अब आखिरी मुकाम तक पहुँचें। और अब हम जो होम बटन है ना, उसके बहुत करीब आ गए हैं। बस एक आखिरी पजल है, आखिरी क्लू सॉल्व करना है, और सिस्टम को ये यकीन दिलाना है कि हमें सब समझ आ गया। इसे एक ग्रेट आइडिया का सिंबल चाहिए। चले अब थोड़ा ध्यान से क्लू नंबर 3 सुने। आप सभी ने कॉमिक बुक्स पढ़ी होंगी, तो अक्सर कॉमिक बुक्स में या आपके फोन पर जब किसी कैरेक्टर को अचानक कुछ समझ आता है या कोई ब्रिलियंट प्लान जो वो सुलझा देते हैं, तो उसके सर के ऊपर ना कोई चीज़ चमक रही होती है, एकदम से कुछ जलता है। हाँ, इसका जवाब दीजिए, वो चीज़ क्या है? आपको बस ये जवाब देना है, उस चीज़ का नाम लिखें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि चाहे कॉमिक बुक्स हो, चाहे आपके फ़ोन हो, अगर आप उसमें कोई कैरेक्टर देखते हैं और कैरेक्टर को अचानक से कुछ समझ आता है या कोई ब्रिलियंट प्लान वो सुलझाते हैं, या एकदम से उनको ऐसे समझ में आता है कि हाँ ये ब्रिलियंट प्लान ऐसे सुलझाना है, तो सडनली उनके दिमाग के ऊपर, उनके सर के ऊपर एक्चुअली एक चीज़ जलती है। हाँ, वो क्या है? वो क्या जलता है? कम ऑन, गिव मी द राइट आंसर। बहुत इजी है, जस्ट थिंक अबाउट इट, आप जवाब दे पाएंगे। सो 6622107 इज आर नंबर, उस पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब भेजें। और अभी एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ हम रुख करते हैं, ताकि आपको सोचने का, समझने का थोड़ा सा मौका मिल जाए। बादशाह डिवाइन एंड निकिता गांधी का ग्रेट कॉम्बिनेशन, इंजॉय। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखें।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो आज एस्केप रूम में हम कैद हैं अपने ही फोन के अंदर। यहाँ से निकलने के बस तीन क्लूज सॉल्व करने होंगे। देखो, डिजिटल गेट पहले हमने खोला, फिर हम रंग बिरंगे या यूं कहें एमोजीज की दुनिया में आ गए। परेशान तो हम हो गए कि हम निकलेंगे कि होम बटन के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। वैसे क्लू नंबर वन सॉल्व किया, इसका जवाब था केव पेंटिंग्स। क्लू नंबर टू का सही जवाब रेस विद टीयर्स जॉय, आई मीन फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग या लाफिंग क्राइंग फेस, ये सही जवाब। और अब जब होम बटन के हम इतने करीब हैं तो हमें आखिरी पजल को सॉल्व करना है। अब सिस्टम को ये दिखाना है कि भाई देखो, यकीन करो, हमें सब समझ आ गया है और अब इस ग्रेट आइडिया का सिंबल चाहिए। सिंबल क्या होगा? देखिए, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। हम सब ने अपने बचपन में कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है? और अगर अभी भी हम अपने फ़ोन पर कुछ कॉमिक स्टोरीज वगैरह देखते हैं तो जब भी कोई कैरेक्टर, उसे अचानक से कुछ समझ आता है या कोई ब्रिलियंट प्लान उसके दिमाग में आता है जिसे वो सुलझा सकता है, तो सडनली उसके ना सर के ऊपर कुछ जलता हुआ दिखाई देता है। वो क्या है? हाँ, जस्ट थिंक अबाउट इट। उसका सही जवाब दीजिए 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ। आई कैन सी हमारे लिसनर्स नॉन स्टॉप मैसेजेस कर रहे हैं। सही जवाब चाहिए भाई, सही जवाब। सर के ऊपर क्या जल रहा होता है? कुछ हमारे लिसनर्स लिख रहे हैं फ्लैश, कुछ लिख रहे हैं क्लाउड। देखो, आप कहीं नज़दीक पहुंच रहे हैं लेकिन सही चीज़ नहीं बोल पा रहे हैं। कम ऑन, गिव द राइट आंसर। 666-22107 पर, 666-22107। सोचिए, कॉमिक बुक्स पर जब कोई कैरेक्टर को सडनली कुछ समझ आता था तो उसके सर पर जब क्लाउड बनता था तो फिर क्या जलता था उसमें? अब ज़्यादा इजी क्या करूँ मैं? सोचिए सोचिए। और सोचने के लिए अब बस ये आखिरी मौका आपको मिल रहा है। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद पता चलेगा आज मिस कितने लोग हमारे एस्केप रूम की सिचुएशन से एस्केप कर पाते हैं। और अभी के लिए एक शानदार गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कदर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।
1: क्या आपने कभी खुद से पूछा, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्न लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं,

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: इस्तफा के साथ, हर मंडे दोपहर 1 बजे सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और एस्केप रूम बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। आज हम कैद हो गए थे अपने ही फोन के अंदर, हाँ जी। और 3 क्लूज हमें सॉल्व करने थे। पहले क्लू का सही जवाब हमने दिया केव पेंटिंग्स, दूसरे क्लू का हमने सही जवाब दिया फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय या रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। और अब उसके बाद तीसरा क्लू, यहाँ पर हमको एक ग्रेट आइडिया का सिंबल चाहिए, ठीक है। सो कॉमिक बुक्स में या आपके फ़ोन पर जब भी आप किसी कैरेक्टर को अचानक देखते हो कि उसे मज आया या एक ब्रिलियंट प्लान आया जिसे वो सुलझाएगा, तो कुछ चीज़ उसके सर के ऊपर चमकती है एकदम से, वो चीज़ का नाम क्या है, क्या कहते हैं उसको। सो आपको बताना था हमें, और हमारे लिसनर्स ने अलग अलग जवाब दिए हैं। कुछ ने लिखा है लाइट बल्ब, ओके, आई कैन से कि ये राइट आंसर हो सकता है। किसी ने लिखा है फ्लैश बल्ब, ओके, किसी ने लिखा है बत्ती, ओके, बल्ब, लाइट बल्ब, बल्ब, लाइट बल्ब, स्टार्स लिखा है, देखो स्टार्स नहीं ज़्यादातर दिखाया जाता है बल्ब जलते हुए, ठीक है, तो उसे हम बत्ती भी कहते हैं, फ्लैश बल्ब भी कहते हैं, लाइट बल्ब भी कहते हैं। जिन्होंने भी ये लिखा है सही जवाब, ज़ोरदार तालियां आप सभी के लिए, क्या बात है, आप सब ने सही जवाब दिया और इसी मुकाम को भी पूरा किया। आइए जल्दी से जाने जिन्होंने हमें सही जवाब दिए हैं, उनके नाम हैं जमील, रिजवान, आफ्ताब, क्या बात है। ये जो हमारे लिसनर्स हैं नॉन स्टॉप में सही जवाब देते जा रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ खान ने भी हमें सही जवाब दिया है, और हमारे लिसनर कईयों ने भी हमें सही जवाब दिया है। यहाँ पर अहमद ने भी सही जवाब दिया है, और अरफातुल ने भी सही जवाब दिया है, शाज ने भी सही जवाब देने की हमें कोशिश की है। सो यस टू ऑल आर लिसनर्स जिन्होंने हमें सब कमाल कर दिया, और आपके इस सही जवाब ने आपको एकदम से आपके फ़ोन के बाहर निकाल दिया है। जैसे ही आपने लाइट बल्ब, बल्ब या बत्ती ये जब कहा, तो

एकदम से तेज रोशनी हुई और सब कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे नॉर्मल है. अब फोन आपके हाथ में है, आप फोन के बाहर हैं और अपने काउच पर आकर बैठ गए हैं. कैसा लग रहा है, मतलब ऐसे अपने फोन की डिजिटल स्क्रीन से बाहर निकल के? हाँ, आई यू फीलिंग फाइन? चलिए इसी बात पे जानते हैं कि आज के हमारे लकी विनर कौन है. आज के हमारे लकी विनर है जमील. भाई जोरदार तालियां हो जाए जमील के लिए, जिन्होंने नॉन स्टॉप हमें जल्दी जल्दी सही जवाब देने की कोशिश की. और अपने सारे लिसनर्स का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने पूरी कोशिश की कि हमें सही जवाब दिए जाए और एस्केप रूम से आज बाहर निकला जाए. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. अब वक्त है मेरे जाने का तो जाना होगा. अब आपकी मेरी मुलाकात होगी कल दोपहर 1:30 बजे एस्केप रूम के नए चैलेंज के साथ, तो मिस मत कीजिएगा. और अभी आप हमारे एफ एम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए. अपने आर जमीता को भी सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं. और जाते जाते ये कहना बनता है कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. अब थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं. बेहतरीन सा गाना है, इसे एंजॉय कीजिए फुल वॉल्यूम पे. बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं आपका प्यारा सा इको स्विच ओनली ऑन FM 107। साथियों, कभी कभी हमारे घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुरानी जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कम नहीं होती भाई। एक पुरानी कुर्सी जिस पर कभी दादा या दादी बैठा करते थे, एक पुरानी अलमारी जिसमें आपकी बचपन की किताबें रखी होती थीं, या एक पुरानी टेबल जो सालों से घर का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब फर्नीचर पुराना नजर आने लगता है, भाई हम क्या सोचते हैं, यही ना कि भाई इसे हटाओ, साइड पे करो और भाई हम नया ले आते हैं ना। लेकिन साथियों, क्या हो अगर हम अपनी पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें एक नई जिंदगी दें। तो भाई आज के इस इको स्विच में बात करेंगे अपसाइकल फर्नीचर के बारे में, यानी पुराने फर्नीचर

0: फिक्र को नई सोच और नए अंदाज के साथ दोबारा इस्तेमाल करना भाई। देखिए आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा हाई करते हैं, आजकल फर्नीचर के ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। कभी मॉडर्न स्टाइल पसंद आता है, कभी मिनिमलिस्ट लुक, और कभी नया डिजाइन ट्रेंड बन जाता है। इसी वजह से बहुत सारा फर्नीचर जो अभी भी काम काबिल होता है, इस्तेमाल के काबिल होता है, सिर्फ इसलिए फेंका जाता है क्योंकि भाई वो पुराना लगने लगा, इन नहीं था। लेकिन पुरानी चीज को वेस्ट समझना जरूरी तो नहीं होता, थोड़ा सा माइंड करें ना। देखिए फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, मेटल और दूसरे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। जब हम हर साल या कुछ सालों बाद अपना फर्नीचर रिप्लेस करते हैं तो वेस्ट बढ़ता है ना, और नए रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ जाती है। और सिर्फ एनवायरमेंट ही नहीं भाई, फर्नीचर वेस्ट करना हमारी जेब पे भारी पड़ जाता है। देखिए भाई कभी कभी ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मेहनत पूरी की पूरी चीज को बदल कर रख सकती है। अब इसमें इको स्विच बड़ा सिंपल है भाई। तो भाई इसका इको स्विच क्या है अब आप ये पूछेंगे। देखिए भाई रिप्लेस करने से पहले रिस्टोर और रीयूज करें ना। देखिए अपसाइक्लिंग का मतलब है किसी पुरानी चीज को मॉडिफाई करके उसे एक नया पर्पस देना। जैसे कि कह लिया जाए आप अपने पुराने फर्नीचर के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। आइडिया दूं तो भाई देखिए पुरानी जो चेयर होती है उसको अच्छा खासा पेंट करके ना स्टाइलिश रीडिंग कॉर्नर बनाया जा सकता है। आपकी जो पुरानी ड्रॉर्स होती हैं, पुरानी ड्रॉर्स को वॉल शेल्फ्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हाँ वो जो पुराने वुडन डोर्स होते हैं ना, यकीन जाने उनसे डाइनिंग टेबल्स और डेकोरेटिव वॉल्स बनाई जा सकती हैं। पुराने कवर्स को चेंज करके उसे नया लुक दिया जा सकता है। हाँ अगर फर्नीचर पर स्क्रैचेस हैं तो पॉलिश या पेंट से वो अच्छे दिख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपसाइक्लिंग में आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं, आपके अंदर का पिकासो बाहर आ जाएगा। आपका फर्नीचर मार्केट के हर पीस से डिफरेंट और यूनिक हो सकता है साथियों। तो भाई अगर सोचा जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, दुनिया भर में बहुत से लोग अब पुराने फर्नीचर को फेंकने के बजाय रीयूज कर रहे हैं क्रिएटिवली। किसी की पुरानी वुडन लेडर को आप देखेंगे कि वो बुक बना दिया जाता है, किसी ने अपने पुराने सूट केसेस को साइड टेबल में तब्दील कर लिया है, किसी ने अपनी पुरानी चेयर को कलरफुल पेंट करके गार्डन के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। और घरों में भी अक्सर ऐसी चीजें होती ही हैं जो थोड़ी मेहनत के बाद दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर में कोई पुरानी टेबल है जो कि थोड़ी सी डैमेज्ड है, तो उसे फेंकने के बजाय रिपेयर करके पेंट करके उसे थोड़ा सा उसका डिजाइन चेंज करके उसे नया लुक भी दिया जा सकता है। तो भाई कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजें वो होती हैं जिनके पीछे एक कहानी होती है। तो साथियों आज का इको स्विच चैलेंज ये है कि आप अपने घर में एक पुराना फर्नीचर आइटम ढूंढें जो काफी वक्त से यूज ना हो रहा हो, और ये सोचें कि क्या मैं इसे फेंकने के बजाय किसी नए काम के लिए यूज कर सकता हूँ। क्या पुरानी चेयर एक प्लांट स्टैंड बन सकती है? क्या पुराना शेल्फ एक नया स्टोरेज सॉल्यूशन बन सकता है? तो भाई हमें जरूर बताएं। हमें चाहें तो फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर जो कि है M107 कतर। आपके घर का सबसे पुराना फर्नीचर आइटम कौन सा है साथियों, और उसकी कोई यादगार कहानी है? मुझे जरूर बताइएगा। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे स्विच ऑन FM 107। याद रखिए हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक नई सोच की जरूरत होती है उसे। छोटी सी आदत बदले और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश। दिन का हाल जिस तरह होता है पूरा दिन वैसा ही गुजरता है। फज्र की नमाज से दिन की शुरुआत करना एक मोमिन की पहचान है। ये सिर्फ इबादत नहीं बल्कि डिसिप्लिन और रूहानी सुकून का जरिया भी है। सुबह का वक्त बहुत बरकत वाला होता है। इस वक्त जहन फ्रेश होता है और दिल अल्लाह की तरफ ज्यादा झुक है। जो लोग फजर के लिए उठते हैं उनकी जिंदगी में एक निजाम और पॉजिटिविटी नजर आती है। अक्सर देर तक जागने की आदत हमें फजर से दूर कर देती है, लेकिन अगर हम अपनी नींद को ठीक करें तो ये आदत आसानी से डेवलप हो सकती है। आज अमल ये है कि रात को जल्दी सोएं और फजर के लिए उठने का इरादा करके अलार्म सेट करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: कदर पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नासिया।
3: One Step to 2030.
1: आज दोस्तों इस सेगमेंट में मैं बात करूंगी यूथ और टेक्नोलॉजी की फॉर अ ग्रीनर टुमारो। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल फोन्स का दौर है, एआई का है, स्मार्ट डिवाइसेस का है, डिजिटल टूल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि एनवायरमेंट को बचाने और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए भी यूज की जाती है। इस मिशन में यंग जनरेशन का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आज का जो यूथ है या आज ये जो यंग पीपल हैं टेक्नोलॉजी को सबसे बेहतर समझते भी हैं। आपके हमारे बच्चे ही देख लीजिए कितना ज्यादा फ्लिंट है, फ्रेंसी है उनकी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स को चलाने समझने, पर हम कई बार स्ट्रगलिंग पे रहते हैं। वो नए आइडियाज ला सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं और हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। शायद इसीलिए यूथ को लीडर्स ऑफ टुमारो कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, वेस्ट जैसी चैलेंजेस पूरी दुनिया के लिए बड़े कंसर्न्स हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेदर के पैटर्न पिक कर सकता है, एनर्जी कंजप्शन मॉनिटर कर सकता है और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। वहीं यंग इनोवेटर्स जो है ना वो दुनिया भर में नए एप्लीकेशंस और डिजिटल सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसी ऐप डेवलप कर रहे हैं जो लोगों को रिसाइकलिंग के बारे में गाइड कर रही है। कुछ स्मार्ट सिस्टम्स एनर्जी वेस्ट को रिड्यूस करने में मदद कर रहे हैं। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी, जी हाँ रिन्यूएबल एनर्जी भी टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। सोलर पैनल्स, इस पे तो हमने बात की थी, विंड टर्बाइन क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और देखिए यंग इंजीनियर्स हैं या फिर साइंटिस्ट हैं टेक्नोलॉजीज को और बेहतर अपना रहे हैं, समझ रहे हैं। एजुकेशन, जी हाँ एजुकेशन भी टेक्नोलॉजी की वजह से अब देखा जाए तो कितनी आसान हो गई है। स्टूडेंट्स ऑन कोर्सेज और रिसर्चेस के जरिए सस्टेनेबिलिटी के बारे में सीख सकते हैं। नॉलेज जितनी ज्यादा होगी मुझे लगता है सॉल्यूशंस भी उतने बेहतर होंगे। ऐसे सोशल मीडिया को ब्लेम तो हमने हमेशा किया है, लेकिन यहाँ नहीं ऐसा होगा। सोशल मीडिया भी पॉजिटिव चेंज का एक इम्पोर्टेंट टूल बना है। जी हाँ, यंग पीपल जो है वो 96% सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बेशुमार एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं। जैसे आप जानते ही हैं स्कूल्स में तो बहुत ही कॉमन है ट्री प्लांटेशन ड्राइव है या फिर और कोई सस्टेनेबिलिटी के मैसेज हैं, वो अगर लोगों तक पहुंचाना है तो एक क्लिक के साथ आप इतने मिलियंस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वही स्मार्ट सिटीज, इन्हें हम कैसे भूल जाए। वही स्मार्ट सिटीज भी तो फ्यूचर का हिस्सा है, जहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स हो या फिर स्मार्ट लाइटिंग हो या फिर एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग्स हो या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज, इन सब को बनाने में मदद करते हैं। और इन प्रोजेक्ट में यूथ के पार्टिसिपेशन को कैसे इग्नोर किया जा सकता है भाई। देखिए टेक्नोलॉजी का सही यूज

0: करना भी उतना ही अहम है जितना उसे डेवलप किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट आज एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। पुराने मोबाइल फोन्स हैं, गैजेट्स हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिसाइकल करना कितना जरूरी है। दोस्तों, इनोवेशन का मतलब सिर्फ नए प्रोडक्ट्स बनाना नहीं है, इनोवेशन का मतलब है कि प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देखना और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढना। कभी कभी एक सिंपल आइडिया भी बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो पैदा करता है। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप भी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकती है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को फ्रेंडली बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए जॉब्स भी क्रिएट करें। देखिए, हर यंग पर्सन साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, इन हर यंग पर्सन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर देख के संभाल सकता है। एनर्जी सेव करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना और ट्रीज लगाना, ये कितने छोटे कदम हैं जो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी, फ्यूचर आज के स्टूडेंट्स बनाएं जो कल के इनोवेटर्स होंगे, जो कल के लीडर्स होंगे, जो कल के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट होंगे। अगर यूथ टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज करे तो दुनिया को क्लीनर, ग्रीनर और हेल्दियर बनाया जा सकता है। आखिर में कहा जा सकता है कि यूथ और टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है वो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए सबसे पावरफुल फोर्स है। जब क्रिएटिविटी, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ मिल जाए तो हर चैलेंज का सोल्यूशन मुमकिन है। इसीलिए तो कहते हैं कि ग्रीनर टुमारो का सफर आज के यंग माइंड से ही शुरू होता है। वैसे आपके नजदीक फूड वेस्ट कम करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, सोचिएगा और मुझे बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar। दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने की आज ही रब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल marketing@qmc.ae।

दोस्तों हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: इतनी इज्जत दी जाती है बाहर भी. द रीजन इज कि लोग जो हैं वो बाहर जाके भी ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं बट जाकर ये भी दिखाते हैं कि हमारे मुल्क के लोग कैसे हैं. दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन. बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं. संजीव भाई वेलकम टू द स्टूडियो.
1: थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच कबीर भाई.
0: बहुत बहुत खुशी होती है संजीव भाई आप जैसे लोगों से मिलकर और आप जैसे मुझे आप ही मिले तो रियली हैप्पी टू हैव यू हियर. आपने पूरी कम्युनिटी को ऐसे बांध के रखा है
1: जी.
0: ये बहुत बड़ी बात है. और आप क्या साहबजादे आपके साथ है पार्थ. वेलकम टू स्टूडियो.
2: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग.
0: क्योंकि आप इतने सारे काम में मसरूफ रहते हैं. पार्थ की परवरिश जो है क्योंकि जेन ज़ी है वो कितना कितना मुश्किल कितना आसान था टू डील विद पार्थ.
1: बहुत ज्यादा मतलब यहाँ जैसे हमारी जो परवरिश है वो रफ एंड टफ थी.
0: रफ एंड टफ थी यस.
1: बहुत ज्यादा हम लोग हर चीज झेले हैं. गालियां भी सुने हैं, मार भी खाए हैं. टीचर से कह लो या घर वालों से कह लो इनकी लाइफ एकदम सॉफ्ट है. तो जैसे मुझे पता है हमें बचपन में कह लीजिए कि पता था कि ये चीज महंगी है ये चीज सस्ती है.
0: राइट राइट राइट.
1: इस चीज का पता था. इनको नहीं पता. ये मेरे को लगता है कि 15 साल में ये 15 बार कहीं सामान खरीदने नहीं गया होगा.
0: अच्छा ऐसा.
1: कल का ही वाक्य बताता हूँ कि पार्थ जाओ पैसे दे के आओ कि आप कितने पैसे कौन सा सामान लेके आओ वो कितने बने और आपने गिनती किए कि आपको वापिस उसने किसने दी कितने दिए.
0: राइट राइट राइट.
1: मतलब इनको ये नहीं पता कि कितने कटवाने हैं. मतलब कार्ड ये कार्ड वाली जनरेशन है हम लोग कह सकते हैं. ऑनलाइन पेमेंट वाली जनरेशन. तो हम लोग सोचते थे कि नहीं महंगा सस्ता अपने माँ बाप को बोले नहीं बोले. इनको वो चीज भी नहीं पता है कि महंगा या सस्ता कैसे होता है. वो क्या वो महंगा सस्ते का मतलब क्या चीज है.
0: राइट. हाँ ये तो है.
1: ये चीज है.
0: अपार्ट डू यू अग्री कार्ड वाली जनरेशन है.
2: थोड़ा बहुत अग्री करते हैं.
0: थोड़ा बहुत अग्री करते
2: हैं.
0: तो फर्द तुम मतलब क्या जिद करते हो. डू यू कंसीडर योरसेल्फ जिद्दी. जिद्दी हो गया तुम.
2: नहीं नहीं मैं तो अच्छा बच्चा हूँ.
0: अच्छा बच्चा.
1: सेल्फ डिक्लेयर.
0: सेल्फ डिक्लेयर. सेल्फ डिक्लेयर चला. अच्छा पास सोशल मीडिया यूज करते हो वैसे.
2: नहीं थोड़ा बहुत करता हूँ.
0: थोड़ा बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं.
2: हाँ हाँ.
0: अच्छा क्या पापा ने कुछ बोला क्या. मम्मी ने बोल रखा है कि नहीं ज्यादा सोशल.
2: हाँ बोला 12th के बाद. अभी नहीं.
0: अभी नहीं. वैसे अच्छा डिसीजन है संजीव भाई. आप आजकल ये बच्चे बिना टैब और मोबाइल फोन के खाते पीते नहीं है. पार्ट भी ऐसा था क्या.
1: नहीं पार्थ ऐसा नहीं था. इसको खाने का शौक बहुत है. इसको
0: वेरी नाइस.
1: एक खाने का और इसका सोशल मीडिया में क्या है कि एक इनसे पहले जो थे वो जनरेशन जो कह लीजिए कि आज से 15-20 साल जिनकी एज 20-25 है ना.
0: हाँ, हाँ.
1: वो सोशल मीडिया वाली थी. अभी जो है अब गेम्स इसका इंटरेस्ट गेम में है.
0: अच्छा.
1: ही लाइक टू प्ले PS5.
0: अच्छा.
1: सो PS5 ने इसको सोशल मीडिया से दूर रखा हुआ है.
0: विच इज गुड इन अ वे.
1: जी जी जी जी
0: सही.
1: हमारे टाइम में हाँ अभी के देखे कितनी बीमारी आप टीवी पे देखिए कितने वीडियोस आ रहे हैं बच्चे जो बीमारी से क्या डेथ भी हो रही है और टैब नहीं छोड़ पा रहे हैं. फोन नहीं छोड़
0: भी है.
1: ट्रोलिंग भी है.
0: हाँ,
1: वो अभी कितने वीडियोस हमें सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे अवेयरनेस के कि कीप अवे. एक हम आपको याद होगा COVID-19 में जब सारी स्टडी ऑनलाइन हो गई थी.
0: हाँ, हाँ,
1: कि जो टीचर्स भाषण देते थे हमें बोलते थे कि बच्चों को दूर रखो.
0: हाँ,
1: उन्होंने जब शुरू कर दिया कि भैया इनको उन्होंने बिठा दिया.
0: हाँ, हाँ,
1: बाद में अभी निकालना मुश्किल हो रहा है.
0: बहुत मुश्किल है. यही बात है. पर प्ले स्टेशन पे खेलते हो.
2: हाँ जी हाँ जी.
0: कौन सा खेल रहे हो आजकल.
2: आजकल फीफा खेल रहा हूँ.
0: आजकल कुछ और भी ट्राई करते हो क्योंकि ऐड करना है यार मुझे भी. हम दोनों खेल.
2: जी हाँ जी. कोई नहीं कोई नहीं.
0: बढ़िया हो गया भाई. पार्थ मिल गया मुझे. अपना दोस्त मिल गया. बहुत बढ़िया हो गया. अच्छा क्योंकि ये एक बड़ा इख्तलाफ दिखा है मैंने संजीव भाई. कुछ पेरेंट्स यहाँ पे आके बोल के गए कि वीडियो गेम से हम बिल्कुल खिलाफ है. वी कीप देम अवे. और आपने इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एक चीज बोली है कि अच्छी बात है ना. रील से दूर है. हाउ डू यू टेक दिस.
1: देखिए सोशल मीडिया पे कई चीजें हैं जो गुड और बैड दोनों हैं. तो ये लोग बड़े उल्टे तरीके से उसको ऑब्जर्व लेते हैं. जैसे कोई न्यूज देख लिया.
0: लैंग्वेज भी आ जाती
1: है. लैंग्वेज में और न्यूज में क्या चीज है. सोशल मीडिया पे आजकल बहुत अच्छा बुरा दोनों तरह का है. तो ये ऑब्जर्व कर ये बड़ी जल्दी उसको सच मान रहे हैं. मतलब जो खतरनाक है.
0: और गेम्स के साथ अब क्योंकि ये स्टडी बताती है कि वीडियो गेम्स जो है. मैं तुम्हारे हक में बोल रहा हूँ कि कॉग्निटिव एबिलिटीज भी होती हैं. यू डू अ लॉट ऑफ स्टफ एंड आपका एक एक एस्केप है किसी
1: का. एग्जैक्टली एग्री.
0: सो आपने कभी ख्याल लिया कि उन्होंने नई वीडियो गेम्स नहीं. क्योंकि अक्सर माँ बाबा ऐसा करते हैं.
1: हम लोगों ने अभी हमें पता है. मैं भी सारा दिन आपको आपके सामने सोशल मीडिया पे हम लोग रहते हैं. तो मैंने बोलते ना एडवांटेज डिसएडवांटेज या लाभ या हानियां, तो गुड और बैड, तो बैड का रेशियो ज्यादा है. तो आई एम ब्लेस्ड दैट माय सन इज टुवर्ड्स ही लाइक टू प्ले गेम्स.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये बढ़िया. तो पार्थ, कौन ज्यादा मनाना आसान है, मम्मी पापा को कौन से इजीली कन्विंसिबल कौन है?
2: दोनों ही मतलब मन जाते हैं.
0: दोनों मन जाते
2: हैं.
0: पर ऐसा होता है ना कि गुड कॉप और बैड कॉप दोनों में से एक को खेलना पड़ता है, तो ज्यादा डिफिकल्ट फिर भी कौन है 19-20 का?
2: मम्मी थोड़ी
0: आसान है.
2: नहीं, मुश्किल है.
0: मम्मी मुश्किल है.
2: पापा जी मान जाते हैं.
0: अच्छा, पापा जी के थ्रू फिर बात जाती है मम्मी तक?
2: अंजी, अंजी, अंजी.
0: अरे वेरी नाइस यार, ये तो करना पड़ता होगा.
1: अगर सुन लिया पूनम ने, सुनेगी वो, देख
0: बात करे ना भाई मम्मी से. अच्छा पार्थ, क्या बनना चाहते हो बड़े होके?
2: बड़े होके इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर.
0: ऑटोमोबाइल इंजीनियर, गाड़ियों का शौक?
2: हाँ जी, हाँ जी, गाड़ियों का.
0: किस किस्म की गाड़ियाँ पसंद है तुम्हें?
2: स्पोर्ट्स कार.
0: स्पोर्ट्स कार, हाइपर कार.
2: जी जी जी.
0: और यहाँ पे क्योंकि जैसे अक्सर लोग सोचते हैं, लोग सेडान वाले भी होते हैं और एसयूवी वाले होते हैं, उसमें तुम्हारा ओपिनियन कहाँ है? मतलब
2: जी एसयूवी थोड़ा प्रेफर करता हूँ मैं.
0: एसयूवी वाले?
2: हाँ जी, हाँ जी.
0: फिर वो तुम सुपर कार की तरफ जाओगे तो तुम्हें ज्यादा एसयूवी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें वापस उस तरफ आना पड़ेगा.
2: हाँ जी, हाँ जी,
0: ये भी तो है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
0: तो पार्थ, जब पीटीएम होती होंगी, कितना डर रहता है पीटीएम का?
2: डर तो बहुत रहता है. बहुत रहता है.
0: क्या क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है कि लगा कह रहे अब क्या होगा? कभी
2: इनको मना करता हूँ जाने से, ये तो बहुत कुछ बोलता था. घर पे टीवी बहुत देखता है या फिर फोन बहुत चलाता है, पढ़ता नहीं है.
0: अच्छा, बोल देते हैं.
2: तो मैं बोलता हूँ थोड़ा आप घर रहो, मम्मी को जान दो, मम्मी थोड़ी सुन लेती है, बोलती नहीं है.
0: क्या कहना है?
1: एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए जैसा हम लोग आगे, अगर हमें माँ बाप ने या टीचर्स ने डांटा है ना, तो अगर मारा भी है तो हमें हमारे अच्छे के लिए मारा है. आप मानेंगे नहीं, बिरला में ये पढ़ते हैं, तो जब मेरी बेटी और बेटा में जो भी टीचर्स से फर्स्ट मीटिंग होता था ना, तो मैंने उनको बोला रिक्वेस्ट किया हर साल जब भी फर्स्ट होती है कि मैं मेरे बच्चे को आप डांटेंगे ना तो मैं उसको कंप्लेंट नहीं करूंगा.
0: अच्छा,
1: मेरी तरफ से तो आप मारने का यहाँ कल्चर नहीं है. अगर आप डांट के चांटा भी लगा देंगे ना मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि मेरे
0: बड़ा अजीब है,
1: मेरे टीचर ने मेरे बच्चे को टीचर ने डांटा. मैं तो बोल के, मेरी बेटी भी मतलब इनके सामने खड़ा होकर बोलता, अगर आपने चांटा भी मार दिया ना, मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा.
0: पहले ऐसे ही था,
1: पहले ऐसे था. अगर वो डांटेंगे, इनके साथ स्ट्रिक्ट होंगे, तो ये इनके लिए होंगे, उनको स्ट्रिक्ट होकर क्या मिल जाएगा? एक साल है, अगले साल उनके साथ नहीं.
0: रिपोर्ट आती है भारत की वैसे पीटीएम में, क्या रिपोर्ट आती है?
1: एवरेज है. जो चीज मुझे, मैंने देखो शुरू से मैंने बोला कि देखिए फ्यूचर बनाना है तो आप लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दीजिए, मैथमेटिक्स और साइंस पे दीजिए.
0: अच्छा, तो आप बेसिकली चाहते हैं कि इंजीनियरिंग की तरफ ही जाए?
1: हाँ, मैकेनिकल की तरफ जाए.
0: अच्छा, तो अच्छा, ओके ओके. कुछ और सोचा था, मतलब ये हाउ आर यू देयर, मतलब इंजीनियरिंग की तरफ तुम्हारा रुझान पूरी तरह से है, कुछ और भी करने का मन है वैसे?
2: नहीं, तो बदलते रहता है हर दिन. पहले फौजी बनना था, अभी वो इंजीनियर, कल पता नहीं क्या हो जाएगा. अभी तो इंजीनियर भैया.
0: अभी तो इंजीनियर भैया. कुछ हॉबीज हैं तुम्हारी जो तुम्हें पसंद?
2: हॉबीज मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है.
0: कौन सा स्पोर्ट्स का पसंद है?
2: स्पोर्ट्स सब फुटबॉल, क्रिकेट, खेले में भी देखने में बहुत पसंद है. आई थिंक दैट आल्सो कीप्स मी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया.
0: वेरी नाइस.
2: या स्पोर्ट्स, आई लव स्पोर्ट्स.
0: तो तुम खुद को एक्सट्रोवर्ट मानते हो, इंट्रोवर्ट मानते हो?
2: एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट नहीं हूं.
0: इंट्रोवर्ट नहीं? अब मुझे लगा था पहले तुम इंट्रोवर्ट हो, गेम एज अ शॉकर. नहीं, बढ़िया है. तो जैसे क्लास में होता है ना कि अलग अलग कंट्रीज से बच्चे होते हैं, राइट?
2: हां जी.
0: हमने संजीव भाई ने ऐसा नहीं देखा. संजीव भाई, आई एम प्रीटी श्योर हम
1: सारे
0: एक ही यूज के हैं. तो ये जो रहता है, इसमें कुछ सीखने को मिलता है? कैसा कल्चर तुम, हाउ डू यू टेक इट? तुम्हारे दोस्त हैं दूसरे?
2: देखिए, इन स्कूल में टीचर्स भी, फ्रेंड्स भी सब साउथ इंडियन है.
0: अच्छा,
2: ओके. मतलब तो मैं ही पूरे पंजाब में हूँ, जो मतलब पंजाब से हूँ.
0: अकेला कल्ला पंजाबी है.
2: लेकिन अच्छा है, सबका लैंग्वेज बोलता है, थोड़ा सीखने को उनका कुजीन या फिर उनका कल्चर, मतलब बहुत सीखने को मिलता है. क्योंकि लाइफ में कभी देखेंगे साउथ इंडियन तो, लेकिन इधर बहुत सीख मिलती है.
0: राइट, ये
2: कि क्या कल्चर, थोड़ा कनेक्टेड भी होता है साउथ इंडियन.
0: कुछ और खाने वाले ट्राई किया तुमने, किसी और कंट्री का भी मौका मिला खाने का?
2: और कंट्री का नहीं, बस साउथ इंडियन का ही है उनको
0: खाना पसंद है. हां, ओके.
1: हेल्दी, ये मेरी बेटी भी, क्योंकि देखिए यूजुअली मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनका, हमारा जो नॉर्थ इंडियन है वो बहुत तेल घी ये,
0: हमारा तो अलग सिस्टम है.
1: हम लोग उसको अनहेल्दी नहीं कह सकते, लेकिन आपका फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है.
0: ट्रू.
1: लेकिन जो साउथ इंडियन खाना है वो आप
0: जल्दी पच जाता
1: हैवी नहीं है, लाइट है.
0: राइट,
1: डोसा कह लीजिए, इडली कह लीजिए, सांभर, ये सब चीज लाइट है।
0: और पार्थ क्या देखना पसंद है तुम्हें वैसे, कुछ सीरीज वगैरह कुछ मूवीज वगैरह क्या जोन रहा?
2: मूवीज मैं थोड़ा कम देखता हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स देखता हूँ।
0: स्पोर्ट्स देखते हो ज्यादा?
2: स्पोर्ट्स।
0: अच्छा, अब पापा के दिखाने में कुछ देखा है तुमने कभी, कुछ मूवी वूवी दिखाने की कोशिश?
2: मैं दिखाता हूँ इनको।
0: अरे क्या बात है, क्या दिखाई है पापा को? क्या
2: बस फुटबॉल, बस स्पोर्ट्स, क्रिकेट। लेकिन उन्होंने कभी मूवी दिखाई है पुरानी, कहते हैं कि देख, मैं कहता हूँ ठीक है देखता हूँ, अच्छी लगती है।
1: जो लिरिक्स है ना ऐसी, आप जानते हैं मैं गुरदास मान का बहुत,
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: वन एंड लास्ट ओनली वन, तो ये उसी का सेम जो लिरिक्स में करण औजला है। उनके लिरिक्स कईयों को नहीं समझ आता, सी इज फैन ऑफ करण औजला।
0: अच्छा भाई, नहीं
1: तो 24 घंटे इसके हेडफोन में वही होता है।
0: अच्छा,
1: तो एक गेम होगी और फुटबॉल में क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, फुटबॉल पैशन है। मैं हैरान हूँ कि इसने फुटबॉल देख देख के ही, मतलब वर्ल्ड वाइड कौन सा क्लब है, कौन सा क्लब में कौन सा प्लेयर है, कहाँ खेलता है, वो सारी चीज इसको पता है।
0: तो मैं हैरान हूँ। व्हिच इज योर फेवरेट क्लब? वैसे
2: रियल मैड्रिड।
0: आए हे, मुझे पता था ये आंसर आने वाला है। वेरी नाइस। अच्छा संजीव भाई, आपकी क्या एडवाइस रहती है इस जनरेशन को? बिकॉज वेरी हार्ड टू टैकल ना, क्योंकि इस बड़े एक्सप्रेसिव बच्चे हैं इनके, ये तो कम सोशल मीडिया यूज कर रहा है, बाकी तो दे पोस्ट एवरीथिंग। उनका सोशल मीडिया पे उनकी नाराजगी है, उनकी खुशी है, सब कुछ इट गोज ऑनलाइन। तो आपको क्या क्या एडवाइस क्या है, एक अगर फ्रेंडली एडवाइस हो तो क्या हो?
1: मेरी फ्रेंडली एडवाइस मेरे बेटे से भी और मेरी जनरेशन से भी यही है कि आप जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया है ना, वो हम जो इनको दे रहे हैं उसको ये पकड़ के रखें बस। हम नहीं कह रहे कि आप चेंज हो, बेसिक जी जी प्यार मोहब्बत फैमिली अट्रैक्शन। मैंने नोट किया है कि अभी एक बचपन में हमने किताब में था हमारे टूटते परिवेश, मतलब न्यूक्लियर फैमिली से ज्वाइंट फैमिली वो था, जो अब आके जो हमारे जैसे अलग भी रह रहे हैं ना, उनको समझ आ गई कि क्या बेनिफिट्स थे जॉइंट फैमिलीज़ के।
0: ऑफ कोर्स
1: बच्चों को पालना, बच्चों की परवरिश, आपसी प्यार।
0: यस यस।
1: तो इन्होंने जब देखना कि हाँ पुराने वीडियोस में कजन है, कितना रश है शादी ब्याह में, कितने लोग जा रहे हैं, तो वो बोलते मेरे कजन, मैं बोला हम लोग हमारी बहुत बड़ी फैमिली, आपके कजन बहुत है, लेकिन वो दूर दूर होने के कारण टच में नहीं है। तो जो प्रायोरिटी है ना, जैसे कल भी कॉन्फ्रेंस में थे तो प्रायोरिटी पूछी गई थी, सेट प्रायोरिटीज, आपकी प्रायोरिटीज आपका फैमिली रिलेशंस होना चाहिए, बाकी सब तो आप अपने अपनी लाइफ में सब पर्सनल कर ही लेंगे आप लोग। तो आप कनेक्ट रहिए फैमिली से, कनेक्ट रहिए उसमें। देखिए मन मुटाव भी होता है, डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन फैमिली में आप अपने टच में रहिए, फैमिली के टच में, क्योंकि फैमिली ही है जो आपको प्रॉब्लम से टाइम में आपके साथ खड़ी होगी, चाहे आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा भी,
0: बुखार भी तो आपको लोग चाहिए होते हैं,
1: पूछने वाले होंगे,
0: पूछने वाले होना चाहिए।
1: हाँ,
3: आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक विद दोहा वाला कबीर, ओनली ऑन FM 107।
0: और बात कमिंग बैक टू यू मेरे भाई, जैसे होता है मैं भी एक न्यूक्लियर फैमिली, पहले जॉइंट फैमिली, अब न्यूक्लियर फैमिली, सो मन में लगता है कि काश और भी बड़ी फैमिली होती, लोग होते ऐसा कुछ?
2: हाँ जी, हाँ जी, बहुत मन होता है इतना, मतलब जो माहौल होता है इतना शादियों में इकट्ठे होके, इधर तो रह के कोई भी नहीं है, मतलब सब इंडिया में ही है, मतलब ताए अंकल आंटी सब उधर ही है, तो जब माहौल में जाते हैं घर घर में होते सारे लोग, बातचीत होती है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत अच्छा फील होता है।
0: तो कितनी दफा जाना होता है वैसे पंजाब वगैरह?
2: साल में एक बार
0: बस जाना होता जरूर है ना?
2: पक्का पक्का,
0: ये अच्छी बात है। पंजाब को तुम्हें क्या पसंद है यार, क्या पसंद है पंजाब?
2: सब कुछ पंजाब का, मतलब खाना, लोग,
0: इतने से खाना बदल जाता होगा ना थोड़ा सा, और फील आती होगी यार।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत कुछ कब कुछ पसंद आता है, लोग उधर, एनवायरमेंट, खूबसूरती पंजाब की, और हमारा मतलब घर भी बहुत, मतलब होम फील होता है।
0: और वहाँ पे दोस्त वोस्त बनाए तुमने पंजाब में?
2: नहीं नहीं, अभी
0: नहीं बनाए, बस फैमिली वाले लोग हैं।
2: हाँ जी हाँ जी,
0: उनके उसमें सारा हो जाता है।
2: हाँ जी हाँ जी।
0: अरे वही नहीं यार। अच्छा वैसे आपकी कोशिश रहती है, ऐसे आपने बताया कि पुरानी मूवीज दिखाने की कोशिश करी है आपने, तो रिसेंटली कुछ दिखाने की कोशिश करी है पार्थ को कि पार्थ बेटा ये भी देखो यार, काम की चीज़ है, ये भी देखनी चाहिए?
1: बिल्कुल, पहला मेरा मॉन्यूमेंट्स है, मैंने डिसाइड किया था पहले पंजाब इनको दिखाऊं, क्योंकि जैसे शुरुआत में आपने पंजाब का जिक्र किया ना, तो हम लोग उसी धरती से हैं जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई, अनंतपुर साहिब। तो अनंतपुर साहिब इज अवर तहसील, पहले तहसील अभी नंगल है, तो जहाँ से हम लोगों की ब्रेवरी या हम लोगों की कंट्रीब्यूशन शुरू हुई तो ब्लेसिंग्स है कि हम उस इलाके से आते हैं
0: yes.
1: तो वहाँ जाना इनको बताना हमारा ये कि अपने लोगों से जुड़े रहिए
0: वो जो सादगी है ना वो बड़ी जरूरी है वो कहीं नहीं मिलेगी नो मैटर हाउ एडवांस द वर्ल्ड इज वो चीज वहीं
1: पुरानी फिल्में मैं दिखाता हूँ कि आप देखो कम से कम मेरे साथ बैठ के पता लगे कि कैसे हमने मुश्किल समय से फिर इस टाइम में आए जो हिस्टोरिकल इसको हिस्ट्री का बहुत शौक है तो जो चीज भी हिस्ट्री की जिसमें हिस्ट्री शामिल होती है वो मैं इसको जरूर दिखाता हूँ
0: बहुत बढ़िया
1: यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जांपल परफेक्ट

0: हमारे गांव में है।
1: सो पार्थ, कुकिंग वगैरह सीखी कुछ मम्मी से पापा से कुछ?
2: नहीं नहीं, कुकिंग अभी
1: प्लान है कुछ सीखने का आगे?
2: प्लान तो है, बड़े होके
1: सीखोगे यार? आप तो थोड़ा थोड़ा बहुत सीख लेते, कुछ प्लान है नहीं बस सिखाने का कुकिंग वगैरह?
0: नहीं डेफिनेटली, देखिए मेरे मेरे माताजी ने भी मुझे सिखाया था। आपको पता यूजुअली क्या होता है, बारहवीं कर ली बाहर जाओ,
1: मैं तो कुछ तो आना चाहिए
0: आना, तो मुझे भी मेरी माताजी ने, मेरी मॉम ने मुझे सब्जी बनानी सिखाई थी।
1: वेरी गुड।
0: अभी तक याद है कि जब हल्दी डाल रहे थे, बोलते हैं कई बार भूल जाते हैं ना, तो दो बार हल्दी पड़ गई, तो ये सारी औषधि है, दीज आर ऑल आर मेडिसिंस। जो राई डाली जाती है, कलौंजी डाली जाती है, और हल्दी धनिया, ये सब मेडिसिंस हैं। दीज आर औषधि, नॉट मसाला। मसाला तो नया नाम,
1: मसाला चटपटा बनाने के लिए हो जाता है।
0: ये मुझे सिखाया था, कभी आपको आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, आप देखिए
1: बनाना पड़ेगा। बर्थ
2: जी मैडम,
0: कितने अमीर अमीर लोग भी हैं, बड़े रॉयल फैमिलीज भी हैं, लेकिन वो उन्होंने काफी सर्वेंट्स वगैरह रखे होते हैं, लेकिन खाना वो लोग खुद बनाते हैं।
1: खाना बनाना जी बात तो है।
0: खाना बोलते ना कि हाँ लड़की की शादी हो रही है, भैया खाना बनाना सिखाओ। बोलते जितने मर्जी बड़े घर में जाए तो खाना खुद
1: खाना तो बनाना आना चाहिए। पार्थ, क्या ऐसा कोई एम्बिशन है जहाँ पे तुम्हारा बाहर पढ़ाई करने का मन है, या आगे जाके डू यू वांट टू फ्लाई कि कहीं और जाके मैं पढ़ाई करूँ?
2: नहीं नहीं, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कहीं ट्रिप पे जाते हैं बाहर कंट्री में, लेकिन पापा जी कहते हैं कि पहले हमारे इंडिया घूमो, इंडिया बहुत बड़ा है।
1: हाँ बहुत ही बड़ा है भाई,
2: बहुत। पहले इंडिया घूमो, जो बाहर नहीं होगा वो इंडिया में होगा। मैं बोलता हूँ कि बाहर चलते हैं, बाहर ट्रिप मार के आते
1: हैं।
2: ये कहते हैं कि नहीं, पहले इंडिया घूमेंगे फिर बाहर जाएंगे, इंडिया बहुत।
1: कहाँ ट्रिप मारने का तुम्हारे मन में आता है ये बताओ?
2: ऐसे यूरोप, फ्रांस, स्पेन, इटली।
1: अच्छा, ये मुझे लग रहा है फुटबॉल का इन्फ्लुएंस है कहीं ना
2: कहीं।
1: ओ मुझे समझ में आ रहा है, नहीं उस चीज का इन्फ्लुएंस है। अब यार तुमसे दो सवाल है मेरे। पहली बात तो ये कि स्लीप ओवर कल्चर से तुम वाकिफ हो गए? देयर आर पीपल हु वांट कि स्लीप ओवर होना चाहिए, अपने दोस्त के घर जाके मैं आराम से रहूं, तो कभी ऐसा मन में है कोई पिच विच किया कभी घर पे इस बात को लेकर?
2: नहीं नहीं, लेकिन गया हूं दो तीन बार घर के दोस्त के घर गेम खेलने के लिए, वैसे दो तीन घंटे के लिए, स्लीप ओवर तो नहीं कभी नहीं।
1: कभी मन में भी नहीं आया? नहीं। कभी किसी ने पिच किया किसी दोस्त के घर से आया कि यू नो व्हाट आ जाओ?
2: नहीं नहीं,
1: सुबह चले जाना घर?
2: नहीं नहीं,
1: अच्छा। दूसरा सवाल ये कि जैसे होम स्कूलिंग का तुमने सुना होगा, आई डोंट नो तुमने सुना नहीं सुना है, बहुत जगहों पे ये आजकल मेन स्ट्रीम हो चुका है। ऑफकोर्स इंडिया में हो भी नहीं पाएगा, आई डोंट थिंक सो इंडिया में हो पाएगा, और होम स्कूलिंग है जहाँ बच्चा जो है वो घर में आराम से पढ़ाई होती है, उसके एडमिशन प्रॉपर हो जाता है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो तुम्हें लगता है ये इंटरेस्टिंग है कहीं से कहीं तक?
2: आई डोंट थिंक सो इट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप स्कूल में जाए, नए फ्रेंड्स, सोशली यू नो इंटरेक्टिव होना चाहिए। अगर घर बैठे यू विल बी एन इंट्रोवर्ट, इट्स नॉट गुड। आपको सोशली इंटरेक्ट नहीं, देखने चाहिए कि दुनिया बाहर की कैसी है, घर बैठे सब कुछ। आई डोंट थिंक सो इट्स गुड।
1: और पर कब तक सोने का सीन होता है वैसे तुम्हारा?
2: मैं थोड़ा लेट सोता हूं।
1: डांट पड़ती है इस बात पे?
2: बहुत बहुत पड़ती है, रोज
1: रोज रोज गई है। कितने बजे तक सो जाते हैं वैसे?
2: मैक्सिमम 12:31।
1: 12:31 वो बड़ा मुश्किल है, आई नो, एक बार आदत पड़ जाती है मुश्किल।
0: मैंने 7 घंटे बोला हुआ है, कई मेरी बात होती है, ये भी कई बार बोला था कि मैं आफ्टरनून में थोड़ा सो लूंगा। नहीं, आफ्टरनून में आप जितना मर्जी नैप ले लीजिए,
1: रात की नींद,
0: रात की नींद जो है, क्योंकि सुबह आपने रेस्ट पढ़ने जाना है, तो 7 घंटे मुझे मिनिमम चाहिए,
1: वो बड़ा मुश्किल।
0: बाकी दिन आप कुछ भी करो क्योंकि लूज करेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड।
1: हां वो तो है। तो वीकेंड पे बात क्या करने का मन करता है तुम्हारा, क्या करते हो वीकेंड पे? देयर इज नथिंग टू डू,
2: घर बैठे थोड़ा, वीकेंड में मैच बहुत होते हैं सैटरडे को, है ना, फॉरन वो जो वीकेंड सैटरडे संडे है तो उधर बहुत मैच होता है, वैसे गेम खेलना आराम से, थोड़ा बहुत पढ़ाई, ट्यूशन होती है मेरी।
1: बाहर फुटबॉल खेलने निकलते हो कभी, क्रिकेट वगैरह?
2: हाँ थोड़ी बहुत,
1: थोड़ा बहुत उधर रहता
2: है, फिर ट्यूशन होती है मेरी वीकेंड को।
1: अच्छा अच्छा,
2: ऐसे ही टाइम निकल जाता है।
1: वो वेरी नाइस यार। पर पार्ट कैसा रहा एक्सपीरियंस FM 107 पे यहां पे?
2: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा।
1: शुरुआत नर्वसनेस थी?
2: हां जी हां जी,
1: अभी चल,
2: फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, बहुत अच्छी थी,
1: अभी चल गया ना एकदम बढ़िया।
2: हां जी हां जी, अब तो
0: साइकोलॉजिकल मैं कुछ बोल सकता हूं
1: ट्यूशन
0: पे? आप देखिए, अगर आप इस बात को सब तक पहुंचाएं, तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो बच्चे की ट्यूशन है ना, उसको आप वीकेंड बैच में रखिए।
1: ओके,
0: देखिए बच्चा स्कूल से आता है, वही बात, 2 बजे 2:30 बजे वो आ रहे हैं, कितने बजे के उठे हुए हैं,
1: हाँ, बैक टू
0: बैक। जितनी ट्यूशन है वो सारी 4-5 ऐसा शुरू है, मतलब आप बच्चे को ट्रॉमा में लेके जा रहे हैं।
1: बैक टू बैक हो रहा है सब कुछ,
0: बैक टू बैक। किसी ने डॉक्टर बनाना है, किसी ने इंजीनियर बनाना है,
1: राइट राइट।
0: तो बच्चे के मन में नहीं आना चाहिए कि मैं, क्योंकि बच्चे माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप को डाउन नहीं दे सकते, और माँ बाप के मुंह से निकली आवाज को वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको पूरा करें,
1: राइट।
0: तो वो बच्चे सफर नहीं करने चाहिए। मैं हैरान हूँ कि कितने बच्चे कैसे बीइंग

0: मेंटल हेल्थ चैंपियन, तो मैं सोचता हूँ कि आप कितना स्ट्रेस बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं।
1: हाँ, लगातार मुझे
0: आप थोड़ा सोच के देखिए, सुबह से लेके शाम तक
1: अगर आप बोले तो टाइम बचता भी नहीं, कुछ टाइम बचता
0: आप अगर कहेंगे कि ये सिर्फ अल्टरनेटिव डेज में है, इवन दो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अल्टरनेट भी हो तब भी वो बैक टू बैक तो है,
0: बच्चे को
1: सांस लेने का मौका नहीं,
0: लेने का मौका नहीं है।
1: और अपने टाइम भी ऐसा नहीं था, आई डोंट थिंक सो, हमारे टाइम भी ऐसा नहीं था, हमारे टाइम भी सांस लेने का अच्छा खासा मौका होता था।
0: जी बिल्कुल, डेफिशिएंसीज कितनी है बच्चों में, आप देखो यहाँ पे स्प्रिंट वाले कितने बच्चे मिलेंगे आपको, फिजिकल एक्टिविटी वाले, हम लोग तो कहाँ से कहाँ किलोमीटर्स में
1: अपने आप फिजिकल एक्टिविटी हो जा रही है,
0: ये कितने फिजिकली, मैं कहता हूँ कि आप इनको इंडिया के बच्चों से थोड़ा वो साथ में दौड़ाइए, खो खो खिलाइए, फुटबॉल हॉकी उनसे का, या जो यहाँ पर बच्चे जो स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं एक्सेल कर रहे हैं, उनका मुकाबला जरा इंडिया के बच्चों से करवा के देखिए,
1: बहुत अलग फर्क आएगा, वो बहुत फर्क आएगा, वो सारा एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा खेल है उसमें। संजीव भाई आप यहाँ पर आए स्टूडियो में, मुझे सबसे अच्छा लगा, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, बहुत टाइम बाद हमारी कभी रेडियो पे ऐसी बात हुई नहीं है।
0: हाँ जी बहुत, आपसे तो देखिए हम कुन चंद खुशकिस्मत हैं जिनका आप नाम जानते हैं या आपसे
1: भाई नहीं, मेरे खुशी से भी कि आप मुझे जानते हैं,
0: और हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रिविलेज, मेरे बेटे को अभी देखिए कि उसको आपने यहाँ बुलाया, एक बच्चों को भी आपने टाइम दिया बोलने का, क्योंकि सुनते आ रहे, पहले क्या होता था ये आपको फोन करना कबीर भाई आज इसका बर्थडे है,
1: हम
0: लोग स्कूल जा रहे तो आप लोग वो करते थे, इतना था, आज ये स्टूडियो में इट इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आई वुड लाइक टू से पार्थ प्लीज एक्सप्रेस।
2: मैं तो बहुत अच्छा फील हूँ, पहली इंटरव्यू इतनी अच्छी गई है, बहुत अच्छा,
1: मुझे सच में अच्छा लगा पार्थ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना वो जो होता है ना कुछ बच्चों को यू कैन कॉल ब्रो ब्रो, तुम ब्रो अपने तो पार्थ वैसा लगा, पार्थ के अंदर मुझे लगता है कि वो जो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग अ पंजाबी यहाँ पे रहते हुए ना वो चेहरे पे इसके तो बड़ी अच्छी बात है पार्थ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट मेरे को, तुम जो भी करो अपनी जिंदगी में, इंजीनियरिंग के बाद कुछ और भी ख्याल आए तो खुल के बता देना अब्बा को, फुल सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भाई, लास्ट में आपका बड़ा शुक्रमंद हूँ मैं हर चीज़ के लिए, हमेशा जब भी आपसे मिला हूँ मैं हमेशा एक अखलाकी तौर पर आपसे मिलने बड़ा अच्छा लगता है, दैट रियली रियली सेज अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी।
0: थैंक यू सो मच।
1: आप इतने जिम्मेदारी आपने दुनिया जहां की उठा रखी है, फ्री टाइम में क्या करते हो जाने से पहले मुझे बता दो संजीव भाई, अपने लिए फैमिली साइड करो, लोगों साइड में करो, संजीव कुमार क्या चाहते हैं अपने लिए?
0: मैं अपने लिए तो बस कि मेरे पास अगर 5 मिनट भी है, 5 मिनट में मैं किसी को दे दूं, किसी के काम आ जाऊं, वो मन की तसल्ली होती है, मतलब कोई मेरे से कोई दुख शेयर कर ले, किसी की प्रॉब्लम में मैं काम आ जाऊं,
1: तो कुछ खरीदने की इच्छा होती है संजीव भाई अपने लिए कि मैं कुछ ये चीज
0: नहीं, अभी देखिए उस एज में आ चुके हैं बच्चों के शौक पूरे करने,
1: इंडिविजुअली आपको पूछूंगा अगर हर चीज साइड में करूं तो इंडिविजुअली कुछ है कुछ चाहते हैं?
0: नहीं इंडिविजुअल नहीं है, देखिए जब हम लोग एक सोशल सर्विस में होते हैं ना, इमेज या शुरू से ऐसा बन चुका है कि नेसेसिटीज की तरफ ध्यान रहता है, ख्वाब तो बहुत होते हैं जरूरतें, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम में भी अपने आप को तभी डालते हैं, आप बात कर रहे हैं ख्वाब की, आपके ड्रीम्स क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, तो जब इच्छाएं नेसेसिटी पे होनी चाहिए, जरूरत पे, मेरी जरूरत क्या है, तो जो अगर मैं जरूरत के लिए काम करूंगा कमाऊंगा तो अच्छा होगा।
1: लो मेंटेनेंस गाड़ी है आप,
0: लो मेंटेनेंस जी। ख्वाब देखिए तो फिर पता क्या, फिर ख्वाब में आप हर चीज जो आप अपने आप को इतना मतलब इन्वॉल्व कर लेंगे ना, तो आपके पास फैमिली ये वो टाइम नहीं रहेगा, मैं नहीं कहता हूँ, वो लोग भी बहुत सक्सेस है जिनके पास बहुत कुछ है,
1: अपना अपना ओपिनियन,
0: अपना अपना, मेरा ओपिनियन है कि मैं नेसेसिटी पे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि मुझे जरूरत किस चीज की है।
1: अच्छा ओके, तो संजीव भाई से बात करके मुझे तो बड़ा लगा और पार्थ से तो मेरी एक किस्म की दोस्ती हो चुकी है, एंड आई थिंक ये सुनकर आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा 666-221-07 पर, ऑफकोर्स सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस बारे में इंफॉर्मेशन डाली जाएगी और कहीं ना कहीं अखबार में भी जरूर आएगा, सो फिर जरूर बने रहिएगा, एंड दिस इज ऑल ऑफ अस साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखें, आप बेहद बेहद जरूरी है, मास्सलाम।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar, दिल से देसी।

0: FM 107. Time check.
1: कर लो भाई, कर लो टाइम चेक कर लो, क्योंकि अगर बेस्ट टाइम कोई होता है FM 107 सुनने का और आपका, तो वो है 4 से 5 का टाइम।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: और 4 तो बज गए हैं भाई साहब, 4:02 इनफैक्ट हो गया है हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अभी से लेकर 5 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है, और आपके अपने मर्जी के गाने चलेंगे यहाँ पर इस शो में जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। हर दिन एक नए थीम के साथ आते हैं, और कल हमने कुमार सानू की आवाज़ में कई लाजवाब बेहतरीन गाने सुने, और पिछले संडे भी हमने ऐसे ही किया था जहां पर उदित और अलका के हमने गाने सुने, बहुत ही गजब के और बहुत ही खूबसूरत वो गाने हुआ करते थे, जिसकी कॉम्पोजिशन, जिसके गाने, जिसके लिरिक्स ज़बरदस्त हुआ करते थे। लेकिन आज की थीम क्या होने वाली है दोस्त? आज की थीम कुछ ऐसी है कि आपका दिल और खुश हो जाएगा, और कई लोगों की रिक्वेस्ट रही थी, अक्सर लोग हमसे व्हाट्सएप पे कहा करते थे कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि फला गाना प्ले हो जाए, तो फिर मेरी मजबूरियां हुआ करती थी, और वो मजबूरी जो है उस मजबूरी के पास हाथ में कोड़े हुआ करते थे। लेकिन आज एक ऐसा दिन लेकर आया हूँ, एक ऐसा थीम लेकर आया हूँ कि ये कोड़े मैन कुछ नहीं कर पाएगा, इसके हाथों में ही नहीं है, और आज आप अपने मर्जी के कोई भी गाने कह सकते हैं, बस इस बात का ख्याल रखना है आपको कि वो गाने पाकिस्तान के हिट गाने होने चाहिए। हो गई बात? हाँ भाई, तुम बैठ जाओ। अरे वो मैं आपसे नहीं कह रहा, वो सामने जो कोड़ा लेकर खड़ा था ना, उसको मैं कह रहा हूं कि अगर आज किसी ने कह दिया कि आतिफ असलम का पाकिस्तान में गाया हुआ फला गाना, आतिफ असलम छोड़ दीजिए, नुसरत फतेह खान साहब का पाकिस्तान में गाया हुआ ये गाना जो बाद में इंडिया में बहुत फेमस हो गया, वो गाना प्ले कर दो तो भी चल जाएगा, आतिफ असलम का भी चल जाएगा। तो कोड़े वाले भाई, हम तो कहते हैं तुम पानी पियो, बाहर जाओ यार, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारी शक्ल आज और तुम्हारा जो कोड़ा है किसी काम नहीं आएगा, तुम यहाँ से जाओ मेरा भाई, क्योंकि आज अपन थीम ही ऐसी लेकर आए। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर सभी को पता है, 666-22107, 666-22107, पाकिस्तान में पाकिस्तान के सिंगर जो गाना गाए हैं, ऐसे गाने जो हिट रहे हैं, वो गाने आज आप मुझसे इस शो में, द रिक्वेस्ट शो में प्ले करवा सकते हैं।

0: नंबर 6662217। बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: भाई साहब, दिन तो आज दिन जो है सबसे बेहतरीन है, क्योंकि गाने जो है लाजवाब होने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं। अगर हम मैसेज की तरफ बढ़े तो सबसे पहले मैसेज यूसुफ भाई का है। ओके यूसुफ भाई, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उठो। ऐसे वो होता नहीं, हमारे अब्बा जब सुबह हम नहीं उठते थे, कई बार उठाते थे अब्बा, और पहले अम्मा कोशिश करती थी, तो अम्मा वाला तो ये था ना कि अरे छोड़ो जान दो, फिर उसके बाद अब्बा उठाने आते थे, तो अब्बा ना बाल और गर्दन पकड़ के ऐसा झंझोड़ देते थे तो अजहर भाई सो तो नहीं रहे आप? नहीं, अगर सो रहे तो बताओ मेरे को, मैं फिर जगा सकता हूँ ऐसे। हालांकि आगे लिखा है आपकी सुबह स्टार्ट होगा। मेरी असली सुबह भाई आजकल कब स्टार्ट हो रही मेरे को पता नहीं है यार। कभी 3 बजे आँख खुल रही है, कभी 11 बजे आँख खुल, मेरा तो कोई हिसाब किताब नहीं है आजकल। खैर अजहर भाई सलाम अलैकुम। सलाम, कहानी मोहब्बत की है, मुख्तसर बाय स्ट्रिंग्स, उस्मान भाई ने रिक्वेस्ट किया। ओके उस्मान भाई, बहुत ही उम्दा सही रिक्वेस्ट कर ली, मैं कोशिश करता हूँ। हिशाम साहब का सलाम है, वालेकुम अस्सलाम। और फिर इसके बाद एक ऑडियो है, ऑडियो कुछ देर में हम सुनेंगे। दो सॉन्ग्स कहा है बिलाल सईद, बारिश लिथल, दो सॉन्ग्स कहा है यार। बिल्कुल इंजीनियर मोहम्मद फैजान, आपका नाम ही लोगों ने यहाँ पर इंजीनियर सेव कर लिया। नुसरत साहब का गाना सुनना चाहते हैं, अच्छा कव्वाली सुनो। कव्वाली यार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं इसलिए थोड़ा सा और नीचे की तरफ हल्के 3-4 मिनट वाले गाने अगर कुछ है तो। उस्मान और रगजई, फजील भाई सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? और नुसरत फतेह खान साहब की जो कव्वाली है वो 16-16 मिनट की है, अगर मैं 3 बजा दूंगा तो भाई काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो छोटा वाला है। पाकिस्तानी ड्रामा खुदा और मोहब्बत का OST, ठीक है ये चल जाएगा, बहुत ही खूबसूरत है ये OST, जनाब राहत फतेह खान साहब का है। ओके अपन इस पर रिसर्च करेंगे सुबह। बाकी एक और ये मैसेज है, फजील भाई हाय अस्सलाम वालेकुम, आफरी आफरी सुना तो आफरी। देखो आफरी आफरी मुझे लगता है नुसरत साहब का तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबा है ओरिजिनल वाला, तो लगते हैं अब्दुल कादिर भाई ने जो कहा है गाना, तो नुसरत साहब का नहीं है तो राहत साहब का ही चला देंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद एक और भाई की रिक्वेस्ट है, आफरी आफरी राहत फतेह खान साहब की आवाज़ में, ठीक है मैं बिल्कुल चलाऊंगा। तैमूर साहब ने रिक्वेस्ट किया है। और उसके अलावा एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फजील भाई, कैसे हो? वेलकम बैक, प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग सयोनी। ये सयोनी कहाँ का है फयाज? इधर इधर किधर का ही है मेरे को थोड़ा बताओ। लेकिन सबसे पहले अपन आफरी प्ले करते हैं, इसका रीज़न ये है कि एक तो पाकिस्तानी सिंगर ने गाया है, और सबसे पहले जो ओरिजिनल गाना था वो ऑब्वियसली द वन एंड ओनली नुसरत फतेह खान साहब का है, और नुसरत साहब के बारे में जब भी बात होगी तो मैं साहब लगाऊंगा, ठीक है। बाकी राहत फतेह खान की आवाज़ में कुक स्टूडियो सीज़न 9 का ये गाना हमारे पास रखा हुआ है, विच इज़ अराउंड 6 मिनट का गाना, 2016 में ये गाना रिलीज़ हुआ। सुनते हैं इस गाने को, और दो लोगों की रिक्वेस्ट है, अब्दुल और तैमूर की, ठीक है इन दो गानों को एंजॉय करें। वापस आते हैं बाकी लोगों के गाने लेकर कुछ ही देर में। अच्छा राहत की बात है, ऑब्वियसली राहत ने गाया है, साथ में मोमिना मुस्तशान ने भी इस गाने में आवाज़ दी है। एंजॉय करें इस गाने को, FM 107, दिल से देसी।

0: बात है राहत फतेह खान और मोमिना की आवाज में गाना सुना आपने FM 107 पे। और आज की थीम लाजवाब है और आज की थीम है पाकिस्तान के कोई भी गाने जो हिट रहे हो आप मुझसे प्ले करवा सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: और आज कई लोगों को ये पता चलने वाला है कि ऐसे कई गाने हैं जो एक्चुअली में इतने ज़्यादा वायरल हैं लोगों को लगता है कि ये इंडिया का कोई ऐसा राइटर है जो उर्दू लेकर आया और लिख रहा है और लोग गा रहे हैं और फिर ये गाने हिट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गाने असल में पाकिस्तान के कैफी खलील का एक गाना है जो एक भाई ने रिक्वेस्ट की है और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब ये गाना है। अगला गाना यही आएगा और ये है मोहम्मद बशारत की रिक्वेस्ट पे कैफी खलील का गाया हुआ कहानी सुनो। क्या जबरदस्त ये गाना है भाई साहब। आदत आतिफ असलम का ये एल्बम है और जबरदस्त ये गाना। तो बहुत सारे इन्होंने तो यू नो लिस्ट बनाकर भेजी है, लेकिन सबसे पहला कहानी, ये अपन एक ही गाना प्ले कर सकते हैं।

उसके अलावा एक मैसेज था उस्मान का, मुख्तसर कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, ये गाना सुनना चाहते हैं, तो ये गाना भी अपने को मिल गया और दूसरे नंबर पे यही गाना चलेगा। और तीसरे नंबर पे है यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट पे खुदा और मोहब्बत सीजन 3, यानी कि राहत फतेह अली खान साहब का गाया हुआ ओरिजिनल साउंड ट्रैक, इस गाने को भी आप लुत्फ उठा के सुन सकते हैं। सो ये जो तीन गाने हैं ये बैक टू बैक प्ले किए जाएंगे आपके लिए। बाकी गानों की रिक्वेस्ट अपन देख लेते हैं कौन कौन है भाई, अगर मुझे ये गाना मिल जाता तो बिल्कुल प्ले करूंगा। आफरीन आफरीन तो हो गया, और ये गाना है वो लम्हे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वो लम्हे, यार ये इंडिया में गाया गया मेरे ख्याल में। और ओके, ये फोर्स का गाना है और डीजे सेन मंद्रो भाई, ये वही है पाकिस्तान का है। एक तो वो है ना, वो लम्हे वो बात है कोई न... लेकिन इकलौता यही गाना मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट इट्स ओके, अगर ये रिसर्च के बाद पता चल जाएगा। फिर उसके बाद एक और है सीजन 9 का एपिसोड 2 का सुनना चाहते हैं आफरीन आफरीन, जो ऑब्वियसली मैंने अभी प्ले कर दिया है। बाकी सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट करी थी अबू सिद्रा ने, अबू सिद्रा आपने तो ये सुन लिया होगा, तो आपकी रिक्वेस्ट जैसे ही आपने करी तुरंत प्ले हो गया। इसरार अफजल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल, अल्हम्दुलिल्लाह। और मजहर लिखा हुआ है बूहे बारियां हादिका का गाया हुआ बूहे बारियां, ये किसका है, ये पाकिस्तान का है, देखो मेरे को खुद ही पता चल रहा है मेरे को आइडिया नहीं था यार, ये मुझे लग रहा था इंडिया का है। ठीक है मैं देखता हूँ जरा ये, लेकिन है तो गजब का गाना, ला ला ला ला ला। ठीक है तो ये गाना करना पड़ेगा, टाइम लगेगा यार, ये तुरंत कुछ होता है ना कि यार एक बार सर्च किया मिल गया, वो उनमें से नहीं लग रहा है ये वाला। सो इसरार अफजल की रिक्वेस्ट पे ये गाना भी अपन प्ले करेंगे अगर ये गाना मिल जाता है तो। फिर सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैन यू प्ले ओरिजिनल साउंड ट्रैक ऑफ जन्नत से, आगे ड्रामा है, अच्छा ये ड्रामा के लिए कहा है, अगर ये ड्रामे का गाना पड़ा होगा तो क्यों नहीं। ठीक है ये भी सर्च कर लिया, अभी इनिशियल जो रिसर्च मिला है, इनिशियल रिसर्च से तो कोई चीज़ सामने नहीं आई है, बाकी ये सर्चिंग जारी रहेगी। और फिलहाल अभी इन तीन गानों पर आते हैं, बाकी लोगों की रिक्वेस्ट धीरे धीरे हम करके देखेंगे। फिलहाल तो कैफी खलील की आवाज में कहानी सुनो 2.0 वर्जन, जबरदस्त ये गाना, एंजॉय करें। और दूसरे नंबर पे स्ट्रिंग्स का कहानी मोहब्बत की, और फिर राहत फतेह खान की आवाज में मोहब्बत आए हाय, और ये जो तीसरी रिक्वेस्ट है यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट पे, ठीक है सुने एंजॉय करें FM 107 पे दिल से तैसी।

क्या बात है यार, ओरिजिनल साउंड ट्रैक में भी एक जबरदस्त लाजवाब म्यूजिक होता है। और वैसे एक बात तो ये कहूंगा कि जो पाकिस्तानी ड्रामा है ना, एक तो वो होता लाजवाब है और उसके जो गाने हैं यार, ऐसा दिल चीर लेते हैं भाई। और फिर पाकिस्तानी ड्रामे तो यार, मतलब ऐसे लोग फैन हैं उनको, घंटों घंटों देखा करते हैं यार। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सुबह शुरू करते हैं, शाम को ख़त्म करते हैं, उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं कुछ रह गया और देखना है उनको। ऐसे जो अच्छा, ज़्यादातर ऐसे ड्रामा है जिसमें धोखे वाली बात है ना, तो वो वाली तो ऐसी स्टोरी चल रही होती है धोखे वाली कि बस घर की फीमेल्स जो हैं वो स्टिक हो जाती हैं। एक जमाना था भाई, कभी खुशी कभी गम।

इस तरह के मूवी जो है वो चला करते थे। फिर एक जमाना आया जब घर में ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा चलने लगा, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे मूवी की टिकट, और घर में ड्रामा ऐसा कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी हैं, अगले जन्म मोहे बिटिया की, अरे भाई इनने जो आतंक मचाया था ये आतंक अब पाकिस्तानी ड्रामों ने ले लिया है। नहीं छूटता है मेरा भाई, नहीं छूटता है। ओके तो अब जल्दी से आ जाते हैं बाकी गानों की तरफ, और एक से बढ़कर एक गाने हैं। मुशीर आलम की रिक्वेस्ट पे वो लम्हे हमारे पास मौजूद था, लेकिन मैंने इनसे कहा कि यार एक तो 7 मिनट का गाना है, प्ले हो जाएगा कोई मसला नहीं, और उसके अलावा ये थोड़ा ना रिमिक्स टाइप में है हमारे पास, जैसे डीजे सेन है उसमें, तो फिर वो गाना एक्चुअली वही है, वो लम्हे 2011 का एक्स्ट्रो फोर्स का गाना है ये, लेकिन पाकिस्तान का है गाना। उसमें खेल ये है कि इसमें डीजे है तो डिकचिक हो जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा, आपको सुनना है वो लम्हे। फिर उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट कर लिया, मैं प्ले करने वाला था एक्चुअली वो लम्हे, लेकिन फिर मुशीर ने कहा कि ऐसा है मेरे रश के कमर हो जाए, तो वो गाना मिल गया आसानी से, और ये है बादशाह 2017 का ट्रैक, राहत फतेह अली खान साहब ने इसे गाया। तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, और दूसरे नंबर पे है पहले नंबर पे है बूहे भाईया, और ये है हदीका कियानी की आवाज़ में। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर मज़ा ना आए पैसे वापस। इसरार भाई अगर ये लाइन बोलोगे तो भाई मैं पैसा बना ही लूँगा तुमसे, मैं कह ही दूंगा मज़ा नहीं आया, जेब मेरी भरी जाएगी, तुम्हारी खाली हो जाएगी। मिल जाएगा आप देखें, ये लिखा हुआ है, हाँ यार मैं मुझे ना अलग नाम से मिला है इसमें, एक तो आपने लिखा है बूहे बारिया तो मैंने वैसे सर्च किया, फिर उसके बाद वो होता ना इमला जैसे चलता, फिर मैंने अलग अलग तरीक़ों से सर्च किया, फिर मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने हदीका कियानी डाल दिया मैंने, उसके बाद इनके 100 गाने आ गए, अब उसके बाद फिर मैं बी से गाना ढूंढ रहा था तो बूहे बारिया मिला है, BOOHEAY, देख रहा हूँ ये कोई तरीका है यार भाई, मेरा इमला हो जाता है यार, मेरा पता नहीं एकदम दिमाग खोल जाता है कि ये क्या चल रहा है। खैर लेकिन ये गाना मिल गया इसरार अफजल की रिक्वेस्ट पे, सबसे पहला गाना यही प्ले होगा, और फिर फजी भाई बोल कफारा, माय नेम इज आसिफ, तो मोहम्मद प्रोफाइल पे लिखा है और आसिफ इन्होंने लिखा है अपने चैट पे कि आसिफ नाम है। ओके तो आसिफ भाई बोल कफारा भी ढूंढना पड़ेगा, किधर गया अभी तो इधर ही था, किधर गया रे बाबा, अभी यही था, बोल कफारा अभी बोलेगा, बोल कफारा कैसे नहीं बोलेगा, कहीं ना कहीं तो बोलेगा, आप चिंता ना करें मैं बुलवा के रहूँगा भाई, मिला। देखो इसमें दो चीज़ है, एक तो है बोल कफारा कव्वाली है, और फिर एक है जिसे नेहा ने गाया है, फिर एक नेहा ने गाया है, फिर है ओरिजिनल साउंड ट्रैक एंड दिस इज संग बाय, लिखा तो नहीं है, अननोन वर्जन है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास 3 गाने जो है वो तैयार हो गए, बोल कफारा, बूहे बारियां, और है ये गाना कौन सा, मेरे रश के कमर, हाँ मेरे रश के कमर। तो ये 3 गाने एंजॉय करें आप FM 107 पे। फिर एक भाई की रिक्वेस्ट थी और ये थोड़ी सी लेट में प्ले होगी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, ओम फो गाढ़ा गाना, ये गाढ़ा गाना भी अपन प्ले करेंगे, और फिर उसके बाद एक और मैसेज था, उनको मैंने थम्सअप बनाकर भेज दिया था कि भाई तुम्हारा गाना प्ले हो जाएगा, ये वही है क्या, आया ना तू, मोमिना की आवाज़ में कहाँ है आया ना तू, हाँ ये भी गाना है अपने पास। तो ये 5 गाने अपने पास रेडी हैं, लेकिन सबसे पहले ये 3 गाने सुनेंगे, बूहे, मेरे रश के कमल, बोल कफारा, ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचा तो ये 2 गाने, और वैसे टाइम बचेगा नहीं, बट इट्स ओके, अगर नहीं प्ले हुआ तो एक दिन और या नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक अपन पाकिस्तानी थीम के सॉन्ग फिर से रखेंगे।

क्या बात है यार, ये गाना भी लाजवाब, लेकिन वो कहते हैं ना कि यार कुछ अधूरा सा रह गया, वो वाली बात इसमें थोड़ी सी हो गई, क्योंकि यार वो बोल कफारा जो गाना है, देखो दो अलग अलग लोगों ने गाया, उसमें अलग ही खेल है, उसमें नेहा कक्कड़ ने भी एक बार अपनी आवाज़ दे दी है, तो अब नेहा कक्कड़ वाले मेरे को ऐसा हिम्मत बन नहीं थी प्ले करूं। और फिर पाकिस्तानी जो कव्वाली है शहबाज हुसैन और फैयाज, वो लाजवाब है, लेकिन वो 8 मिनट की है जिसपे अपन जा नहीं सकते थे। फिर अपने पास यही एक बचा था, नेहा ने जो गाया है उसके बाद मेरा

जो भाई बहुत कोफ्त हो जाता, सुनने के बाद ज्यादा दर्द हो जाता, लेकिन ये भी वही रहा, वही निकला। तो क्या कर सकते भाई, मतलब सॉरी भाई। बाकी अभी बाकी के गाने जो हैं वो प्ले करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी वक्त है। अगर हमारे पास टाइम बचा तो इन दोनों में से गाना आया न तू, जो कि मोमिना मुस्तशहन का है और अर्जुन कानूनगो का है, जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी सिंगर दोनों हैं, और फिर हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, गुलाम अली का गाया हुआ ये गाना, इन दोनों में से एक गाना अपन प्ले करेंगे अगर टाइम बचा तो। फिलहाल वक्त आ गया है खेलने का गेम, जिसका नाम है पहचान कौन, और आप पहचानेंगे गाने को, जहां ये गाने मैं प्ले करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, पाकिस्तान में गाए गए, लेकिन वर्ल्ड वाइड हिंदी उर्दू को समझने वाले लोग इस गाने को ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई वायरस फैल गया हो, है ना। तो इन गानों के लोग असल में पीछे पड़े हैं, और एक ऐसा गाना है जिसकी वीडियो जब शूट की गई थी तो एक भी कट नहीं था उस शूटिंग में, बहुत ही अलग तरीके की शूटिंग थी। खैर उन बातों पे नहीं जाते, अपन गाने पे आते हैं। जो नए लोग हैं उनको बता दें कि कैसे ये गेम खेला जाता है। एक लिरिक्स जो है वो बीच से मैं कहीं से प्ले करता हूँ, और आपको गाना पहचानना होता है, उसका हुक क्या है या गाने का नाम क्या है ये आपको बताना होता है, और बताने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 666-22-107, 666-22-107। सबसे पहला गाना जो आ रहा है वो बहुत ही वेल नोन गाना है, जिसे शैगिल ने गाया है और एक और शख्स ने गाया, बस उसका नाम नहीं ले सकते, अभी रुक के गाएंगे, है ना, अपन साथ में गाएंगे, ठीक है। फिलहाल सबसे पहला गाना पहचान कौन का ये रहा।

बताइए। मैं सर्च कर रहा हूँ मैं कि कौन कौन है, मैं व्हाट्सएप पे आ चुका हूँ, आपको बताना है कौन कौन सिंगर है, अगर बता लो तो अच्छा, बाकी सिर्फ आपको सिंपल सा काम करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं। आदिल भाई ने लिरिक्स लिख दिया है, गाने का असली नाम नहीं लिखा है, अपन तलाश में है गाने के असली नाम में। ओके, बाकी लोगों ने सही जवाब दिया है, यूसुफ भाई ने सही जवाब दिया है, फिर आज़ाद दानिश आज़ाद ने सही जवाब दिया, बहुत ही उम्दा। एक भाई ने नाम नहीं लिखा है, सही जवाब है, हुसैन ने सही जवाब लिखा है, फलक ने सही जवाब लिखा है, फलक SRK, कल बता दिया था कि फलक SRK अलग है क्योंकि दो फलक आ गए। फिर एक और सही जवाब, ये दूसरे वाले फलक है, सही जवाब है, हिशाम ने सही जवाब दिया है। आदिल भाई थोड़ा सा परेशान हो रहा है, लेकिन अभी आपको सही जवाब मिल जाएगा कुछ देर में। जो मैं हूँ वो सुहेल तेरी खबर, भाई बहुत ही अलग तरह का जवाब दे रहे हैं, गलत जवाब है लेकिन आपका। बताइए एक बार फिर से सुनने के बाद कि क्या ये गाना आपको समझ में आ रहा है, गाने का नाम।

हूँ, बताइए इस गाने का नाम। मनोज भाई का मैसेज है कि सॉरी भाई लेट हो गया, गुड इवनिंग। कोई मसला नहीं मेरा भाई, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। अदिल भाई कह रहे हैं अगला मजबूरी ना अनजाना मेरे ढोल सुपा जावे। लेकिन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार, कोई मसला नहीं है मेरा भाई। हमजा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिर उसके बाद अदिल आप जो समझ रहे हैं वो ये वही गाना है। फिर सरदारी ना होए एहसान अली, आपने भी लिरिक्स

हाँ जी, अली सेठी शैगिल का गाया हुआ पाकिस्तानी, ये गाना बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ और हर शख्स इसे सुनता है और बड़े ही मजे से सुनता है। खलील बादशाह का मैसेज है, सॉरी फजील भाई आई एम लेट। खलील, खल्लू भाई कोई मसला नहीं, मैं सोच रहा हूँ जो लेट हो रहे हैं उनके लिए एक ऐसी हथकड़ी बनवाएंगे कि 4 बजे ऑटोमेटिक वो आपको कार की स्टेयरिंग से बांध के रख दे कि आप जो है 4 से 5 उस बेहतरीन शो को सुने जिसका इंतजार 12 लाख लोग करते हैं। क्योंकि कतर में मैंने कल करोड़ कहा था, आई नो, कभी कभार कहीं कहीं नेट कट जाता है ना, तो इसलिए मैं कम कर दिया आज। फ्रीक्वेंसी सुनने वाले तो लाखों लोग होंगे। अच्छा, 12 लाख क्यों?

0: भाई फजुल भाई 8 लाख है यार कतर में।
1: अरे यार सऊदी भी तो जाता है अपना फ्रीक्वेंसी, दुबई भी पहुंचता है, बहरीन से भी मैसेज आता है, तो टोटल 12 लाख के करीब तो करना पड़ेगा ना। आज मैंने करोड़ इसलिए नहीं बोला, उसका रीजन है, उसका रीजन सिंपल सा है, वो ये कि आज मैंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी वालों को लिया है ना इसलिए। मेरी ग्राउंड कवरिंग अच्छी है भाई साहब। बाकी गानों पर आ जाते हैं, और हमजा भाई ने भी इसका सही जवाब दिया था, पसूरी ये गाना है, बहुत ही ज्यादा वायरल सॉन्ग। अब दूसरे सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं, ये गाना भी भयंकर वायरल है, किसने गाया है ये थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन गाने का नाम आपको बताना है 666-221-07।

वो होता है ना कि आपको लिरिक्स नहीं पता होती लेकिन आप गाते हैं मजा आता है, ये वही एक्चुअली में लिरिक्स है। फहीम अब्दुल्ला रोहान खान ने गा तो दिया है, इन्हीं को पता है कि असली लिरिक्स ये क्या गा रहे हैं, वरना मेरे जैसा आदमी बकरा बैगनी गाता है और बाद में पता चलता है ये बकरा स्वैगनी है। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। हमजा कहते हैं ओके, जो भी हमजा ने कहा। एक्चुअली में इस गाने को जो लिखा गया है वो अलग है और इस गाने को जो गाया गया वो अलग है, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा। फहीम और रोहान खान का ये गाना है, लेकिन हमजा ने जो लिरिक्स लिखी है वो बिल्कुल सही मानी जाएगी इस गाने के लिए, ठीक है ओके। फिर उसके बाद बिल्कुल सही जवाब दिया है मोहम्मद अशफाक ने, और यूसुफ भाई ने कहा है मैं, अच्छा ठीक है यूसुफ भाई आपका भी मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल सही है दानिश।

ये हाँ हाँ भूल गया बॉस, आए हाय कोई बात नहीं मेरा भाई, अगर भूल गए तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन आपने नाम नहीं बताया बस। ओके सुहेल इंसान एहसान इनका नाम है। हिशाम साहब ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है, फजू भाई मैं सेल्फिश हूँ। अच्छा ऐसा नहीं उन्होंने लिखा, यू सेल्फिश, सिर्फ चार से पाँच, ओनली वी नीड टू लिसन, ओनली फोर टू फाइव ओनली। अच्छा चार से पाँच मैं सेल्फिश, अरे भाई ये हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो कोड़े मैन के हाथ में, कि वो जितनी देर में कोड़ा घुमाता है उतनी देर अपने को यहाँ रहना पड़ता है, फिर उसके पास भी काम होता है। हाउ अबाउट कब्बू भाई, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। अरे यार मैं क्या कर सकते हैं यार, अपने को एक ही घंटा मिला है, ठीक है, इसमें इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हमजा कहते हैं इश्क है सॉन्ग नेम, दोनों टैग चलते हैं इसका। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही आपने कहा था, बता दिया है। और सर मैं रोज़ सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है आपको सुनना, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। इसके लिए तो मतलब आपने ये बात लिख दी है तो फिर वो हो जाता है ना कि डेढ़ घंटा चलाएं क्या फिर। बिल्कुल सही, जमील भाई ने भी सही जवाब दिया है। और ये एक और जवाब है, डियर फैमिली शो कितने बजे ऑन एयर होता है, महवेश खान का। ओके दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी तो देखिए छुट्टी पर है महवेश, लेकिन जब वो छुट्टी से वापस आएंगी तो वो अभी सुबह के शो में है, नाजिया और महवेश शो कर रही हैं, ठीक है, तो आपको सुबह मिलेंगी वो। फिलहाल वो शो छुट्टी पे हैं और ये मेरे ख्याल से सितंबर से वापस आएगा, या हाँ सितंबर से ही आएगा। इमरान भाई आपको जवाब मिल गया होगा उम्मीद है। कि एक और ये मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये कहाँ से उठाते हैं सॉन्ग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शौकत अली खान कह रहे हैं एकदम ही पता नहीं कौन सा गाना। अमे ये बहुत ही ज़्यादा वायरल गाना है, अभी आपको पता चल जाएगा। शौकत साहब 2 मिनट अब भी बता कर देता हूँ।

जाए। क्या ये लाजवाब गाना है भाई साहब, आप कैसे नहीं पहचान सकते इस गाने को? सब पहचानते हैं, वेल कभी कभार हो जाता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। और एक गाना है, और ये गाना एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट किया था एक भाई ने, लेकिन मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था, वो गाना मिला नहीं। एक्चुअली इन्होंने लिखा था बारिश, लेकिन असल में वो गाना कुछ और है। पहले इस पहचान कौन के गेम में इस गाने को पहचानिए, फिर मैं पूरा किस्सा बताता हूँ।

हाँ तो बताइए गाने का नाम क्या है। एक्चुअली फैजान साहब ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने गलत लिख दिया था। ये मोमिना का गाया हुआ, बिलाल भी हैं इस गाने में और इन्होंने गाना एक्चुअली में अलग ही लिख दिया था। मैं वही सोचूं कि यार बिलाल ने ये गाना कब गाया जो फैजान साहब ने लिखा है। फिलहाल मैंने उनको मैसेज कर दिया कि आपकी तरफ से गड़बड़ी थी, बट इंशाल्लाह पाकिस्तानी हिट जो गाने हैं वो एक बार फिर से हम किसी दिन थीम लेकर आएंगे। कामरान का ये मैसेज है और भाई ये सॉन्ग प्ले कर देना जब जाओगे तो। मेरा भाई माजरत, ऑलरेडी लोगों के जो सॉन्ग हैं वो यहाँ पर लिस्ट लगा रखा है मैंने। फलक का मैसेज है, बिल्कुल सही मैसेज, सही जवाब के साथ। मियाँ फज्जू, तबीयत सही है, मैं एकदम चकाचक, आप सुनाएं। गरम गरम चाहत हैं दिलबर अली, ये क्या हो गया आपको? प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, ये दिन या साल या महीना गुजर जाए। भाई बहुत देर हो गई आके साहब। सईद ने गाया है, बिल्कुल सही है, और इसरार शाह ने सही जवाब दिया है, फिर हमजा ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। उसके बाद ये मैसेज है अशफाक साहब का, बिल्कुल सही जवाब है, दानिश आजाद का सही जवाब है, एंड दिस सॉन्ग इज बाय।

क्या होता है अक्सर कि आपको पता ही नहीं चलता है कि गाने का असली नाम क्या है. इसमें बारी है, गाने का जो नाम है वो बारी है, लेकिन आप इसे इन म्यूजिक से या इन लिरिक्स से पहचानते हैं. मैं सुन

बस फैजान ने गलती इतनी सी कर दी कि उन्होंने बारिश लिख दिया था, एस एच एक्स्ट्रा कर दिया उन्होंने, इस चक्कर में मैं बिलाल का ये गाना ढूंढ नहीं पाया। बट इट्स ओके फैजान साहब, नेक्स्ट टाइम जरूर मैं ये गाना प्ले करूंगा अगर आपने सही लिखा तो। नहीं भी लिखेंगे तब हम समझ जाएंगे कि यार आप क्या लिखना चाह रहे हैं। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ आया ना तू मोमिना और अर्जुन की आवाज में। ये रिक्वेस्ट एक भाई की तो अपन लगा क्यों नहीं ये गाना जरूर प्ले होना चाहिए। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट डे यानी कि कल आपसे मुलाकात होगी, लेकिन दोपहर 1 बजे समृद्ध स्पोर्ट्स के शो में और फिर शाम 4 बजे सुनते रहिए FM 107 और अपना ख्याल रखिए दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: यार रोने वाली क्या बात है इसमें है? मैंने मना किया शो के टाइम पे गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है। बड़े सामने का ऑर्डर है ये, गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं शो के टाइम पे।
4: हाँ भाई आप गाड़ी के अंदर ही हैं। हमारे बड़े साहब ना SHO है यहाँ पे, तो मना करते हैं गाड़ी से निकलने।
3: मैं बात कर रहा हूँ ना बड़े लोगों से, मैं बात कर रहा हूँ अभी।
4: हमने इसको तो धर लिया है, आप देख लो, आप गाड़ी से निकलना नहीं है। गुस्से वाले हूँ, आ रहे हूँ, आ गए रे।

0: शाबाश शाबाश, जो लोग अपनी गाड़ियों से नहीं उतरे इंतजार कर रहे थे 5 बजने का, अस्सलाम वालेकुम। मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। भाई साहब कोई भी अपनी गाड़ी से निकलेगा नहीं, इस पूरे 2 घंटे का सफर आप मेरे साथ तय करेंगे, बहुत सारा प्रेम मिलेगा आपको भर भर के, इतना एंटरटेनमेंट आप खुश होकर जाएंगे, सारी तकलीफ भूल जाएंगे। ये तो मैं ऐसा लग रहा है दवाई बेच रहा हूँ मैं, बट कुल मिला के बात ये है कि आपको मजा आएगा, इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। एकदम आपको सक्षम बना के भेजेंगे घर पर, हम टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। बाकी आप क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, बड़े साहब नाराज हो जाते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, नहीं मैं रिपोर्ट लिखवा दूंगा आपकी, व्हाट्सएप का नंबर दूँ मैं आपको, है एफ आई आर करेंगे उस पर, तो नंबर लिखिए 666-22-107, 666-22-107। कोई भी कंप्लेन हो इस पे मत लिखिएगा, बस प्रेम चाहिए आपका, ठीक है, बस प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी भाई मैं इतना बता दूं कि आज की जो कहानी है, जो कुछ देर में आएगी, ऑफकोर्स अभी थोड़ा सा टाइम है, जब आएगी यू विल बी ब्लोन अवे, आप जो है आपकी हैं वह सब निकल जाएगी, बोले है ये क्या ये है, ऐसी कहानी है आज की। तो मैंने कहा था आपसे, वादा किया था, संडे से लेकर इंटेंसिटी कहानी की बढ़ती ही चली जाएगी भाई, बढ़ाता ही चला जाऊंगा इंटेंसिटी में, तो अब आप देखो क्या करता हूं मैं। बाकी मैं ऐसी रैंडम जो है ना एक वीडियो देख रहा था, और उसमें मुझे पता लगा, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, मैं इंशाल्लाह जब होगा तब मैं भी शेयर करूंगा, पर स्कूलों में जो माँ बाप के इंटरव्यू हो रहे हैं वो इतने फनी होते हैं इसके अंदर यार, मतलब बच्चों का तो छोड़ो छोड़ो, माँ बाप के इंटरव्यू हो रहे हैं बहुत बढ़िया वाले भाई। तो मैसेज पढ़ दूं मैं आपके, क्या कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आ गया स्वाद भाई, आज तो ऐसे बोल रहे हो कि लगता है विक्सी गोरी लो खिचखिच दूर करो, थैंक यू सो मच। ये हुसैन भाई अलग ही कॉम्प्लीमेंट था ये। उस्मान भाई कहते हैं वालेकुम अस्सलाम भाई मैं बढ़िया भाई, और नसीम साहब वालेकुम अस्सलाम मैं बढ़िया भाई, और प्रेम भेज रहे हैं ओवेस भाई सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, करामत भाई वालेकुम सलाम, और जैस भाई लिखते हैं हाजिरी ले लो साहब, बहुत सारा प्यार भाई को जैस भाई को, और फिर आमिर सुल्तान साहब वालेकुम सलाम मेरे भाई, बहुत सारा प्यार, एंड देन हमजा भाई वालेकुम सलाम, फलक भाई वालेकुम सलाम, फरद भाई ले रहे हैं मजे, वालेकुम सलाम फरद भाई, क्या हाल है भाई के, भाई ने एक दिल और एक मुस्कुराहट भेजी, यूसुफ भाई वालेकुम सलाम, एंड देन मैसेज क्या है, क्या नाम है इनका, मोहम्मद अशफाक साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारा प्यार भाई को भाई, कॉज आपकी आप इस गले के नहीं हो, है भाई भाई भी कॉज आप इस गले गोले के नहीं हो, अच्छा मैं गोले के नहीं हूँ मैं, मुझे हालांकि धरती का बना दिया आपने भाई, कॉम्प्लीमेंट है ना ये हुसैन भाई, कंफर्म कर रहा हूँ, मैंने तो बड़े साहब को बुला लूंगा मैं, ये कह रहे मैं इस गोले का क्या करूँ इनकी, लिख दूँ मैं कंप्लेन, नाम बताओ इनका, नाम बता दो इनकी, हुसैन नाम है इनका, लिख दूँ कंप्लेन इनकी, हुसैन साहब आपको बुला रहे हैं बड़े साहब, वो कह रही कि आप आ जाएंगे जरा हाजिरी दे देंगे तो अच्छा होगा, बड़े थानेदार हैं ना बुला रहे हैं आपको, खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके, बढ़िया चल रहा भाई, और एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई आपके आते ही जान में जाना जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 5 बजे बस कैसे भी करके शो में पहुँच जाऊँ, ये मुनीर भाई ने, मुनीर भाई को बहुत सारा भाई, मुनीर भाई अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, और खादिम भाई के बाद मैसेज किया है, चाचू क्या हाल है आपके, बढ़िया चल रहा हूँ भाई, क्या हाल है भतीजे, एक और मैसेज है, क्या है, ढोल नहीं बजाया, ढोल नहीं बजाया, ढोल बजा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है भाई, भाई पब्लिक ने बोला करने का तो करने का, आप ही लोग तो हैं भाई सब कुछ, आप आई तो मैं हूँ भाई, ये वाला ढोल स्पेशली पब्लिक के लिए गया, अपनी पब्लिक भाई पब्लिक क्या, ओ माय गॉड जी, सारे सुनने वालों को जो हाँ जी 5 बजे से जो लोग आए उनके लिए ढोल है, बहुत सारा प्यार, अगर आप 5 बजे से लेट सुन रहे हैं तो मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, आप क्यों नहीं आए ढोल सुनने के लिए। इकराम साहब वालेकुम सलाम, तुसी ग्रेट हो जी, अंडे का ऑमलेट ओहो खा रहे हो क्या, भी बढ़िया चल रहा भाई, और ये जो मैसेज किया था मुझे भाई ने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, आमिर भाई, आमिर भाई थैंक यू सो मच, आमिर भाई को बहुत सारा प्यार, थैंक यू, कुर्बान जाऊँ मेरा भाई, बहुत सारा प्यार। तो अभी आप जैसे फॉर्मेट जानते हैं तो हम आपसे मिलेंगे, मतलब मैं आपसे मिलूंगा, हम क्या मतलब लखनऊ के तरीके से बोल दिया मैंने, 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मुलाकात होगी, एक सवाल होगा और उसके तुरंत बाद कहानी आ जाएगी। आज की कहानी के लिए आप टिके रहेंगे तो आपका फायदा है, क्योंकि आज की जो स्टोरी है भाई साहब उससे ना बिल्कुल फ्रेश सुनने का मजा है, बिल्कुल फ्रेश सुनने का मजा है, उस कहानी में ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं ना, क्या वो क्या कहते हैं हिंदी में वर्ड है, भौचक्के रह जाएंगे, भौचक्के आप बोलेंगे अरे भाई साहब ये क्या सुना दिया, तो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी कहानियों की, You will be shocked and यू विल नॉट बिलीव दिस स्टोरी। अमारी असरी साहब वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद भाई वालेकुम अस्सलाम, और साथ में शाम साहब वालेकुम अस्सलाम, मकसूद भाई वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं कीप रॉकिंग, थैंक यू सो मच, और नियाज भाई का वालेकुम अस्सलाम। एंड ओके ये सारे गाने हो गए, सॉरी लोगों का एक मैसेज है, आदत क्या अदालती कार्रवाई जारी की जाए, सारे के सारे वकील जज गवाह हाजिर हैं। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, ये मिस्टर जैदी साहब का मैसेज। तो मिलते हैं 11 मिनट और 2 सेकंड के बाद, जाना आपने है नहीं, बेस्ट जगह पर है, आप कहने की जरूरत ही नहीं है भाई, स्टे ट्यून।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: एप्लीकेशन जो है ना, मैंने उनको अलग अलग तरीके से यूज के लिए हिसाब से डाला है. जैसे कि इंस्टाग्राम जो है वो मेरा न्यूज हब है.
1: अच्छा, ओके.
0: उसमें मैंने मतलब ज्यादातर मोस्टली मुझे वहां से न्यूज मिल जाती है. सुबह को जब मैं एकदम उठता हूँ, सबसे पहले इंस्टाग्राम ओपन किया तो उस मुझे क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कुछ मैंने न्यूज चैनल उनको फॉलो कर रखा तो उनसे मुझे उन जानकारी मिल गई. ठीक है सर. अभी कुछ एक दो एप्स हैं वो मेरे एंटरटेनमेंट के लिए हैं.
1: अच्छा,
0: ठीक है जी.
1: हाँ.
0: और एक अभी सोशल मीडिया पे एक ऐप है वो खरीद के लिए है. मतलब जैसे कि क्या क्या मुझे सेल करना है जो मेरे पास अभी फालतू है, और क्या चीज बाई करना है जो मुझे चाहिए जो सस्ते दाम पे मिल जाए.
1: अरे अरे, मेरे मार्क जकरबर्ग बहुत आगे की चीज है यार. क्या बात है, क्या बात है. वाह वाह वाह.
0: उसी हिसाब से बांट रखा है हर एप्लीकेशन को, उसी हिसाब से बांट रखा है.
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई, सो प्राउड ऑफ यू भाई. अच्छा तरीका है आपका भी डील करने का सोशल मीडिया से. वेरी नाइस, कीप इट अप मेरा भाई. और आज कितनी मच्छियां पकड़ी हैं आपने?
0: कल गया था मैं तो बहुत अच्छी आ गई थी. तकरीबन 6-7 kg का एक आया था. और
1: 6-7 kg?
0: हाँ
1: भाई साहब, यार आप तो माहिर हैं यार. मैं तो हल्के में ले रहा था भाई. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, सही जा रहे हो.
0: फोटो भेजता हूँ, चेक करिए.
1: जरूर जरूर जरूर मेरा भाई. थैंक यू सो मच भाई, आपने भी अपना पर्सपेक्टिव दिया. थैंक यू मेरा भाई. ओके, अल्लाह हाफिज.
0: थैंक यू बॉस, अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह हाफिज. और शुएब भाई के बाद जो है एक हमारे भाई हैं, इन्होंने बोला है तो कॉल करना ही पड़ेगा. एक सेकेंड. अरे यार, मैं गलत नंबर क्यों डायल करने लग जाता हूँ. आज जो है ना चश्मे पे धुंध आ गई है मुझे लग रहा है. तो मैंने कॉल लगाई है मलिक वकास साहब को. और एक भाई कह रहे हैं रील्स भेजनी होती है. बिल्कुल सही भाई शराज भाई, रील भेजना. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है बड़े लोग?
2: नहीं भी भाई, आप बड़े लोग हैं माशाल्लाह से. अल्लाह ताला हम सबको बड़ा रखे और अपने दुनिया और आखिरत की आफियतें फरमाता
1: रहे. आमीन आमीन मलिक वकास साहब, आमीन. जी बताइए वकास साहब, क्या कह रहे हैं
2: कबीर भाई? माशाल्लाह तो बेहतरीन चल रहे हैं आपके माशाल्लाह. स्टोरी पे स्टोरी जबरदस्त.
1: शुक्रिया शुक्रिया.
2: वो पिछले दिन एक स्टोरी मिस हो गई तो यकीन करें वो 3 दिन वेट करना पड़ा.
1: अरे मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, हम मुझसे ही गलती हुई थी, मैंने ऑडियो सुन लेना चाहिए.
2: नहीं नहीं नहीं, माजरत नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है. माशाल्लाह आप इतना वर्कलोड हैंडल करते हैं और उसके बाद फिर सारा कुछ करते हैं, आप फॉरवर्ड करते हैं, ऐसी भी क्या बात है.
1: थैंक यू मेरा भाई,
2: इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सलाम.
1: बहुत बहुत प्यार भाई को, एक्स्ट्रा वाला प्यार. तो मलिक भाई आप सवाल,
2: जो सवाल है ना उसके ऊपर स्टोरी सुनाता हूँ.
1: अच्छा सुनाइए प्लीज, गो अहेड.
2: अच्छा, मैंने हम दो दोस्त हैं तो है. इसी तरह आज से 12-13 साल पहले की बात है.
1: ठीक है.
2: तो ईच अदर को फॉलो किया हुआ था, फ्रेंड थे.
1: ठीक है.
2: तो मैं थोड़ा सा गूगल मेला लगा के रखता था तो मैंने कुछ उसको टैग कर दिया.
1: अच्छा
2: अच्छा, उसने थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया. उसके बाद फिर मैंने मजीद टैग कर दिया और उसके जो हमने नेम रखे हुए थे अपने स्कूल कॉलेज के जमाने के वो भी मैंने बोल दिए. उसके बाद तो जो घमसान मचा. ओहो भाई, उसकी कॉल आ रही है और मुझे उससे उसने मेरे से जो लड़ाई की, उसने कहा तुम्हें तमीज नहीं है, ये कोई बात करने वाली है. अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बैचे उसमें प्रोफेशनल लाइफ में चले गए. मैं कहा यार क्या हो गया, दोस्ती में प्रोफेशनल लाइफ नहीं होती?
1: हाँ बिल्कुल नहीं होती.
2: नहीं ऐसा नहीं होता, ये है मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये. मैं कहा ठीक है. मैंने कहा मैं तेरी मेंटेलिटी समझ चुका हूँ. हाँ. कि तुम किस मेंटेलिटी में हो
1: भाई. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए ऐसे वायरसेस से, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए. अच्छा फिर
2: ऐसा ही था. तो उसके बाद मैंने उसको, लेकिन फिर भी मैं बाज नहीं आया. मैंने जाते जाते भी 2-3 दफा मजीद उसको मीम टैग कर दिए कि उसकी हट गई मेरे से और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया.
1: अरे
2: हमेशा के लिए
1: भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई. अगर मीम में टैग करने से कोई दोस्त ब्लॉक करा, दोस्ती नहीं है भाई, वो कोई दोस्ती नहीं है.
2: और क्या, मीम होते ही मजे के. आजकल ऑफिस में ना यकीन करें कोई ना कोई बात होती है ना, उसमें मैं मीम बोल देता हूँ. जैसे शाम के टाइम वो मेरे साथ में बैठे होते हैं, वो कहते चले, मैं कहता नहीं चलो. तो इस तरह के मीम चलते रहते हैं पूरे टाइम ऑफिस में. तो तभी तो मजा आता है ऑफिस का और टाइम का
1: भाई. दोस्ती ना दोस्ती अनफिल्टर्ड होनी चाहिए, दोस्ती शुड बी अनफिल्टर्ड. उसमें अगर आपको पर्मिटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ रहा है कि कौन कितने प्रोफेशन में क्या है, तो फिर भाई वो खामखा वो दोस्ती नहीं है, फिर भाई वो अलग ही चल रहा है.
2: सही बात है, बिल्कुल सही बात है. और कबीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की मुझे.
1: नो प्रॉब्लम भाई,
2: मुझे टाइम नहीं मिलता कॉल करने का, लेकिन आपसे बात करके
1: जब,
2: बहुत
1: जब आप बोलेंगे वगैरह भाई, जब आप बोलेंगे हुकुम करें बस मैं कॉल कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है.
2: बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपके काम में मजीद बरकत अता फरमाए.
1: अल्लाह ताला आपको भी
2: जोन में रखे. आप हमें जो अपने जो हमें स्टोरियां सुनाने का टाइम था, आपने अपना दीवाना बना लिया स्टोरीज का.
1: बहुत बहुत प्यार मेरे भाई को, वर्चुअल छप्पे भाई को.

0: אוקיי, מרבה.
1: יאללה, בואי,
0: אללה אפיס. तो मलिक वकास भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें करी है, उनके बाद जो है अगली कॉल भी उठाई लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। क्या हाल चाल भाई के?
0: बढ़िया भाई, एकदम कदी। आप सुनाइए क्या हाल है?
2: अरे बहुत बढ़िया भाई, मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे ही तुमको मतलब आपको शोएब भाई जो ब्रिज की फोटो भेजे थे, लोकेशन भी पिन करवा लियो भाई।
0: अच्छा ऐसा है क्या?
2: हाँ भाई, 6 किलो की भाई फीस है भाई, फ्री में मिल रही है भाई, मैं भी जाऊंगा फिशिंग करने।
0: ये मुझे लग रहा है हाथों से पकड़ना है मच्छी समंदर में जाके।
2: भाई पता नहीं कौन सी जगह पे जाके उन्होंने पकड़ ली 6-7 किलो की।
0: हाँ ये मुझे लग रहा है समुद्र में डूब गोते खाके और वहां से पकड़ के लेके आ रहे हैं। ये रोड से तो मैंने कभी किसी को देखा नहीं 6-7 किलो पकड़ते हुए भाई।
2: वही ना, मैं एक दिन मैं कॉर्निश की साइड गया था, मैंने देखा था मतलब एक अफ्रीकन आदमी है, वो फिशिंग कर रहा था। अब मैं भी बैठा हूँ, वो भी फिश लेके बैठा भाई, उसने अपनी फिशिंग रॉड वगैरह सब तोड़ दिया और वापिस चला गया, उसको मच्छी नहीं मिली।
0: नहीं, कुछ लोग शौक शौक में ना काफी खर्चा कर लेते हैं वो फिशिंग रॉड वगैरह पे।
2: फिशिंग का भी बहुत हेवी शौक होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि जब मतलब फिशिंग कर रहे हो, जब मछली आती नहीं है ना, तब थोड़ा सा
0: बहुत दुख होता है भाई। मैंने आप सोचिए, आप तो फिर भी चलिए पूछ रहे हैं, मैंने तो जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा ट्राई किया, पूरी रात खड़ा रहा मैं वो सी लाइन कह रहा हूँ उस पे, इन लाइन पे पूरी रात, एक मच्छी नहीं आई भाई। और मैं समझ नहीं पा रहा मैं गम क्यों हो रहा है, मुझको होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो शौक तो नहीं है, पर फिर भी गम हो रहा था यार मुझे, क्या मतलब इतना बुरा हूँ क्या?
2: वही तो, शोएब भाई ने 7 किलो की माशाल्लाह अच्छी बात है यार, 7-8 किलो की मच्छी पकड़ी।
0: तो उन्होंने आपके लिए मैसेज किया है, शोएब भाई कह रहे हैं कि भैया इनलैंड सी लाइन बीच जाओ, 5-15 किलो मच्छी आराम से पकड़ लोगे, ये कह रहे हूँ।
2: अरे 15 किलो तक की भी?
0: हाँ भाई,
2: चलो इंशाल्लाह मैं भी फोटो एक दिन में रिलीज ये करूंगा, रिवील करूंगा, मैं करूंगा, मुझे भी बहुत शौक है मतलब फिशिंग करने का।
0: अच्छा माशाल्लाह, अरे बहुत बढ़िया। तो आपका रिकॉर्ड कितना है, एक दिन में कितनी पकड़ी है आपने मच्छी?
2: घर पे थी मैंने एक दिन में, मतलब मैं एक दिन गया था, जैसे सुबह से मैं शाम को आया था।
0: अच्छा।
2: तो मैंने 17 किलो फिशिंग की थी।
0: अरे यार क्या बात है, बहुत बढ़िया।
2: हाँ, और मैं सब रिश्तेदार के यहाँ भिजवा दिया, मतलब ये इनको दे दो, इनको दे दो, मुझे मजा आता है फिशिंग करने में, और फ्राई फिश और ताजी। हाँ। ओ कबीर भाई,
0: बात ही कुछ और है। नहीं
2: अरे बहुत
0: ना, तो आपके लिए वो मैसेज किया है एक और भाई ने, वो कह रहे हैं कि मैंने भी 5 किलो का रिकॉर्ड बनाया, आज तक उससे ऊपर कभी गया नहीं, 17 किलो सुन के लग रहा है कि मैं आज ही फिशिंग छोड़ दूं, ये मैसेज आया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
2: भाई हम तो गांव वाले भाई, हम लोग मतलब रिकॉर्ड बनाते रहते, पानी से बहुत अच्छा लगाव है।
0: बेहतरीन भाई, ये भी सही है, ये शौक जो है मैंने यहीं आके दिखा है लोगों में, बड़े चाव से फिशिंग करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये भी बड़ा कम डाउन सिचुएशन हो जाती है लोगों की मच्छी पकड़ते हुए।
2: फिशिंग हो, स्विमिंग हो, ये सब भाई अपने लिए अच्छा है, मतलब ये किए हुए हैं, ये करते हैं ज्यादातर।
0: सही है भाई, एक मलिक वकास साहब भी कह रहे हैं मैक्स हमने हमोर पकड़ी है जिसका वेट 2 किलो का होता है, वकरा बीच पे पकड़ी है, तो ये मैसेज भी आ रहे हैं, सारे फिशिंग वाले जाग गए हैं अचानक से।
2: फिशिंग आंदोलन चालू हो गया,
0: फिशिंग आंदोलन चालू हो गया काम। मगर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, और आप ये तो बताइए सोशल मीडिया पे आप दोस्त को फॉलो करना जरूरी है कि नहीं, ये बताएं आप।
2: देखो भाई मेरे लिए तो जरूरी है फॉलो करना, लेकिन मैं हूँ अभी यंग, तो मैंने क्या है कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो दोस्त लोग हैं अब कुछ दुबई में है, कुछ यहाँ ओमान में, तो हमने एक दूसरे को फॉलो कर रखा हुआ है, वो जो रील्स को सेंड करेंगे।
0: राइट,
2: बाकी ऐसा हम लोग उतना मतलब मैटर नहीं करता कि नहीं तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, जाओ तुम्हारा ये सब कुछ नहीं।
0: उसके वजह से लड़ाई नहीं है, बस वही है कि मीम शेयर करने होते हैं तो उसके लिए।
2: हाँ बस ये मतलब जैसे इस दुनिया की हिसाब से चल रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है,
0: और दोस्ती वही है जो मीम शेयर करे भाई, साफ सीधी बात।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बस वही मीम के लिए ही है, बस शेयर करने का, आज क्या कर रहा है ये, और फिर हम लोग वीकेंड पे ग्रुप कॉल करते हैं, बातें करते हैं, खूब बातें करते हैं, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आया तो वो पड़ा हो गया, ये कुछ नहीं।
0: हाँ ओके ओके ठीक है, चलो ये आपने अच्छा पर्सपेक्टिव बताया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, और बहुत सारा प्यार, बस मैं कहानी शुरू कर रही हूँ, सो आई होप कि आप भी
2: भाई, हम तो मैं तो बेकरार हूँ यार कहानी सुनने के लिए,
0: थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत सारा प्यार।
2: जैसा बोला है कि ये क्या हुआ, मैं भी आज परेश रावल की तरह चौंकने जाता हूँ।
0: हाँ भाई ऐसे ही होगा, आज गारंटी लिख के ले लो, अभी सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। थैंक यू सो मच, ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और खातिम साहब ने मैंने रिकॉर्ड भेजा है, कह रहे मेरे रिकॉर्ड है ना कोई परिंदा ना कोई मछली और ना कोई ट्रेन में सफ़र किया। ये मैं खातिम भाई मैं आपके पीछे पड़ा रहूँगा, प्लीज़ गो टू पाकिस्तान वेन एवर यू गोइंग फॉर योर एनुअल लीव, और प्लीज़ भाई

0: वहां जाके जरा ट्रेन में बैठो। एक भाई ने खोर उदैद का भी नाम ले लिया है और लास्ट कॉल ले लेते हैं। मोहम्मद भाई थैंक यू सो मच। अब एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम बड़े साहब।
0: भाई साहब सलूट। सब कैसे हैं साहब?
1: सर सर बढ़िया सर।
0: बढ़िया चल रहा
1: है
0: ड्यूटी पे सर। क्या चल रहा है भाई?
1: कुछ नहीं यार भाई, बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी में परेशान हो रहा है, भागते फिर रहे हैं।
0: भागते फिर रहे हैं तो? अरे यार आज आराम नहीं मिला आपको? दुख हो रहा है मुझे सुन के यार।
1: अरे नहीं यार, 3-4 दिन से आराम ही नहीं मिल रहा यार भाई।
0: अच्छा तो कोई बात नहीं, आराम मिलेगा। अब आज कितने बजे आराम मिलेगा, कितने बजे तक?
1: अरे तकरीबन आज भी 10 बजे के बाद में कहीं जाके फ्री हूँ मैं। सुबह से भाई 6 बजे से जो चल रहा है ना अभी, तो कभी इधर भागना कभी उधर भागना कभी इधर भाई, पूरा दोहा नाप दूंगा मैं मिनट से।
0: चलो और बताओ, सोशल मीडिया पे कितना जरूरी है भाई आज की तारीख में फॉलो करना दोस्त को? हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू यू? क्या क्या क्या मानते
1: भाई
0: हैं?
1: सोशल मीडिया पे एक बंदा है हमारे दोस्त हैंगे औरंगाबाद से हैंगे।
0: अच्छा
1: हाँ भाई साहब सऊदी में, हम कतर में हैं
0: है?
1: भाई साहब ऐसी ऐसी खतरनाक रील भेजे है ना
0: क्या क्या भेज दिया?
1: बड़ी खतरनाक खतरनाक रील भेजे। मैं कहूँ आपका भाई, ये रेन ने मान जा एक अकाउंट सस्पेंड हो गया, क्यों दूसरे के लगवा दे चक्कर में।
0: ज्यादा सीरियस रील भेज रहे मेरे हिसाब से आपको।
1: हाँ अगर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा ना तो बाद में जो है ना हो ही, जो चल रहा है अभी ट्रेन चल रहा है ना, क्या इसकी उसकी सबकी वाली।
0: अरे भैया उनको बोला है रुक जाओ भैया, तुम तो तुम्हारा तो कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हो? ये अचानक सुन को क्या, ये ऐसे सीरियस बंदों से मुझे बहुत डर लगता है भाई, बहुत डर लगता है।
1: चेहरा यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है कि यार, पहले तो ये तो साथ में रहते थे कोई बात नहीं है, साथ बैठ के सब देखते रहते थे, मगर अभी नहीं हो ना, दूर हो ना तो इसलिए परेशान करना अच्छा लगता। चलो
0: ओके
1: बीवी हो ना तुम भी दूसरी, जो परेशान करना अच्छा लगे।
0: हाँ हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। चलती रहनी चाहिए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको टाइम मिले तो कहानी सुनना, क्योंकि आज की कहानी है भाई खास कहानी है आज की, मजा आएगा आपको।
1: हाँ इंशाल्लाह जरूर भाई, टाइम मिलेगा जरूर सुनेंगे, टेंशन मत लो, अभी तक फिलहाल फ्री बैठे हैं तो सुनेंगे।
0: डन मेरा भाई, फिर मैं शुरू ही कर देता हूँ। ओके मेरा भाई, ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लास्ट मैसेज पढ़ दूँ मैं बिफोर द स्टोरी। साद नूर भाई लिखा, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं साद नूर। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया बना ही फ्रेंड्स के लिए है, मैं तो खुद अपने फ्रेंड्स को उसी ऐसे ही मीम के साथ कमेंट्स में मेंशन करके जलील करता हूँ, और वो मुझे जब मेंशन नहीं करता तो दोस्त पूछते हैं कैसे हो, तबीयत ठीक है, बीमार तो नहीं हो। मेंशन करना भूल रहे हो आजकल भाई, दोस्त के बिना सोशल मीडिया अधूरा है भाई। एकदम एकदम सटीक बात कही है भाई आपने। एक मैसेज भाई, कबीर भाई आपकी बात सुनाई नहीं देती, महसूस भी होती है, रेडियो दिल ट्यूनिंग बस उन्हीं। भाई भाई भाई राशिद भाई, राशिद भाई यार ऐसे ना आप इमोशनल कर देते हैं आप लोग। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। तो आज की जैसे मैंने कहा स्टोरी इज मज़ा आ जाएगा आपको। तो बस एक

0: और स्पोर्ट्स का एक्शन
1: लाइव अपडेट्स बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट
0: गेम ऑन
1: वॉल्यूम अप
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर एक बजे से
1: समर स्पोर्ट्स विद आरिफ अजीम
0: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी दिल से देसी हाँ जी तो अब जरा आज ये स्टोरी शुरू करनी है भाई बहुत करी स्टोरी है बहुत ही कैडी स्टोरी है और स्टोरी की वजह से भी बहुत कुछ हुआ है सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज तो शुरू कर दें सबसे पहले तो मैं ज़रा रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ भाई ताकि आपको भेज सके तो ये हो गई ऑन ओके तो डिस्क्लेमर इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा लेकिन आज का किस्सा भाई साहब स्टोरी है आज की काफी सॉलिड स्टोरी है और मैं अब शुरू कर रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ा ली जाए तो मैं दुहावारा कबीर एफएम 107 पे और आज का जो किस्सा है मैं उसे सुनाने के लिए ले चलता हूं आपको इन 1873 ओके 1873 ले जा रहा हूं आपको मैं तो 1873 में एक बंदा था और ये जो बंदा था ये इंडियाना में रहता था और इसका नाम था जैक ठीक है जैक भाई साहब जो थे बहुत ही नॉर्मल किस्म के इंसान थे इन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी अपनी जिंदगी में काम नहीं चल रहा था जैक बहुत परेशान था बहुत ज्यादा इनफैक्ट जैक को लगता था कि अभी जो है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ना तो कोई मुझे पसंद करेगी ना मेरी शादी होगी ना मैं आगे बढ़ पाऊंगा ना मेरी जिंदगी में कुछ पड़ेगा मतलब नील बल्टे सन्नाटा पर जैक ने फिर की जी तोड़ मेहनत रिजल्टिंग इन द फैक्ट कि उसकी बहुत बड़ी नौकरी लगी और वो एक पोस्ट ऑफिस खुद रन करने लगा वंस दैट हैपेंड जब पोस्ट ऑफिस शुरू हुआ तो भाई को हो गया प्यार और जब प्यार हो गया तो फिर तो कहां दुनिया नजर आएगी सारा नाम की एक लड़की से उसे मोहब्बत हो गई तो सारा और मिस्टर जैक दोनों की शादी हुई और दोनों ने हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताई इनकी बच्चे नहीं हुए फॉर वट एवर रीजन लेकिन इनकी जिंदगी बहुत सॉलिड चली बहुत सॉलिड लेकिन 34-35 साल इतने इसके आसपास हुआ ये कि जब इन्होंने सोचा कि चलो इधर उधर ट्रैवल करते हैं इधर उधर बहुत ट्रैवल कर रहे थे इसी के दौरान इनकी जो वाइफ थी सारा वो चल बसी अब जब उसका इंतकाल हो गया तो जैक जो थे वो पूरी तरह से टूट गए जैक ने बोला यार क्या अब जब मुझे लग रहा था कि फाइनली मेरे जीवन साथी मिल चुकी है मैंने आधी जिंदगी उसके साथ बिताई अब मैं कैसे अब तो मुझे जीना भी नहीं आता अकेले मैं कैसे करूं मगर जैक वॉज क्वाइट चार्मिंग क्वाइट इंटेलिजेंट एंड विद इन नो टाइम 1905 में जैक ने शादी कर ली इनफैक्ट 1904 का लास्ट था ये तो उन्होंने शादी कर ली एक और लड़की से आज अब इनकी दूसरी शादी हुई बड़े खुश थे कि चलो ठीक है अब जिंदगी हो सकता कि वापस ट्रैक पे आ जाए लेकिन फिर 1905 का महीना आया मार्च का महीना था 15 तारीख थी और उनकी जो सेकंड वाइफ थी वो भी चल बसी एंड बैक टू बैक हुआ ही लिटरली पहली वाइफ के जाने के बाद दूसरी वाइफ विद इन द सेकंड ईयर चल बसी तो अब लोग कह रहे हैं यार कितना बुरा इत्तफाक हुआ इस बंदे के साथ कितना बुरा इत्तफाक हुआ इतना बुरा तो हो ही नहीं सकता जैक ने किसी से भी बात करना छोड़ दिया था ही नेवर वांटेड टू इंडल्ज इन एनी कॉन्वर्सेशन स्पेशली अगर उसके घर की बात हो बहुत टूट चुका था वो मगर फिर उसकी जिंदगी में 45 ईयर ओल्ड एक खातून की एंट्री हुई इनका नाम था मैरी वॉटसन जो थी उन्हें ऐसा लगा कि यार बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ एंड वो जैक के घर से थोड़ा सा करीब में रहती थी लाइक एक नेबरहुड काइंड ऑफ सिचुएशन तो वहां पे वो रहती थी और वो जैक से अक्सर मिला जुला करती थी एक दूसरे को जानते थे हाय हेलो था तो बातचीत थोड़ी और आगे बढ़ी और मैरी वॉटसन एंड में जैक

0: एक को
1: बिल्कुल अपने पीछे पागल कर चुकी थी।
0: और फिर जैक ने फैसला किया कि हाँ यही है मेरी जीवन साथी, और जैक और मैरी ने कर ली शादी। They married in the month of August 1906, and ये तीसरी वाइफ थी जैक की। सब कुछ एकदम बढ़िया चला। Then came 1907। इस वक्त मैरी वॉटसन जो थी वो अपने घर में साफ सफाई कर रही थी। ये घर जो था ये वेस्टविल इंडियाना में था, और वो बहुत थकी हुई थी, उन्होंने कुछ नाश्ता भी नहीं किया था। तो वो जो स्टेप्स स्टूल होता है, आपने देखा वो स्टूल होता है, इसमें सीढ़ी लगी होती नीचे पैर रखने की ताकि आप ऊपर की तरफ जा सकें, तो वो स्टेपिंग स्टूल पर उन्होंने अपने कदम रखे, उस पर खड़ी हुई और सफाई कर रही थी, सारे जाले वाले हटा रही थी, सब ठीक ठाक कर रही थी। और अचानक से जब वो कर रही थी साफ सफाई, उनका सर बहुत भारी होने लगा, बहुत ज़्यादा भारी होने लगा। ऐसा लगा कि बस अभी शील थ्रू अप, तो अजीब सा लगा, नॉजिएटिंग। तो उन्होंने कहा चलो मैं काम करती हूँ, स्टूल से फ़ौरन उतरी वो और फिर बस गहरी गहरी सांसें लेने लगी। बट शी न्यू, उन्होंने बोला है मेरा काम है, मुझे कंटिन्यू तो करना है और मुझे ख़त्म करना है जैक के आने से पहले। एंड देन शी वाज थिंकिंग कि शायद मैंने खाना वाना नहीं खाया है तो इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि जैक उनके लिए कुछ चीज़ें बना के गया था वहाँ पे, बिस्किट्स रखे हुए थे, कुकीज़ रखे हुए थे, एंड शी वॉन्टेड टू हैव कॉफ़ी, तो कॉफ़ी भी बना के गया था। तो उन्होंने सीधा वो गई थोड़ा सा कमरे के बाहर, उन्होंने कॉफ़ी वॉफ़ी पी और बिस्किट्स के थोड़े बहुत बिस्किट्स उन्होंने खाए, और उसके बाद वापस काम पे लग गई, बिकॉज शी वॉन्टेड टू फिनिश सब कुछ कि उनका शाम को हस्बैंड जब आएगा जैक तो सब कुछ साफ सफाई मिले। इनकी शादी को ज्यादा इस वक्त टाइम नहीं हुआ था, कम टाइम हुआ था ऑब्वियसली, एक साल से भी कम टाइम हुआ था, बट एवरीथिंग वॉज ग्रेट। जैसे मैंने कहा जैक वॉज चार्मिंग, स्मार्ट, लोकल पोस्ट ऑफिस को रन करने वाला बंदा, ठीक ठाक पैसा, बढ़िया काम चल रहा था, और ऊपर से काफी अपबीट बंदा था। इतनी ट्रेजेडी देखने के बाद भी ही वॉज वेरी अपबीट और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब उसके साथ अगर कोई बैठा है तो वो बोर नहीं हो सकता। पर उसने नोटिस किया कि जैसे मार्च का महीना आता है तो उसका जो हस्बैंड है, लोग भी कहते हो ना, वो आंखों से देख रही थी कि उसका हस्बैंड ऑफिस से आता है, उससे बात भी नहीं करता। यूजुअली वो चैट किया करता था, बात बात किया करता था, लेकिन वो सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है। ये जो प्यार में दूरी है, इसकी वजह हालांकि वो जानती है मगर अच्छा नहीं लगता उसको, क्योंकि वाइफ है ना, तो कैसे बर्दाश्त करेगी वो। बट मैरी को पता था ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए था कि पहले दो बार शादी करके दोनों ही वाइफ खो चुका है वो, और एक साल के गैप में उसने को, तो वो बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा दुखी है। और दोनों ही वाइफ जो है वो मार्च के महीने में गई हैं, तो इससे ज्यादा तो कोइंसिडेंस क्या होगा। जो पहली वाइफ थी वो पहली मार्च 1905 में गई, उसके बाद 1906 में मार्च के महीने में दूसरी वाइफ का इंतकाल हो गया। इट वॉज रियली रियली हैवी ऑन हिम। एंड मैरी जो थी वो हमेशा से, इवन शादी से पहले, यही सोचती थी कि कितना हॉरेबल कोइंसिडेंस है, इतना बुरा इत्तफाक किसके साथ हो सकता है। मगर मैरी की जो बहनें थी ना, उनमें से एक बहन थी नैन्सी, वो हमेशा अपनी बहन को कहती थी यार तुम पागल हो गई हो, तुम कैसे इससे प्यार कर सकती हो, तुम देख नहीं रही हो उसकी दोनों वाइफ मार्च के महीने में बैक टू बैक, तुम कैसे इससे प्यार कर सकती हो, आई नो यू फीलिंग बैड लेकिन क्यों। पर मैरी जो थी, मैरी डीप डाउन से एक तो मोहब्बत हो चुकी थी, तो मोहब्बत में तो वैसे ही इंसान को कुछ नहीं दिखता, और ऊपर से उनके दिल में था कितना बेचारा है यार, इसकी किस्मत कितनी खराब है, और मेरी भी उम्र हो चुकी है, इनफैक्ट जा चुकी है शादी की उम्र, तो आई थिंक आई कैन बी वेरी सपोर्टिव टू हिम। और इतने सारी चीज़ों के साथ साथ वो देख रही है कि हस्बैंड बात नहीं कर रहा, एवरीथिंग इज हैपनिंग, मगर फिर भी वो इस स्ट्रगल में खुश थी कि ठीक है वो फिर भी साथ देगी, क्योंकि जैक जो था वो अभी भी गम मना रहा था, और मैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस गम का मैं क्या करूं। बट शी अंडरस्टूड वन पॉइंट कि पहली वाइफ जो है वो 34 साल तक जैक के साथ रही है, मतलब उम्र गुजर जाती है इतने में। तो चलो सेकंड वाइफ तो एक साल रही, कोई दिक्कत नहीं, मगर पहली तो इमोशनल तो होगा बंदा। और मैरी इसलिए थोड़ी डरी डरी रहती थी, एज द थर्ड वाइफ ऑफ जैक, वो ना घर की चीजों को बदलती नहीं थी कि कहीं इस बंदे को बुरा ना लग जाए, कुछ भी नहीं बदलती थी वो, वही

वही पंखे, वही गंदा सा ग्रीन सा वॉलपेपर, वही कारपेट लगे हुए हैं, क्योंकि उससे लगता था कि अगर मैं बदलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सोचेगा देखो आई सब बदल रही हैं, ये मेरी पहली वाइफ ने सब कुछ सजाया बजाया और ये बदलने बैठ गई, एंड शी वॉज रियली रियली फीलिंग बैड। कोई डेकोर में बदलाव नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जैक के लिए। खैर इस वक्त जो मैरी इतना सोच रही थी, उनको चक्कर भी आ रहे थे, उन्होंने कॉफी ऑफी पी एंड शी थॉट कि अब थोड़ा ठीक हो जाएगा। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरकार उन पर है और अब उन्होंने खुद ही फैसला लिया है तो वो सपोर्ट तो करेंगी। तो वो वापस से इस स्टूल पे चढ़ी और वापस सफाई करने लगी, जाले साफ करी, हर चीज साफ करी है, एंड शी वॉज फीलिंग वेरी नॉजिएटिक। तो उनको अजीब सा ही लग रहा था, समझ भी नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है, मगर लग रहा है, और एक शार्प क्रैम्प महसूस हो रहा था उनको, और जैसे घुटनों में एकदम से दर्द होता है शार्प, वो हुआ। और वहां से उतरी और चंद घंटों के बाद जो है उनकी बहन, उनको किसी ने बताया कि भाई तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है और तुम्हें फौरन जाना चाहिए। तो नैन्सी जो कि मैरी की बहन थी वो फौरन घर में पहुंची, पर जब वो पहुंची तो उनका फौरन भी लेट हो चुका था, शी वॉज अ लिटिल लेट। और उनके सामने वो देख रही थी कि लोग जो हैं, नैन्सी की बहन मैरी वॉटसन जो कि थर्ड वाइफ है जैक की, उनको वो लोग ले जा रहे हैं। तकरीबन दोपहर के 1 बजे मैरी वॉटसन वॉज डेड। और नैन्सी यही कह रही थी, वो चिल्लाने लगी, देखा मैंने बोला था मुझे इसी बात का डर था, इस बंदे में दिक्कत है, इस बंदे में दिक्कत है, कोई क्यों नहीं समझ रहा। जैक अभी तक 3 वाइव्स खो चुका था 3 सालों में, और तीनों की तीनों मार्च के महीने में इस दुनिया से चली गई थी। और नैन्सी सबकी तरफ देख रही थी कि आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है, आपको ये इत्तफाक लग रहा है, डोंट यू सी इट, इट इज सो ऑब्वियस, 3 साल 3 वाइफ तीनों मार्च में, ये कैसे इत्तफाक हो सकता है। मगर कोई एक्शन ले नहीं सकता था, देयर वाज नो प्रूफ। और जब उसे दफनाने भी गए तो नैन्सी जो थी बहुत गुस्से में, वो अपनी बहन को दफनाते हुए भी नहीं देख रही थी, वो जैक की तरफ देख रही थी घूर घूर के, कि जैसे बस अभी कोई कह दे और अभी इसको मारना शुरू कर दे। पर नैन्सी ने हार भी नहीं मानी, नैन्सी जो थी वो देखना चाहती थी कि बाकी रिपोर्ट्स में क्या आया, और कुछ रिपोर्ट्स में कुछ आया ही नहीं। मगर वो एक टाउन डॉक्टर के पास गई, उसने बोला आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, आपको जो चाहिए मुंह मांगी रकम मिलेगी, लेकिन आप मेरे साथ जैक के घर चलिए। वो गए, उन्होंने कुछ सवालात पूछे जैक से, जैक थोड़ा सा हिला हुआ था कि यार मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो खोई है वाइफ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मगर फिर भी उससे सवाल पूछे गए, और क्या क्या खाया क्या नहीं खाया, सारी रिपोर्ट जो थी वो तैयार थी। तो जैक ने फिर भी नैन्सी को बोला, नैन्सी आई अंडरस्टैंड, तुमने तुम्हारी बहन को खोया है, मैंने अपनी वाइफ को खोया है, मगर कोई कनेक्शन नहीं है। और रिपोर्ट्स में साफ था कि जो पहली वाइफ थी जिसका इंतकाल हुआ, उसने बहुत बढ़िया तरीके से नाश्ता किया था एंड वो दुनिया से चली गई। दूसरी वाइफ ने कुछ खाया ही नहीं था, वो दुनिया से चली गई। तीसरी वाइफ ने सिर्फ बिस्किट्स और कॉफी पी थी, वो भी आधी छोड़ दी थी। और जैक ने भी बोला कि पहली दो वाइफ जो थी वो थोड़ी सी बीमार भी रह रही थी कुछ दिनों पहले से, पर मैरी एकदम ठीक थी, अचानक हुआ ये सब। और फिर ये सुन के, उसका बयान सुन के नैन्सी उसके कमरे में, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जैक के, तो वो उठ के गुस्से में ताली बजाने लगी, वाह वाह वाह जैक वाह, क्या ड्रामा रचा है तुमने, क्या नाटक किया है तुमने। और बाकी सबसे कहने लगी, इसकी बातों पर यकीन मत करना, आपको ये नाटक नजर नहीं आ रहा है, डू यू स्टिल थिंक ये कोइंसिडेंस है, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। सबके सब चुप थे इंक्लूडिंग जैक। टाउन डॉक्टर जो था उसने बोला, अच्छा ठीक है नैन्सी काम डाउन, हम घर की और तलाशी लेते हैं। और जो टाउन डॉक्टर साहब थे वो घर की एक एक चीज को चेक करने लगे कि कहीं पे कोई चीज पॉइजनस ना हो, हो सकता है बर्तन हो, हो सकता है कुछ और हो, खाना पीना बर्तन वर्तन सब। और नैन्सी जो थी वो लगातार डॉक्टर के पीछे पीछे पीछे पीछे जा रही थी, पीछे एक पूरी भीड़ चल रही थी जो घर के अंदर उनके पीछे पीछे हल्के हल्के जा रही थी, क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब। और नैन्सी चुप ही नहीं हो रही थी, नैन्सी लगातार बोल रही थी, डॉक्टर साहब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, यही है वो बंदा, आप घर में मत देखिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाइए। एंड एज यू नो इन अर्ली 1900s कोई इतना हाईटेक सिचुएशन तो थी नहीं
कि कोई लाई डिटेक्टर ला के रख दे या किसी किस्म की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाए जिससे साबित हो जाए, तो देयर वाज नथिंग एट ऑल. वो जो टाउन डॉक्टर था वो खुद कंफ्यूज था और वो अभी एक्टिंग करने लगा कि अरे नैन्सी को चुप कराना पड़ेगा वरना बवाल हो जाएगा, तो वो बस एक्ट आउट कर रहे थे देखने का. उन्होंने सोचा घर में पूरा घूमूंगा और बोलूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड नैन्सी पीछे पीछे पीछे पीछे. फिर एक जगह पे डॉक्टर साहब रुके, बोले नैन्सी की बॉडी कहां मिली थी? तो लोगों ने कहा सर यहां मिली थी. और जैसे ही डॉक्टर साहब उस कमरे में गए जहां नैन्सी की मैरी की बॉडी मिली थी, मैरी की बॉडी जहां मिली थी वहां एंटर करते के साथ ही डॉक्टर साहब रुक गए. उन्होंने सबको बोला सब हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, सारे पीछे हट गए. डॉक्टर साहब ने बोला नैन्सी? नैन्सी ने बोला यस. नैन्सी मैं समझ गया कि मैरी की डेथ कैसे हुई. और जब ये उसने भूला तो नैन्सी वॉज इन शॉक कि यार ये क्या डॉक्टर है, मतलब यहां खड़ा हुआ इसने कह दिया कि हाँ मुझे पता कैसे हुआ. अरे कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई प्रोसेस होता है, कुछ भी मतलब. डॉक्टर ने बोला सुनो वो देख रही हो? और उसने जिस तरफ पॉइंट किया नैन्सी उस तरफ देखना चाह रही थी. डॉक्टर साहब किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो उसने देखा कि इशारा कर रहा है एक स्टूल की तरफ, एक सामने स्टूल रखा हुआ है और उसके साइड में एक झाड़ू रखी हुई है. एंड बड़ी कंफ्यूज थी वो कि एक स्टेप स्टूल और झाड़ू की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं डॉक्टर साहब. पर डॉक्टर साहब वॉज एक्चुअली राइट. तो तीनों वाइफ जिनका इंतकाल हुआ, तीनों में एक कॉमन सिचुएशन थी. तीनों की तीनों बैक टू बैक टू बैक लगातार 3 सालों में दुनिया से चली गई. तीनों की तीनों मार्च के महीने में गई और तीनों की तीनों दरअसल सेम काम कर रही थी और वो था साफ सफाई का काम. ये थी स्प्रिंग क्लीनिंग जो तीनों वाइफ इस टाइम कर रही थी. ये जगह जो थी कमरे की ये पार्लर था, तीनों की तीनों पार्लर साफ कर रही थी. और जो मैंने शुरुआत में बताया वो गंदे से ग्रीन से वॉलपेपर जो पहली वाइफ ने लगाए थे, उन वॉलपेपर्स के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे जैसे कि आर्सेनिक. तो हो ये रहा था जब ये तीनों की तीनों मार्च के महीने में स्प्रिंग के सीजन में सफाई कर रही थी तो वो डस्ट और वो आर्सेनिक सारे पार्टिकल्स का एक क्लाउड बन रहा था और तीनों की तीनों इनहेल कर रही थी जब जैक घर पे नहीं था. तीनों की तीनों डाइड ऑफ पॉइजनिंग, मगर ये जहर उनको जैक ने नहीं दिया था, ये वॉलपेपर से मरी थी. एंड दिस चेंज्ड एवरीथिंग. सब शॉक थे, पूरा टाउन हिला हुआ था और सब के सब कमरे से जो भागे हैं डॉक्टर साहब की थ्योरी सुन के, जबकि उन्हें पता भी नहीं, साबित नहीं हुआ. लेकिन डॉक्टर साहब ने लेटर ऑन वो साबित भी किया कि इस वॉलपेपर में जो सब्सटेंस है जिससे चिपकाया गया, जो चीज लगाई गई है, वो आर्सेनिक है उसके अंदर. एंड धूल मिट्टी से तीनों औरतों ने इनहेल किया स्प्रिंग के सीजन में, विच इज मार्च, एंड देन ऑल ऑफ देम डाइड बिकॉज ऑफ द वॉलपेपर. जैक की कोई गलती नहीं है. लोगों ने जैक से बहुत माफी मांगी. जैक तो और भी ज्यादा टूट चुका था. पहले यह गम था कि तीनों जा चुकी हैं और अब यह गम था कि किस वजह से गई हैं. जैक ने फौरन अगले ही दिन सारे के सारे वॉलपेपर्स को दीवार से फौरन हटवाया एंड उसके बाद जैक ने चौथी शादी करी. यस यू हर्ड मी राइट, जैक की चौथी शादी हुई एंड द फोर्थ वाइफ वो जैक से भी ज्यादा साल जी और उसके बाद गई. सो शी आउटलिव्ड हिम. एंड इस वजह से, इस केस की वजह से काफी ज्यादा चेंजेस आए. वॉलपेपर जिस तरीके से लगाए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं, उस एरा में काफी सारी चीजें बदली गई. कंपनीज को हिदायत दी गई कि ऐसा भी होता है एंड किस तरीके की सफाई करनी चाहिए, रिजल्टिंग इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि जो क्लीनिंग सोप्स होते हैं उनमें क्या मटेरियल ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एंड थिंग्स ऑन एंड ऑन नॉन जो आज हमारे पास है. तो स्मॉल इंसिडेंट्स, वियर्ड इंसिडेंट्स कैन लीड टू समथिंग एल्स एंटायरली, और ये कहानी उसका सबसे बड़ा सबूत है. तो ये किस्सा आपके हवाले. अब आप बताइए ये कहानी कैसी लगी.
666-22-107, 666-22-107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई साहब 6 बज के 2 मिनट हो गए हैं और काफी कमाल की मैसेज से कॉल भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाई।
3: वालेकुम सलाम।
2: हाँ जी भाई,
3: वाकई में क्या भी मैं तो आज ये जो अपना कॉमन व्हाट्सएप है ना, इस पे तो मैं मीम भेज भेज के तुमको मैं परेशान कर दूंगा। नहीं मैं यार दिमाग घूम गया भाई, मैं तो मैं कभी नहीं लगाऊंगा वॉलपेपर, कबीर भाई माफ करना। मुझे प्लास्टर चलेगा या फिर मैं टाइल्स लगवा लूंगा घर पे।
2: मैं तो पेंट भी नहीं करा रहा भाई, ऐसी दे दो मुझे ईंटें लगा के।
3: भाई वाकई में यार इतनी खतरनाक चीज हुई वो। yes. तो कोई भी नहीं उसको सोच सकता है।
2: हाँ, सोचो।
3: इसपे डॉक्टर ने लेकिन पता लगा लिया बहुत जल्दी। हाँ। कोई भी उसको मतलब जल्दी पहचान नहीं सकता कि हाँ भाई ये तो हो जाए। मुझे तो नहीं आज पता चली
2: क्या चीज पता नहीं।
3: पेपर मतलब ऐसे ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं कि
2: पहले वो जो लोग मटेरियल यूज करते थे वो थोड़ा थिक होता था एंड इट यूज्ड टू हैव फ्यू सब्सटेंसेस जो आर्सेनिक होते हैं। तो बेसिकली वो ना डस्ट के साथ जब मिल जाते हैं तो पॉइजनस कर देते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजनस कर देते हैं, लिटरली लीथल होते हैं। तो वो मटेरियल सब नहीं बनते, नहीं मिलते। बट
3: यार वाकई में स्टोरी लेकिन गजब की भाई। मैं सोच रहा था यार मेरा दिमाग शर्लॉक होम्स की तरह काम कर रहा था, आखिर मर्डर कर कौन रहा है, आखिर मर्डर कर कौन है जी, ये नहीं मार रहा है तो मर कौन रहा है, घर में डेथ हो रही है।
2: हाँ।
3: फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा लगता है कि ये स्टोरी घोस्ट वाली होगी।
2: हाँ।
3: लेकिन यहाँ तो पूरा रायता फैल गया मेरे दिमाग का भाई।
2: पर जैक को मानते नहीं मानते, जैक भाई ना चौथी भी करी जाती भाई। जैक भाई
3: सख्त लौंडा भाई।
2: कोई इस बात पे ध्यान नहीं दिया
3: शादी के मामले में, जैक भाई नहीं पिघला।
2: हाँ जैक भाई नहीं रुके, जैक भाई ने कहा ना जी ना दुनिया धर के तो रोलेगी, मैं नहीं जाऊंगा अकेले, करनी है भाई।
3: क्योंकि मेरी वजह से थोड़ी हो रही है मेरी वजह से तो बड़ी ना डेट हुई है, मैं तो शादी करके रहूंगा, मैं दुनिया को लेकर रहूंगा कि जिंदा रहेगी।
2: वही मैं सोच रहा हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि कहानी में देखो और फैक्टर्स हैं, चलो शॉकिंग एंड में बहुत ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन जैक भाई को इग्नोर नहीं कर सकते भाई आप लोग।
3: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जैक भाई भाई जैक भाई को भी मानना पड़ेगा वाकई में।
2: जैक को तो मानना
3: पड़ेगा। कहाँ मिली यार आपको यार, इसलिए आप बोल रहे थे कि आज आप बोलोगे हैं, आज आप बोलोगे हैं, क्या हुआ वाकई में। जब आप स्टोरी बनाओगे तभी आपने सोचा होगा कि कुछ नहीं, आज तो बहुत मजा आने वाला।
2: हाँ मैं पूरा यकीन था, मैं बड़ा खुश था मैं जब ये स्टोरी पूरी नैरेटिव फॉर्म रहा था, मैंने कहा भाई बहुत मजा आएगा ये सुनाने में, तो बहुत मजा आएगा।
3: हैट्स ऑफ भाई आपको यार, ये गजब स्टोरी लाई। मैंने इससे पहले ये ऐसी स्टोरी नहीं सुनी थी, एकदम वक्त और हालात जज्बात बदल गई।
2: थैंक यू मेरा भाई, आई एम रियली हैप्पी, रियली रियली हैप्पी।
3: बहुत अच्छी लगी भाई, बहुत अच्छी लगी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ख्याल रखिए।
3: ओके
2: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एंड आई एम हैप्पी कि ये शौक कहानी आप लोगों को अच्छी

0: ये और क्या चाहिए भाई, इसी बात के लिए तो मेहनत की जाती है। एक मैसेज आया, मुझे लगा आप जो चौथी वाइफ का बोले वो सेम लेडी उस थर्ड वाइफ की सिस्टर होगी। अरे नहीं नहीं भाई, सही लगता है कामरान भाई, अलग किस्म के भाई। उस टाइम पे वो लोग इमरान आजमी थे जैक भाई। अब्दुल नबी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ब्रो, मैंने सोचा जैक परोती है लेकिन हिम्मत नहीं हारी जैक ने, जैक भाई का फैन हो गया भाई मैं, क्या बात करो। खादर अब्दुल्ला जी कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड परफेक्ट पिच, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम। बाकी मैसेज भाई स्टोरी प्लीज़ भेजेगा। एक मैसेज है, मेरा गैस सही निकला, घर में ही कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बता नहीं सकते थे आप घर में प्रॉब्लम शिव भाई। हाँ तब उस समय लिखते हैं तीनों की डेथ हो गई, बहुत दुख की बात है, लेकिन ये गलत बात है कि जैक को गम था, कोई गम वम नहीं था, कह रहे शादी विशादी किए जा रहा ये कोई गम है। अरे भाई तबस्सुम बहन ने पकड़ ली, तबस्सुम कह रही ये कोई गम है, है? सभी शादी की जा रहा, मजाक है क्या? एक मैसेज, बेचारी वाइफ्स क्या है, साफ सफाई करते हैं। हाँ बेचारी वाइफ, उसमें बहन क्या करें, पर देखिए इन्होंने नोटिस किया है तबस्सुम बहन ने, सही पैटर्न नोटिस किया उसके बारे में। इजाम साहब वालेकुम अस्सलाम, अरबाज भाई कह रहे हैं ये वाला पेपर कहाँ मिलेगा। और एक मैसेज, स्टोरीज दो मिनट सुन पाया, अरे भाई। और सदीक साहब लिखते हैं भाई वॉलपेपर लगवाने की सोच रहा था, अब प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। जी भाई बिल्कुल, मतलब लगवा लें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आते मटेरियल से, सो यू कैन रिलैक्स चिल, अभी सब ठीक है। हुसैन मैंने मैसेज किया है, जैक भाई टॉम क्रूज ने, भाई जैक भाई भाई कताई कताई कताई जहर निकले जैक भाई। ये कहानी आपने एंडिंग में तो फोकस किया, आपने जैक भाई पर फोकस नहीं किया, वो तो पल्ली गली से निकल ली है, कभी दिमाग में ढोल बज जाती है। थैंक यू सो मच कादिर भाई। और मैसेज, वॉलपेपर फर्स्ट वाइफ ने लगाया था, शी इज़ वेरी क्लेवर, अगर मरा नहीं तो जैक किसी का नहीं, अच्छा मेरा नहीं तो किसी का नहीं। अरे नहीं नहीं, फर्स्ट वाइफ को भी नहीं पता होगा भाई, वो खुद वॉलपेपर की वजह से गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके, जुबैर बलोच भाई बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू सो मच। एक मैसेज है, सर इस पेपर में आपके लिए भी लाऊंगा। क्यों भाई, मेरे लिए क्यों लाओगे, दो ही क्या किस किस क्या है, मैं समझा नहीं क्या कहेगा भाई। मैंने अस्सलाम वालेकुम, पोस्टमार्टम में उनकी मौत का पता क्यों नहीं चला भाई, इट वाज 1905, मैंने मेंशन भी किया 1905 में, इतना कुछ नहीं था कि सब पता लगा लेंगे वो लोग। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत अर्ली 1900s था ना मेरे भाई, ख्वाजा भाई। और एक और कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई एकदम चंगा, आप सुनाइए।
1: ठीक ठाक कबीर भाई, मैं कबीर भाई सॉरी यार अभी सोया हुआ उठा, मैंने स्टोरी मिस कर दिया।
0: कोई बात नहीं भाई, आपने बहुत सॉलिड स्टोरी मिस करी भाई आज, बहुत सॉलिड
1: यार। फिर कह रहे हैं कोई बात नहीं
0: भाई, मैं बताऊं भेज तो दूंगा मैं, लेकिन अच्छे से सुनना भाई, इस पे तो आपको मैं कमेंट सुनना चाहूंगा मैं।
1: आपको पता नहीं आपकी स्टोरी से मैं कहां तक फोकस करता हूं।
0: भाई बहुत प्यार भाई, मैं भेजूंगा आपको, क्योंकि आज की कहानी एक्चुअली में सॉलिड थी, मतलब मेरी भी फेवरेट्स में से एक है आज की कहानी। तुम अच्छा
1: है ना? नहीं नहीं मैं जरूर जरूर जरूर भेजिएगा और जरूर सुनूंगा।
0: थैंक यू मेरे भाई, और कैसा चल रहा है काम?
1: मैं कुछ नहीं करने का था, मैं आपकी स्टोरी सुन रहा था।
0: थैंक यू मेरे भाई, आपकी मोहब्बत है। और कैसा चल रहा है काम वाम?
1: काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, आज जॉब था मेरा, तो बस अभी सुबह उठा और निकला हूँ, तो कहीं काम जा रहा था तो मैंने बोला चले कॉल आपको कर लेता हूँ।
0: सही है सही है सही है भाई, बस अच्छी बात है, नींद खींच ली ना आपने, छुट्टी का मतलब यही है भाई, नींद खींच लो बस।
1: अभी रात में हम सीलन गए हुए थे और अभी मैं अभी अभी उठा मैं बिल्कुल, तो मैं बस
0: चलो चाय चाय वाय मार लो फिर बढ़िया करके,
1: बस अभी यही सोच रहे चाय पी रहे। आप बताएं आपके पास आ जाते हैं अंदर से चाय पीते हैं आज?
0: भाई मैं तो घर ही पीता हूँ भाई।
1: कोई बात नहीं है, हम भी आज बाहर से पी लेते हैं, इतना मसला नहीं है।
0: पी लो पी लो पी लो पी लो अच्छे से पी लो, कोई टेंशन नहीं, हमारे ऑफिस में बहुत बढ़िया चाय मिलती है, तो मेरा तो काम हो जाता है,
1: तो वो ऑफिस का रास्ता भी आता है मुझे, मुश्किल नहीं है।
0: अभी मत तड़पाओ मुझे, अभी मैं छोड़ छोड़ के चाय पीने भाग जाऊंगा। आने पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे, ख्याल रखिए बस अपना,
1: ठीक है ठीक है,
0: अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और भाई का मैसेज आया है, जैक अभी हमारा मुफ्ती निकला कह रहे। और एक मैसेज है, तीसरी वाइफ वॉलपेपर रिमूव करने का सोच रही थी, अगर वो चेंज करती तो उसकी लाइफ सेव हो जाती। एग्जैक्टली शेप भाई, एग्जैक्टली, अगर वो चेंज कर देती ना, ज़्यादा ना सोचती तो हो जाता। हुसैन भाई लिखते हैं, भाई बॉलीवुड में एक सॉन्ग है, तेरा गम अगर ना होता तो, अच्छा वो वर्ड नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जैक भाई के लिए कहना चाहूँगा कि तेरा गम अगर ना होता तो मैं एक और शादी ना करता। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, वन ऑफ द वेयर्डेस्ट स्टोरीज बाय द मुबारक।

0: कभी किस बात की यार ये ऐसन उबैद कुरैशी भाई मान जाओ ऐसन भाई मान जाओ। और एक मैसेज है आपकी आवाज शाहरुख खान से मिलती है भाई है राणा भाई। चलो भाई सामान पैक करो अब किसी से बात नहीं करेंगे सीधे मुंह किसी से बात नहीं करनी है। ये क्या भूल गए आपकी आवाज शाहरुख खान से मिलती है इसके बाद मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा सॉरी अभी अभी घमंड आसमान में। राणा भाई आपने गलती कर दी आज आपने गलती कर दी क्या बात है आज तो भाई आपका चौड़ा में घूमेगा आज किसी से बात नहीं करूंगा मैं सीधे मुंह किसी से बात नहीं होगी भाई एक मैसेज जबरदस्त स्टोरी थैंक यू मेरे भाई बहुत सारा प्यार क्या थैंक यू राणा भाई आपने तो मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया यार दिल धड़क गया एकदम से मेरा। हुसैन भाई कह रहे हैं भाई आपके पास तो एक और आरजे भी मिलती है आपकी किस आरजे से मिलती है भाई ऐसा मत करो यार मेरे कॉपी घूम रहे हैं एक मैसेज इतनी अमेजिंग स्टोरीज कहाँ से लाते हैं भाई वाह जो भी स्टोरीज आप सुनाते हैं यूनिक होती है ट्रूली अप्रिशिएट योर रिसर्च थैंक यू सो मच। हया कुरैशी जी रात भर की रिसर्च है ही मेरा खुद का रिसर्च सेंटर है घर पे पर थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई पेंटिंग मिल जाएगी
0: पेंटिंग मिल गई
1: मिल जाएगी हमें
0: केडी पेंटिंग हैं
1: भाई उसने तीन बीवियां रखी हैं भाई हमें भी तो मौका दो ना यार
0: भाई मैं अभी किसी से सीधा मुंह बात नहीं करूंगा राणा भाई ने कह दिया है तुम्हारी आवाज शाहरुख खान से मिलती है तो अभी मैं सीधे मुंह बात नहीं करूंगा समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी तारीफ मिली है मुझे अभी भी
1: यार वैसे शाहरुख खान की आवाज तो मुझे याद नहीं है
0: हाँ। मैंने अरे यही आवाज यही है शाहरुख खान
1: कर लिया बस सही है।
0: अच्छा और बताइए कहानी कैसी लगी मेरे भाई को
1: बेहतरीन
0: मैं आपको
1: तो
0: बोल रहा
1: हूँ पेंटिंग मिल सकती है भाई वो वाली
0: वो पेंटिंग नहीं वॉलपेपर का पूरा वो चिपका भाई चाहिए आपको
1: दीवार
0: में लगा के
1: वैसे ये कहानी मैं जो है ना इमोशनली ब्लैकमेल करके ना सर दूसरी शादी के लिए प्रस्ताव रख सकता हूँ
0: ये जो है
1: वॉलपेपर लगवा दूंगा देख लो
0: अरे
1: लगा के मनवाना है
0: अभी अभी तो लोग कह रहे हैं भाई सारे वॉलपेपर हटाओ सारे वॉलपेपर हटाओ अभी मुझे दीवार सिर्फ ईंट वाली चाहिए सीमेंट भी नहीं लगाना मुझे थैंक यू सो मच मेरे भाई आपको अच्छी लगनी चाहिए बस ये है कहानी अच्छी लगनी चाहिए बाकी मैटर नहीं
1: लेकिन तो बात वही है कि अगर वो जो उसकी बहन थी तीसरी वाली वाइफ की जो बहन थी उसकी अगर वो थोड़ी देर पहले देख ली तो शायद उसकी बहन बच जाती
0: एग्जैक्टली exactly.
1: और छोटी शादी ना करनी पड़ती लेकिन खैर जो मर्दों के नसीबों में होता मिल ही जाता है
0: तो भाई आपको जैक भाई की फैन नहीं मैंने अभी तक मैं तो बहुत बड़ा फैन बन गया जैक भाई का भाई बहुत ही बड़ा
1: मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे बताओ मैं जाके बॉल पे भरे ले आता हूँ मैं तो प्रिंस भाई का फैन बना पड़ा था प्रिंस भाई गायब हुए पड़े
0: अरे रे
1: शादी किया अपने
0: चलो अच्छी बात है वॉलपेपर तो नहीं मिलेगा
1: ना कॉल पर आते ना आता पता है कोई उनका
0: किनका
1: क्या पता प्रिंस भाई का
0: अरे भाई अब पता नहीं कहाँ गए वो शायद छुट्टी वुट्टी पे गए होंगे शायद हो सकता है इसीलिए गए
1: हम तो उनके ही फैन हुए बड़े जब उन्होंने बोला ना दो शादी किया है अपने
0: पता मुझे याद है भाई सबके सब ऐसे गाड़ियां रुक गई या गैराज नहीं पर अच्छी बात है वो उनको अभी आएंगे इंशाल्लाह वो मैं मैसेज करूंगा उन्हें पूछूंगा कि
1: आपका जो टॉपिक था ना आज का
0: जी भाई
1: मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाह रहा है कि हम इस कैटेगरी में नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह
0: चलो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया
1: सोशल मीडिया वाला है लड़के वगैरह बाकी यूज करते हैं लेकिन मैं इतना नहीं हूँ मैं सिर्फ देख लेता हूँ बस उसके बाद ना भेजने का किसी को ना और कुछ और वो भी कोई इतना खास नहीं यूट्यूब पे हल्का फुल्का देख लिया नहीं तो बस अपने काम से काम ठीक है
0: क्या बात है इतने शरीफ लोग
1: दोस्त साथ में इकट्ठे बैठे हुए हूँ महफिल लगी हुई हूँ उसमें फिर एक आधा बंदा रगड़े में आता है और उसकी वो हालत होती है ना जो एक बार कानों का हाथ लगा के उठता है कि ना भाई अब से ना बैठा
0: नहीं पर बहुत सादगी है यार माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है मेरे भाई सो प्राउड ऑफ यू बहुत बढ़िया ऐसे जीवन काटिए ज्यादा सही है
1: बिल्कुल नहीं करता भाई
0: हाँ ओके ठीक है
1: वो आपका वो बात चलती है ना कि और फिर जेंट्स अल्फा हम पौधों से पहले वाले बच्चे हैं तो हमारा दिल नहीं करता
0: अरे रे रे रे रे

0: इकोने पीछे से। अच्छा
1: पकड़े गए।
0: मेरे भाई पर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी, और पीछे भाई को भी सलाम, ख्याल रखिए अपना बस। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और एक मैसेज आया है, अशफाक भाई कह रहे हैं मुर्शिद आज तो एंड कर गई। मजा आ गया सबको, जैक भाई सारे के सारे खुश हैं। और एक मैसेज है कबीर भाई, जब वाइफ से दिल भर जाता हो तो मैं क्लीनिंग के लिए भेज देता होगा। अच्छा वो कह रहे हैं जब उसका मन मर जाता होगा, कहता होगा जाओ सफाई करके आओ और माशाल्लाह। मैसेज है भाई, लोगों को एक नसीब नहीं हो रही, लेकिन जैक भाई को एक के बाद एक लाइन लगी है। काले जैक भाई उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थे, ऐसे थोड़ी टॉम क्रूज भाई। खादिर भाई कह रहे हैं सिंगल इज इक्वल टू बाउंड्री है, क्या कह गए भाई। मेरे समझ को नहीं आवा भाई। बाकी तो भाई कुछ देर मिलेंगे, जाना आपने ही नहीं, बहुत बढ़िया जगह पर हैं आप। जैक भाई के लिए गाना कह रहे हैं भाई, जैक को क्यों मारा? अरे जैक नेचुरली भाई, जैक को कौन मार सकता है? शिराज भाई आप बताओ, आपको लग रहा है जैक को कुछ हो सकता है? वो टाइटैनिक में भी कर जाता।

रफ्तार। रफ्तार बाजी ने एक रैप शो शुरू किया है, बहुत बढ़िया शो है। उन्होंने मेजरली ऐसे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं डाला, ऐसे अपलोड कर दिया नॉर्मल जिसपे आप लोग वीडियो देखते हैं, जिसका नाम वाई से शुरू होता है। तो उस पर क्या रैप शो है भाई, क्या सेट डिजाइन है, कितने बढ़िया बढ़िया रैपर्स आए, कसम से मजा आ गया देख के। सो इफ यू हैवंट सीन इट, अगर आप कोई रैप शो देखना चाहते हैं, रॉ टैलेंट देखना चाहते हैं ना, क्योंकि ये लोग इंडियन आइडल शो की तरह दूसरे नहीं गा रहे होते, ये लोग अपने खुद का रैप लिख के गा रहे होते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक शो, आई लव्ड इट ब्रो, मजा आ गया मेरे को देख के। अगर आप नहीं देखा है तो देखिएगा, शो का नाम है लेगेसी। इमेजिए कबीर भाई स्टोरी में शो गई वल्ला, कोई बात नहीं भाई। हुसैन भाई जो है बड़े हैरान है, उत्तम नगर में रहते हैं। मैंने कहा मैं जानू में रहता हूँ, है निकल गई उनके आज। मिलेंगे जरूर मेरे भाई, अब तो आपसे मिलना पड़ेगा उत्तम नगर के, तो बहुत सारा प्यार भाई को। और एक मैसेज है खादर अब्दुल आदि भाई का, लिखते हैं ये गाना किड जिंगल से पकड़ के ले आए। किड जिंगल से नहीं आए, ये एक सैंपल है एक स्पेनिश गाने का, उसका सैंपल है वो जो नाइक स्नेक आपने सुना। और थैंक यू सो मच। तो अभी अजान का वक्त है, इंशाल्लाह अजान के बाद आपसे मुलाकात होगी। जाना आपने ही नहीं, बेस्ट जगह पर हो यार, कोई कहने वाली बात है। स्टे का ट्यून है।

Ahmet Şahin Ulfat beni de yalla. साढ़े छह बजे क्लॉक का बैन दयाल विद लोचा उल्फत हो गया. उल्फत हो गए. यहाँ एक मैसेज आया, हेलो हेलो जी उस्मान भाई, क्या लें, मिल जाएगी स्टोरी, थोड़ा सा वेट करने का, छोड़े म्यूजिक.

बस सरदार फुल शाबाशी देगा। थैंक यू सो मच, आपने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया और कहानी के ऊपर इतने सारे मैसेज किए। मैं तो हवाला कबीर, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आज भाई साहब 47 पे। कुछ मैं खबर बता देता हूँ, तो एक बहुत बड़ी खबर है, कतर म्यूजियम्स में अनवील किया गया है पिंक कन्वर्टेबल बिग। एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा गया। इनफैक्ट इट इज अ बोल्ड स्टेटमेंट बाय इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट एरन वर्म। ये जो शोकेस किया गया है, ये प्लेस वेंडोम में मॉल में शोकेस किया जा रहा है, और जो स्कल्पचर्स हैं ये वाइब्रेंट पिंक लेक्योर कलर के हैं। इतना बारी बारी वर्ड है इसमें, बट इट इमीडिएटली ड्रॉज योर अटेंशन, एंड आप जब देखेंगे समझ में आएगा, बिकॉज एक और नमूना जो है वो पेश किया गया है। बहुत बहुत बड़ी बात है भाई। एंड इसके अलावा जो है स्पाइसजोन फाउंडेशन ने लॉन्च किया है एडिशन ऑफ रन द डोम। ये जितने लोग भागने के शौकीन हैं, कुछ लोग मुझे भी कहते हैं भागो भागो भागो, तो रन द डोम ये पहला एडिशन लॉन्च किया गया। एक रेस है जो कंबाइन करती है स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन को, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर सकती है, और ये 28-29 अगस्त को होगा। जो रेस है इट विल बी हेल्ड इनसाइड द स्पाई डोम, और ये दुनिया का, जिन्हें नहीं पता भी नए नए आए हैं, दुनिया का लार्जेस्ट इंडोर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स है। क्लेम है भाई, क्लेम, क्लियर कट क्लेम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इन द फाउंडेशंस ऑनगोइंग एफर्ट्स। और वो एफर्ट्स ये कहते हैं कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को लाया जाए। पार्टिसिपेंट जो होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उनको कंप्लीट करना होगा 4.8 किलोमीटर का ट्रैक, विच इज मेड बेसिकली इनसाइड द डोम, और क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट है, तो आपको ज्यादा मसला नहीं आएगा। इट इज आइडियल फॉर एंड्योरेंस एंड हाई परफॉर्मेंस रनिंग, ये अपने जहन में जरूर रखिएगा। इसके अलावा एक और जो बहुत ही मेजर अवार्ड है वो कतर की तरफ आया है। कतर टूरिज्म ने अनाउंस किया है कि जो हायर प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वीजा वगैरह निकाले जाते हैं, हैज अवार्डेड सिल्वर अवार्ड मिला है इन द टेक्निकल इनोवेशन ऑफ द एयर इन गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कैटेगरी। और ये जो अवार्ड्स हैं, ये है 2026 के स्टीवी अवार्ड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड एक्सलेंस। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, पता नहीं आप गवर्नमेंट के चीज़ों को अप्रिशिएट किया जा रहा है इंटरनेशनली, तो उससे कंट्री की इमेज कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है अपने आप से। दिस इज सच अ ह्यूज न्यूज़। और बाकी समर प्रोग्राम्स आर ऑलवेज रनिंग, सो अभी अगस्त के एंड तक तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उन पर नज़र रखिएगा, वो आपको कथा 2026 के शो में पता लगता भी रहेगा। फिलहाल टेम्परेचर खाली बता देता हूँ, तो तापमान जो है मान नहीं रहा है, मान के नहीं दे रहा है भाई। 37 डिग्री फॉर नाउ, मिनिमम 33 एंड मैक्सिमम टू 44-45। कोई किसी भी किस्म के बादल नुकता भर नजर आएंगे आसमान में, गर्मी लगातार रहेगी। कल 44% था, आज 48% ह्यूमिडिटी का लेवल है, गर्मी है और रहेगी शाम हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, वैसे भी आफ्टरनून तो होता ही, डायरेक्ट आफ्टरनून होता है, सुबह तो होती को नहीं भाई। जितने लोग सुबह सुबह काम पर निकलते हैं, सैल्यूट। बाकी 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। जो कहानी आज आपने सुनी है, वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग स्टोरीज दैट आई हैव एवर टोल्ड, तो अपने रिस्पॉन्सेज जरूर दीजिएगा इनकेस आप अभी भी देना चाहें। और कल कहानी भाई का ही शॉकिंग होने वाली है, इंटेंसिटी आपका भाई बढ़ाता चला जाएगा कहानियों की, बढ़ाता ही चला जाऊंगा, ताकि थर्सडे को जब आप कहानी सुने तो आपको लगे भाई आज कुछ भारी आने वाला है। मैन्यूपुलेशन गेम ब्रो, मैन्यूपुलेशन गेम। सो 666-22-107 नंबर है, और आप भी आ जाइए, मैसेज कर दीजिएगा। एक और मैसेज आया मेरे पास, लिखते हैं माशाल्लाह भाई, और वालेकुम अस्सलाम अबू मेसन साहब, कैसे हैं, सब बढ़िया चल रहा है भाई, जिंदगी एकदम टिप टॉप है कि नहीं है, मैसेज कर दिया करें आप, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ शो के बारे में। एक मैसेज है भाई, आपको भी मॉर्निंग शो में करना चाहिए, मॉर्निंग शो में करना चाहिए, मॉर्निंग शो बुलाया भाई, ये जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जो मॉर्निंग में मुझे बुलाते हैं आपको पता है मैं मॉर्निंग बंदा नहीं हूँ, बट आपकी मोहब्बत वो भी करना पड़ जाता है। और ये जो जब बोलना शुरू करते हैं ना लोग, तो फिर ये हो जाता है, इनका मैनिफेस्टेशन मुझसे भी कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं जितना भी मैनिफेस्टेशन कर लूँ, ये सुबह वाले जीत जाते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम भाई, कहानी भेज देना, सुन नहीं पाया, बिल्कुल भेजूंगा भाई। हाँ, तो बैक टू दोज सुबह वाले पीपल, आई डोंट नो कि वो कितने अभी आ रहे हैं नहीं आ रहे। एक भाई कह रहे हैं भाई बिल्कुल मत आना सुबह को मुझे खुद नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई समझ रहे हैं आप, मुझे खुद नहीं पता है, इट्स जस्ट दैट इन लोगों को शायद मुझसे कहीं गुना ज़्यादा पता है तो क्या बोला जाए। एनीवे 666-22-107 नंबर है, आ जाइएगा जो सुबह वाले सुबह बुला रहे हैं। मुझे लगता है आपसे डर है, इसी बात पे गाना हो जाए, मैंने कहा कहानी भेज देंगे, हाय हाय, अच्छा सोनू भाई, हाय सोनू भाई को हाय, और जो कहानी बोल रहे हैं भेज देंगे, टेंशन मत लो आप।

फिलहाल तो बढ़िया सा गाना भाई, बढ़िया सा हरियाणवी गाना, सीधा स्ट्रेट फ्रॉम हरियाणा, डाणा न्योली वाला जगाने मैं।

0: हाँ जी, अब सीधा कॉल की तरफ चलेंगे। कौन है? अस्सलाम वालेकुम।
1: सलाम, के हाल है कैप्टन साहब?
0: बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। आप सुनाए, क्या हाल है भाई के?
1: मारे भी बढ़िया भाई।
0: हाँ जी भाई, क्या क्या क्या चल रहा है अभी
1: भाई? सबसे पहले तो मना एक बात पूछनी थी।
0: हाँ जी,
1: आप दूरी जो लठा वो कड़ा थे बनवाया आपने?
0: नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। भाई बाकी कहानी कहानी सुनी, कुछ भी नहीं सुन पाया। नहीं
1: भाई, नहीं मैं ऐसे कबीर भाई झूठ नहीं बोलूंगा यार आपको। हाँ। अभी तकरीबन 5-7 मिनट पहले ही ट्यून इन किया, आप मैसेजेस रीड कर रहे थे ना। क्या यार कबीर भाई, आप तो बिल्कुल ही मासूम बन गए यार।
0: मैं मासूम बन गया?
1: 10 डिग्री से सीधा 0 पे आ गए यार। मैंने कहानी नहीं सुनी उसकी वजह से क्या?
0: नहीं नहीं भाई, क्यों? अरे ऐसी कोई बात थोड़ी भाई। अरे बिल्कुल
1: अभी आए हो ना भाई फॉर्म में अभी।
0: अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं यार, मैं सुन रहा था आपको, बहुत ध्यान से सुन रहा था, फोकस के साथ सुन रहा था।
1: जो आपकी आवाज है ना कबीर भाई
0: जी, भाई
1: वो माइनस डेसिबल्स में नहीं अच्छी लगती मेरे भाई।
0: अरे मेरा भाई, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार भाई। नहीं नहीं वो तो मॉड्यूलेशन भाई, मॉड्यूलेशन। और बताइए कैसा जा रहा है सब कुछ? बढ़िया बढ़िया, गर्मी में गर्मी भगाओ यार।
1: सब कुछ बढ़िया यार कबीर भाई। गर्मी का पता क्या सीन है यार? देखिए जिस हिसाब से कल दोपहर के बाद से ह्यूमिडिटी हो रखी है ना।
0: हाँ,
1: मैं तो यार सल्यूट करता हूँ जो बंदे आउटडोर काम करते हैं यार पूरा दिन कबीर भाई।
0: हाँ,
1: तो मैं क्या फील कर रहा था, जैसे हम लोग तो चलो 5-10 मिनट के लिए गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों की इतनी हालत बुरी हो जाती है। जो बाइक पे डिलीवरी करते हैं, आप सोचिए यार कबीर भाई, इतनी ह्यूमिडिटी प्लस ऊपर से जो गर्म हवा फेस पे लगती है, आके पूरी बॉडी पे लगती है यार। सल्यूट।

0: आते हैं, जिस हिसाब का वेदर है उनके लिए भाई नहीं काम करेगी कोई भी
1: नहीं इस वक्त भाई ये। अरे ये कोई ऐसी वैसी गर्मी थोड़ी भाई, ये तो शुक्र है कि उनका जो डिलीवरी टाइम है फिर भी थोड़ा सा आगे कर दिया गया है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आसानी है। पर दोपहर में सच में मुश्किल है भाई, सच में बहुत मुश्किल
0: भाई। कबीर भाई 6 बजे के बाद दिन पूरा निकल जाता है,
1: पूरा निकल जाता है।
0: आप घर से पैर पाओ तो रखो 6 से 10 का समय देखो आप कितना। हाँ। यार
1: नहीं नहीं सुबह सुबह का तो
0: भाई,
1: सुबह
0: यार
1: का
0: जो भी आउटडोर बंदे काम करते हैं ना,
1: हाँ
0: दिल से सल्यूट है यार कबीर भाई उनको। वो लोग इतनी कंट्रीब्यूशन अपनी डाल रहे हैं कतर की प्रोग्रेस में, अपनी फैमिली के लिए,
1: बेशक दिल से सल्यूट है। ये बात तो है, और ये मौसम बस 1.5 महीना और है, फिर इंशाल्लाह देखो थोड़ा सा ठीक हो जाए, थोड़ा बूंदा बांदी हो जाए, कुछ तो हो ही जाए भाई, चमत्कारी हो जाए।
0: नहीं बाकी कबीर भाई गर्मी के फायदे भी तो है ना यार।
1: हाँ हाँ
0: देखो हम लोगों ने अपना ब्लैंकेट है उसको 10 मिनट बाहर रखो, जर्म्स गायब उसमें से।
1: ये तो है।
0: और दूसरी बात
1: हाँ,
0: क्या,
1: हाँ
0: अपना वॉशरूम का डस्टबिन हो गया, किचन का डस्टबिन हो गया, उसको धो के भाई 10 मिनट रखो, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ना उसमें जर्म्स हो गए ना स्मेल होगी।
1: हाँ
0: गर्मी का देखा जाए कबीर भाई फेरे भी है ना पूरा।
1: क्या वकालत की है आपने गर्मी की, क्या वकालत करी है भाई, बढ़िया लॉ के स्टूडेंट लग रहे हो भाई, बढ़िया।
0: ना ना ना, और सबसे बड़ी बात क्या कबीर भाई यार, हाँ। कपड़े धो के सुखाओ, 10 मिनट ओके रिपोर्ट।
1: हाँ ये तो है, ये तो सूख, ये तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है, आम घरों की सबसे कीमती और सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि कैसे होगा, ये हो जाता है गर्मी में काम। लेकिन बाकी बड़ा दुखदाई है, आई रियली होप कि जल्दी से मौसम ठीक हो जाए और सुकून आ जाए लोगों को, बस गाबा भाई यही दुआ करते हैं।
0: बिल्कुल। और भाई आप बताओगे मेरे ते कड़ा ते बनवाई वो सोने पत्ते,
1: सोने पत्ते भाई।
0: आई वाह।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, कौन से पहाड़ी में रहते हैं गुरुजी आप? नहीं भाई बहुत प्रेम, और इस वीक बना रहे हैं प्लान इंशाल्लाह, तो बताया जाएगा। और फिर
0: हाँ बस कबीर भाई थोड़ा सा दिन पहले बता दें।
1: डन डन डन, पहले पहले पहले काफी पहले बताएंगे।
0: वो शाम की चाय वाला होगा ना?
1: हाँ जी भाई,
0: एक तो मेरी तरफ भी पेंडिंग है भाई आपकी।
1: डन है भाई।
0: हाँ देख लो अगर आप 1-2 दिन में हो सकते हो फ्री तो थोड़ा बैठ जाएंगे।
1: ठीक है
0: लगा ले।
1: डन हो गया भाई।
0: चलो बाकी मैं आपसे करूंगा टच।
1: ठीक है भाई, ख्याल रखिए अपना।
0: थैंक यू भाई, मजा आया आपके लिए बात।
1: बहुत प्यार भाई, बहुत प्यार भाई, टेक केयर, टेक केयर। तो गाबा जी के बाद एक और मैसेज आया है भाई, कबीर भाई आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो? जी भाई मैं ऑर्डर करता हूँ, अब्दुल करीम भाई काफी ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन। काफी एज इन क्या, किस चीज में पूछ रहे हैं? मैं चीज़ों से ज़्यादा कहीं छुटपुट जो शाम का होता है ना गेमिंग के टाइम पे मेरा, देखो ऑर्डरिंग वाला जो जो पीरियड रहता है वो वीकेंड पे रहता है, गेमिंग पे कुछ छुटपुटर खाने को मिल जाए तो अच्छा लगता है भाई। इसलिए वैसे अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, एक सवाल है कि क्या है, पहले रोज़ रोज़ कहानी कहाँ से लाते हो, ये सारी ओरिजिनल हैं या फिर आप जिस, मैं कुछ ऐड नहीं करता, जितनी कहानी मैं सुनाता हूँ भाई एकदम असली है, इनमें कुछ भी एडिशन नहीं करता। यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड सर्च फॉर देम एंड यू विल गेट द स्टोरी। और लाता कहाँ से हूँ, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं इसमें, बहुत सारे डिफरेंट पॉडकास्ट हैं इसमें, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं इसमें, एक पूरी किताब है मिसिंग 411, उसमें से भी मिलते हैं। तो एक एक सोर्स नहीं है, फिर सारे सोर्स से इकट्ठा करके कई सारी कहानियों की किताबें भी होती हैं। मतलब कि जैसे होता है ना रियल, एक तो फिक्शन कैटेगरी होती है, एक रियल कैटेगरी होती है, इसमें क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उनको फिर पढ़ता हूँ, तो उसमें सब कुछ मिल जाता है। यू गेट एवरीथिंग देयर, लाइक फ्रॉम रिपोर्ट्स टू उनके बयानात, वो क्या सोच रहे थे उस टाइम, क्या कर रहे थे, तो ये सब कुछ मिल जाता है भाई। तो एक सोर्स नहीं है, सारी सोर्सेज अवेलेबल होती हैं। सोनू भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड ये रिसर्च भाई शो के बाद सीधा शुरू हो जाती है, सो इट टेक्स टाइम। कुछ कहानियाँ आधे घंटे के अंदर मिल जाती हैं भाई, समटाइम्स यू जस्ट गेट इट, होता ना रखी हुई है कहानी हमने उठा ली, और समटाइम्स इट टेक्स आवर्स, मेहनत लगती है पर मज़ा बहुत आता है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो इट फील्स के चलो यार मेहनत का कुछ सफल कुछ अजर मिला है। वैसे कभी कभी आपका शो हमारी आईडी में जाना चाहिए, ऐसी बात आपको मुलाकात हो जाए। बिल्कुल मेरा भाई अब्दुल करीम भाई, और बहुत प्रेम आपको, बहुत लगातार जो है मैसेज है, आप याद भी करते हैं बस रीड कर रहे होते हैं। मैं कहानी भाई बुलेट पॉइंट्स बनाता हूँ, जैसे आज की जो कहानी थी तो मुझे सिर्फ नाम याद रखने थे और डेट्स याद रखनी थी, बाकी मैं कहानी इतनी मरतबा पढ़ चुका होता हूँ, इतनी मरतबा पढ़ चुका होता हूँ कि वो याद हो जाती है, फिर मुझे टाइमलाइन फॉलो करनी होती है तो बुलेट पॉइंट्स बनाता हूँ। तो मुझे पता है कि जैक है 1907 की कहानी है, उसकी ये 3 वाइफ्स हैं, उसका ये नाम है, दैट्स इट, एंड देन द होल स्टोरी फॉलोज अप। क्योंकि अगर मैं लिख के पढ़ूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये देख के पढ़ रहा है, समझ रहे हैं आप फौरन पकड़ लूँ मुझे कह रहे ये देख के पढ़ रहा है, फील खत्म हो जाएगी। मुझे कबीर भाई लैला मजनू का स्टोरी एक दिन सुनाओ। भाई देखो मैं एकदम रियल स्टोरी सुनाता हूँ, मेरे को लैला मजनू की कहानी बहुत ही वो फिक्स

0: इंटरनेशनल टाइप की लागे भाई, इसलिए तो हेड्स ऑफ ट्रिक। थैंक यू सो मच भाई मुबीन भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बर भर के प्यार आपको, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो उसके लिए बहुत बहुत प्यार। एक और सवाल है कि आप देख के नहीं पढ़ते, मुझे तो लगता था आप देख के नहीं पढ़ता भाई, अगर देख के पढ़ूंगा तो पकड़ लेंगे। एक चीज़ होती है रीडेबल साउंड कर जाना एंड यू विल गेट इट, क्या ये तो पता लग गया कहीं तो देख के पढ़ा है। तो आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ द स्टफ एंड देन बुलेट पॉइंट से रीड कर लेता हूँ। तो थैंक यू, दैट्स हाउ इट इज। कल की कहानी बताओ तैयार, मजे आ जाएंगे भाई आपको, कल भी बहुत मजा आएंगे। एम यू बंटा जसमाड़क बैड मुंडा
1: बंटा है,
0: अरे बंटा की पब्लिक
1: जसमानक साथ।

भाई सरदार जी बहुत खुश है, ठाकुर भी बहुत खुश है, बहुत कमाल का शो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी वजह से हुआ है तो बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। बर के एक मैसेज आया, भाई कह रहे हैं कि भाई ये सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं सर्वाइवल स्टोरी कब आएगी। भाई सर्वाइवल स्टोरी परसों आएगी इंशाल्लाह, परसों सर्वाइवल स्टोरी आएगी। एक भाई ने मैसेज किया है कि पानी के जहाज वाली स्टोरी, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, अगर कोई मुझे बहुत बढ़िया ऐसी स्टोरी मुझे जरूर सुनाऊंगा। बाकी कल बहुत जबरदस्त कहानी है, मैं अभी से भेज देता हूँ क्योंकि कल की कहानी मैंने ऑलरेडी तैयार कर ली, स्मार्ट बॉय। तो कल की कहानी बहुत कमाल की है, एंड इट इज इवन मोर शॉकिंग देन टुडे स्टोरी, आज से भी डबल शॉकिंग स्टोरी है कल की। तो मैं अभी से इनविटेशन दे रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, शाम को 5 बजे मिलेंगे। अभी आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं, मुझसे भी जुड़ सकते हैं, dohawalakabir.fm107 KABIR स्पेलिंग रहेगी। मीम चीम भेजते रहा करो, वहाँ से भी अपनी दोस्ती जो है वो जारी रहनी चाहिए।

दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं. मा सलामा.

स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ, इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम पॉडकास्ट हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वीडियो दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सुनिए कदर 26 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। देखो मुझे समझ भी नहीं आता मैं शो की शुरुआत कैसे करूं, ये बोलूं कि स्वागत है, वेलकम है आपका, मैं खैर मक्तम करता हूं, जो भी है आप ये फॉर्मल इंट्रो ले लीजिए मेरे हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, एंड इस शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है Qatar 2026। देखो शो का मकसद बड़ा सिंपल है, इस शो में बताया जाता है कि आप कहां कहां जा सकते हैं, कौन कौन से इवेंट्स कतर में हो रहे हैं, होने वाले, हो चुके हैं वाले में इसलिए बताता हूं ताकि एक आपको रियलाइजेशन हो कि अरे ये निकल गया मुझसे, अच्छा खासा हूँ मुझसे कह रहा था कल जाने के लिए मैं गया नहीं। एक तो ये थोड़ा गिल्ट ट्रिप देने के लिए, दूसरी चीज जो इवेंट चल रहे हैं वहां पे आप जा सकते हैं एज

0: और इसके अलावा 18 सितंबर है उस दिन भी है, 18 सितंबर 2026 और 23 अक्टूबर, तो मतलब हाँ सेम ही डे है, आई थॉट कि मैंने अलग डेट बता दी, डेट यही है, डोंट गेट कंफ्यूज. सो 18 सितंबर और 23 अक्टूबर को ही होगा शाम के 6 बजे से 8:30 बजे तक. जैसे मैंने कहा कोर्ट रूम ड्रामा, अब हमें बहुत यूनिक है और इसको मैंने एक बार इसका वीडियो देखा था एक जगह पे एंड आई वाज सो अमेज्ड टू सी इट. जहां पर थिएटर लाइव है, आप एक लाइव ऑडियंस हैं और आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं. हार्डली ऐसा होता है कि आप किसी प्ले का या किसी इवेंट का ऐसा हिस्सा हो पाते हैं जहां पर जो चल रहा है, जो एंटरटेनमेंट है, आप उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें. दिस इज योर चांस एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा एंड आई थिंक यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. अगर आपने इससे पहले ये नहीं देखा कैसे होता है, इसके क्या रूल्स हैं, अब बड़ा सिंपल है, यू विल गेट अ चांस टू वोट और आपके सामने सब कुछ बताया जाएगा बाकायदा रेशन के तौर पे और आपके वोट डिसाइड करेंगे कि कहानी किस तरफ जाएगी. सो बेसिकली कहानी जो नैरेटिव है वो उसके ऑप्शन 2-3 तो होंगे, कम से कम 3 तक तो होते ही हैं. तीनों में से किस तरफ कहानी जाएगी ये डिसाइड करेगी पब्लिक. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई, ये मत छोड़ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ. एंड इफ यू हैवंट सीन इट, एक बार आप कोर्ट रूम ड्रामा टाइप कीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस इसके ऑनलाइन मौजूद है एंड देन यू विल बी लाइक कि हाँ यहाँ तो जाना ही जाना है. बाकी मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला जब ये बिल्कुल करीब आ जाएगा इवेंट, जस्ट अ रिमाइंडर क्योंकि मैं इसका हिस्सा होने वाला हूँ डेफिनेटली, बाकायदा दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन.
1: आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
0: अगला इवेंट बेहद खास जो बस खत्म होने वाला है, यह दोहा शॉपिंग सीजन फेयर 2026 जो शोकेस कर रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड दोस प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम मोर देन 20 कंट्रीज जो डिस्प्ले पर है सेल के लिए है और विजिटर्स जो आएंगे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं वैरायटी ऑफ आइटम्स. इसमें परफ्यूम शामिल हैं, एक्सेसरीज हैं, होम डेकोर है, शूज हैं, कारपेट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, अबायाज हैं और बहुत सारे फैमिली एसेंशियल्स आप यहाँ से पिकअप कर सकते हैं. तो ये अभी एवरीडे के लिए रखा गया है 10 से 10, मतलब सुबह के 10 से रात के 10 और जुमे के दिन दर के 3 बजे से रात के 10 बजे तक. लोकेशन है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर. 23 जुलाई से सिलसिला शुरू हुआ है और 5 अगस्त को पूरा हो जाएगा, तो कुछ दिन बचे नहीं है आपके पास, अभी फायदा उठा लीजिए अभी के अभी. अगर अभी सोच के जा रहे हैं भीड़ होगी अभी जो कभी जाइए, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप ये मान के चले अब तो सारा सामान अच्छा अच्छा निकल जाता है, अभी भी बहुत अच्छा अच्छा सामान पड़ा हुआ है आपके इंतजार में. भाई बहुत चालाक होते हैं ये वहां पे जो लोग होते हैं, वो अच्छा सा सामान लास्ट के लिए रोक देते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आएगा बिल्कुल आखिरी के दिनों में और बोलेगा कुछ अच्छा माल बचा नहीं, तो फायदा उठाइए. और 5 अगस्त तक ये इवेंट है, सुबह के 10 से रात के 10 और जुमे के दिन है 3 बजे से दोपहर के शुरू होगा और ये होगा रात के 10 बजे तक. सो डोंट थिंक अबाउट इट, ये दूसरा मौका नहीं है यहाँ सोचने का, ये पहले ही मौके पे चौका मारने वाला इवेंट है भाई, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठा लीजिए आप एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. ये दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में है एंड एंट्री बहुत इजी है, यहाँ पे आपको बाहर एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 2 मिनट का भी काम नहीं है, वो हो जाएगा. ठीक है भाई आगे बढ़े चलो.
1: Qatar 2026.
0: अब जरा आपको लेके चलते हैं सूक वाकिफ में. तो अगर आप इस जगह से वाकिफ, तो यहाँ पर एक ईस्टर्न स्क्वायर एरिया है जहां पर एक बड़ा ही खास इवेंट है जहां पर आप कतर की रिच हेरिटेज और डिस्कवर कर सकते हैं लोकल डेट्स को. खजूर मेरे दोस्त, खजूर जो डायरेक्टली लोकली जो ग्रोन खजूर है वो डायरेक्टली लोकल फार्मर्स के आप तक पहुंचाए जाएंगे इस फेस्टिवल के जरिए. इतनी बड़ी डिमांड है टन के हिसाब से भाई, टनों के हिसाब से यहां पहुंचेंगे because they want to celebrate the quality of national produce aur country ki jo agricultural legacy hai wo har saal at least 2x 3x badhti ja rahi hai which is impressive and it is open to all. to 10 august tak hai, 25 ko shuru ho gaya tha event 25 july ko and 10 august tak ye event rahega, to sham ke 4 baje se raat ke 10 baje tak koi ticket ki koi zarurat nahi hai, koi ticket nahi lagega, it's open to all, it's free. yahan pe na sirf local produced khajoor hain balki iske alawa aapko khajoor ke baaki items bhi nazar aayenge. mera favorite jo hai wo khajoor shake hai bhai, kya badhiya banta hai, क्या बढ़िया बनता है. और खजूर का मैंने यहाँ पे एक जैम देखा था जो बड़ा कमाल का है. और बातों में एक चीज और बता देता हूँ जो गले के लिए अच्छी रहती है. यहाँ पर एक चीज है जो बड़ी देसी नुस्खा होता है वो घर में लोग ट्राई करते हैं. मैं बड़ा खुश हुआ था पिछले फेस्टिवल जब मैं गया एंड आई सॉ दैट, तो वो लोग क्या करते हैं जो खजूर के बीज होते हैं ना उसको वो लोग निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, उसके बाद उन्हें फेंकते नहीं है. तो क्या करते हैं उसे पहले धूप में सुखा देते हैं.

बढ़िया करके, और फिर उसका चूरा बना देते हैं, और चूरा करने के बाद उसे दूध में मिला के पी। भाई इतनी मुफीद चीज है, समझ रहे, खजूर का एक एक हिस्सा काम का है। सुभानअल्लाह, बहुत वैल्यू होल्ड रखता है खजूर। और ये जो फेस्टिवल है लोकल ट्रेड फेस्टिवल, इट्स गोइंग टू टेक प्लेस, तो इसका पूरा फायदा उठाइए। इट्स नॉट गोइंग टू टेक प्लेस, इट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ एज वी स्पीक। तो 25 जुलाई से शुरू हो गया है, अभी भी टाइम है 10 अगस्त तक का, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक, ईस्टर्न स्क्वायर सुकवा के। ऊपर से कुछ नहीं लगेगा पैसा, इट्स फ्री ओपन टू ऑल। अंदर जाके आप कुछ खरीदेंगे तो बात दूसरी, मगर एंट्री के लिए यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एट ऑल। ठीक है जी, बोलिए आगे बढ़े, चलो 2026। अब अगले इवेंट की तरफ बढ़ूं तो आपको ले चलता हूं लुसेल इंटरनेशनल सर्किट। क्या है, क्या शानदार सर्किट है लुसेल इंटरनेशनल सर्किट, मैंने बहुत करीब से देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला देखने का, एंड इट इज जस्ट अमेजिंग। क्या इंटरनेशनल लेवल का बना है, बाहर एक बाहर से एक इटालियन आए थे, लास्ट टाइम जब F1 थी तो वी वर जस्ट टॉकिंग टू दिस गाय, वो कह रहे थे भाई इतना तो हमारी तरफ नहीं है, ये इतनी साफ सफाई, इतना बढ़िया ट्रैक शरक बना के रखते हैं लोग, हम तो ऐसे प्राउड फील कर रहे थे, हम यही का पासपोर्ट है हमारे पास। बड़ी खुशी मिलती है, जस्ट मेक यू फील प्राउड, दैट्स द स्पिरिट ऑफ कतर। सो लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में 23 जनवरी, मतलब बस अब तो साल खत्म ही हो गया, ठीक है आधा उनका बोलने का हक नहीं, 23 जनवरी 2027, ये पूरे दिन, इनफैक्ट रात के 12 बजे तक एक इवेंट होने जा रहा है जो एक ग्रैंड ऑटो शो जो लुसेल इंटरनेशनल सर्किट पे पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा। एंड टिकट्स इसके अवेलेबल हैं, यू कैन परचेज देम ऑनलाइन, अभी मतलब हो जाएंगे अवेलेबल, इट्स नॉट अवेलेबल टू बाय राइट नाउ, लेकिन जल्दी हो जाएंगे। ओके, तो और कुछ पार्ट्स हैं इनके लिए कोई जरूरत नहीं है, सो वो पब्लिक एरियाज जो होंगे वो फ्री रहेंगे। सो ये ग्रैंड ऑटो शो जो है लुसेल इंटरनेशनल सर्किट पे होगा, एक अलग किस्म का, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस। और बता दूं आपको मैं, ये वाला जो इवेंट है द ग्रैंड ऑटो शो, ये पहली मर्तबा होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम कतर का जो लीडिंग कार इवेंट है, इट जस्ट मूव्स बियॉन्ड द ट्रेडिशनल इंडोर एग्जीबिशन, और ये सेट करेगा, दिखाएगा दैट इट इज बिल्ट फॉर स्पीड साउंड एंड स्पेक्टिकल। देखिए एड वाली बेस आवाज में बोला है मैंने, स्पीड साउंड स्पेक्टिकल, और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे ओपन एयर फेस्टिवल, जहां पर आपको एक्सेप्शनल कार देखेंगे, आप बोलो अरे यो या गाड़ी गाड़ी तरह भाई चलाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, इसमें जो है आपको लाइव एक्शंस भी देखने को मिलेंगे, एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशंस होंगे कुछ गाड़ियों की, इमर्सिव ब्रांड एक्सपीरियंस मिलेगा, और अनफॉरगेटेबल ऑटोमोटिव मोमेंट्स। इसी के साथ जो गाड़ियां जो विंटेज हैं वो तो दिखेंगे, पर उनके साथ साथ सुपर कार्स, हाइपर कार्स, मोटर स्पोर्ट्स आइकॉन सब वहां पर मौजूद रहेंगे, और जो काफी रेयर कलेक्टर कार्स हैं वो भी वहां पे मिलेंगे आपको, और जो लेटेस्ट मॉडल्स आ चुके हैं या कंपनीज लॉन्च करने वाली हैं वो भी आपको इस इवेंट में मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। तो कतर का जो ये ग्रैंड ऑटो शो है, ये जब भी आता है तो कुछ ना कुछ नया लेके आता है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर एक्चुअली एक्सटेंडिंग देयर ऑडियंस एंड देयर रीच, एंड इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू एवर हैड। सो ये बेस्ट ऑटोमोटिव कल्चर के एक्सपीरियंस करने के लिए, इफ यू आर अ कार एंथुजियास्ट और इफ यू जस्ट वॉन्ट टू हैंग आउट मैन, तो पहुंचिएगा जरूर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट, हाउ डू आई पुट इट इन वर्ड्स, वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक रेसिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि यहां पर आपको वो लोग भी मिलेंगे जो लेजेंड्स हैं इस फील्ड में, भाई लेजेंडरी लोग हैं, कुछ बड़े बड़े रेसर्स हैं, कुछ बहुत शानदार रहे जॉकीज हैं और काफी सालों से इस चीज के लिए, एंड दे गॉट अ चांस, दे हैव दिस चांस टू शोकेस देयर टैलेंट एंड देयर कार्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग इवेंट। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, कहीं और चलते हैं। चलिए आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इवेंट हो चुका है, आप नहीं जा पाए, सैड। ये इवेंट हुआ ओएसिस स्टेज मॉल ऑफ कतर में, 23 जुलाई को शुरू हुआ, 1 अगस्त को अपने इख्तिताम पे पहुंचा, शाम को 5:30 बजे से 9 बजे तक। इसमें भी कोई टिकट्स नहीं थे, अब जो लोग चले गए उन्होंने मौज काट लिए, और यहां पर था मॉल ऑफ कतर में, बीट द हीट एंड ट्रांसपोर्ट योर फैमिली इन टू द हार्ट ऑफ अ वाइब्रेंट मिस्ट रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे था इनटू द जंगल, जो एक स्पेक्टेक्युलर है, फैमिली फ्रेंडली लाइव एनवायरनमेंट सेट किया गया था, लोगों ने एक्सपीरियंस किया और इस स्टेज को एक नए तरीके से, और जब तक इवेंट रहा है पीपल वर मेस्मराइज्ड, क्या लश वर्ल्ड क्रिएट किया इन लोगों ने, और जिस तरीके से उन्होंने नेचर को और फैंटेसी को एक साथ मिलाया ना, मुझे लगा था मैं कोई गेमिंग

की दुनिया अपनी नजरों के सामने देख रहा हूँ और ओएसिस स्टेज का पूरा पूरा फायदा उठाया भाई। लार्जर देन लाइफ जंगल लाइफ कैरेक्टर्स दिखाए गए, डैजलिंग कलरफुल यूनिफॉर्म सीन, थिएट्रिकल पपेट्री वहां पर हुई, डायनेमिक डांस दिखाया गया एंड नॉट जस्ट दैट, जो सर्कस से इंस्पायर्ड एक्ट्स होते हैं, नॉट एक्चुअली अ सर्कस बट एक्ट्स विच वर इंस्पायर्ड और आई वुड से हाइब्रिड, वो वहां पर इवेंट्स नजर आए और ऑडियंस ऑफ ऑल एजेस वर प्रेजेंट देयर। सो उसके फोटोज आप मॉल ऑफ कतर के पेज पे देख सकते हैं एंड जो इंटरेक्टिविटी होती है उसमें एक बड़ी जरूरी चीज होती है जो आपको बांधे रखती है, वो होती है स्टोरी टेलिंग, जो मैं आपको सुनाता हूँ तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो स्टोरी टेलिंग भी है साथ में इंटरेक्टिविटी भी है और एक मकसद था इनका जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ है एंड दैट इज टू मेक योर समर्स अनफॉरगेटेबल। इनके हिसाब चलते फिरते पहुंच गए कभी मॉल ऑफ कतर एंड यू हैव सीन दिस तो अपनी यादें जरूर शेयर कीजिएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि FM107 कतर को टैग कर दिया करें जब भी आप ऐसे इवेंट्स को देखें एंड जस्ट लेट अस नो दैट यू वर देयर। हाजिरी बड़ी जरूरी है इवेंट्स भाई। इंडिया जाके, पाकिस्तान जाके, बांग्लादेश, नेपाल जाके बताना होता ना भाई वहां पे तो कतर में ऐसे इवेंट होते हैं भाई क्या बताऊं तो उसके लिए भी इवेंट्स का हिस्सा जरूर बना करें। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर अमेजिंग इवेंट 2026। अगला जो है भाई ये है बहुत भारी भरकम इवेंट, ये है बहुत भारी बहुत वेटेज वाला इवेंट है। मैं नाम बोलूंगा आप समझ जाएंगे इसका वेट इतना ज्यादा क्यों है। दिस इज दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ये पूरे रीजन का ना, सब कतर का पूरे रीजन का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस और लग्जरियस इवेंट है। यहाँ पर शोकेस की जाती है ज्वेलरी और वॉचेस कलेक्शंस को एंड इंटरनेशनली रिनाउंड और लोकल ब्रांड्स इसमें हिस्सा लेते हैं सारे के सारे अंडर वन रूफ। और इसी के साथ जो डिजाइनर्स होते हैं, अपकमिंग डिजाइनर्स, हाई एंड डिजाइनर्स, वर्ल्ड क्लास वॉचमेकर्स और ज्वेलरी एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। सो टेल यू एंड गिव यू एन इनसाइट कि लग्जरी आखिर होती क्या है। ये ऐसी चिड़िया है जिसे उड़ाने के लिए सपने चाहिए और फिर सपनों से बनते हैं वो रोकड़ा पैसा। मगर मीनवाइल आप हैरान होना चाहते हैं कि लग्जरी कहते किसे हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी डेफिनेशन की एक एक वर्ड को देखने का मौका मिलेगा। बिकॉज ये इवेंट भाई बहुत बढ़िया इवेंट होता है, बहुत बढ़िया। इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एवर, प्लीज बी अ पार्ट ऑफ इट दिस राउंड। सो दोहा ज्वेलरी एंड वॉच एग्जीबिशन जो है वो वैसे भी, जैसे मैंने कहा, इट्स अ की इवेंट ऑन द ग्लोबल लग्जरी कैलेंडर। यहाँ पर ये लोग जो ब्लेंड ऑफ क्रिएटिविटी दिखाते हैं इनोवेशन के साथ क्राफ्टमैनशिप होती है, क्योंकि लग्जरी को लोग समझते हैं अरे मशीन बनाई हुई चीज, बट जो भाई जो वॉच मेकर्स यहाँ पे बैठते हैं, हैव यू सीन दोज वॉचेस, वो जो हैंडीक्राफ्ट वॉचेस होती हैं और ऊपर से लग्जरी, कमाल की, वन ऑफ अ काइंड इवेंट है। और एग्जीबिशन एक तरीके का प्लेटफॉर्म भी है जो ब्रांड्स को मौका देता है कि अपने लेटेस्ट क्रिएशंस को पब्लिक तक पहुंचा सके। सो दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन ये होगा 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक इसी साल, तो 28th of September टिल 3rd of October 2026 एंड इसको वीकडेज में आप विटनेस कर सकते हैं 12 बजे से 10 बजे तक। सो बेसिकली दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे तक और फ्राइडेज की बात की जाए तो दोपहर के 3 बजे से 10 बजे तक ये इसकी टाइमिंग्स रहेंगी, तो आप उसके हिसाब से जो है मैनेज कर लीजिएगा। बट इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट, इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ एनी लग्जरियस इवेंट दैट हैपेंड इन कतर एवर, दिस इज योर चांस टू फील समथिंग डिफरेंट। तो वाइब है भाई, वाइब है भाई, वाइब है वाली चीज, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। अगला जो इवेंट है इसके लिए मैं आपको फेवरेट जगह ले चलता हूँ, ये मेरी फेवरेट जगह है पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में 2022 में मैं यहाँ पे रहा हूँ, ये मेरा दूसरा घर बन गया था, मुझे बेहद प्यार है, मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ इस जगह को लेकर। और ये जगह है कतारा, आई एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस। ठंड में जाओ, गर्मी में जाओ, भाई सब वाइब सेम रहती है, बहुत ही बढ़िया जगह है। और इस बार कतारा इज इन्वाइटिंग यू एंड मी टू जॉइन द हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट समर वर्कशॉप 2026। इसमें इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है, काफी इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट आप खुद इन आर्ट फॉर्म्स को सीख सकते हैं, वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं वो कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल क्राफ्ट। ना सिर्फ क्राफ्ट सीखने का मौका मिलेगा बल्कि उसका इंसेप्शन कहाँ से हुआ, वो आज कैसा है, क्योंकि कुछ ऐसे क्राफ्ट होते हैं जो मॉडर्नाइजेशन के बाद अपने रूट को नहीं छोड़ते बट दे जस्ट डिवेलप देमसेल्व्स थ्रू द डस्ट ऑफ टाइम एंड दैट्स हाउ इट इज। कतर ने भी अपने आप को वैसे ही शेप अप किया है, कतर अपनी हेरिटेज को भी पकड़े हुए है और मॉडर्न जमाने के साथ भी, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट बैलेंस आउट देयर। और ये वर्कशॉप, ये इवेंट उसको बेशक दर्शाता है। सो कतर

में जो कतारा है, those who are new, अगर आप भी एक्सपीरियंस करना है, दिस विल बी समथिंग डिफरेंट टू लर्न कतर एंड यहाँ की क्राफ्टमैनशिप. तो ये जो इवेंट होगा ये 9 जुलाई से 4 अगस्त तक रखा गया है, तो अभी बस खत्म ही

0: आप फॉलो कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा 9 जुलाई से 4 अगस्त 10 से 12 दोपहर कतारा में ये इवेंट है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स समर वर्कशॉप, पूरा नाम हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स समर वर्कशॉप 2026। इफ यू हैवंट बीन अ पार्ट ऑफ इट, बी अ पार्ट ऑफ दिस नाउ। देखो पेपर की याद आ रही है, ये सब आपके लिए डिटेल लिख के ले जाता हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, अपने लिए मेहनत कीजिए भाई, घूमने फिरने में सोचने का ना। सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, आप इनमें से किसी भी बताए इवेंट में जाएं और आपको याद आए कि हाँ शायद कबीर ने बताया था, सो 666-2207 नंबर है, 666-2107। बी अ पार्ट ऑफ आर सोशल मीडिया फैमिली एज वेल, आपके बिना सब कुछ सुना सुना लगे, तो वहां पे हमें टैग भी कर दिया करें आपकी स्टोरीज पे या आपके पोस्ट पे, एंड डू लेट अस नो इफ यू हैव एंजॉयड एनी ऑफ द इवेंट्स, या आप किसी इवेंट में गए एंड हमसे छूट गया तो वो भी हमें बड़ा जरूर। 666-2207 इज द नंबर। एंड इसी के साथ हमें टैग करने के अलावा मैं फिर से आपको बता दूं कि आप स्टेकेशंस का ही सकते हैं कतर में, अक्रॉस कतर, ना सिर्फ खाने पीने के लिहाज से, मगर जो बूफे सिस्टम है इस बार अलग तरीके से ओपन हो जाता है। समर्स में ब्रेकफास्ट के लोग पहुंचते हैं एंड अलग अलग जगहों पर उन्हें अलग अलग किस्म की जो है पकवान खाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये ऑफर्स के साथ होते हैं। सो डोंट जस्ट शाय अवे कि यार मैं ऑफर देखूंगा क्या आप कहीं भी खा लेते हैं, नहीं, ये एक्सपीरियंस है। यहाँ पे सिर्फ खाने वाला सिस्टम नहीं है कि बस मैं अब खाने के लिए जा रहा हूँ, नहीं, दिस इज एन एक्सपीरियंस विच यू शुड गिव टू योर फैमिली, योर फ्रेंड, इकट्ठे होके जाओ, क्या टेंशन है, फैमिली नहीं है, आप बेस्ट रह रहे हैं, कोई गल नहीं, आप दोस्तों के साथ जाइए, ये आप कभी भी कर सकते हैं। देखो ठंड आ जाएगी ना, फिर हिम्मत नहीं पड़ने वाली, अभी गर्मी में क्या है, थोड़ा निकले पूल वूल में कूदे, मस्त, मैं पिक्चर पेंट कर रहा हूँ आपके आगे, मस्त पूल वूल में कूदे, ठंडे ठंडे बने बाहर निकले, बढ़िया एकदम खींच के नींद ली, उसके बाद खाया पिया, मौज किया, तो ये करने का मौका तो अपने आप को देना पड़ेगा। This is something you should not miss out on. So be a part of the staycation culture which is present in Qatar. This is very, very integral part of the culture as well. Now, it has become a part of the culture, I should say. So, ये इवेंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं ये तो है ही, बाकी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और इस दौरान बारिश वारिश हो चुकी है, बारिश वारिश के दौरान अगर बूंदाबांदी भी हुई है और आप किसी इवेंट का हिस्सा बने हैं, तो भैया हमें बता दिया करो, देखो हम जो हैं ये रिकॉर्डेड शो आपके लेकर आते हैं ताकि हम इकट्ठा एक साथ आपको सारे इवेंट्स बता दें, तो इसका हिस्सा जरूर जरूर बने। एंड इसी के साथ जो है एक और वाटर पार्क था, मुझे एक सेकंड ढूंढने दो, हाँ ये मेरिल वाटर पार्क जो है ये भी खुला रहेगा, तो यहाँ पे भी आप टिकट जीत सकते हैं, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इवेंट। एंड काफी सारे बहुत सारे फोरम्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, बट दे आर लेटर ऑन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर या फिर स्टार्ट ऑफ 2027। सो उनके बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, जैसे मैंने पिछली बार बताया हैंस जिमर भी परफॉर्म करने वाले हैं रियली सून इन नवंबर होपफुली, बिकॉज पिछली बार तो हम हिस्सा हो नहीं पाए थे, आई थिंक पिछली बार आए थे नहीं आए थे, आई डोंट रियली रिमेंबर, बट एक हवा आई थी उनकी कि हैंस जिमर आने वाले हैं, इफ ही इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो आप उसके लिए भी तैयार हैं। एंड द लास्ट इवेंट विच आई एम गोना टॉक अबाउट इज मैक्स अमीनी जो लाइव परफॉर्म करने वाले हैं दोहा में, अभी इसकी डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, बट आपके सामने बार बार पोस्ट आता रहेगा दैट मैक्स अमीनी इज लाइव विल बी लाइव इन कतर, तो ना टिकट्स के बारे में बताया ना ही अभी डेट्स आई हैं, बट दोहा इज ऑल सेट टू विटनेस द नाइट ऑफ लाफ्टर, क्योंकि कॉमेडियन मैक्स अमीनी ने अपनी जगह बनाई है स्पेशली अमंग द गल्फ रीजंस, सो जस्ट बी रेडी, ह्यूमर और स्टोरी टेलिंग का ये मिक्सचर भी थी। एंड ऑन दैट नोट काफी कुछ बता चुका हूँ, काफी कुछ आप जानते रहेंगे, काफी कुछ आप मुझे बताते रहेगा, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर एंड दिस इज दोहा वाला कभी साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद जरूरी है। Assalam.
1: Qatar 2026 FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रब्ता करें हमारी कदम मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से, कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: FM 107 अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारे कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: वजारत दाखिला के इदारा तालुकात आम के तआवुन से रेडियो कतर।

پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

0: ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारी मदद तक पहुंच सके। आइए यही सवाल अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से करते हैं, सैयद मुलाज़िम अव्वल अब्दुल्ला मोहम्मद अल-कुथैरी ضابط خدمة الطوارئ 999 في إدارة العمليات المركزية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. نجدد الترحيب بكم في برنامج الشرطة والعوام، وسؤالنا التالي هو بخصوص يعني رقم 999. الناس يعني كثيرا ما يتواصل، بس هو ما يعرف كيف يؤدي الغرض، كيف يبلغ الموضوع. فهناك أكيد يعني طرق صحيحة، طرق مؤثرة للتعامل أثناء المكالمة، فما أهم النصائح اللي تريدون أن توجهونها للجمهور؟
1: النصائح اللي نبي نوجهها للجمهور هو ضمان سرعة وصول الجهات المختصة، أن يكون البلاغ واضح، المحافظة أول شيء على الشخص أنه يحافظ على الهدوء وعدم التوتر أثناء المكالمة
0: عشان يبلغ الفكرة بشكل
1: عشان
0: أسرع
1: بشكل أسرع وأوضح
0: أوضح هذه النقطة مهمة،
1: وأيضا بعد أنه يحدد الموقع بشكل دقيق، أنه يكون يعرف العنوان الوطني، والعنوان الوطني من ثلاث عناصر يتكون: اسم المنطقة واسم الشارع واسم المنزل.
0: هاي العناوين الزرقاء اللي موجودة
1: يعني. اي هذه العناوين الزرقاء
0: مع كل المبنى.
1: اي نعم
0: صحيح. فهذه
1: هذه يساعد على سرعة الوصول الجهات المختصة للموقع.
0: جميل جميل.
1: تقديم معلومات واضحة مختصرة عن طبيعة البلاغ. وايضا الاستماع جيدا الى اسئلة حين يسأل الموظف موظف 999 على بعض الأسئلة، أن يجاوب عليها بدقة، تكون المعلومات تساعد في سرعة اتخاذ القرار
0: صحيح
1: أو الإجراءات المناسبة. وأيضا الثقة بأن فرقة الطوارئ تعمل على مدار الساعة للاستجابات مثل هذه البلاغات، تقديم المساعدة
0: حلو
1: في هذه البلاغات.
0: جميل واضحة، جزاكم الله خير. سامعين الكرام، جسكي همارة مهمان فاست لفتننت عبد الله محمد الكثيري، जिनका ताल्लुक सेंट्रल ऑपरेशन डायरेक्टरेट या डिपार्टमेंट से है, और उन्होंने हमें इस सिलसिले में वजाहत पेश की कि जब हम 999999 पर कॉल करते हैं तो हमें दरअसल किस तरह बात करनी चाहिए, क्या इस मामले को कैसे सही से निभाना चाहिए। तो इस सिलसिले में उन्हें हमें बताया कि यानी जिस अंदाज से करेंगे वो इमदादी टीमों की जो रफ्तार और मौसर कार्रवाई पर बराह रास्त असरअंदाज होता है, तो इस वजह से किसी भी इमरजेंसी कॉल के लिए ये सबसे बड़ी अहम बात होती है कि घबराने के बजाय अपने आसाब पर नर्व्स पर काबू रखा जाए। क्योंकि जब इंसान परेशान हो जाता है तो क्या होता है कि वो बाज़ ना औक़ात ना अपनी बातों को सही से पहुंचा पाता है, ना दूसरा जो है ना ऑपरेटर जो है वो जो पूछ रहा है आपको उस जो सवालात हैं वो सही से समझ पा रहा होता है। तो एक कम्युनिकेशन वहाँ पर एक मिसकम्युनिकेशन का मामला आ जाता है, तो इस वजह से अपने आप को कूल रखना चाहिए। तो इसके बाद उन्होंने ये बताया कि सबसे अहम चीज़ है लोकेशन, लोकेशन की तैनात के हवाले से वो जो ट्रायंगल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है कतर के जो नेशनल आइडेंटिटी के हवाले से आपकी बिल्डिंग वगैरह जहाँ पर भी हैं विला वगैरह वहाँ पर ऊपर आपको ऐसे तीन जो अंसर पर मुश्तमिल उनवान वतनी आपको मिल जाएंगे, इसमें जिसमें एरिया नंबर, रोड नंबर और बिल्डिंग नंबर इस तरह की जो चीज़ बयानात होते हैं तो उसको आप ज़रूर अपने पास रखें, या फिर जब आप कॉल करते हैं इमरजेंसी नंबर पर आप उन्हें ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाएँ। रहना जो मुतालिका जो फरीक हैं वो जल्द अज़ जल्द आप तक पहुँच सकें। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल वाज़े और मुख्तसर अंदाज में हादसा जो भी है इसकी वजाहत आप पेश करें, मज़ीद आप उनके सवालात को सही से सुने और बिल्कुल बड़े मुख्तसर अंदाज में उनका जवाब दें वाज़े दो टोक अंदाज में, ताकि जो है ना जल्द अज़ जल्द वो कोई कार्रवाई कर सकें। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि एतमाद, ये भी बड़ी बात है कि

0: countdown for liftoff.
1: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ हो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो शो जहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया की उन इंटरेस्टिंग लेकिन साथ साथ फैसिनेटिंग राजों को जो नेचर ने हमसे छुपाए हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं

वो हमसे आंख मिचोली खेल रहे हैं। हमारा टॉपिक लिटरल सेंस में हिला देने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उन पौधों की जो कि मूव करते हैं। जी बिल्कुल साथियों, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं बल्कि असल जिंदगी का बोटैनिकल एडवेंचर है। कभी आपने ये सोचा है कि एक पौधा आपके टच करने पर हिल जाए, या कोई ग्रीन लीफ अपने शिकार को ट्रैप के खा जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई डायनासोर या कोई हंटर हो। और कुछ पौधे तो एक्टिंग के उस्ताद भी निकले हैं भाई, बिल्कुल बॉलीवुड के मिमिक्री स्टार्स की तरह। साथियों, नेचर के इस शो में आज हम जानेंगे 3 सुपरस्टार्स के बारे में, यानी सेंसिटिव प्लांट्स जो टचने पर फौरन फोल्ड हो जाते हैं। यूं समझें कि आपके टच करने पे ऐसे जैसे शर्मा गए हों। कार्निवोरस प्लांट्स, जिन्हें फास्ट फूड का नहीं मूविंग फूड्स का शौक है, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि कह रहे हों भाई हमारा तो बग एपिटाइट है। और उसी के साथ साथ तीसरे नंबर पर है हमारे पास जानने को मिमिक्री इन नेचर, जहां पौधे अपने आप को दूसरे प्लांट्स, पत्तों या एनवायरनमेंट जैसा बना लेते हैं ताकि प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर सकें। वाह भाई, ये भी क्या मजे की एक्टिंग है। जरा सोच के देखिए साथियों, हम ह्यूमंस अपने फिटनेस गोल के लिए मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये पौधे तो बिना जिम जाए ही, ट्रेडमिल किए ही अपने मूव से दुनिया को अमेज देते हैं। तो तैयार हो जाइए भाई एक ऐसे ग्रीन एडवेंचर के लिए, जहां हर पत्ता एक मिस्ट्री है, हर फ्लावर एक ट्रिक और हर मूवमेंट एक स्टोरी कहती है। आज हम खोलने जा रहे हैं नेचर के मूविंग मिरेकल चैप्टर, वो भी पौधों से रिलेटेड, जहां पौधे भी इंसानों की तरह रिएक्शन, एक्शन और इमोशन दिखाते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं ये बोटैनिकल सफर, जहां सिर्फ ग्रो नहीं करते, परफॉर्म भी करते हैं भाई। और हम इनके लिए कह सकते हैं लाइट्स, कैमरा, क्लोरोफिल। साथियों, कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप किसी पौधे को टच करें और वो एक आपके टच पर रिएक्ट कर जाए, बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे नेचर ने अपने एक्टर्स रेडी कर लिए हों भाई। और उनमें से सबसे ज्यादा ड्रामेटिक रोल निभाता है मिमोसा पुडिका, जिसे हम प्यार से लाजवंती भी कहते हैं, या कई लोग इसे टच मी नॉट के नाम से भी जानते हैं। नाम से ये काफी पोएटिक है ना, शर्मसा, नाजुक सा, और ऐसा लगता है जैसे दिल से बहुत ही इमोशनल हो। साथियों, टच मी नॉट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पौधा है, जो असल में साउथ अमेरिका से ताल्लुक रखता है, लेकिन अब दुनिया के कई हिस्सों में मिलता है, यानी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक। इसका इंग्लिश में नाम है सेंसिटिव प्लांट या टच मी नॉट, और साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका, जिसे अक्सर लोग हिंदी में लाजवंती भी कहते हैं। और अगर उर्दू में लिटरल इसका मतलब लें तो बनता है शर्मीली या नाजुक मिजाज। लैटिन वर्ड पुडिका का मतलब भी मॉडेस्ट या शाय है, यानी दोनों जबानों में इसका मतलब लगभग एक ही है, एक ऐसा पौधा जो छूने पर शर्मा जाए भाई। अब आप पूछेंगे कि ये पौधा करता क्या है, तो भाई आप इसके पत्तों को छूते हैं तो ये फौरन से अपने पत्ते बंद कर लेता है, फिर कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुपचाप हो जाता है, और जब सब कुछ सेफ फील होने लगता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर से अपने पत्ते खोल लेता है, जैसे हमें ऐसे कह रहा हो हाँ भाई अब सब कुछ ठीक है, अब नॉर्मल है, अब मुझे कोई शौक नहीं। और इसका ये पूरा सीन इतना नेचुरल और मेस्मराइजिंग लगता है, इसको देखकर हमें लगता है कि जैसे हम किसी बोटैनिकल परफॉर्मेंस को देख रहे हों, लेकिन इस परफॉर्मेंस के पीछे एक जबरदस्त साइंस छुपी है भाई। ये रिएक्शन एक्चुअली स्टिग्मोना कहलाता है, यानी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच। जब टच मी नॉट के पत्तों को छुआ जाता है तो उसके सेल्स के अंदर पानी का प्रेशर एक साइड से दूसरी साइड मूव करता है, और ये प्रेशर डिफरेंस उन पत्तों को फोल्ड कर देता है। प्लांट के जॉइंट्स जैसे स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम बुल्विनस कहते हैं, वो इस हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे मसल्स रिएक्ट करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ये मसल मूवमेंट नहीं करते, बस वाटर प्रेशर मूवमेंट है। हर पत्ता और हर स्टेम का रिएक्शन नेचर के एक ब्रिलियंट डिजाइन दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पौधा ऐसा करता क्यों है भाई, क्या ये सिर्फ नाटक कर रहा है? अरे भाई नहीं।

ये उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई इंसेक्ट या एनिमल उसके पास आता है और उसे छू लेता है तो ये सडन फोल्डिंग प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर देती है। उन्हें लगता है कि पौधा या तो पॉइजनस है या मर गया है। और भाई उसके नतीजे में होता क्या है? उसके नतीजे में ये होता है कि वो उसे खाना छोड़ देते हैं। ये टच मी नॉट का अपना नो टच पॉलिसी है, यानी एक स्मार्ट, साइलेंट और नेचुरल शील्ड। साथियों 18th सेंचुरी में जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार ये मूवमेंट देखा तो सबके सब हैरान रह गए। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि पौधों के पास नर्वस सिस्टम भी होता है। भाई उनके लिए समझना बहुत मुश्किल था कि एक बेजान लगने वाला पौधा किस तरह रिएक्ट कर सकता है। बाद में रिसर्च से पता चला कि पौधों के पास नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन उनके सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल मैसेजेस सर्कुलेट करते हैं, वो भी बिल्कुल इंसानों के नर्वस रिस्पॉन्स जैसे। मॉडर्न रिसर्च ने ये भी बताया कि प्लांट्स के अंदर कहीं ना कहीं याददाश्त की स्टेबिलिटी भी थोड़ी बहुत होती है। अगर आप एक टच मी नॉट प्लांट को बार बार छुएंगे तो कुछ दफा के बाद वो इतना रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे कि उसने सीख लिया हो कि आपके लिए थ्रेट नहीं हो। ये प्लांट मेमोरी का कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के लिए भी बहुत फैसिनेटिंग है। साथियों जरा सोचिए, एक पौधा जो ना बोल सकता है ना चल सकता है, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए एक ब्रिलियंट प्लान बना लेता है। तो अगली बार जब आप किसी टच मी नॉट प्लांट के पास से गुजरें, तो जरा आहिस्ता से गुजरिएगा भाई, ये पौधा आपके टच से शर्मा कर अपने पे बंद कर लेगा। साथियों टच मी नॉट हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में हर रिएक्शन के पीछे एक रीजन होता है। नेचर के ये छोटे छोटे ड्रामास सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कई दफा जो हमें सिर्फ इंटरेस्टिंग लग रहा होता है वो असल में जिंदगी बचाने का एक साइलेंट तरीका होता है। ये है नेचर का ड्रामा, जहां हर सीन के पीछे अपनी ही एक साइंस होती है और हर मोमेंट एक कहानी सुनाती है। इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे और भी प्लांट्स के बारे में मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करेंगे। सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद सफा।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद सफा ऑन एफएम 107। साथियों, जब हम नेचर में डीप डाइव करते हैं तो समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो फील करते हैं, ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसका जवाब देते हैं मूवमेंट के जरिए। ये हैं सेंसिटिव प्लांट्स, यानी रिएक्शन वाले पौधे। ये पौधे टच, लाइट, वाइब्रेशन, टेम्परेचर या मॉइस्चर के रिस्पांस में मूव करते हैं। इनका हर मूवमेंट एक नेचुरल रिएक्शन होता है, जो कभी डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है, कभी अडेप्टेशन के लिए, और कभी तो सिर्फ इसलिए कि नेचर उन्हें थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाना चाहती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मगर कहीं जाइएगा मत, वापस आके आपको और भी ढेर सारी बातें बतानी है प्लांट्स के बारे में।
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website radio.qa और download the app QMC now.
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत हो तो मैं कौन हूँ? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आई फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्री तय करना चाहती है। सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी चुई मैं को मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद मेरी पहचान सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: दोस्तों लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है याद रखिए फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं वजारत दाखिला का कहना है स्टे सेफ ड्राइव सेफ एफएम मनोसन आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है सेफ रहें और खुश रहें
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद सफा ऑन एफएम 107। चलिए इन बोटानिकल परफॉर्मर्स से मिलते हैं। साथियों, अब आपकी मुलाकात कराती हूँ एक और ग्रेसफुल पौधे से, जिसका नाम है ऑक्सेलिस, जिसे वुड सॉरेल भी कहते हैं। ये पौधा अपनी ब्यूटी के साथ एक इंटरेस्टिंग हैबिट भी रखता है। इसके पत्ते लाइट और टेम्परेचर के हिसाब से हिलते हैं। सुबह जब सूरज निकलता है तो ये पत्ते खुल जाते हैं, जैसे नेचर को गुड मॉर्निंग कह रहे हों। और शाम को जब अंधेरा होने लगता है तो ये पत्ते आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम सोने से पहले अपनी आंखें बंद करते हों। ये मूवमेंट निक्टनास्टी कहलाता है, यानी लाइट और डार्कनेस के रिस्पांस में होने वाली मूवमेंट। ये प्रोसेस प्लांट को अपनी एनर्जी बचाने और मॉइस्चर रिटेन करने में मदद करता है। साथियों, इसी ग्रुप का अगला मेंबर है एक स्टाइलिश और एलिगेंट ट्री, जिसका नाम है एल्बिजिया जुलिब्रिजिन, जिसे सिल्क ट्री या पर्शियन सिल्क प्लांट भी कहते हैं। ये दरख्त अपनी गुलाबी और नरम फ्लावर्स के लिए मशहूर है भाई, लेकिन इसके पत्तों का बिहेवियर भी काफी यूनिक है। रात के वक्त इसके पत्ते फोल्ड हो जाते हैं, जैसे पूरा का पूरा ट्री सो गया हो। ये भी एक स्लीप मूवमेंट है जो प्लांट्स में सर्कैडियन रिदम के तहत होती है, मतलब ये पौधा अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के मुताबिक रिएक्ट करता है भाई। दिन में खुला, रात में बंद। ये नेचर का एक साइलेंट रिमाइंडर है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना स्लीप स्केड्यूल होता है, चाहे वो इंसान हो या पौधे। और अब साथियों, एंट्री होती है सबसे ट्रेनिंग और म्यूजिकल पौधे की, जिसे हम कहते हैं डेस्मोडियम गैरेंस, जिसे लोग टेलीग्राफ प्लांट या डांसिंग प्लांट भी कहते हैं। ये पौधे लिटरली डांस करते हैं भाई। इसके छोटे पत्ते अपनी रिदम पर मूव करते हैं सनलाइट, साउंड और वाइब्रेशंस के रिस्पांस में। अगर आप आसपास म्यूजिक बजाएं तो ये पत्ते हल्के हल्के हिलने लगते हैं, जैसे किसी ने उन्हें बीट पे ग्रूव करना सिखा दिया हो। साइंस कहती है कि ये मूवमेंट एनर्जी बैलेंस और टेम्परेचर रेगुलेशन का एक तरीका होता है, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो यूं लगता है जैसे नेचर ने कॉन्सर्ट का रॉक परफॉर्मर भेज दिया हो। साथियों, ये सब पौधे एक बात कॉमन रखते हैं, जो कि है रिएक्शन। हर मूवमेंट के पीछे एक रिस्पांस छुपा होता है, सर्वाइवल, एडेप्शन या इंटरेक्शन। ये प्लांट्स हमें बताते हैं कि नेचर में सब कुछ जिंदा है। हर लीफ एक स्टोरी कहता है और हर मोशन एक इवन है। सेंसिटिव प्लांट्स हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ के छोटे सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी सबसे साइलेंट चीजें ही सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। बस देखने के लिए नजर और समझ के लिए दिल चाहिए होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ M107 पर। आप सुन रहे हैं शो एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद सफा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मगर कहीं जाइएगा मत, वापस आके आपको और भी ढेर सारी बातें बतानी हैं प्लांट्स के बारे में।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद सफा ऑन एफएम 107। साथियों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेचर के सबसे थ्रिलिंग और डेंजरस परफॉर्मर्स की, यानी शिकारी पौधों के बारे में, यानी कार्निवोरस प्लांट्स। ये वो पौधे हैं जो बस सनलाइट ऑर्डर पर खुश नहीं रहते, इनका मूड अलग है, इनकी डाइट प्लान अलग है, ये अपना खाना खुद पकड़ते हैं भाई, यानी इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स और कभी कभी छोटी मक्खियां तक। ये सच में प्लांट्स विद एटीट्यूड हैं। ये पौधे ज्यादातर न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स में ग्रो करते हैं, यानी जहाँ जमीन उन्हें मिनरल्स नहीं देती, तो ये अपने प्रोटीन सोर्स आसमान से ढूंढ लें भाई, यानी लिटरली फ्लाइंग इंसेक्ट्स। हर कार्निवोरस प्लांट का अपना एक यूनिक हंटिंग स्टाइल होता है। कुछ प्लांट्स ट्रैप्स लगाते हैं, कोई ल्योर करता है और कोई साइलेंटली डाइजेस्ट कर लेता है। चलिए मिलाते हैं इन बॉटनिकल हंटर्स से आपको और बताते हैं एक एक करके इनके बारे में आपको डिटेल्स। तो भाई साथियों, सबसे पहली एंट्री होती है नेचर के सुपर शिकारी की, जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। साथियों इस पौधे के बारे में आपको ये बता दूं कि ये पौधा हॉलीवुड हॉरर मूवी मॉन्स्टर से कम नहीं। इसके पत्ते दो हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं, यानी बिल्कुल एक माउथ की तरह। जब कोई इंसेक्ट उसके बीच में बैठता है और पत्तों के अंदर मौजूद टाइनी हेयर लाइक सेंसर्स को दो बार टच करता है, तो भाई ये ट्रैप स्नैप करके बंद हो जाता है। ये मैकेनिज्म बिल्कुल एक नेचुरल माउस ट्रैप जैसा होता है, इसीलिए तो इसे कहते हैं स्नैप ट्रैप। अंदर का डाइजेस्टिव फ्लूइड इंसेक्ट को डिसॉल्व कर देता है और कुछ दिन बाद जब मील कंप्लीट हो जाता है तो ट्रैप फिर से खुल जाता है, यानी इट इज अगेन रेडी फॉर द नेक्स्ट विक्टिम। भाई वीनस फ्लाई ट्रैप का साइंटिफिक जीनियस ये है कि वो अपने ट्रैप को हर बार

वेस्ट नहीं करता। अगर पहली बार सिर्फ हवा या कोई पत्ता टच कर जाए तो वो बंद नहीं होता। इसका मतलब ये कि प्लांट सोच कर डिसाइड करता है कि मूव करना है कि नहीं, यानी नेचर का अपना स्मार्ट सेंसर सिस्टम है इसके अंदर मौजूद भाई। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि वीनस फ्लाट्रैप सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ कैरिलोना के कोस्टल लैंड्स में नेचुरली मिलता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पौधा अपना ट्रैप सिर्फ कुछ बार ही बंद कर सकता है, फिर वो मर जाता है। मतलब हर स्नैप केयरफुली सोचा समझा डिसीजन होता है। चलिए साथियों, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जंगल के दूसरे पौधे के बारे में, यानी नेपेंथिस, जिसे पिचर प्लांट भी कहते हैं। इस पौधे के लीव्स कप शेप्ड के होते हैं, जैसे एक छोटी सी बॉटल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। इस कप के अंदर होता है एक स्वीट सा नेक्टर जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट अंदर की तरफ गिरता है तो वो स्लिपरी सरफेस की वजह से फिसल जाता है और कप के अंदर ही अटक जाता है। वहाँ फिर एक एसिडिक डाइजेस्टिव लिक्विड होता है मौजूद, जो उस इंसेक्ट को डिसॉल्व कर देता है, एक स्लो बट श्योर डेथ ट्रैप। साथियों, कुछ निपेंथिस स्पीशीज तो इतने बड़े होते हैं कि वो फ्रॉग्स और छोटी छोटी छिपकलियां तक पकड़ लेते हैं। मतलब ये कि ये सिर्फ इंसेक्ट ईटर नहीं बल्कि कभी कभी एम्फेबियन हंटर्स भी बन जाते हैं। और एक मजे की बात ये है कि कुछ साइंटिस्ट्स ने निपेंथिस के नेक्टर को नेचर्स डिसेप्टिव परफ्यूम कहा है, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अपनी खुशबू से बेवकूफ बनाकर उनकी मौत की तरफ खींच कर ले आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब मिलते हैं ब्यूटी और डेंजर के परफेक्ट मिक्सचर से, यानी डोरा, जिसे सन ड्यू प्लांट कहते हैं। दूर से देखो तो लगता है जैसे पत्तों पर शबनम की बूंदें चमक रही हों, लेकिन ये ड्यू ड्रॉप्स, भाई ये ड्यू ड्रॉप्स तो असल में स्टिकी ग्लैंड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब कोई इंसेक्ट इन चिपकने वाले ग्लैंड्स पर बैठता है तो वो अटक ही जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा लीफ उसके इर्द गिर्द फोल्ड होने लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को स्लो मोशन में हग मिल रही हो। ये स्टिकी ट्रैक सिस्टम इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है और उनके न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ में इस्तेमाल होते हैं। साथियों, ड्रोसीरा की कुछ स्पीसीज अपनी टेंटिकल्स को इतनी तेजी से करती हैं कि वो एक इंसेक्ट को सिर्फ कुछ सेकंड्स में पकड़ लेती हैं। ये स्पीड कार्निवोरस वर्ल्ड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग है भाई। चलिए अब जरा पानी के नीचे चलते हैं। अच्छा ये बताएं, आप में से कितने लोगों को तैरना आता है? नहीं आता तो कोई बात नहीं, इमेजिन ही कर लीजिए। अब जरा पानी के नीचे एक डुबकी मारते हैं। यहाँ रहता है एक शिकारी जो अंडर वाटर अटैक करता है। मैं बात कर रही हूँ उत्रिक्युलेरिया की, जिसे ब्लैडर वॉट कहते हैं। ये कार्निवोरस प्लांट अपनी छोटी छोटी ब्लैडर्स के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टाइनी इंसेक्ट्स को सक करता है। ये ब्लैडर्स एक नेचुरल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई छोटा सा प्रे उनके ट्रैप के आस पास आता है तो भाई सक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और प्रे ब्लिंक ऑफ एन आई में अंदर खिंच जाता है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि एक सेकंड का भी टेंथ पार्ट नहीं लगता। साथियों, यूट्रिक्युलेरिया दुनिया का सबसे फास्ट कार्निवोरस प्लांट माना जाता है और इसे तो कुछ लोग एक परफेक्ट अंडर वाटर असैसिन भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब मुलाकात करते हैं एक सॉफ्ट बट स्मार्ट शिकारी से, यानी पिंक्युकुला से, जिसे बटरवॉट कहते हैं। इसके पत्ते सॉफ्ट और स्टिकी होते हैं जिनकी सरफेस पर एक ऑयल लाइक लेयर होती है। इंसेक्ट्स इसके शाइनी टेक्सचर से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लैंड करते हैं भाई वो बेचारे चिपक जाते हैं। फिर क्या होना होता है, फिर लीफ अपने एजेस से थोड़ा सा कर्ल होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर देता है, यानी एक स्लो साइलेंट डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये प्लांट मोस्टली फ्रूट फ्लाइज और छोटी मोटी मक्खियों पर जिंदगी गुजारता है। और साथियों, पिंक्युकुला के स्टिकी लीव्स नेचर के इको फ्रेंडली फ्लाई पेपर कहलाते हैं, क्योंकि यूरोप के लोग पहले इसके पत्तों का यूज बटर बनाते वक्त सरफेस पॉलिश करने के लिए करते थे, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा बटरवॉर्ट। तो साथियों, ये हुए नेचर के असली ग्रीन हंटर्स। इन पौधों ने दिखाया कि

सर्वाइवल के लिए सिर्फ रूट्स और सनलाइट काफी नहीं होते, कभी कभी स्मार्ट स्ट्रेटजीज और किलर इंस्टेंट भी चाहिए होते हैं। इनका मैसेज सिंपल है भाई, हर पौधा इनोसेंट नहीं होता। नेचर के इस ग्रीन जंगल में कुछ लीव्स भी दांत रखते हैं, बस माइक्रोस्कोपिक साइज में। साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद सफा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे और भी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे मजीद प्लांट्स के बारे में। सुनते रहिए FM 107।

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, लेकिन कोई मामूली प्लांट्स नहीं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक प्लांट्स जो दूसरे प्लांट से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। साथियों, अगर आपने कभी सोचा हो कि नेचर सिर्फ सर्वाइवल और फोटोसिंथेसिस तक ही महदूद है, तो तैयार हो जाइए एक और फैसिनेटिंग वर्ल्ड के लिए, यानी मिमिक्री प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी एक्टिंग वाले पौधे भाई, ये पौधे लिटरली एक्टर्स हैं। ये अपने सराउंडिंग्स, दूसरे प्लांट्स या इंसेक्ट्स की नकल करके अपनी सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव चांसेस एनहेंस करते हैं। ये प्लांट्स हमें सिखाते हैं कि नेचर में इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ब्रेन नहीं होता, कभी कभी क्रिएटिविटी, डिसेप्शन और स्ट्रेटजी भी इंटेलिजेंस होती है। चलिए इन नेचर के ग्रीन एक्टर्स से मिलते हैं और उनके अमेजिंग टैलेंट को एक्सप्लोर करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ड्रामेटिक एक्टर स्पेक्यूलम की, यानी मिरर ऑर्चिड। ये फ्लावर इतना परफेक्ट मिमिक्री परफॉर्म करता है कि लगता है जैसे नेचर फीमेल बी की एग्जैक्ट रेप्लिका बना दी हो। इसका कलर, टेक्सचर और स्मेल तक फीमेल बी से मिलती जुलती होती है। इस क्लेवर मिमिक्री का मकसद है, जब मेल बी इस फ्लावर को फीमेल समझकर अप्रोच करता है तो नेचुरली पोलन स्प्रेड हो जाता है। और ये इसकी एक ब्रिलियंट ट्रिक है, यानी फ्लावर ने फीमेल बी का रोल एडॉप्ट करके अपना रिप्रोडक्टिव काम पूरा कर लिया। साथियों, साइंटिस्ट कहते हैं कि मेल बीज कभी ये डिसेप्शन रियलाइज कर ही नहीं पाते। फ्लावर के डिजाइन में इतनी परफेक्शन है कि इंसेक्ट्स लिटरली फूल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डिसेप्शन पॉलिनेशन कहते हैं और ये ऑर्चिड स्पीशीज के लिए एक एवोल्यूशनरी जीनियस मूव है। साथियों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रेटेजी की। हम बात कर रहे हैं पिसी फ्लोरा की, यानी पैशन फ्लावर वाइन की। ये प्लांट अपनी लीव्स पर बटरफ्लाई एग्स के पैटर्न बना लेता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है। साथियों, पिसी फ्लोरा के लीव्स पे फेक एग पैटर्न्स बन जाते हैं, जिसे देखकर रियल बटरफ्लाईज वहाँ एग्स नहीं देती। साथियों, बटरफ्लाईज यूजली सेम स्पॉट पर एग्स नहीं देती, अगर वहाँ ऑलरेडी एग्स मौजूद हो तो भाई पिसी फ्लोरा के लीव फेक एग पैटर्न बन जाते हैं, जिसे देखकर रियल बटरफ्लाईज वहाँ एग नहीं देती। इस तरह प्लांट अपनी लीव्स को प्रोटेक्ट कर लेता है, एक विजुअल डिसेप्शन डिफेंस स्ट्रेटजी। साथियों, ये पैटर्न इतने रियलिस्टिक होते हैं कि साइंटिस्ट को भी कभी कभी माइक्रोस्कोप के साथ कंपेयर करना पड़ता है कि ये एग्स फेक है या रियल। भाई, नेचर ने इस प्लांट को एक प्रोटेक्टिव विजुअल डिस्गाइज दिया है, बिल्कुल एक परफेक्ट आर्टिस्ट की तरह। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और अगले स्टार की तरफ मूव ऑन करते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की तरफ, जिसका नाम है बॉक्यूला ट्राइफोलियोलाटा, यानी चिलियन मिमिक वाइन। ये प्लांट लिटरली अपने आसपास के प्लांट्स के पत्तों का शेप और कलर कॉपी कर लेता है भाई। यानी कि अगर वो एक ब्रॉड ग्रीन लीफ के पास ग्रो कर रहा हो तो उसके पत्ते भी ब्रॉड ग्रीन हो जाते हैं। अगर वो रेड या पैटर्न लीफ के पास हो तो वो भी वही मिमिक करता है। ये प्लांट दुनिया का ओनली नोन प्लांट है जो फिजिकल मिमिक्री कर सकता है, और ये सब कुछ ये सर्वाइवल के लिए करता है, यानी प्रेडेटर्स को कंफ्यूज करता है और अपनी एग्जिस्टेंस सिक्योर करता है। साथियों, इस पौधे का एक फन फैक्ट ये है कि ये पौधा इतना एडवांस है कि ये एनवायरनमेंट के हर सटल सिग्नल को डिटेक्ट कर लेता है। सनलाइट, सराउंडिंग, लीफ पैटर्न एंड इवन सीजनल चेंजेस के हिसाब से अपना कलर और शेप एड करता है। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है कि प्लांट्स भी लुक एंड ब्लेंड करना सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात करें तो आता है एक मास्टर ऑफ कैमोफ्लाज, जिसको कहा जाता है लिपथॉप्स, यानी लिविंग स्टोन्स। ये सक्यूलेंट प्लांट्स बिल्कुल पत्थर जैसे दिखते हैं और इसी डिस्गाइज के जरिए हार्बीवोरस से बचे रहते हैं। अगर आप इन्हें देहान से ना देखें तो लगता है कि ये सॉइल का पार्ट हैं और एनिमल्स इन्हें इग्नोर कर देते हैं। साथियों, लिथॉप्स का डिस्गाइज सिर्फ शेप तक लिमिटेड नहीं होता, इसका कलर भी सराउंडिंग सॉइल के साथ मैच करता है। इस कैमोफ्लाज की वजह से ये एक्सट्रीम एरिड कंडीशंस में सर्वाइव कर लेते हैं और अपना वाटर और न्यूट्रिएंट्स रिटेन करते हैं। और साथियों ग्रीक लैंग्वेज में लिथॉप्स का मतलब होता है स्टोन लाइक। ये प्लांट्स इतने परफेक्टली ब्लेंड करते हैं कि बोटैनिस्ट्स भी शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका सर्वाइवल ट्रिक सिर्फ हार्बीवोरस से बचना नहीं बल्कि हीट और ड्रॉट से सर्वाइव करने का भी एक तरीका है। तो साथियों ये सब मिमिक्री प्लांट्स हमें ये सिखाते हैं कि नेचर में सर्वाइवल के लिए क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस इक्वली जरूरी है। कभी कभी अपनी असली आइडेंटिटी छुपाना या सराउंडिंग्स का परफेक्ट इमिटेशन करना लाइफ बचाने के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। क्योंकि ये एक्टर्स हमें रिमाइंड कराते हैं कि हर लीफ और हर पैटर्न का अपना मकसद होता है, चाहे वो पॉलिनेशन हो, सेल्फ डिफेंस हो या कैमोफ्लेज हो। अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करें तो समझ आता है कि नेचर के पास हम इंसानों से भी ज्यादा ड्रामा, स्ट्रेटेजी और परफॉर्मेंस का टैलेंट है। ये प्लांट्स सिर्फ सर्व नहीं करते, ये परफॉर्म करते हैं, डिसीव करते हैं और अडेप्ट करते हैं। एक लिविंग

0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, लेकिन कोई मामूली प्लांट्स नहीं, वो प्लांट्स जो नॉर्मल प्लांट थोड़े से हटकर हैं। तो साथियों चलिए अब बात करते हैं उन पौधों की जो ना सिर्फ सर्वाइव करते हैं बल्कि अपनी मोशन के जरिए एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट भी करते हैं। ये प्लांट्स अपनी मूवमेंट से हमें ये दिखाते हैं कि नेचर सिर्फ स्टैटिक नहीं बल्कि डायनेमिक और इंटेलिजेंट भी है। चलिए मिलते हैं इन नेचुरल मोशन एक्सपर्ट्स से। सबसे पहले हम बात करेंगे सनफ्लावर की, जो लिटरली सूरज के पीछे पीछे अपना फेस घुमाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं हीलियोट्रोपिज्म, यानी सनलाइट की डायरेक्शन में प्लांट का स्लोली मूव करना। साथियों सुबह के टाइम सनफ्लावर अपना हेड ईस्ट की तरफ फेस करता है और पूरे दिन के दौरान आहिस्ता आहिस्ता सूरज के रास्ते के साथ साथ अपनी पोजीशन एडजस्ट करता चला जाता है। शाम को वो वेस्ट की तरफ देखकर रात के लिए रेस्ट मोड में आ जाता है। ये मूवमेंट प्लांट की ग्रोथ हार्मोन्स पर्टिकुलरली ऑक्सिन्स के जरिए कंट्रोल होती है, जो स्टेम्स के सेल्स को अनइवनली एलोंगेट कर देती है और इस वजह से प्लांट अपने हेड रोटेट कर पाते हैं। साथियों यंग सनफ्लावर प्लांट्स ही एक्टिवली सन फॉलो कर सकते हैं। मैच्योर फ्लावर्स फिक्स हो जाते हैं और सीड प्रोडक्शन के लिए ईस्ट फेसिंग पोजीशन में मेंटेन करते हैं ताकि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों। साथियों ये सारे पौधे हमें ये रिमाइंड कराते हैं कि नेचर का हर एलिमेंट इंटेलिजेंट क्रिएटिव आर्मिक है। हर पत्ते के पीछे एक कहानी छुपी है, हर मोशन के पीछे एक लॉजिक है और हर एडेप्शन के पीछे सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी है। हम जब इन ग्रीन परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो सिर्फ उन मूव्स नहीं देखते बल्कि उनके इनक्रेडिबल विजडम और आर्टिस्ट्री को भी अप्रिशिएट करते हैं। नेचर के ये मूविंग मार्वल्स हमें इंस्पायर करते हैं कि लाइफ में हर सिचुएशन के लिए अडेप्टेबल क्रिएटिव और अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हर मोशन का एक मकसद होता है भाई, और हर एडजस्टमेंट एक नई अपॉर्चुनिटी खोलता है। साथियों उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की इस एपिसोड से सफा को दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: Anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now।
4: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से कॉल करें 4488806 पर या करें marketing@qmc.qa।
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुल्लाह के साथ। प्रोग्राम तहफ कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने का प्रोग्राम तहफीम कुरान के आज के इस हलके में आपका खैर मकदम है। तलहा अशरफुल्लाह की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी से वाबता है, ख्वाब शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, नौजवान या बुजुर्ग, वालिदैन हो या। इस गुफ्तगू का आगाज हम एक नहायत खूबसूरत आनी आयत से करते हैं। इरशाद खुदावंदी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान।

मिजाज का फर्क होगा, बाज़ तवक्कात पूरी नहीं होंगी, कभी माफी मांगनी होगी, कभी अपनी पसंद मुखर करनी होगी। तो जो शख्स सिर्फ अपनी ख्वाहिश को देखता है और दूसरे इंसान के हक को नहीं, वो निकाह के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। एक मर्द के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि वो कहे मैं शादी करना चाहता हूँ, उसे अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने की अहलियत पैदा करनी होगी, उसके अंदर फैसला करने की सलाहियत हो, अखलाक में पुख्तगी हो, उससे पर किसी हद तक काबू हो, अपनी अहलिया को महफूज और बाइज्जत ज़िंदगी देने का इरादा हो, और ये समझे कि शौहर होना इख्तदार की कुर्सी नहीं जिम्मेदारी की अमानत है, ये भी समझे कि घर में मर्दांगी ऊंची आवाज़ से साबित नहीं होती, किरदार, खिदमत, हिफाजत और अहद की पाबंदी से साबित होती है। बिल्कुल उसी तरह एक औरत के लिए भी शादी सिर्फ लिबास, तकरीब और नए घर का नाम नहीं, उसे भी इस दिवाली ज़िंदगी की हकीकत समझने की ज़रूरत है। घर के नज़म, माली हालात, बाहमी मुशत, शौहर के मिजाज, ख़ानदान के मामलात और मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों से आकिफ होना चाहिए। इसी तरह दोनों को गुफ्तगू, इख्तलाफ के हल, वक्त की तंजीम और बच्चों की तरबियत की बुनियादी समझ होनी चाहिए। फिर सामिन इकराम, माली आमादगी की बात आ जाती है, यानी शादी के लिए माली तैयारी भी अहम है। यानी इसका मतलब नहीं नौजवान के पास महल, महंगी गाड़ी और गैर मामूली दौलत ज़रूर हो, बल्कि ये है कि वो बुनियादी अखराजात, रिहाइश और ज़िम्मेदारियों के बारे में हकीकत पसंद हो, उसे मालूम हो कि आ कितनी है और खर्च कैसे चलेगा, कर्ज और नमूदो नुमाई से बचना होगा, ज़रूरियात और ख़्शात में फ़र्क करना होगा, और शादी को ऐसी महंगी तकरीब न बनाया जाए जो नए घर की इब्तिदा ही माली दबाव से करे। माली आमादगी का असल मतलब माली जिम्मेदारी का शऊर है। फिर एक और अहम मौजू है कि हर उम्र के निकाह की अपनी अपनी ज़रूरियात होती हैं। निकाह 20 बरस की उम्र में हो, 30 में, 40 में या उसके बाद, हर मरहले की अपनी नफ्सियाती और अमली ज़रूरियात होती हैं। कम उम्री में होने वाली शादी में दोनों अफराद एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बनाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होते हैं। दरमियानी उम्र में शादी करने वाले अफराद के पास पहले से कायम आदात, तजुर्बात और बाज़ औक़ात ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। बाद की उम्र में निकाह का मकसद रिफाकत और सुकून ज़्यादा नुमाया हो सकता है, इसलिए निकाह के लिए एक ही नुस्खा सब पर लागू नहीं किया जा सकता। हर उम्र में आमादगी, हालात और जिम्मेदारियों का अलग जायज़ा ज़रूरी है। अब अगर कोई ये सवाल करे कि जल्द शादी की जाए या मुकम्मल पुख्तगी के बाद, यानी अकल, जहनी तौर पर आमादगी मुकम्मल हो, अकली पुख्तगी कामिल हो, फिर शादी की जाए, इस मौजू पर दो मारूफ आरा सामने आती हैं। एक राय यह है कि इंसान निस्बतन कम उम्र में शादी करे ताकि अपनी औलाद के साथ जवानी और कुव्वत के ज़माने में ज़िंदगी गुजार सके। दूसरी राय यह है कि पहले मुकम्मल जहनी, माशी और शख्सी पुख्तगी हासिल करे, फिर शादी करे। हकीकत में सामिन इकराम, दुरुस्त तो यह है कि असल मेयार उम्र नहीं, असल मेयार अहलियत है। बाज़ अफराद कम उम्र में भी ज़िम्मेदार होते हैं, बाज़ उम्र में भी जज्बाती तौर पर नापुख्ता रहते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि उम्र कितनी है, बल्कि ये है कि क्या यह शख्स ज़िम्मेदारी उठा सकता है, क्या वो अपने फैसले के नताइज बर्दाश्त कर सकता है, क्या वो दूसरे इंसान के हुकूक पहचानता है या नहीं। वैसे इस्लामी नुक्ता नज़र में बुलूग के बाद इंसान शरी ज़िम्मेदारी के दायरे में दाखिल हो जाता है। ये खुद इस बात का इशारा है कि हमारी तरबियत का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि बच्चा बुलूग के करीब पहुँचते पहुँचते ज़िम्मेदारी, इबादत, अखलाक, माली शोर और ज़िंदगी की बुनियादी महारतें सीख चुका हो। लेकिन आज का मसला यह है कि हम जिस्मानी तौर पर बड़े हो जाने वाले नौजवानों को भी तवील अरसे तक बच्चों की तरह रखते हैं। 17 या 18 बरस का नौजवान अपने कपड़े तक मुनज़्ज़म नहीं कर सकता, अपना कमरा नहीं संभालता, अपना मामूल नहीं बना सकता, अपनी तालीम की जिम्मेदारी वालिदैन पर डाल देता है। फिर अचानक शादी के बाद हम उससे एक मुकम्मल जिम्मेदार शौहर या बीवी बनने की तवक्को करते हैं। तो मसला यहाँ सिर्फ नौजवान का नहीं, तरबियत के निज़ाम का भी है। अगर बालिग होने के बाद भी बेटा या बेटी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं उठाते तो मसला सिर्फ उनकी ज़ात में नहीं, उसमें घर की तरबियत का भी हिस्सा है, माशरती निज़ाम का भी। इसी तरह तरबियत के निज़ाम के साथ साथ तालीम के निज़ाम पर भी आज ये एतराज़ किया जा रहा है। इसका बड़ा हिस्सा सनती दौर की ज़रूरियात के मुताबिक तश्कील पाया था, जहाँ मुकर्रर वक्त पर हाजिरी, एक जैसे निसाब और एक ही अंदाज में जाँच पर जोर था। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ किसी इदारे में

0: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
0: शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilsi Desi.

0: नमाज पढ़ाए, क्योंकि इनमें कमजोर, बूढ़े और जरूरतमंद भी होते हैं। अब ये सुन्नत सामने कराम सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं, घर में भी अगर हम नमाज पढ़ रहे हों और किसी बच्चे को हमारी जरूरत हो, ये कोई आवाज दे रहा हो, ये कोई हकीकी जरूरत पेश आ जाए, तो हमें दीन की रूह को समझते हुए हिकमत और तवाजुन के साथ अमल करना चाहिए। इस्लाम सख्ती का नहीं, रहमत का दीन है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और काबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट, MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में, MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारते दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतर के वन ऑफ द लीडिंग फुटबॉलर्स में से एक करीम बुदियाफ। यार दोस्तों, करीम बुदियाफ कतर के सबसे तजुर्बेकार और भरोसेमंद फुटबॉलर्स में शुमार किए जाते हैं। उनकी पैदाइश 16 सितंबर 1990 को फ्रांस में हुई, लेकिन बाद में उन्होंने कतर की कौमी टीम की नुमाइंदगी अख्तियार की और मुल्क के फुटबॉल निजाम का अहम हिस्सा बन गए। वो तो डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर खेलते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर डिफेंडर की पोजीशन भी बाखूबी संभाल लेते हैं। करीम ने अपने क्लब कैरियर का बड़ा हिस्सा अल दोहेल के साथ गुजारा, जहां उन्होंने कई कतर स्टार लीग टाइटल्स और डोमेस्टिक कप्स जीतने में किरदार अदा किया। उनकी मजबूत टैकलिंग, बेहतरीन पोजीशनिंग और गेम को करने की सलाहियत उन्हें टीम का लाजमी खिलाड़ी बना दिया। कतर की नेशनल टीम के लिए भी करीम ने बहुत अहम परफॉर्मेंसेस दी हैं। उन्होंने एशियन कप 2019 जीतने वाली टीम में शानदार किरदार अदा किया और मिडफील्ड को मजबूती फराहम की। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड कप 2022 और वर्ल्ड कप 2026 में भी कतर की नुमाइंदगी की, जहां उनका तजुर्बा टीम के लिए कीमती साबित हुआ। करीम बुदियाफ को उनकी लीडरशिप, डिसिप्लिन और मेहनत की वजह से कतर फुटबॉल का एक मिसाली और मोहतरम नाम माना जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया। अगले बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है

0: Escape Room. The ultimate mind workout as pure fun. Yahan traffic nahi, tricky wordplay hai. Boring meetings nahi, brain teasing riddles hai. Jahan contestants navigate karenge audio challenges around the clock. ये है आपका वीकली एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ पजल्स एंड एक्साइटमेंट.
1: अनलॉक योर माइंड, ट्यून इनटू रेडियो का यूनिक गेम शो एस्केप रूम विद ए फॉर अमिता, संडे टू थर्सडे दोपहर 1:30 बजे से, ओनली ऑन FM 107. दिल से दिल से
2: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है. हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो. याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें. अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते. आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है. फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है. सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है. ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है. तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
2: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आज हम मौसम के बारे में जो एलर्जीज होती हैं, एक मालूमाती सिलसिले का आगाज कर रहे हैं। ये सीजनल एलर्जीज दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर करती हैं और बाज़ों का रोज़मर्रा जिंदगी, हमारी तालीम, काम और नींद पर भी असरअंदाज होती हैं। सीजनल एलर्जीज उस वक्त पैदा होती हैं जब हमारे जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम यानी मदाफत निज़ाम बाज़ बेज़रर रात को नुकसानदेह समझकर उनके खिलाफ रद्द अमल जाहिर करता है और इन ज़रात को एलर्जी कहा जाता है। सीजनल एलर्जी का सबसे आम सबब पोलन। पोलन दरअसल पौधों, दरख्तों और घास के जो ज़रात होते हैं उनमें होते हैं, जो हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। जब ये ज़रात हमारे नाक, हमारी आंखों या सांस की नाली में दाखिल होते हैं तो हसास अफराद में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। हर शख्स में ये एलर्जी पैदा नहीं कर सकते, बस वो ही अफराद ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बाहर के मौसम में दरख्तों के पोलन और गर्मियों में घास का जो पोलन है वो, और इसी तरह खजा में जड़ी बूटियों का पोलन ज़्यादा में फिजा में मौजूद हैं। इसलिए बाज़ अफराद को मखसूस मौसमों में बार बार एलर्जी कायद होती है। इसके अलावा बारिश के बाद नमी ज़्यादा होने से फंगजरात भी फ़िज़ा में बढ़ जाते हैं जो एलर्जी का सबब बनते हैं। अब ये कि कौन से जो लोग हैं, कौन से ऐसे अफराद हैं जो ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं या रिस्क पर होते हैं, ऐसे अफराद जिनके ख़ानदान में एलर्जी या अस्थमा की शिकायत हो, इस तरह एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो बच्चे और नौजवान, एक्जिमा के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो अफराद जो फ़िज़ाई आलूदगी वाले इलाकों में रहते हैं। इसी तरह से लिस्टनर्स, फ़िज़ाई आलूदगी में एलर्जी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। उसमें गाड़ियों का धुआं है, सनती आलूदगी है, गर्दोगुबार सांस की नाली को बहुत ज़्यादा हसास बना देते हैं। एलर्जी से बचने के लिए ज़रूरी है कि पोलन की मकदार ज़्यादा होने वाले दिनों में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने से गुरुज कीजिए। सुबह के औकात में पोलन की सतह उमूमन ज़्यादा होती है। ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि सीजनल एलर्जी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर उसका मुनासिब इलाज ना किया जाए तो ये दमे और सांस के जो दूसरे मसाइल हैं उन्हें ज़्यादा कर सकती है।
3: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ जफा और आप सुन रहे हैं आपका प्यारा सा इको स्विच ओनली ऑन FM 107। साथियों, कभी कभी हमारे घर में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो पुरानी जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कम नहीं होती भाई। एक पुरानी कुर्सी जिस पर कभी दादा या दादी बैठा करते थे, एक पुरानी अलमारी जिसमें आपकी बचपन की किताबें रखी होती थीं, या एक पुरानी टेबल जो सालों से घर का हिस्सा बनी हुई है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब फर्नीचर पुराना नजर आने लगता है तो भाई हम क्या सोचते हैं, यही ना कि भाई इसे हम साइड पे करो और भाई हम नया ले आते हैं ना। लेकिन साथियों, क्या हो अगर हम अपनी पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें एक नई जिंदगी दें। तो भाई आज के इस इको स्विच में बात करेंगे अपसाइक्लिंग ओल्ड फर्नीचर के बारे में, यानी पुराने फर्नीचर को नई सोच और नए अंदाज के साथ दोबारा इस्तेमाल करना। भाई देखिए, आप प्रॉब्लम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। साथियों, आजकल फर्नीचर के ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। कभी मॉडर्न स्टाइल पसंद आता है, कभी मिनिमलिस्ट लुक, और कभी नया डिजाइन ट्रेंड बन जाता है। इसी वजह से बहुत सारा फर्नीचर जो अभी भी काम के काबिल होता है, इस्तेमाल के काबिल होता है, सिर्फ इसलिए फेंक दिया जाता है क्योंकि भाई वो पुराना लगने लगा था, इन नहीं था। लेकिन पुरानी चीज को वेस्ट समझना जरूरी तो नहीं होता, थोड़ा सा माइंड शिफ्ट करें ना। देखिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, मेटल और दूसरे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। जब हम हर साल या कुछ सालों बाद अपना फर्नीचर रिप्लेस करते हैं तो वेस्ट बढ़ता है ना, और नए रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ जाती है। और सिर्फ एनवायरमेंट ही नहीं, फर्नीचर वेस्ट करना हमारी जेब पे भी भारी पड़ जाता है।

0: है। देखिए भाई, कभी कभी ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मेहनत पूरी की पूरी चीज को बदल कर रख सकती है। अब इसमें इको स्विच बड़ा सिंपल है भाई। तो भाई इसका इको स्विच क्या है, अब आप ये पूछेंगे। देखिए भाई, रिप्लेस करने से पहले रिस्टोर और रीयूज करें ना। देखिए, अपसाइक्लिंग का मतलब है किसी पुरानी चीज को मॉडिफाई करके उसे एक नया पर्पस देना। जैसे कि कह लिया जाए, आप अपने पुराने फर्नीचर के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। आइडिया दूं तो भाई, देखिए पुरानी जो वुडन चेयर होती है उसको अच्छा खासा पेंट करके स्टाइलिश रीडिंग कॉर्नर बनाया जा सकता है। आपकी जो पुरानी ड्रॉअर्स होती हैं, पुरानी ड्रॉअर्स को वॉल शेल्व्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हाँ, वो जो पुराने वुडन डोर्स होते हैं ना, यकीन जाने उनसे डाइनिंग टेबल्स और डेकोरेटिव वॉल्स बनाई जा सकती हैं। पुराने सोफा कवर्स को चेंज करके उसे नया लुक दिया जा सकता है। हाँ, अगर फर्नीचर क्रैचेस हैं तो पॉलिश या पेंट से वो अच्छे दिख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपसाइक्लिंग में आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। आपके अंदर का पिकासो बाहर आ जाएगा। आपका फर्नीचर मार्केट के हर पीस से डिफरेंट और यूनिक हो सकता है साथियों। तो भाई, अगर सोचा जाए, एक एग्जांपल लेते हैं। दुनिया भर में बहुत से अब पुराने फर्नीचर को फेंकने के बजाय रीयूज कर रहे हैं क्रिएटिवली। किसी की पुरानी लेडर को आप देखेंगे कि वो बुकशेल्फ बना दिया जाता है। किसी ने अपने पुराने सूट केसेस को साइड टेबल में तब्दील कर लिया है। किसी ने अपनी पुरानी चेयर को कलरफुल पेंट करके गार्डन के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। और घरों में भी अक्सर ऐसी चीजें होती ही हैं जो थोड़ी सी मेहनत के बाद दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने घर में कोई पुरानी टेबल है जो कि थोड़ी सी डैमेज्ड है, तो उसे फेंकने जाए रिपेयर करके, पेंट करके, उसे थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके उसे नया लुक भी दिया जा सकता है। तो भाई, कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजें वो होती हैं जिनके पीछे कहानी होती है। तो साथियों, आज का इको चैलेंज ये है कि आप अपने घर में एक पुराना फर्नीचर आइटम ढूंढें जो काफी वक्त से यूज ना हो रहा हो, और ये सोचें कि क्या मैं इसे फेंकने के बजाय किसी नए काम के लिए यूज कर सकता हूँ। क्या पुरानी चेयर एक प्लांट स्टैंड बन सकती है? क्या पुराना शेल्फ एक नया स्टोरेज सॉल्यूशन बन सकता है? तो भाई, हमें जरूर है। हमें चाहें तो फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर, जो कि है FM7 कतर। आपके घर का सबसे पुराना फर्नीचर आइटम कौन सा है साथियों, और उसकी कोई यादगार कहानी है? मुझे जरूर बताइएगा। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक नई सोच की जरूरत होती है उसे। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी RJ माविश खान। दिन का आगाज जिस तरह होता है पूरा दिन वैसा ही गुजरता है। फजर की नमाज से दिन की शुरुआत करना एक मोमिन की पहचान है। ये सिर्फ इबादत नहीं बल्कि डिसिप्लिन और रूहानी सुकून का जरिया भी है। सुबह का वक्त बहुत बरकत वाला होता है। इस वक्त जहन फ्रेश होता है और दिल अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकता है। जो लोग फजर के लिए उठते हैं उनकी जिंदगी में एक निजाम और पॉजिटिविटी नजर आती है। अक्सर देर तक जागने की आदत हमें फजर से दूर कर देती है, लेकिन अगर हम अपनी रूटीन को ठीक करें तो ये आदत आसानी से डब हो सकती है। आज का अमल ये है कि रात को जल्दी सोएं और फजर के लिए उठने का इरादा करके अलार्म सेट करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश। मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
3: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: One step to 2030.
1: Welcome to our second call, One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: आज दोस्तों इस सेगमेंट में मैं बात करूंगी यूथ और टेक्नोलॉजी की फॉर अ ग्रीनर टुमारो। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल फोन्स का दौर है, एआई का है, स्मार्ट डिवाइसेस का है, डिजिटल टूल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि इन्वायरमेंट को बचाने और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए भी यूज की जाती है। इस मिशन में यंग जनरेशन का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आज का जो यूथ है या आज के जो यंग हैं टेक्नोलॉजी को सबसे बेहतर समझते भी हैं। आपके हमारे बच्चे ही देख लीजिए कितना ज्यादा फ्लुएंट है फ्रेंड्स उनकी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स को चलाने समझने, और हम कई बार स्ट्रगल ही करते रहते हैं। वो नए आइडियाज ला सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं और हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। शायद इसीलिए

0: स्टूडेंट्स ऐसी ऐप डेवलप कर रहे हैं जो लोगों को रिसाइकल के बारे में गाइड कर रही है, कुछ सिस्टम एनर्जी वेस्ट को रिड्यूस करने में मदद कर रहे हैं। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी ही टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। सोलर पैनल तो हमने बात की थी, विंड टर्बाइन क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और देखिए, यंग इंजीनियर्स हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजीज को और बेहतर अपना रहे हैं, समझ रहे हैं। एजुकेशन, जी हाँ, एजुकेशन भी टेक्नोलॉजी की वजह से अब देखा जाए तो कितनी आसान है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज और रिसर्चेस के जरिए सस्टेनेबिलिटी के बारे में सीख सकते हैं। नॉलेज जितनी ज्यादा होगी, मुझे लगता है सॉल्यूशंस भी उतने। ऐसे सोशल मीडिया को ब्लेम तो हमने हमेशा किया है, लेकिन यहाँ नहीं ऐसा होगा। सोशल मीडिया भी पॉजिटिव चेंज का एक इम्पोर्टेंट टूल बना है। जी हाँ, यंग पीपल जो है वो 96% सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बेशुमार इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं। जैसे आप जानते ही हैं, स्कूल्स में तो बहुत ही कॉमन है ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, या फिर और कोई सस्टेनेबिलिटी के मैसेज है, वो अगर लोगों तक पहुँचाना है तो एक क्लिक के साथ आप इतने मिलियंस लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वही स्मार्ट सिटीज, इन्हें हम कैसे भूल जाए। वही स्मार्ट सिटीज भी तो फ्यूचर का एक अहम हिस्सा है, जहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स हो, या फिर स्मार्ट लाइटिंग हो, या फिर एनर्जी इफिशियंट बिल्डिंग्स हो, या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिटीज, इन सबको बने मदद करते हैं। और इन प्रोजेक्ट में यूथ के पार्टिसिपेशन को कैसे इग्नोर किया जा सकता है भाई। देखिए, टेक्नोलॉजी का ना सही यूज करना भी उतना ही अहम है जितना उसे डेवलप किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट आज एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। पुराने मोबाइल फोन्स हैं, गैजेट्स हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिसाइकल करना कितना जरूरी है। दोस्तों, इनोवेशन का मतलब सिर्फ नए प्रोडक्ट्स बनाना नहीं है, इनोवेशन का मतलब है कि प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देखना और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढना। कभी कभी एक सिंपल आइडिया भी बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो पैदा करता है। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप भी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकती है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को फ्रेंडली बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए जॉब्स भी क्रिएट करें। देखिए, हर यंग पर्सन साइंटिस्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर यंग पर्सन एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर देख के संभाल सकता है। एनर्जी सेव करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना और ट्रीज लगाना, ये कितने छोटे कदम है जो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ है वो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनाएंगी, फ्यूचर आज के स्टूडेंट्स बनाएंगे, जो कल के इनोवेटर्स होंगे, जो कल के लीडर्स होंगे, जो कल के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट होंगे। अगर यू टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज करे, दुनिया को क्लीनर, ग्रीनर और हेल्थियर बनाया जा सकता है। आखिर कहा जा सकता है कि यूथ और टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है वो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए सबसे पावरफुल फोर्स है। जब क्रिएटिविटी, इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ मिल जाए तो हर चैलेंज का सोल्यूशन मुमकिन है। इसीलिए तो कहते हैं कि ग्रीनर टुमारो का सफर आज के यंग माइंड से ही शुरू होता है। वैसे आपके नजदीक फूड वेस्ट कम करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, सोचिएगा और मुझे बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहम, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
0: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
1: गेम ऑन,
0: वॉल्यूम अप,
1: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
0: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दिल से देसी,
2: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। विंटर सीजन चल रहा है और कतर का माहौल बड़ा ही खूबसूरत है। हल्की ठंडी हवाएं शाम से लेकर सुबह, सुबह से लेकर दोपहर, हर वक्त का मौसम अच्छा है। फैमिली विजिट कर रही है और हो सकता है दोस्त यार भी आए। ऐसे में कतर घुमा दे, कतर की खूबसूरत जगह दिखा दे तो उनका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन कहीं स्कैम ना हो जाए। हैं, स्कैम कैसे? वेल बताता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है फ्रॉड अवेयरनेस। दोस्तों, इस शो में मैं आपको बताता हूं किस तरह के फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं और एक फ्रॉड जो पैकेज के नाम पे आपके साथ हो सकता है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। वेल दोस्तों, ये इसका अगर नाम मैं देना चाहूं तो इसे कह सकते हैं पैकेज फ्रॉड। जरा कि इस फ्रॉड के बारे में पहले जान लिया जाए कि किस तरह से ये पैकेज फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये ऐसे होता है कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली दूसरे मुल्क से यहाँ घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और ये टूरिस्ट प्लेस है, कई लोगों की फ्रेंड्स और फैमिली आते हैं, लोग घूमने फिरने आते हैं और पैकेजेस देख, और आजकल सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे अपने पैकेज को फेक, जो स्कैमर्स होते हैं वो एक फेक पोस्ट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और रस्ते में लोगों को पैकेज जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं कि 500 रियाल या 1000 रियाल में आपको 10 अलग एक्टिविटी, एडवेंचर वाली चीजें जो है वो करने को मिलेगा, स्पोर्ट्स एडवेंचर करने को मिलेगा, जिसमें वो जेट स्की डाल देंगे, यू नो फिशिंग डाल देंगे, डेजर्ट में घुमाना फिराना डाल देंगे और हो सकता है वो आपको यू नो राइडिंग दे दे, और ये सारी चीजें सिर्फ 1000 या 500 कतरी रियाल में। और ऐसे में आपको लगेगा ये बेस्ट डील है कि इतने कम में इतना सब कुछ मिल जाएगा, तो क्यों ना इस तरह का पैकेज ले लिया जाए। लेकिन

0: हो सकता है आपके साथ फ्रॉड। पहली बात तो ये, इतने कम और इतने सस्ते में कोई अगर आपको पैकेज दे रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है, इसको आपको देखना पड़ेगा। वेल, इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, जरा इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बचने के तीन सही तरीके हैं। पहला कि भाई सोशल मीडिया ही यूज करें मतलब सोशल मीडिया यूज करें, लेकिन उनके जो आपके पास वीडियोस आ रहे हैं या फोटोज आ रहे हैं या पोस्ट आ रहे हैं उन पर भरोसा ना करें। कई बार ये पोस्ट वेरीफाइड चैनल से या वेरीफाइड अकाउंट से भी आपके पास आते हैं। आप जब इनके अकाउंट में जाते हैं तो सारी डिटेल पड़ी होती है, आपको लगता है कि ये तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता, लेकिन ये भी फ्रॉड हो सकता है। तो प्रॉपर रजिस्टर्ड वेबसाइट पर जाइए, तब वहां पर जाके अगर आपको कोई कहे कि आपको हम ये पैकेज दे रहे हैं और वो पैकेज अफोर्डेबल प्राइस में, बेहतर प्राइस में हो, तब भरोसा करिए। दूसरा तरीका है इस फ्रॉड से बचने के लिए कि आप जब भी इस तरह के पैकेज देखें तो फोन कॉल करें, उनकी लोकेशन पूछें और साथ ही उनका कोई बंदा हो जो मिलने आ सके या आप उनसे मिल सकें, तो आप ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है जो कि सबसे सिंपल है कि आप उनको एडवांस में पेमेंट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं सबसे अहम चीज करते ये हैं कि आपको जल्दी कहते हैं कि सीट भर जाएगी, जल्दी करिए, फला आइलैंड जाने के लिए सारी सीटें जो है वो फुल हो गई हैं, एक सीट बची है। तो ऐसे में ये आपको जल्दबाजी दिखाएंगे, आपको वहां नहीं फंसना है। एडवांस पेमेंट कभी ना करिए, सारे एडवेंचर लेने के बाद लास्ट में अगर पेमेंट का ऑप्शन है तो सही है, या एडवेंचर करने से पहले आपसे मिल चुका है और आप पूरी तरह से श्योर है कि ये फ्रॉड नहीं है तो ही आप पेमेंट करिए। ऐसे फ्रॉड जानने के लिए आपको हमेशा FM 107 से चिपक के रहना पड़ेगा और सुनते रहना होगा फ्रॉड अवेयरनेस विद मी यानी कि फजील के साथ। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हुए एक नए फ्रॉड के बारे में। स्कैम अलर्ट,
1: Qatar's most heard radio station FM 107, FM 107, Dil Se Desi।

0: कतर की कहानी पर्ल की ट्रेडिंग से लेकर पर्ल बनने तक की बड़ी दिलचस्प। इस सफर के बीच पहली इमारत, पहला पार्क, पहला सिनेमा, पहला थिएटर, ये सब अपनी खास अहमियत रखते हैं। इसीलिए इनका जिक्र करना और आपको इस पूरे सफर पे ले जाने का जिम्मा हमने उठाया। कतर्स फर्स्ट आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर्स फर्स्ट मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ, हमारा वीकली प्रोग्राम जहां हम लेकर आते हैं कतर की वो पहली बार शुरू होने वाली कहानियां, वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स और वो अचीवमेंट्स जो पहली बार हुई और जिन्होंने हमारे मुल्क की हिस्ट्री और फ्यूचर को शेप किया। हर एपिसोड में हम एक्सप्लोर करते हैं एक कहानी जो पहली बार हुई, चाहे वो पहली यूनिवर्सिटी हो, पहला इनोवेशन, पहला नेशनल अचीवमेंट या कोई और माइलस्टोन जो कतर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे इस खास प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिले बल्कि इंस्पिरेशंस, इनसाइट्स और थोड़ी मजेदार स्टोरीज भी सुनने को मिले। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 या हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत है। हैंडल हमारा इसी नाम से है, FM17। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जहां हम कतर की हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन वाकयात ने कतर में रहने वालों की जिंदगियों को छुआ है। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पे जहां अपने सितारों की तरफ रुख किया और लॉन्च किया अपना पहला सैटेलाइट। मैं हूं सरवर मिर्जा, लेकर चलूं आपको एक ऐसे सफर पर जो इनोवेशन, एक्शन और नेशनल प्राइड का बाइस है। दोहा के रेगिस्तानों से लेकर स्पेस की गहराइयों तक आज हम एक्सप्लोर करते हैं मिशन, माइंड्स और मैजिक जो छुपी है सोहेल के पीछे या सोहेल वन के पीछे, कतर का पहला सैटेलाइट जो एक बोल्ड कदम था मुस्तकबिल की तरफ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जहां आज हम जानेंगे कि कैसे कतर ने एक बड़ी विजन के साथ अपना पैगाम ऑर्बिट में भेजा।
2: 1-0 ignition

दोस्तों 2013 से पहले कतर का कोई सैटेलाइट प्रेजेंस नहीं था। कम्युनिकेशन सिग्नल्स, ब्रॉडकास्टिंग और डेटा सब फॉरेन सैटेलाइट्स पर डिपेंड करते थे, लेकिन कतर नेशनल विजन 2030 का एक गोल था, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। ये सब शुरू हुआ था एक डिकेड से ज्यादा पहले एक सिंपल सवाल के साथ, जो लेकर आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन कि कतर को दूसरी कंट्रीज की सैटेलाइट्स पर रिलाय क्यों करना चाहिए, अपना खुद का क्यों ना बनाए। उस वक्त कतर की टेलीविजन, रेडियो और डेटा ट्रांसमिशंस इंटरनेशनल प्रोवाइडर डिपेंड करती थी। ख्वाब था एक ऐसी चीज का जो पूरी तरह कतरी हो, हमारी रीजन के लिए बनाई गई हो, हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करती हो और हमारे कम्युनिकेशन फ्यूचर्स को सिक्योर करती हो। वो साल था दोस्तों 2010 और ये था असहेल सेट का जन्म, कतर की अपनी सैटेलाइट कंपनी। असहेल सेट द कतर सैटेलाइट कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर्स दोहा कतर में है, सैटेलाइट इंडस्ट्री का एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। 2010 में एस्टेब्लिश होने के बाद से ये कंपनी कतर की स्पेस प्रेजेंस को मैनेज और डेवलप करने में फोरफ्रंट पर रही है। कटिंग एज इनोवेशंस को लिवरेज करते हुए असहेल सेट एडवांस्ड सैटेलाइट सर्विस ग्लोबली प्रोवाइड करता है, एक विजन के साथ एक ट्रूली ग्लोबल सैटेलाइट ऑपरेटर बनने का और सर्विस प्रोवाइड करने का। असहेल सेट ने मॉडर्न एडवांसमेंट को इम्प्रेस किया है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का हर्नेस करके ये कंपनी इंडिपेंडेंट हाई क्वालिटी सैटेलाइट सर्विस ऑफर करती है, जो ब्रॉडकास्टर, बिजनेसेस और गवर्नमेंट की इवॉल्विंग नीड्स को केटर करती है अक्रॉस मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और उससे भी आगे। दोस्तों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स इकट्ठा हुए एक ऐसी चीज इमेजिन करने के लिए जो कतर में पहले कभी नहीं हुई थी, एक सैटेलाइट जो अर्थ के ऊपर ऑर्बिट कर रहा हो, सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा हो, जो लेकर जाए कतर आइडेंटिटी, प्राइड और इंडिपेंडेंस का पैगाम। समय ये था एक नए दौर का आगाज और काउंटडाउन शुरू हो चुका था। सैटेलाइट बनाना किसी और चीज बनाने जैसा नहीं होता, हर वायर, हर पैनल, हर सर्किट को स्पेस के हार्श कंडीशंस, एक्सट्रीम हीट, रेडिएशंस और साइलेंस को सरवाइव करना होता है। कतर का पहला सैटेलाइट असहेल 1 इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ डिजाइन किया गया, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए बनाया गया और ग्रेटनेस के लिए डिस्टाइंड था। ये सैटेलाइट 6 टन से ज्यादा वेट करता था और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोंडर्स लगाए गए थे, ताकि ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकम्युनिकेशंस और डेटा सर्विसेज को रीजन में इनहेंस किया जा सके। महीनों तक टीम्स ने टायरलेसली काम किया, टेस्ट, सिमुलेशंस और सेफ्टी चेक्स रन किए गए। उन्हें पता था कि जब वो मोमेंट आएगा, कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जब कतर के इंजीनियर्स ने अपनी क्रिएशन को पीस बाय पीस जिंदा होते देखा, वहीं एक और चीज बिल्ड हो रही थी और वो था दोस्तों कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कि कतर कंपीट करता है, इनोवेट कर सकता है और स्पेस अरेना में लीड कर सकता है। वो दिन था 29 अगस्त साल 2013। क्वारो स्पेस सेंटर फ्रेंच गियाना में एक जाइंट अरेना 5 रॉकेट लॉन्च पैड पर रेडी था। उसकी नोज कोन के अंदर केयरफुली टक्ड था असहेल 1। कतर का ख्वाब अब मेटल और प्रिसिशन में तब्दील हो चुका था। जल्द ही सैटेलाइट ने ट्रांसमिशन से शुरू कर दी, हाई क्वालिटी टेलीविजन और डेटा डिलीवर करते हुए अक्रॉस मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और उससे आगे तक। वो चैनल्स जो पहले फॉरेन सैटेलाइट पर डिपेंड करते थे, अब कतर की अपनी सैटेलाइट का यूज कर रहे थे। असहेल 1 बन गया एक नई वॉइस इन द स्काई, स्ट्रॉन्ग, क्लियर और प्राउडली कतरी। घरों में, ऑफिसेज में और स्कूल्स में सैटेलाइट की इनविजिबल वेव्स ने लोगों को ऐसे कनेक्ट किया जैसे कोई जादू हुआ हो। लेकिन ये सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं, ये थी कनेक्शन एक बॉम्ब के विजन की अपनी

की डेस्टिनी के साथ। असहिल वन सिर्फ टीवी चैनल्स और डेटा के बारे में ही नहीं था, ये सिंबलाइज करता था कुछ और भी बड़ा, इंडिपेंडेंस, आइडेंटिटी और इनोवेशन। दोस्तों, अपना सैटेलाइट कंट्रोल करके कतर ने इंश्योर किया सिक्योर कम्युनिकेशन फॉर नेशनल नीड्स। ब्रॉडकास्टिंग से लेकर इमरजेंसी कंडीशंस तक, एजुकेशन से लेकर ग्लोबल इवेंट्स तक। जब दुनिया ने अपनी नजर कतर पर डाली, वर्ल्ड कप जैसे मेजर इवेंट्स के दौरान असहेल सेट ने अपना रोल अदा किया। इंश्योरिंग फ्लॉलेस मिशन अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। अब कतर की वॉइस कहीं भी पहुंच सकती थी, सुकवाकिफ से साओ पोलो तक, अलवाकरा के ड्यून से योगी स्काई स्क्रैपर्स तक। तो दोस्तों, सक्सेस सिर्फ एक लॉन्च पर ही नहीं रुकी, कुछ साल बाद आया एसएल टू, कतर का दूसरा सैटेलाइट, ज्यादा एडवांस, ज्यादा पावरफुल, जो कवरेज और कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करता गया। ये दोनों सैटेलाइट्स मिलकर बन गई कतर का ब्रिज टू द फ्यूचर। अर्थ के ऊपर 36,000 किलोमीटर दूर, लेकिन अपनी कौम से गहरे तौर पर कनेक्टेड। तो दोस्तों, आज एसएल सेट की कहानी इंस्पायर करती है स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स को अक्रॉस द कतर। ये दिखाता है कि एम्बिशन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और अगला बड़ा कदम डिस्कवर हो सकता है यहीं से। आज यूनिवर्सिटीज स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं। यंग माइंड्स रोबोटिक्स, डेटा साइंस और एयरो स्पेस एक्सप्लोर कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि क्या मुमकिन है जब आप स्काई से भी आगे का सोचते हैं। रेगिस्तान के दिल से लेकर कॉस्मोस की गहराइयों तक कतर का सफर स्पेस की तरफ ये साबित करता है कि विजन को रियलिटी में बदला जा सकता है और छोटी कौमें भी बड़ा ख्वाब कर सकती हैं। तो दोस्तों, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: देसी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कतर फर्स्ट, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ। चलिए साहब, आप बात करते हैं कवरेज मैप्स के बारे में। असहेल सेट का सैटेलाइट कवरेज एक वाइड जियोग्राफिक एरिया में फैला हुआ है, जिसमें कतर, गल्फ कंट्रीज, लेवेंट और नॉर्थ अफ्रीका शामिल हैं। ये सर्विसेज सिर्फ लैंड एरियाज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि गल्फ और मेडिटेरियन सी के आसपास के समुद्री इलाकों में भी कवर करती हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एसएहेल सेट को एक आइडल प्रोवाइडर बनाता है टेलीकम्युनिकेशंस एप्लीकेशंस के लिए अक्रॉस मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका यानी मीना रीजन में। अपनी कवरेज का एक्सटेंट विजुअलाइज करने के लिए एसएहेल सेट डिटेल्ड कवरेज मैप्स प्रोवाइड करता है। ये मैप्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं उन एरियाज की जो सैटेलाइट से कवर होती हैं, और हाईलाइट करते हैं पावर लेवल्स अक्रॉस द कवरेज फुटप्रिंट। इस विजुअली इन्फॉर्मेटिव अप्रोच के जरिए एसएहेल सेट यूजर्स को ये समझाने में मदद देता है कि सर्विसेज किन स्पेसिफिक एरियाज और पावर लेवल्स पर एक्सेसिबल हैं। दोस्तों, जमीन और समंदरी दोनों पर एक्सटेंसिव कवरेज ऑफर करके और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मैप्स के जरिए एसएहेल सेट इंश्योर करता है कि कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट के लिए। क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी की कमिटमेंट के साथ ये कंपनी रिलायबल और इफेक्टिव सैटेलाइट सर्विसेज डिलीवर करने के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, एसएहेल सेट ने अपना सेकंड सैटेलाइट ऑन 15 नवंबर 2018 को लॉन्च किया। ये हाई पावर्ड एडवांस सैटेलाइट ने ब्रॉडबैंड डिलीवरी, ब्रॉडकास्टिंग और ग्लोबल कनेक्टिविटी को और ज्यादा बूस्ट किया है कतर में, पूरे मीना रीजन में और उससे भी आगे। एसएहेल सेट 2 जापान में को यानी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के जरिए मैन्युफैक्चर किया गया है। एसएहेल सेट 2 में KU बैंड और KA बैंड कैपेबिलिटीज हैं, जो सपोर्ट करती हैं टीवी डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकॉम्स, मोबिलिटी और गवर्नमेंट सर्विसेज उन स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर्स और कमर्शियल कस्टमर्स के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग इंडिपेंडेंस, इंटरफेरेंस रेजिलियंस, क्वालिटी ऑफ सर्विस और वाइड जियोग्राफिकल कवरेज को वैल्यू देती हैं। तो दोस्तों, ये सैटेलाइट एंटी जैमिंग प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है और वन के लिए रिडंडेंसी और बैकअप भी। एसएहेल 2 पहली रेडियो अमेचर सैटेलाइट कॉर्पोरेशन एमसेट की जीईओ कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये एमसेट कम्युनिटी को अलाउ करता है कि वो अपनी डीवीबी स्टैंडर्ड को वैलिडेट और डेमोन्स्ट्रेट करें एक सिग्नल हॉप में, रियल टाइम में अक्रॉस द विजिबल ग्लोब। तो दोस्तों, फ्यूचर की बात करें तो एसएहेल सेट का एम है कि आने वाले सालों में अपनी सैटेलाइट फ्लीट को एक्सपेंड करें। एसएहेल सेट अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर कमिटेड है, जिसमें नई सैटेलाइट्स का डिप्लॉयमेंट शामिल है अक्रॉस ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स। ये स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट एसएहेल सेट को फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है अपनी सैटेलाइट सर्विसेज में। सैटेलाइट फ्लीट को एक्सपेंड करके एसएहेल सेट अपनी कैपेसिटी और कवरेज कैपेबिलिटी को एनहेंस करता है।

इस कस्टमर बेस की ग्रोइंग डिमांड को मीट कर सके। अपनी सैटेलाइट फीड के अलावा सहेल सेट लीडिंग रीजनल और इंटरनेशनल सैटेलाइट ऑपरेटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की है। ये कोलैबोरेशन सहेल सेट को वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट्स पर सर्विस प्रोवाइड करने में मदद देती है। पार्टनर्स की एक्सपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करके असेट अपनी सर्विस कवरेज को प्राइमरी ऑपरेशनल एरिया से बियॉन्ड एक्सटेंड करता है और ग्लोबल कनेक्टिविटी ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्लान्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के जरिए असेट अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म करता है फ्लेक्सिबल रिलायबल और ग्लोबल सैटेलाइट सर्विसेज डिलीवर करने के लिए जो कस्टमर्स की इवॉल्विंग नीड्स को मीट करें। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस करके और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कोलैबोरेट करके सहेल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करता जा रहा है। तो दोस्तों, रेगिस्तान के दिल से लेकर कॉस्मोस की गहराइयों तक कतर का सफर स्पेस की तरफ ये साबित करता है कि विजन को रियलिटी में बदला जा सकता है और छोटी कौमें भी बड़े ख्वाब पूरे कर सकती हैं। सोहेल वन सिर्फ एक सैटेलाइट ही नहीं था, ये एक सिंबल था, एक याद दहानी के हर बड़ा कदम इमेजिनेशन से शुरू होता है। जब ये आज रात हमारे ऊपर हाई ऑर्बिट में घूम रहा है, साइलेंटली ट्रांसमिट कर रहा है अक्रॉस ग्लोब, एक पैगाम लेकर जा रहा है कतर से यूनिवर्स तक कि वी आर हियर, वी आर कनेक्टेड एंड द स्काई इज ओनली द बिगिनिंग। तो दोस्तों, आपके ख्याल में वो कौन सी चीज होनी चाहिए जो आप कतर में पहली बार देखना चाहेंगे, या आप कतर में किस चीज का इंतजार सबसे ज्यादा कर रहे हैं? अपने जवाब में टेक्स्ट करके भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 666221107। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह हमारे साथ वक्त गुजारा और शो एंजॉय किया। अगले प्रोग्राम में हम एक नई कहानी, नए टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आएंगे, जिसमें आपको मिलेगी और भी एक्साइटिंग अपडेट्स और स्टोरीज, तो जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ हम कतर स्वस्थ से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब. सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीब टू हैबिट. हदीब टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
2: दोस्तों, कैंपिंग सीजन लिए कैरेवन्स और ट्रेलर्स को टो करने के औकात समाप्त कीजिए. संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक. बराए करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें. राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें. और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है. कैरेवेंस के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रेयर लाइटिंग का काम करना, रेयर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग लोड. इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें. कैरेवन्स या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें. अगर कैरेवन्स का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है. टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें. टोइंग व्हीकल और कैरेवन्स की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो. वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें. अगर मौसम खराब हो जैसे बरसात, धुंध या तेज

0: हवाएं, तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां ली है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे only on FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
3: FM 107।